ओम शांति। हमारा सबसे मुख्य सब्जेक्ट है योग अभ्यास। योग में ही हमें सबसे ज्यादा सुख मिलता है, शांति की अनुभूति होती है, चित्त चैन पाता है और सर्वशक्तिवान से शक्तियां भी मिलती हैं। तो अपने से पूछना है, क्या हमारा योग पर उतना ही अटेंशन है जितना इसका महत्व है? हमारा एक एक सेकंड का योग अभ्यास प्रकृति को बदलने वाला है, ग्रह और नक्षत्रों पर प्रभाव डालने वाला है। हमारे योग बल से सारे संसार को निरंतर सकास मिलती रहती है, तो क्या हम इसको इतना ही महत्व दे रहे हैं? न केवल इससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, बल्कि बुद्धि भी बहुत डिवाइन हो जाती है, हमारी प्योरिटी निरंतर आगे बढ़ती जाती है और हम अपने जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम राजयोग को इस रूप से भी जान लें कि राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें विश्व पर राज करने की कला सिखाता है। तो आइए हम बाबा का एक सुंदर महावाक्य याद करें। बच्चे, तुम दो युग देवताओं के साथ रहे, तुमने दो युग मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब भगवान के साथ रहो। योग माना भगवान के समीप रहना, उसके साथ रहना। जब हम उसके साथ रहते हैं तो जो कुछ उसमें है वो हम में समाने लगता है, उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस, उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में आने लगती है। तो हम विशेष रूप से योग अभ्यास पर महत्व दें, केयरलेस न हो जाएं कि थोड़ा याद कर लिया, सवेरे थोड़ा उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग कर ली, सारा दिन अलबेलेपन में बिता दिया, व्यर्थ बातों में बिता दिया, व्यर्थ संकल्पों में बिता दिया। अगर हमारा समय व्यर्थ में बीतता होगा तो जो थोड़ा बहुत हमने योग लगाया उसकी शक्ति तो सहज ही नष्ट हो जाती है और हमें आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता, संस्कार बदलने का अनुभव नहीं होता। देखने वाले भी यही कहते हैं, ये लंबा समय से ज्ञान में तो चल रहे हैं परंतु इनके जीवन में कोई चेंज दिखाई नहीं देती, क्योंकि योग अभ्यास बहुत कम है। योग से ही आत्मा में शक्ति आती है श्रेष्ठ कर्म करने की, स्वयं को बदलने की। योग ही हमें डीप रियलाइजेशन भी कराता है और अनुभवों की खान भी बना देता है। तो यही समय है जब हम योग का परम सुख ले सकते हैं, बाकी तो भक्ति मार्ग में हमारी केवल खोज बनी रहेगी, किसी की तड़फन बनी रहेगी, किसी की भटकन कायम रहेगी। तो जब अब हमें संपूर्ण ज्ञान मिला है तो बुद्धि को स्थिर करें, एक के सिवाय हमें कुछ भी दिखाई ना दे। तो आज सारा दिन हम अपनी बुद्धि को दो स्वरूपों पर स्थिर करने का अभ्यास करेंगे। पहले स्वयं को देखेंगे मस्तक के बीच चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, मास्टर ज्ञान सूर्य। 10 सेकंड तक स्वयं को देखते ही रहेंगे, मुझसे चारों ओर बहुत सुंदर गोल्डन डिवाइन किरणें फैल रही हैं। फिर परम धाम में बुद्धि को ले चलेंगे और सर्वशक्तिवान पर बुद्धि को स्थिर करेंगे, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सृष्टि के बीज रूप है, केवल वही दिखाई दे रहा है। फिर वापिस आत्मा पर
फिर परमात्मा पर ऐसा अभ्यास हर घंटे में एक दो बार अवश्य करेंगे तो सारा दिन बुद्धि एकाग्र रहेगी, व्यर्थ की ओर आकर्षण भी नहीं होगा, पदार्थों से मन और बुद्धि की आसक्तियां निकलती जाएंगी, ऑटोमेटिकली स्थिति में विकास होता हुआ नजर आएगा। ओम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। एक बहुत सुंदर सुविचार के द्वारा हम हमेशा की तरह करते हैं आज की शुभ शुरुआत। कहते हैं कि अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों का हमेशा स्मरण किया जाएगा, मन में, शब्दों में और जिंदगी में भी। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। वैसे भी बहुत खूब कहा जाता है कि द वर्ल्ड इज ह्यूज ड्रामा, ये सारा विश्व जो है वो एक नाटक चल रहा है, एक रंगमंच है, और उस रंगमंच पर जो नाटक चल रहा है उसमें हम सब अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार में हम किस प्रकार से अपना पार्ट प्ले करते हैं, किस लक्ष्य से करते हैं और कौन से विचारों से हम एक दूसरे को मिलते हैं, यही सारी बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमेशा ही हम अपनी भूमिका को समझें, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा हमारा ध्यान रहे और विचारों में भी बहुत सुंदर पॉजिटिविटी हो। तो चलिए इन्हीं बातों को हम बहुत गौर से चिंतन करने के लिए ही और अपने जीवन में अपनाने के लिए भी सुनते हैं हमेशा की तरह श्रीमद् भागवत कथा पर चिंतन मंथन और उसका अलग रीति से स्पष्टीकरण। इन्हीं के सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने बहुत ही सुंदर सुविचार सुनाया, भूमिका, रोल, अपने रोल को अदा करना कितनी बड़ी बात है। हर एक के जिंदगी में अलग अलग रोल होते हैं। कभी पिता का रोल होता है, बॉस का रोल होता है, असिस्टेंट का रोल होता है, माँ का रोल होता है, बहन का रोल होता है। इतना ही नहीं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तब भी हमारे रोल बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। तो इसलिए आपने जैसे कहा कि किसी ने बहुत सही कहा है कि ये दुनिया जो है वो बहुत बड़ा नाटक है, विश्व रंग मंच पर जो खेला जा रहा है वो नाटक है, और मैं तो कहता हूँ ये पिक्चर भी है, बायोस्कोप है। उसमें क्या होता है कि भले एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, किरदार अगर अलग अलग है, किसी का किरदार विलन का है, किसी का हीरो का है, किसी का कॉमेडियन है, किसी का और कोई है, लेकिन जब किरदार निभाते हैं तब भले एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन जब शूटिंग पूरी हो जाती है तब गले में गले डाल के, गले में हाथ डाल के वो निकल जाते हैं। हमारा भी अगर ध्यान ऐसा हो कि जो कुछ हमें किरदार मिला है तो वो मुझे निभाना है, बेखूबी से निभाना है, तो क्या होता है, लोग भी तालियां बजाते हैं। बहुत बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े नायक हैं, बहुत बड़े जिन्हें अभिनेता है, और अगर वो भिखारी का रोल करते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी रीति करते हैं कि लोग उनका सम्मान करते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि ये भिखारी है। तो हम अपना किरदार कैसे निभाए, और ये अगर हम अपने जिंदगी में ध्यान रखें तो मुझे लगता है जिंदगी हमेशा खुशहाल होगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, चलिए अब समय हो गया है एक सुंदर कहानी सुनने का। जो आज की कहानी है वो बहुत समय पहले की एक सत्य घटना भी है। एक संत थे, बहुत श्रद्धालु, अन्य साथियों के साथ बद्रीनाथ जी के दर्शनार्थ जा रहे थे। मार्ग में उनका पाचन बिगड़ गया और उनको मलत्याग करने के लिए कई बार रुकना पड़ा। उन्होंने देखा उनके साथियों को उनके कारण असुविधा हो रही है और धीरे धीरे वो साथी उनका साथ छोड़कर आगे निकलने लगे हैं। तब संत ने ही उन्हें प्यार से कहा कि आप सब लोग मेरे लिए मत रुकिए, मैं जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी आपके साथ आ जाऊंगा। अब साथी तो निकल गए, संत दिन प्रतिदिन दुर्बल होते गए। एक छोटी सी गुफा में उन्होंने आश्रय ले लिया और एक दिन वो इतने दुबले हो गए थे कि उसी गुफा में गिर गए, लेकिन मुख से मन से राम नाम का जाप सदैव चलता रहा। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उनके मन में प्रभु का नाम सदा था। मन ही मन वो ये भी उससे बात कर रहे थे कि हे प्रभु, यदि तेरी यही इच्छा है तो फिर मुझे भी मंजूर है, और अगर ये रोग पूर्णतः ठीक हो जाए तो फिर मैं तेरे दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। ऐसे ही याद फरियाद करते हुए उनकी आंख लग गई। अगले दिन क्या देखते हैं कि सुबह एक वृद्ध हाथ में दही भात का कटोरा और दूसरे हाथ में दवाई की पुड़िया लिए उनके पास पधारे और बोलने लगे, ये खा लो बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे। संत ने वृद्ध की ओर ध्यान से देखा, उनको पहचानने की कोशिश की, लेकिन निष्फल रही, क्योंकि उनको इतनी कमजोरी आ गई थी कि उनकी दृष्टि भी धुंधली हो गई थी। उन्होंने दवा और खिचड़ी खा ली। वृद्ध ने कहा, मैं कल फिर से आऊंगा, 3 दिन की अवधि है, दवाई पूरी कर लो तो पूर्णतः आप स्वस्थ हो जाओगे। संत निरंतर राम नाम का जाप जपते रहे और सोचते रहे, यहाँ ऐसी गुफा में, निर्जन गुफा में सेवा दान करने वाला कौन हो सकता है ये? दोस्तों, कौन था वो? चलिए आप भी थोड़ा चिंतन कीजिए और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर, आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं आगे कथा कौन सा मोड़ लेती है। तो वो संत सोचने लगे कि यहाँ निर्जन गुफा में सेवादान करने वाला कौन है ये। दूसरे दिन आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, कौन हो आप? तो उसने कहा, पहले ठीक हो जाओ फिर पूछना, लो दवाई खा लो। संत ने कहा, नहीं पहले बताओ, न बताओ तो मैं दवाई भी नहीं खाऊ, तो मत खाओ मैं जाता हूँ। ऐसे कहकर वृद्ध चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से लौट आए और कहने लगे, तुम दवा खा लो तब मैं जाऊंगा। संत ने कहा, नहीं आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब मैं दवा खाऊंगा। ऐसा ही दोनों का मधुर वार्तालाप चलने लगा और वृद्ध मुस्कुराए और अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। संत ने श्री चरणों पर मस्तक नवा कर बोले, इतने सुनसान निर्जन वन में आपके अतिरिक्त और कौन आ सकता है? हे प्रभु, क्या आप स्वयं दौड़ दौड़ कर इसी प्रकार भक्तों को सेवादान करते हो? प्रभु ने कहा, जब कोई प्रिय भक्त मिल जाता है तो उसके मन में प्रेरणा भर देता हूँ, और यदि कोई मिलता नहीं है तो स्वयं सेवा के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। ऐसे मनमोहन रोचक वार्तालाप करते हुए, जीवन को परमानंद से परिपूरित करते हुए थोड़े ही क्षण में प्रभु अंतर्धान हो गए। दोस्तों देखिए ना, ये तो सत्य घटना है, लेकिन मैं समझती हूँ हम सब ने भी कई ना कई बार ऐसा अनुभव जरूर किया होगा कि सचमुच भगवान जब मदद करता है तो हम भी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। और सचमुच इसके लिए चाहिए केवल हृदय में भगवान के प्रति बहुत बहुत निस्वार्थ प्यार। ज्ञानेश्वर जी आप क्या कहेंगे?
2: बहुत ही सुंदर कथा है भक्ति जी, भक्त और भगवान। भक्त की भावना जितनी श्रेष्ठ है भगवान उतने ही जल्दी भक्त के पास आ जाते हैं। भक्त की भावना निष्काम होनी चाहिए। अगर निष्काम भावना है, दिल में प्रेम है, मन उभरता है और मन आतुर होता है, व्याकुल होता है उनको मिलने के लिए, तो भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं, यही दिखाया है इस कथा में। और यह सच भी है, भगवान क्या है, भगवान कैसा है, यह सब बातों के परे जाके जब हम भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ देते

0: है, चाहे वो पिता का हो, माता का हो, बंधु का हो, तो क्या होगा, हम दिल से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, दिल से भगवान से प्यार कर सकते हैं, और फिर भगवान जब आते हैं तो भगवान के मिलन का आनंद भी बना सकते हैं। भगवान कभी कभी हमारे दर पे आता है, फिर क्या होता है, हम उसे पहचान नहीं पाते और भगवान वापस चले जाते हैं। तो हमें दिल से भगवान को पहचानना है। तो जिंदगी में भी हम भगवान को बहुत बार बुलाते हैं, लेकिन अगर पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी उतनी आस्था नहीं है, हम ऐसे ही कैजुअली बुलाते हैं। अगर किसी मेहमान को हमने कहा कि कभी हमारे घर पे खाना खाने के लिए आओ, तो समय दिन निश्चित नहीं है, वो कौन आएगा। लेकिन जब हम निश्चित करके उनको बुलाते हैं तो उनकी खातिरी कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान से प्यार करते समय भगवान को हमें बुलाना है तो भगवान जरूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सुंदर कथा है, और मैं समझती हूँ कि हम इसको बहुत अच्छे तरह से अपने ध्यान में रखते हुए इसका अनुभव भी करें, अनुभूति भी जरूर करें, और आप में से कईयों ने अनुभूति की भी होगी कि ऐसे समय पर जब हमें लगता है कि यहाँ कोई हमें सहारा देने वाला नहीं है, उस समय दिल से जब भगवान को याद करते हैं तो जरूर किसी न किसी के रूप में भगवान हमारे पास पहुँचते ही है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर रोचक कथा सुनने के बाद हम दशम स्कंध का 28वां अध्याय, उसके बारे में बहुत सुंदर चिंतन जो कर रहे थे उसको ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही नंद बाबा ने वरुण लोक में हुई सारी घटना को ब्रजवासियों को सुनाया और भगवान के प्रेमी गोप ये सुनकर अब समझने लगे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया, क्या जगदीश्वर भगवान हम लोगों को अपना स्वधाम दिखा सकते हैं? तो हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, उनसे क्या बात छिप सकती है, वो तो सर्वदर्शी है। तो हे परीक्षित, श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी है, भला उनसे कोई बात कैसे छिप सकती है? उन्होंने गोपों की इस अभिलाषा को मन ही मन जान लिया और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए उन्होंने उनको सारी बातें दिखा दी। इस संसार में जीव जो है वो अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भली भांति की कामना और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता रहता है। फिर उसके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सारी योनियां जो है वो सारी भटकता रहता है, लेकिन आत्मस्वरूप को जिसने पहचाना वो सचमुच ही महान हो जाता है। इस प्रकार भागवतकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सारी बातें सोचकर गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखाया, साक्षात्कार कराया कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। ज्ञानेश्वर जी, कितनी सुंदर बातें हैं, लेकिन कभी कभी मन में कुछ प्रश्न भी उठते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ एक साकार रूप में, एक सगुण रूप में भागवतकारों ने वर्णन करते हुए दिखलाया है, और उसी के साथ फिर कुछ यह भी भागवतकार कहना चाहते हैं कि हम सब माया अंधकार में हैं, तो उस अंधकार को भी भगवान दूर करना चाहते हैं। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम आत्मा हैं, इस बात का भी वो हमें दर्शन कराना चाहते हैं।
1: बिल्कुल भक्ति जी, मुझे तो लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा रंजक है, रोचक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्णन वहाँ किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक बातें भी श्रीमद् भागवत कथा में काफी जगह की है, गहन चिंतन किया है, कुछ नई सोच दी है, और इसके ऊपर जब हम सोचते रहते हैं तब भागवत कथा का आनंद कुछ अलग होता है। अभी यहाँ देखिए कि पहले शब्द का प्रयोग किया है कि भगवान सर्वदर्शी है। अगर भगवान सर्वदर्शी है तो क्या वो हर चीज, हर पल, हर क्षण कौन क्या कर रहा है, क्या वो देखते हैं? मुझे लगता है कि शायद भागवत कथा में या हमारे पूर्वजों ने जो भगवान देखता है ये बातें कही है, उसका भी कुछ आधार है। हमारा मन जो है वो पतित होने के लिए उतावला होता है। पतित होना आसान है, पुण्य जमा करना मुश्किल है, ऐसे कहते हैं। गिरना आसान है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि गिरना, बहुत सारे जो ऋषि मुनि है, तपस्वी है, तपस्या करने के बाद उनका स्खलन कभी कभी हो जाता है और वो गिर जाते हैं मॉरली, नैतिकता से। तो ये चीजें हमें रोकने के लिए, हमारा गिरना रोकने के लिए, हमारी पाप बुद्धि खत्म करने के लिए, कोई ना कोई मन में डर जो है वो पैदा करने के लिए, शायद कोई ना कोई जो डर है वो हमारे मन में निर्माण करने के लिए भागवतकारों ने ये कहा गया है कि भगवान देखता है। देखिए, अगर हम रास्ते पे हैं, सब लोग हमें देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम तैयार होके जाते हैं, बाहर कहीं जाना है तो तैयार होके जाते हैं, घर का ड्रेस पहन के नहीं रहते। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हर कोई देखता है, तो जब हमें ये पता चले, जब हम ये कल्पना करें कि भगवान हमें देख रहा है, तो कोई भी पाप कर्म करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। हम 10 बार सोचेंगे कि मैं जो पाप कर्म करने जा रहा हूँ वो भगवान देखता है।
0: तो ज्ञानेश्वर जी, डर निर्माण करने की जरूरत क्या है?
1: क्योंकि क्या है कि ये डर अगर निर्माण नहीं करेंगे तो हम पाप कर्म करने से परावृत्त नहीं होंगे। डर क्या है? हमें रोकता है। अभी जैसे हमेशा हम मिसाल देते हैं कि ज्वेलरी का शॉप है, वहां क्या होता है, आप सीसीटीवी के निगरानी में हो। ये बोर्ड है। क्यों बोर्ड है? क्योंकि आपको आगाह करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, कॉन्शियस करने के लिए ये देखिए चेतावनी है कि देखिए अगर कोई आप उल्टा सुलटा काम करेंगे तो आप सीसीटीवी के निगरानी में हो, पकड़ भी जा सकते हो। तो ये चीजें जो है, डर क्यों करना चाहिए? अगर हमारा कॉन्शियस अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वो गिरने के लिए आसानी से गिर जाता है, उठने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, और इसलिए शायद ये डर का निर्माण किया है, ऐसा मुझे लगता है।
0: दोस्तों, कितनी सुंदर लेकिन उतनी ही गहन बात है, इतनी ही सूक्ष्म बात है कि सचमुच हमारे मन में अंदर कौन सी भावना चल रही है। कई बार हम ही अपने मन को समझ नहीं पाते और उसके ही कारण शायद भागवतकार हमें इन बातों का भी बहुत गहरा चिंतन देते हैं, और उसके साथ साथ अगर मन में डर है तो उसको हम सकारात्मक रीति से ले कि हम किसी कोई तो हमें देखने वाला है, ये समझकर बुरे कर्म करने से परावृत्त हो जाए। दोस्तों, बहुत सुंदर बात है, यहाँ भागवतकारों ने अलग अलग रीति से हर प्रकार से हम मानव कैसे पुण्यवान हो जाए, पतित से हम पावन की ओर कैसे चले जाए, इन बातों का गौर से वर्णन भी किया है और उसके लिए बहुत सुंदर मिसाल भी दी है। चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेगी लेकिन अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से चिंतन करते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान, ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर, आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, भागवतकारों ने यह भी वर्णन किया है कि भगवान ने सब गोपों को ब्रह्म का साक्षात्कार कराया। अब यह ब्रह्म तत्व कैसा है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि शरीर जैसे पांच तत्वों का है, वैसे शरीर के बाहर प्रकृति के भी पांच तत्व है, और हमारी मन और बुद्धि इन्हीं बातों में सीमित रहती है। लेकिन उसके भी आगे जो छठा तत्व है, जो ब्रह्म महातत्व कहा गया है, वहाँ हमारी मन बुद्धि चली जाए और वहाँ जाने से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में एक सत्य का, एक प्रकाश का सोजरा जो है वो निर्माण होता है। इसके लिए यहाँ भगवतकार लिखते हैं कि भगवान ने पहले व्रजवासियों को ब्रह्म का साक्षात्कार कराया, जिसका स्वरूप सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, सनातन है और ज्योतिर्मय है। इन सारे स्वरूपों को देखने के बाद गोपों का माया अंधकार क्षण मात्र में ही दूर भाग गया। देखिए दोस्तों, इस छठे महातत्व को अलग अलग रीति से आध्यात्मिक बातों में बताया गया है। आध्यात्मिकता को अगर हम देखें तो कई बार छठा ब्रह्म महातत्व जो है वो सुनहरे लाल रंग से भरा हुआ है, यह भी बताते हैं। ये भी कहते हैं कि वह भगवान का निवास स्थान है। तो ज्ञानेश्वर जी, हमने यह भी सुना है कि भगवान भी उसी रूप से मिलता जुलता है, वह भी एक ज्योतिर्मय है, वह भी लाल सुनहरे रंग में ही ज्योति स्वरूप है। और यहाँ भागवतकारों ने श्री कृष्ण का एक साकार माध्यम से वह दिखाना चाहते हैं।
3: बिल्कुल भक्ति जी, जैसे आपने कहा कि भगवान जो है वो अपने स्वरूप का वर्णन भक्तों को करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी देहधारी के रूप में आए, देहधारी के रूप में आने के बाद उनकी जो कला है, उनका जो हेलपाल है, वो देखने के बाद भक्त भाव विभोर होते हैं और फिर श्री कृष्ण के देह में ही फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि किसी के देह के आकर्षण में फंसे हो, और इसलिए यहाँ गोप गोपियों को जैसे साक्षात्कार कराया तो भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन इसका मतलब मन में प्रश्न होता है कि सगुण रूप और निर्गुण रूप, उसमें किसका हम ध्यान करें। भक्त लोगों को जब शुरुआत होती है, भक्ति की शुरुआत होती है, ध्यान धारणा की शुरुआत होती है, तब निर्गुण ब्रह्म को याद करना बड़ा मुश्किल लगता है। हम किसी व्यक्ति को याद कर सकते हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनका चलन कैसा है, उनका व्यवहार कैसे है, इसी आधार पर याद कर सकते हैं। और इसलिए शायद मुझे लगता है कि जितनी भी देवताएं हैं, भले भगवान श्री कृष्ण है, हे भगवान, भगवान का वर्णन भी करते हैं, ज्योति स्वरूप है, परम धाम में रहने वाले हैं, उन्होंने अवतार लिया, और क्या होता है, उनका खेलपाल, उनकी बोलचाल, उनका प्रेम, उनका स्नेह, यह सब अनुभव करने के लिए शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि मेरा असली स्वरूप आप जानो, और वो क्या है? वो ज्योति स्वरूप है। और इसलिए आपने जैसे वर्णन किया, भगवान कैसा है? ज्योति स्वरूप है। भगवान कैसा है? सत्य है। भगवान कैसा है? ज्ञान है। भगवान कैसा है? अनंत है। भगवान नित्य है। उसमें कोई चेंज नहीं है। भगवान ने जब अवतार लिया तब वो नित्य नहीं है, अनित्य हो गया। क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री रामचंद्र जी हो, उन्होंने अपना अवतार पूरा किया और फिर परम धाम में चले गए। हम भी यहाँ अवतरित है, हम भी अपना कार्य करने के लिए आए हैं। और इसलिए पहले यहाँ कहा गया था कि आपके कर्मों के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको जन्म मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे भागवतकारों ने कहा इस अध्याय में कि आपकी जो जो कर्म है, आपकी जो जो भावना है, आपकी जो जो इच्छा है, उसी के फलस्वरूप आपका जन्म होता है। और उसमें बहुत अच्छा वर्णन मुझे ये लगा भक्ति जी कि उन्होंने कहा कि मनुष्य से आप देवता बन सकते हो। मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? ये जब सोचेंगे तब मुझे लगता है कि देवत्व का साक्षात्कार हमें होना चाहिए। हम देवता बन सकते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, तो उसके पहले मन में संकल्प आता है कि मुझे आईएएस बनना है। सब नहीं बन सकते। ऐसे बहुत सारे 4%, 3% उसका रिजल्ट आता है, और बाकी जो 96%, 97% जो लोग है वो नहीं बन सकते। तो देवता बनना असंभव नहीं है। देवता बनना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं है। और अगर हम प्रयास करें, अगर हम संकल्प अच्छा करें, तो हम देवता भी बन सकते हैं। तो ये एक मन में विचार भगवतकारों ने आप हमें दिया है। और फिर कहते हैं कि मनुष्य है, देवता है, और फिर अनेक योनियों का वर्णन किया है। चाहे वो सर्प योनि हो, गधे की योनि हो, कुत्ते की योनि हो, तो इसके ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तब जितनी भी कथाएं हैं, चाहे भागवत कथा हो, महाभारत हो या कोई भी हो, लेकिन पूर्व जन्म के बारे में जब वर्णन होता है तब ऐसे नहीं कहते जब गधा था उसने ये ऐसा कुछ पाप किया, जब घोड़ा था तब उसने पाप किया। वो जो पिछले जन्म है वो मनुष्य का ही है, और उस समय उसने कुछ पाप किया और इसके फलस्वरूप उसको ये भोगना है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम संकल्प क्या करें, हम कर्म क्या करें, और हमारे कर्म और संकल्प अच्छे अगर है तो हम देवता बन सकते हैं। यह संदेश यहाँ दिया है। तो मुख्य रूप से मुझे दो संदेश बहुत अच्छे लगे। एक, हम देवता बन सकते हैं, हम आत्मस्वरूप में स्थित हो सकते हैं, भगवान परमधाम में रहते हैं, भगवान ज्योति स्वरूप है, और ज्योति स्वरूप में हम उनको याद करते हैं तो हमारा बेड़ा भी पार हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, हम सब ज्योति स्वरूप ही है, इसीलिए कहा जाता है कि उसकी प्राण ज्योत निकल गई। तो जैसे हम आत्माएं हैं वैसे ही परमात्मा है, यह बात यहाँ बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन की है। और फिर बात रही असुर या सूर्य की, या देवता और असुरों की। हमारे अंदर दोस्तों कई बार हम महसूस तभी उसकी करते हैं कि हमारे ही अंदर दोनों हैं, देवत्व भी है, असुरत्व भी है। जब हमारे कर्म गलत होते हैं, सबसे पहले जब हमारे संकल्प गलत होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तब असुरत्व का ज्यादा जोर होता है। और जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, औरों के प्रति परोपकार के होते हैं, तब देवत्व जो है वो उजागर हो जाता है। चलिए दोस्तों, इन सारी बातों का चिंतन करते हुए हम घड़ी की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी घड़ी हमें इजाजत नहीं दे रही है आगे बातें करने की। इसीलिए मैं भक्ति यहाँ ही अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा करते आ रहे हैं कि व्यसन किस प्रकार युवा पीढ़ी को और समाज के अन्य वर्गों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, किस प्रकार से इससे मुक्त हुआ जा सकता है और किस प्रकार से हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, इसी पे हमारी चर्चा चल रही है। और साथ ही पिछली बार हमने जो बात की कि राजयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इन व्यसनों से हमें मुक्त करने में और साथ ही साथ हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले चलने में। राजयोग की तीन आधारभूत बातें प्राता जी ने हम सबके सम्मुख रखी थी कि किस प्रकार हम स्वयं को देवकुल की आत्मा समझें, स्वयं को एक संपूर्ण पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव करें और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पवित्रता के सागर से अपना संबंध जोड़ें। ये तीन बातें बहुत ही सुंदर उन्होंने पिछली बार हमारे सम्मुख रखी थी, जिनका अभ्यास और अनुभव किसी भी प्रकार के व्यसन से, गंदगी से, बुराई से हमें मुक्त कर सकता है। तो आइए एक बार पुनः हम भ्राता जी का स्वागत करते हैं और राजयोग के अनुभव की ओर और आगे बढ़ते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: पिछली बार आपने जो बात हम सबके सम्मुख रखी थी भ्राता जी, कि राजयोग का अभ्यास व्यसनों को न केवल हमसे दूर कर देता है बल्कि हमें महानता की ओर ले चलता है। तो राजयोग के बारे में मेरी भी जिज्ञासा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ी होगी, तो राजयोग के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से हमें जानकारी दें।
1: देखिए, राजयोग में मनुष्य को सबसे पहले अपने को आत्मा जानकर इस देह से डिटैच करना होता है
0: जी,
1: यानी देह से बिल्कुल अलग। लोग प्राणायाम में अनेक आसनों का अभ्यास करते हुए शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन का अभ्यास कराते हैं। कई योगों में मनुष्य ऐसे भी कराते हैं कि अपने मन को पूरी तरह शांत कर दो, वो भी एक अच्छी पद्धति है। सभी विचारों को समाप्त करके अपने मन को शांत कर दो, इन सभी चीजों का समावेश हो जाता है इस सोल कॉन्शियस स्थिति में कि मैं चेतन आत्मा यहाँ पर दोनों प्रकृतियों के बीच विराजमान हूँ। न केवल यहाँ ध्यान एकाग्र करना है, लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप को जानकर, विवेक युक्त होकर अपने स्वरूप का दर्शन करना है। आत्मा निराकार है मूल रूप में, उसके स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करना है। इससे हम इस देह से डिटैच हो जाते हैं। और बिल्कुल सिंपल सी फिलोसोफी है कि मनुष्य जितना देह से डिटैच होगा, बुराइयों से स्वतः ही डिटैच हो जाएगा, चाहे वो व्यसनों की बुराई हो, चाहे वो काम क्रोध की बुराई हो, चाहे वो और झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, जो समाज में आजकल एक सभ्यता का प्रतीक बन गई हैं, वो भी बुराइयां हो, उन सब से मनुष्य डिटैच हो जाता, अर्थात मुक्त हो जाता है। फिर दूसरी चीज, हम अपना कनेक्शन अपने परम पिता से जोड़ते हैं, जो सचमुच हमारा पिता है, हमारा है, केवल भगवान नहीं, केवल महाज्योति नहीं जिसपे हमें ध्यान लगाना है, परंतु उससे हमें नाता जोड़ना है, एक रिलेशनशिप कायम करनी है। वो मेरा परम पिता है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है, मेरा सच्चा मित्र भी है, सखा भी है, मेरा सच्चा प्रियतम भी है। वो ये नाते हैं हमारे उससे,
0: जो हम जन्म जन्म से गाते हैं, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
1: बहुत सारे भक्तों ने भी कुछ कुछ नाते भगवान से जोड़े, किसी ने उसको अपना परम सद्गुरु माना, किसी ने सखा भी माना, किसी ने प्रियतम के रूप में भी उसको माना, कईयों ने खुदा दोस्त का नाता भी उससे जोड़ा। तो ये नाते हमें उससे जोड़ने होते हैं। इस नाते में बहुत प्यार भर जाता है, हमारा उससे प्यार तो उसका हमसे प्यार हो जाता है, क्योंकि वो है तो हमारा परम पिता, परंतु क्योंकि हम उससे दूर हो गए हैं तो उसका प्यार है तो सब संतानों के लिए, लेकिन कोई उसे फील नहीं करता है। तो ये नाता जोड़ने से हमारा प्यार उसके प्यार को अट्रैक्ट करने लगता है, फिर हम उससे अपनी बुद्धि का नेत्र जोड़ देते हैं। बुद्धि जो प्रज्ञा हमारी है, स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और हम उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देते हैं तो उसकी संपूर्ण शक्तियां, उसकी संपूर्ण शांति, उसकी पवित्रता, उसका प्रेम, उसका सुख हमारी ओर प्रवाहित होने लगता है, तो हमारा बढ़ने लगता है। और इस तरह जब हमारी स्थिति बढ़ती है आत्मा की स्थिति बढ़ती है। सरल शब्दों में कहेंगे मन बुद्धि का विकास होता है, मन सशक्त बनता है, मन निर्विकारी बनता है, मन बहुत स्वच्छ होने लगता है, बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली डिवाइन सूक्ष्म स्वच्छ होने लगती है। तो इस तरह राजयोग से मनुष्य व्यसनों से मुक्त हो जाता है, मनोबल बढ़ने से वो सहज ही इन चीजों को छोड़ पाने में सक्षम होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिए, हमारे यहाँ करोड़ों लोग व्यसनों से मुक्त हो चुके हैं और इनका कभी न सेवन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और ये केवल कहने की बात नहीं, ये परम सत्य है। बहुत सारे शहरों में ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो मद्यपान के लिए प्रसिद्ध थे, जो अपने गलत आचरण के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे, जिनका आतंक था पूरे शहर में, और वो बहुत अच्छे पुरुष बन गए, वो जेंटलमैन बन गए, वो इन व्यसनों को छोड़ के एक बहुत सदाचारी व्यक्तित्व के धनी बन गए, और इससे सारे समाज में सारे उस सिटी में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि देखो ब्रह्मा कुमारियां अगर ऐसे व्यक्ति को बदल सकती हैं तो ये सचमुच संसार को स्वर्ग भी बना देंगी। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए राजयोग का एक प्रैक्टिकल अभ्यास कर लें, ताकि हम एक सुंदर अनुभूति इसी समय में कर सकें। चलें, बिल्कुल सीधे रिलैक्स बैठ जाएं और संकल्प करें, मैं यह स्थूल नश्वर देह नहीं हूं, इससे भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं, मैं अपने को भी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकती, अब मेरे पास ज्ञान का सद्विवेक का दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है, मैं उस दिव्य नेत्र से अपने स्वरूप को देखूं, करें स्थिर अपनी बुद्धि के नेत्र को अपने स्वरूप पर, मैं ज्योति बहुत सूक्ष्म प्रकाशमान शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, मैं सुख स्वरूप हूं, स्वीकार करते चलें, मैं पवित्र हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं इस देह से न्यारी हूं, मुझसे चारों रंग बिरंगा प्रकाश फैल रहा है, मैं शांत हूं, बिल्कुल शांत। चलें डीप साइलेंस में, मन शांत। अपने स्वरूप को निहारते हुए महसूस करें, मैं आत्मा इस देह को यहीं छोड़कर उड़ चली अपने धाम, परम धाम, सूर्य चांद तारों के भी परे आत्माओं की दुनिया, जिसे निर्वाण धाम, शांति धाम या मुक्ति धाम भी कहते हैं। इस संसार में आने से पूर्व हम यहीं थे, मुक्त थे, परमानंद में थे, डीप साइलेंस में थे, परम धाम, चारों ओर फैला हुआ लाल, गोल्डन लाल प्रकाश, सबसे ऊपर महाज्योति, सुप्रीम सोल, निराकार, ऑलमाइटी, शांति के सागर, ज्ञान सूर्य, परमात्मा चमक रहे हैं। देखें अपने तीसरे नेत्र से उनको, विजुअलाइज करें, महाज्योति, उनसे चारों अनंत रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, वे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, इन आंखों से न देखने योग्य मुक्ति दाता सर्व के कल्याणकारी हैं। उनसे चारों ओर ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अब ये उनका प्रकाश उनसे फैलती हुई दिव्य शांति

0: परमात्म पवित्रता मुझ में प्रवेश कर रही है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। सुखद फीलिंग, चित्त शांत और एकाग्र, बस इसी में कुछ क्षणों तक स्थिर रहें। ये हुआ राजयोग का संक्षिप्त अभ्यास। इसको आप एक मिनट में भी कर सकते हैं, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, और अभ्यास करते करते लंबा समय। इससे चित्त शांत होगा, तनाव समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, बुरी आदतें आपको छोड़ जाएंगी और आपके अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत होने लगेगा। सद्गुण और शक्तियों से आप अपने को श्रृंगारित महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे महसूस होगा परमात्मा से अपनापन। जब आप उसके ओर निहारेंगे तो लगेगा वो तो हमारा अपना है, मेरा बाबा है, और ये प्यारा बाबा, मेरा बाबा आपके चित्त को महान बनाएगा। आप परमात्म समीपता का अनुभव करेंगे।
1: धन्यवाद भ्राता जी, आपने बहुत ही सुंदर और गहन अनुभव कराया। इसके बाद तो आवाज में आने की इच्छा नहीं हो रही है। निश्चित रूप से इसका अभ्यास करने से न केवल व्यसन दूर होंगे, बल्कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो अंदर हमारे गुण हैं, शक्तियां हैं, देवत्व है, वो सारी चीज़ें उजागर होंगी। निश्चित रूप से शायद कुछ जो हमारे दर्शक हैं, अभ्यास के समय हो सकता है उनका मन, उनकी बुद्धि और कहीं गई हो, लेकिन यदि सतत अभ्यास किया जाए तो सचमुच ये बहुत डिवाइन फीलिंग देने वाली एक बहुत अच्छी और सुखद
0: अनुभव यही है कि जैसे इस योग अभ्यास के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही ये खाने पीने की इच्छा भी नहीं होगी।
1: जी, जी,
0: जो गलत चीजें हैं, भोजन खाने की इच्छा तो होगी। कर्म इंद्रियों का रस छूट जाएगा और ये सचमुच जीवन को आनंदित करने वाला राज्य।
1: एक सर्वे ये कहता है भ्राता जी कि जो लोग व्यसन छोड़ते हैं, छोड़ने के पश्चात 80-90% लोग फिर से व्यसन की ओर वापस लौट जाते हैं। मुझे लगता है कि राजयोग इतना मन को संबल प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, कर्मेंद्रियों पे ऐसा नियंत्रण प्रदान करेगा कि वो पुनः उस व्यसन की ओर कभी नहीं बढ़े।
0: बिल्कुल, जैसा हमारे अनुभव हैं, तो हमारे यहाँ आने वाले लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, पर मैं ये अवश्य कहूँगा कि 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार जो व्यसन छोड़ दिया, दोबारा उसको टच नहीं किया। 5% भी शायद ज्यादा हो, 1-2% लोग मिलेंगे जो किसी कारणवश किसी बुरे संग में आकर, किसी बुरी संगति में बहकर फिर से व्यसनों का सेवन करने लगे हों, अन्यथा इसे छूट जाते हैं, क्योंकि इससे मनोबल बहुत बढ़ जाता है।
1: जी प्रता जी, कुछ लोगों के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। जैसे हमारी ये चर्चा चल रही है तो काफी लोगों ने इसे सुना है और अपने मन के भाव कुछ प्रश्न के रूप में भेजे हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी उत्तर
0: मैं मैं प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मुझे एक संकल्प आ रहा है कि मैं अपने देश के या समस्त विश्व के युवकों के लिए कुछ कहूं।
1: जी जरूर।
0: तो ये सुंदर संदेश मैं अपने सभी युवकों को देना चाहता हूं। प्यारे युवकों, आप सभी विशेषकर हमारे देश की शान हो। मुझे याद आ रहा है जब महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन प्रारंभ किया था, तब युवकों का आह्वान किया था और बहुत सारे युवक जो एडवोकेट थे, जुडिशियरी के फील्ड में कार्यरत थे, अपना सब कुछ त्याग करके कूद पड़े थे महात्मा गांधी को साथ देने के लिए। उसमें आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बहुत सारे वकील थे, क्योंकि उन्हें कानून का ज्ञान था, वो फील्ड में

0: रहते थे तो सशक्त थे। मैं अपने युवा साथियों को कहूंगा, अब भगवान आपका आह्वान कर रहा है, आपको इस बात का पता नहीं है। अब भगवान को इस संसार को बदलने के लिए, इस संसार को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, इस संसार को रोग शोक भ्रष्टाचार तनाव ये सब जो कुछ आज चल रहा है, बीमारियां आदि जो एक बुरी गति की ओर हमारा संसार चल रहा है, इसको बदलने के लिए, इसको स्वर्ग में दुनिया बनाने के लिए, युग बदलने के लिए भगवान को आप सब युवकों की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि ये काम बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, पर भगवान आप सब युवकों का आह्वान कर रहा है, मेरे बच्चों आ जाओ, पवित्र जीवन बनकर, निर्व्यसनी जीवन बनाकर, निर्विकार जीवन बनाकर आप मेरे को मदद करो इस संसार को पुनः स्वर्ग बनाने में। तो मेरे साथियों, युवकों, बच्चों, कन्याओं, बालकों, मैं आप सबको कहूंगा, अपने भाग्य पे गर्व करो। भगवान को तुम्हारी आवश्यकता है, वो तुम्हारा आह्वान कर रहा है। और सोचो, यदि तुम भगवान के काम आ गए तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जो लोग महात्मा गांधी के साथी बने थे वो मंत्री बन गए। आज तक भी कोई अगर उनमें से जीवित है तो उसको स्वतंत्रता सेनानी मानकर सरकार भी पेंशन देती है, उसका ध्यान रखते हैं, समाज में भी उसका सम्मान होता है। और अगर तुम भगवान को साथ दोगे तो सोचो वो तुम्हें क्या देगा, वो इस संसार में तुम्हें चमका देगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे युवकों, जिन राहों पर संसार के अनेक युवक चल रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर में विषय विकारों की ओर बहते जा रहे हैं, जो अपने स्वमान और स्वाभिमान को खोकर दलदल में फंसते जा रहे हैं, आप उससे बाहर निकल जाओ और भगवान की आवाज सुनो, उसके काम आ जाओ, तो आपके जीवन पर संसार गर्व करेगा, समाज गर्व करेगा, और आपको जन्म देकर आपके माता पिता भी बहुत गौरवान्वित होंगे। तो मैं कहूंगा अपने युवक साथियों को, व्यसनों के इस गंदे नाले में आपको नहीं जाना है, आपको तो पवित्रता का स्वच्छ मार्ग अपनाना है और इस संसार को स्वर्ग बनाने में भगवान को साथ देना है। ये मेरा अपने युवक साथियों से, अपने प्यारे बच्चों से, कन्याओं से संदेश है। उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी भगवान के समीप पहुंचें, सत्य ज्ञान लें और उसके श्रेष्ठ कार्य में सहभागी बने।
1: आपका संदेश हमारे सभी युवा साथियों तक अवश्य ही पहुंच गया है और निश्चित रूप से उनके जीवन में ये संदेश एक क्रांति लाएगी और साथ ही वो अपने जीवन को एक आदर्श बना करके औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे भ्राता जी, क्योंकि युवा वर्ग ही है जो सभी क्रांतियों का आधार रहा है। युवा वर्ग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतना अदम्य साहस है, शक्ति है, दृढ़ता का बल है कि वो निश्चित रूप से, व्यसन तो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े बड़े कार्य वो करता आया है और निश्चित रूप से आपने जो संदेश दिया है उस कार्य को भी अवश्य करेगा।
0: बस मैं तो यही कहूंगा कि युवकों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है
1: जी।
0: उनकी शक्तियों को चैनलाइज करने की जरूरत है, रूपांतरित करने की जरूरत है
1: जी।
0: वो सचमुच बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम हैं और सही गाइडेंस ब्रह्मा कुमारी सबको दे रही हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें ही कितने युवक हैं, हमारे पास लगभग 16,000 बहनें इस समय हैं, उनमें से मैं कहूँगा तो 14,000 तो कम से कम युवक हैं बिल्कुल, जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपनाकर संसार को, माया को, पांचों विकारों को चैलेंज कर दिया है और उन पर वो विजयी बनती जा रही हैं। इन्हीं को फॉलो करके सभी युवक एक श्रेष्ठ मार्ग अपनाकर इस श्रेष्ठ पथ के राही बन सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब आते जी कहा भी जाता है, नर नारी बूढ़े और बालक सबका तू ही सहारा है, उठो युवा कुछ कर दिखलाओ, आज वक्त ने तुम्हें पुकारा है, देश ने तुम्हें पुकारा है, मातृभूमि ने तुम्हें पुकारा है। आपका संदेश भी इस मंच के माध्यम से उन तक पहुंचा है, तो प्राता जी आपने जो संदेश दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, एक संदेश आप तक इस रूप में पहुंचा है कि अब सचमुच समय हमसे कुछ चाहता है, देश हमसे कुछ चाहता है, मातृभूमि हमारी ओर देख रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि काजल की काली कोठरी में अपना दामन बचाया जा सकता है, कांटों से लड़कर फूलों को पाया जा सकता है, और यदि इरादे बुलंद हों तो इस व्यसनों से सहज ही मुक्त हुआ जा सकता है, एक स्वर्णिम भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो एक पूरा ही देश, पूरा समाज आपकी ओर देख रहा है। अब निर्णय आपके अपने हाथों में है कि आप किस ओर अग्रसर होना चाहेंगे। सचमुच एक इतिहास बनाने का समय है। तो युवा साथियों, आओ हम सब मिलकर इतिहास बनाएं, व्यसनों से मुक्त हों और एक स्वर्णिम प्रभात की ओर बढ़ें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत अपने दोस्त रुपेश को। नमस्कार।
2: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर, आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: निर्माण।
1: जिनसे मिला ज्ञान का खजाना, रत्नों का खान,
2: जिससे मिली दुनिया की पहचान,
3: वो है हमारे आदर्श गुरु।
4: रेडियो मधुबन विश करता है उन सभी शिक्षक गणों को अ हैप्पी टीचर्स डे।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 5 सितंबर 2026 से आज 7:45 रेडियो मधुबन की घड़ी पर और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजयोग का अभ्यास कैसे करें हम डेली लाइफ में, इसके बारे में आपने जाना आदरणीय सूरज भाई जी से। आज शक संबंध 1948 भाद्रपद कृष्ण नवमी शनिवार है, विक्रम संबंध 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 5 सितंबर 2026, सूर्य उत्तरायण, क्षमा करें सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल है, वर्षा ऋतु है, राहु काल सुबह 9:00 से 10:30 तक है। नवमी तिथि रात्रि 9:53 तक उपरांत दशमी तिथि का आरंभ है। मूर्गशिरा नक्षत्र रात्रि 9:30 तक उपरांत आद्रा नक्षत्र का आरंभ है। वज्रयोग दोपहर 12:47 तक उपरांत सिद्धि योग का आरंभ है। तोतिलकरण प्रातः 11:04 पर उपरांत गजकरण का आरंभ है और चंद्रमा प्रातः 10:18 तक वृषभ राशि पर उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 6:01 पर, सूर्यास्त का समय 6:48 पर होने वाला है और उसके साथ साथ चंद्रोदय का समय मध्य रात्रि 12:32 पर और चंद्रास्त का समय दोपहर 2:10 पर। सूर्यदेव सिंह राशि में स्थित है और चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रातः 10:18 तक फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:45 तक था। अमृतकाल 1:17 से दोपहर 2:46 तक था। इसके साथ साथ आज सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस भी है जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शाके 1948 से 14/20 जैसे हैं आज भाद्रपद शनिवार। इस्लामी हिजरी है 1448, 22 रबीउल अव्वल हफ्ता हक्का है आज के दिन। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के पंचांग के साथ।

मैं आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आइए जानते हैं वेदर रिपोर्ट, चलते हैं राजधानी जयपुर की ओर। 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है यहाँ पर, और बारिश होने की संभावना है दिन के समय। आज राजधानी जयपुर में जोरदार बारिश होने की संभावना है। उदयपुर में 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी लगभग 60% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। आबू रोड में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है। और बात करें अगर माउंट आबू की, तो माउंट आबू में 18 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। पाली जिले में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा सुबह के टाइम, और रात्रि के टाइम थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है पाली जिले में। जोधपुर के क्षेत्र में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। सूरत में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, जोरदार बारिश होने की संभावना है दिन के समय। मेहसाना में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। राजकोट में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे। गांधीनगर व अहमदाबाद के अंचल में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। राजधानी दिल्ली में 27 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है दिन के समय। कोलकाता में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में 32 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है आज के दिन। मुंबई में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। चेन्नई में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की चेन्नई में आज के दिन। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना है आज सिरोही जिले में जोरदार, और रात्रि के समय कम बारिश होने की संभावना है, दिन के समय ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। इस मोड़ पर एक साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है, लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई है, तो लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम 8:04 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आइए चलते हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है जो अब से आने वाली है 4 घंटे तक आबू रोड रेलवे स्टेशन पर, उन्हीं गाड़ियों के बारे में जानकारियां जानते हैं। 1, 2, 5, 4, 7 संख्या वाली गाड़ी 8:25 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। आगरा कैंट से गांधीग्राम तक जाती है ये सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस। आरावली एक्सप्रेस 1, 4, 7, 0, 2 8:30 पर पहुंचेगी। 8:45 पर वेरावल से चलती हुई प्रयागराज तक जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस 8:45 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 1, 2, 4, 6, 1 9:05 पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या है 1, 6, 2, 1, 0 अजमेर एक्सप्रेस 9:10 पर पहुंचेगी। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1, 9, 2, 2, 4 9:45 पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 2, 0, 6, 9, 3 10:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस जो हादप सर से चलती हुई जोधपुर तक जाती है और ये गाड़ी 20496 वाली गाड़ी 10:30 पर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 22965 11:05 पर पहुंचेगी आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी संख्या है 19412 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 11:30 पर पहुंचेगी। गांधीग्राम से जोधपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 1, 4, 8, 2, 2 11:40 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 1:23 देरी से चलती हुई लगभग 12:13 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली है। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारी है जो अब से 4 घंटे तक आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आइए बढ़ते हैं कुछ कारोबार जगत की ओर। रुपए इसके साथ साथ सेंसेक्स के हालचाल भी जानते हैं। सेंसेक्स बाजार बंद होने तक 76,515.43 पर रहा और लगभग 48% तक बढ़ोतरी दर के साथ, क्षमा करें 0.48% की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जब डे स्टार्ट हुआ था कल बाजार बंद होने से पहले, तो 76,515.43 से कारोबार शुरू किया था बीएसई सेंसेक्स और बंद हुआ था 76,515.43 पर, और डेज हाई पे गया था 77,883.14 पर, यानी कि 0.48% तक बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,897.70 पर है, 0.10% तक बढ़ोतरी दर के साथ निफ्टी अभी इस स्तर पर है। और जब बाजार शुरू हुई थी तब 23,895.85 की गिरावट दर के साथ एनएसई स्टार्ट हुई और बंद होने तक 24.25 के बढ़ोतरी दर के साथ और 0.10% बढ़ोतरी दर के साथ 23,897.70 पर रहा, और डेज हाई में 24,005.75 पर पहुंच गया था निफ्टी। तो ये कुछ सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बातें चल रही थी। आइए गोल्ड रेट्स और सिल्वर प्राइसेस के ऊपर भी नज़र डालते हैं। 24 कैरेट गोल्ड रेट्स है 180,908 रुपये, 22 कैरेट 165,842 रुपये और 18 कैरेट है 135,721 रुपये। और वहीं पर चांदी के दामों के ऊपर नज़र डालें तो चांदी है पर किलोग्राम के हिसाब से 249,900 रुपये, 100 रुपये कम हुआ है। और इसके साथ साथ प्लैटिनम के ऊपर नज़र डालते 53,790 रुपये है पर 10 ग्राम। और चलते हैं हम राजधानी जयपुर की ओर, जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ हालचाल है पेट्रोल और डीजल की। 113.50 रुपये लीटर पर लीटर है पेट्रोल राजधानी जयपुर में और 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर डीजल है 98.50 रुपये 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी है 945.50 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल है 2,776.50 रुपये की वृद्धि हुई है। सीएनजी 96.50 रुपये राजधानी जयपुर में और पीएनजी 49.50 रुपये राजधानी जयपुर में। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पीएनजी सीएनजी पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी के साथ। तो आइए मुद्रा जगत की ओर चलते हैं, रुपयों के मुकाबले क्या कुछ हालचाल है अन्य देशों के करेंसीज, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। एक यूएसडी के मुकाबले हमारे रुपया है 94.41, एक यूरो के मुकाबले 109.65 है। और इसके साथ साथ अगर हम इंडियन रुपीज़ और कैनेडियन डॉलर के बारे में बात करें तो एक इंडियन रुपीज़ 68.24 हैं कैनेडियन डॉलर के मुकाबले। और इसके साथ साथ अगर हम मलेशियन के बारे में बात करें करेंसीज के बारे में, तो इंडियन रुपीस मलेशियन करेंसीज के मुकाबले 2.92 हैं। जापनीज येन के बारे में बात करें तो 112.93 हैं इंडियन रुपीस के मुकाबले जापनीज येन। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे इंडियन रुपीस के साथ। और इसके साथ साथ अगर हम एक रियाल के हिसाब से बात करें तो 25.14 हैं

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आपू। और जैसे आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद कर रहे हैं, वैसे आपके फेवरेट टीचर कौन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर, जो आज भी आपको याद है, जिन्होंने आपको बचपन में पढ़ाया होगा उन टीचर्स का नाम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे जॉब्स के साथ, यूथ के साथ, वो भी हम जान लेते हैं। AAI मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 398 पदों पर भर्ती निकली है और ये आयु सीमा है अधिकतम आयु 27 वर्ष से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। साउथ इंडियन बैंक .in/RDC है, ये इस लिंक पर आप आवेदन कर सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल्स जान सकते हैं। वहीं पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने रेलवे में अप्रेंटिस के लिए 1010 पदों पर भर्ती निकाली है। लास्ट डेट है 7 सितंबर 2026। pb.icf.gov.in पर जाकर के आप इस पद के लिए अपने फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए फीटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट और कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, MLT और पासा के लगभग 1010 अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डाक सेवा की अगर बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर सहित 25,000 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली हैं। तो ये 21 सितंबर 2026 है लास्ट डेट। नौकरी की राह देख युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर के सहित 25,000 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर दिए गए पोर्टल के माध्यम से पहले अपना बुनियादी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पूरा करना है और इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और क्रेडेंशियल की मदद से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को अंत में सबमिट करना होगा। आवेदन करने के लिए डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक इंडिया पोस्ट gdsoonline.gov.in india post gd फिर इसके बाद sonline.gov.in का उपयोग करें। इस भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। उम्मीदवारों द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट में नाम आने वाले शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। सामान्य OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क है 100 रुपये। वहीं पर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के नियम अनुसार अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा छूट दी जाएगी। और वहीं पर IIT BHU ने नॉन टीचिंग के 55 पदों पर भर्ती के लिए मांगा आवेदन। लास्ट डेट है 24 सितंबर 2026। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा या पद अनुसार निर्धारित वर्षों का अनुभव, कार्य अनुभव अनिवार्य है। आयु सीमा 27 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अधिकतम और आयु की गणना 24 सितंबर 2026 के आधार पर
की जाएगी। iitbhunt.samarth.edu.in पर आप जाकर के आवेदन के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं, iitbhunt.samarth.edu.in इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और वहीं पर मैनेजमेंट ट्रेनी के 94 पदों पर भर्ती निकली है, वैकेंसी आई है, 10 सितंबर लास्ट डेट है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने मैनेजमेंट ट्रेनी के विभिन्न 94 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। www.rcfltd.com पर आप जा सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए पद निकाला है। और इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के पास पद अनुसार बीटेक या फिर एमबीए, पीजी डिग्री, सीए, सीएमए या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ एमकॉम, बीबीए, बीएमएस और बीएफएस संबंधित विषय में डिग्री होनी चाहिए। आयु की गणना है 1 फरवरी 2026 के आधार पर। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 27 वर्ष, जबकि आरक्षित श्रेणी को छूट प्रदान की जाएगी। वहीं पर 30 सितंबर 2026 लास्ट डेट रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अप्रेंटिस के 1599 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। चयन प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा और आईटीआई दोनों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची के माध्यम से किया जाएगा। मेरिट में नाम आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज में 259 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लास्ट डेट है 24 सितंबर 2026। और इसके साथ साथ इसरो ने साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए 176 पदों पर भर्ती निकाली है। बीटेक या फिर समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में न्यूनतम 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और अन्य विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के तहत साइंटिस्ट इंजीनियर के 176 पदों की पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। isro.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन पहले चरण में लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट और बाद में दूसरे चरण में पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ साथ जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भी अप्रेंटिस के 1599 पदों पर भर्ती निकाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे नौकरियों के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

रात तारो भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है। अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा कहने का। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। सिरोही नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 से भाजपा प्रत्याशी पूजा माली निर्विरोध पार्षद पर निर्वाचित हुई है और वहीं पर पार्षद बनने करोड़पति मैदान में नगर निकाय चुनाव 2026 में मैदान में उतरे प्रत्याशी के नामांकन के साथ जमा शपथ पत्रों से उनकी संपत्ति के आंकड़े भी सामने आए हैं, जो आप दैनिक भास्कर के जरिए भी आज देख सकते हैं। शहर की सरकार, इसमें आप ये लेख पढ़ सकते हैं। और 180 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों को लॉटरी पद्धति से चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चप्पल, बांसुरी और मोतियों का हार, निर्दलियों को मिले रोचक चुनाव चिन्ह। 6 नगर निकायों में 182 मतदान केंद्र होंगे। वहीं सिरोही में 35 बूथ और आवंटित कक्ष एक हॉल है। शिवगंज में 35 बूथ है और आवंटित कक्ष है 10। आबूरोड़ में 42 बूथ है और 11 कक्ष है। पिंडवाड़ा में 25 बूथ और 12 कक्ष। आबू पर्वत में 25 बूथ है और 19 कक्ष है। मंडार में 20 बूथ और 21 कक्ष है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे चुनावों के साथ। यहीं पर मैं रुकना चाहूँगी, फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM और आपकी प्रिय शिक्षक जी को आज ज़रूर आप याद करें। और अगर उनका नंबर है तो उनसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं उनको, या फिर उन्हें आप दिल से दुआएं ज़रूर दीजिए, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं एंड ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के फीलिंग के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
6: India believes that endless war.
7: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
8: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
10: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
11: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर एनएचएआई ने कार्यक्रमों की एसओपी में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।
3: अभी बजे हैं सुबह के 9, 1 मिनट का समय स्वयं को दें।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: ज्ञान का खजाना, रत्नों का खान,
1: जिससे मिली दुनिया की पहचान,
2: वो है हमारे आदर्श गुरु।
3: रेडियो मधुबन विश करता है उन सभी शिक्षक गणों को अ हैप्पी टीचर्स डे।

हे आशियाना आयो बड़ा ठाट सू काई जुड़ जाई जो बड़ा प्यार सू विचार कर लो नुस्खा भी सुन लियो अंताक्षरी में धूम मचाई ले जो जियो जी अंताक्षरी में धूम मचाई ले जो। तो आज नंद उत्सव है, नंद उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चंदन की खुशबू फूलों का हार, चंदन की खुशबू फूलों का हार, दही की हांडी बारिश की फुहार, दही की हांडी बारिश की फुहार। माखन चुराने आया नंदलाल, यशोमती मैया का नंद गोपाल, राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, इन्हीं सबसे मिलकर बनता है जन्माष्टमी का ये दिन खास। मुरली मनोहर ब्रिज की धरोहर, मुरली के मधुर आवाज झूम उठे ये बहार। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, श्री कृष्ण जी को हम सबका प्रणाम। तो श्री कृष्ण जन्म की आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अर्चना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव है, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हुए होंगे। कैसे, तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। श्री कृष्ण के मयूर पंख धारण करने के बारे में ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। रामावतार के समय वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी, तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। श्री राम जी ने तब प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहां कहीं पानी हो वहां जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहां एक मयूर मने मोर ने आकर के श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूलचूक होने की संभावना है। श्री राम

ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, मुझे आज ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन को त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले अवतार में अवश्य चुकाऊंगा तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके। तत्पश्चात अगले अवतार में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे मुकुट पर मयूर पंख को धारण करके वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तात्पर्य यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव है, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं, उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो कहने का भाव है, जो भी भला हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और पुनः आपको नंद उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: आ रही हूँ रुको तो जरा। अरे आप लोग कौन हो?
3: मैम मैं सोमाराम हूँ।
2: कौन हो?
4: मैम मैं बबली हूँ।
5: मैम मैं किशन हूँ। 10 साल पहले आपने मुझे पढ़ाई करने के लिए समझाया था, मुझे लगा आप मेरी शिकायत करेंगे मारेंगे, पर आपने जो शब्द प्यार से बोले उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी।
4: मैम हम सब आज आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, उन सभी शिक्षाएं और उन सभी बातों के लिए जिनके वजह से आज हम जिंदगी को जीना सीख पाए हैं। थैंक यू।
2: बच्चों इतने सालों के बाद भी तुम लोग यहाँ आए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। खुश रहो बच्चों, खुश रहो।
6: जीवन को संवारने वाले, हमें सही दिशा देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमारे हुनर को निखारने वाले, ये हैं हमारे टीचर। हमारे शिक्षकों को हम शत शत नमन करते हैं। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर रेडियो मधुबन सभी शिक्षकों को कहता है अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जो अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीप जलाते हैं, जो अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीप जलाते हैं, गिरते हुए कदमों को मंजिल तक पहुंचाते हैं, किताबों से बढ़कर देते हैं जीवन जीने का ज्ञान, किताबों से बढ़कर देते हैं जीवन जीने का ज्ञान, ऐसे गुरु के चरणों में शत शत नमन और प्रणाम, ऐसे गुरु के चरणों में शत शत नमन और प्रणाम। गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं, जीवन के सच्चे मार्गदर्शक है, उनकी सीख से ही तो हम अपने सपनों के हकदार बने हैं। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। जी हाँ, किशमिश, दाख, मुनक्का किस तरह फायदा करती है हमारे हेल्थ के लिए और कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो आप जानेंगे, ठीक है। देखिए, तपेदिक मतलब यक्ष्मा रोग है तो पीपल, मुनक्का और देसी शक्कर तीनों समान मात्रा में लेकर के पीस लीजिए, फिर इसे एक एक चम्मच रोज आप दो बार खाइए। इससे श्वास रोग, तपेदिक मतलब टीबी, खांसी ये सब दूर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, पीपल, मुनक्का लेनी है, ठीक है, और देसी शक्कर तीनों ही समान मात्रा में लेनी है, पीस लेनी है इसको, और एक एक चम्मच एक सुबह एक शाम को दो बार इस तरह एक एक चम्मच रोज खाना है। इससे श्वास का रोग, तपेदिक माने टीबी, खांसी इन सब में राहत मिलेगी। अगर कब्जियत की शिकायत है तो रोज आप 10 मुनक्के खाइए, फिर ऊपर से गर्म दूध उबाल करके पी लीजिए, कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी। मुनक्के का सेवन खांसी जुकाम में बहुत ही लाभप्रद रहता है, तो जब भी खांसी जुकाम होता है तो मुनक्का आप खा सकते हैं। देखिए, आवश्यकता अनुसार पानी में मुनक्का भिगो दीजिए और वे पानी प्रतिदिन पीजिएगा। इससे निर्बलता दूर होती है, शरीर की जो कमजोरी होती है ना वो दूर होती है, और फिर से हमारे शरीर में ताकत आ जाती है। तो आवश्यकता के अनुसार पानी में मुनक्के भिगो दीजिए और वह पानी रोज पीजिएगा तो शरीर की दुर्बलता ठीक हो जाएगी। अगर भूख नहीं लग रही है या बहुत ही कम लगती है तो मुनक्का, काली मिर्च और नमक मिला करके गर्म करके खाइएगा, इससे भूख बढ़ेगी। मुनक्का, काली मिर्च और नमक मिलाकर गर्म करके खाइएगा, इससे भूख बढ़ेगी। हाँ, रक्त की अशुद्धता है तो रात में 20 ग्राम मुनक्का जल में भिगो दीजिए, सुबह के समय इसे पीस लीजिए, फिर इसे जल में घोल करके उसे रोज आप पीजिएगा। इससे खून की अशुद्धता दूर होकर के रक्त शुद्ध होगा, ठीक है। तो अगर खून खराब हो गया है तो रात में 20 ग्राम मुनक्का पानी में भिगो दीजिए, सुबह के समय इसे पीस लीजिए, फिर इसे जल में घोल करके रोज आप पीजिएगा। इससे खून की खराबी दूर होगी और रक्त शुद्ध होगा। लास्ट उपाय बहुत सुंदर है। अगर चक्कर आ रहे हैं तो मुनक्का देसी घी में कुछ सेक कर गर्म करके सेंधा नमक मिलाकर खाइएगा, इससे सिर में चक्कर आना बंद हो जाएगा। अगर सिर का चक्कर आता है तो मुनक्का देसी घी में सेक लीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके खाइएगा, इससे सिर से जो चक्कर आते हैं ना वो चक्कर आना बंद हो जाएगा। तो ये हुए घरेलू उपाय, और आइए अब अंताक्षरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो उनके द्वारा ही शुरुआत कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार।
1: हेलो, ओम शांति।
0: हाँ, ओम शांति आस्था जी, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू। मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करती हूँ
0: जी। तो आपसे शुरुआत कर देते हैं, सुनाइए।
1: जय श्री कृष्ण बोलो जय।

0: जय श्री कृष्णा बोलो, जय राधे। थैंक यू।
1: जी चलिए, बहुत बहुत आभार। तो ये थे आस्था तरतोली से, और आइए अब यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के फिर हम अंताक्षरी शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ, जय श्री हरि, नमस्कार।
1: आज नंद उत्सव का एक गाना सुनाता हूँ
0: जी।
1: नंद के ओ नंद भयो के कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो के कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की, गोकुल में आनंद भयो के कन्हैया लाल की।
0: भक्तों

0: पतिला दीप गौए चराने आए गे हो पशुपाल पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। जय माता जैसी
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अब जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो
0: हेलो जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार बुरीलाल जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
0: वृंदावन की कृष्ण कन्हैया सबकी।

0: बहुत बहुत आभार भूरीलाल जी। हाँ जी तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। अब कौन जुड़ना चाहेंगे देखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। आज की थीम बहुत ही सुंदर है, श्री कृष्ण भजन। हेलो
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति सुरेश भाई बोलते हैं थाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बहुत अच्छे हैं, और दिन भी है, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा दिन है
0: जी।
1: और कृष्ण भगवान की सबको मनोकामना पूर्ण करे, और कल भी अच्छा कार्यक्रम रहा जो हमारे मंदिरों में
0: जी,
1: भगवान का जन्मदिन था।
0: अरे वाह, कल तो मंदिरों में, आज भी मंदिरों में बहुत ठाट रहता है।
1: हाँ, आज भी होगा, आज भी होगा, कल भी था, आज भी है
0: जी।
1: चलो मैं एक गाना सुना दे कृष्ण भगवान का।
0: हाँ जी।
1: गोपाल मारो पारणिए झूले, गोपाल मारो पारणिए झूले रे झूलावे गोकुड़नी गोपी रे, गोपाल मारो पारणिए झूले रे, गोपाल मारो पारणिए झूले रे।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। आज की थीम बड़ी अच्छी है, श्री कृष्ण भजन। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। हम तो चाहते हैं कि नए नए जो अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं और जो कार्यक्रम को सुनते रहते हैं वो भी जुड़े और जुड़ करके अपनी प्रस्तुति देवे। बहुत सरल अंताक्षरी है, कोई भी अक्षर नहीं, कोई भी शब्द नहीं, आप अपने मन पसंद का भजन सुना सकते हैं श्री कृष्ण जी पर। हेलो,
2: हेलो नीलू, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार भूरीलाल जी।
2: छोटी छोटी गैया छोटे सो मर नंद गोपाल, छोटी छोटी मैया छोटे सो नंद लाल, नकारी कारी गैया को गोरे गोरे लाल, छोटे सो नंद लाल,
0: करी करी गैया गोरे गोरे ग्वाल, बीच चलत मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बहुत बहुत आभार भूरीलाल जी, बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज की थीम बहुत ही अच्छी है, आप हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में श्री कृष्ण भजन सुना सकते हैं। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि।

0: श्याम अड़िया। चले हम अपने श्रोता बंधु से बात करते। हेलो हेलो नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: हाँ जी मधु जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: कमला बेन।
0: अरे कमला जी क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: सुना है?
0: हाँ जी हाँ जी सुना दीजिए।

0: बहुत सुंदर। आप पहली बार जुड़े हैं इसलिए ये गीत आपने सुनाया है, तो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन अब आप जो भी गीत सुनाओ ना, आज की थीम है श्री कृष्ण भजन, ठीक है?
1: और आज अंताक्षरी थी।
0: ये अंताक्षरी चल रही है?
1: हाँ
0: हाँ, तो श्री कृष्ण भजन की थीम है। अब अगला गीत आप श्री कृष्ण जी पर सुनाइएगा, ठीक है?
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सादिया जी, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अंताक्षरी कार्यक्रम। प्रथम आने वालों को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा, बस शर्त यही है कि आपको 15 दिन के अंदर स्टूडियो में पधारना होगा, आना होगा। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
2: जी
0: जय श्री हरि।
2: सुनाइए
0: सुनाइए।
2: कहानी सारी रे मोर लिया मजारी बनाए, कहानी सारी रे मोर लिया मजारी बनाए, जादू बनाया ने है या हीरा रे जया, जादू बनाया ने है या हीरा रे जया, कहानी सारी रे कान तारी रे मोर लिया जादू भरिया। थैंक यू
0: जी, आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। बहुत ही सुंदर आज की थीम है श्री कृष्ण भजन, आप आराम से जुड़िएगा। श्री कृष्ण जी के इतने सारे भजन हैं कि अंताक्षरी पूरी हो जाएगी लेकिन भजन पूरे नहीं होंगे। हेलो
3: हाँ जी, नमस्ते, ओम शांति, जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई
0: जी, नंद उत्सव की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन बोल रहे? सगुना बहन।
3: सगुना बहन बोल रही हूँ।
0: हाँ जी सगुना बहन, कैसे हो?
3: बहुत अच्छे, अभी बाहर जाके आए, फिर भी मैं बोला पहले मधुबन से जुड़े, नहीं तो दीदी बोलेंगे कि देखो आज तो जुड़े नहीं है। अभी हाल आए हैं बोले बाहर से।
0: अच्छा
3: हाँ,
0: अरे वाह क्या बात है, फिर भी आप जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है।
3: एक गाना सुना देती हूँ।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
3: गोपाल मरो पारणिए झूले रे, गोपाल मरो पारणिए।
0: अच्छा ये हो गया सगुना बहन, ये हो गया, तुरंत ही दूसरा सुना दीजिए।
3: अभी तो दूसरा याद कर।
0: अच्छा
3: हाल आए हैं ना थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा,
3: तो ये सुना।
0: हाँ हाँ, ये किसी ने सुना दिया है, आप कोशिश करिए दूसरा सुना दिए, है ना? हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, शुरुआत की है लेकिन आप बाहर से आए हैं, रेडियो नहीं सुन रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि ये गीत हो गया है, तो हम बता देंगे जो हो जाएगा वो। हेलो
4: जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ झोटाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
4: चलो मैं सुना दूँ ताना।
0: हाँ जी।

0: क्यों काला। जी जी जी
1: बहुत सुंदर, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई चौटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अंताक्षर में भाग लेते हैं। भाई आज तो नंदोत्सव है, आज तो हमारे श्रोता बंधु फिर से तैयार होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मंदिरों में गए होंगे। आज नंद उत्सव का झूला डलता है, तो श्री कृष्ण जी को झूला देने के लिए, झूलाने के लिए गए होंगे। हेलो।
0: जय माता दी, जय श्री हरि। अरे
1: हाँ जी, जय श्री हरि।
0: झूला के आगे हम तो
1: अच्छी बात है ना।
0: हाँ लो तो अभी कृष्ण का ही एक माता आरती है भैया की। ओ तारू आरती की कृष्णा घेरे आया, माता यशोदा कुंवर पाल घेरे आया। दिने दिने मोती रे सुवांग चुकलिए बधाव्या जी, तारू आरती सी कृष्णा घेरे आया। थैंक यू बहना।
1: जी, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। हेलो हेलो।
2: हेलो, नमस्कार
1: हाँ जी,
2: गुरु।
1: हाँ जी, नमस्कार नमस्कार बुरीलाल जी।
2: यमुना किनारे बजावे बांसुरी है, यमुना किनारे बाजे कानो बजावे बांसुरी है, राधा का दिल तोड़ के, राधा का दिल तोड़ के।
1: क्या बात है जी, आभार। तो बहुत ही सुंदर हमने भजन सुना है भूरीलाल जी के द्वारा। आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि।
1: और रेडियो में तुम्हें सुनने सुनाने वाले और नंद नंद उत्सव और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं मैं देना बोल गया था।
0: जी
1: ठीक है, अब एक आरती सुनाता हूँ प्रभु श्री कृष्ण की।
0: ठीक है।
1: बसा कर तेरी मूरती, मन में बसा कर तेरी मूरती, उतारू है जिस तेरी आरती, उतारू है जिस तेरी आरती।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। बहुत ही सुंदर आज की सरल थीम है श्री कृष्ण भजन। आप आराम से जुड़ सकते हैं और अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414154145। हेलो।
2: हाँ जी दीदी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन।
2: वो वाला गाना हो गया, आनंद के आनंद भयो,
0: ये भी हो गया। हाँ जी हाँ जी
2: वाला हो गया। द्वारिका नो नाथ मारो राजा,
0: नहीं हुआ ये सुना दीजिए, सुना दीजिए।
2: द्वारिका नो नाथ मारो राजा, रण छोड़ के तेने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा, रण छोड़ के
0: એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી રે। બહુ સુંદર ભજન હે। બહુ બહુ આભાર સગુનાબેન। तो ये थे सगुना बेन झोटाना से। बहुत ही सुंदर गुजराती भजन सुनाया है। आप गुजराती राजस्थानी हिंदी भाषा में आप भजन सुना सकते हैं। अगर आप और भी अलग स्टेट गए हैं तो उधर की भाषा में भी आप सुना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं। हेलो। जी जय श्री हरि।
1: डाकोर मा कौन के राजा रन चोर के, राजा रन चोर के माखन न चोर के, द्वारिका मा कौन के राजा रन चोर के, गयन गोवा कौन के राजा रन चोर के, राजा रन छोड़ के माकर न छोर के, मुल्ली वालो कौन के राजा रन छोर के। थैंक यू बेना।
0: जी आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन छुटते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आज की थीम बहुत ही सुंदर और सरल है, तो सभी को अवसर मिले और सभी जुड़े। हेलो।
3: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते आस्था जी। ओम शांति, कैसी हो?
3: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
3: तो मैं भजन सुना देती हूँ।
0: हाँ जी
3: भगवान के
0: सुना दीजिए।

0: थैंक यू।
1: बहुत बहुत आभार। अच्छा शालिनी जी जुड़ेंगे?
0: हाँ उससे पूछती हूँ।
1: चलिए तब तक के लिए आप कोई भी और भी जुड़ सकते हैं, और जो भी जुड़ना चाहे आप रेडी रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के थीम बहुत ही सरल है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़ना चाह रहे हैं, तो सभी को अवसर मिले। हेलो हेलो नमस्ते। अगर फोन नहीं लगता है तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और आपको पता है नंद उत्सव क्यों मनाया जाता है? चलिए वो भी हम आपको बताएंगे। हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी शालिनी जी नमस्ते।
0: नमस्ते। हाँ
1: हाँ जी सुना दीजिए।
0: सुनाती मर्द।

0: जी बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर। तो ये थे शालिनी जी तरतोली से। देखते हैं आप कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज की थीम बहुत ही सुंदर है, श्री कृष्ण भजन। हेलो,
1: नमस्कार, दीदी पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम अच्छे हैं। और कल मैंने गुरु नानक चौक ऑर्केस्ट्रा के साथ में कितने कलाकारों के साथ में मैंने अपनी गीत गा रहा हूँ, वो गाया था मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है, मुबारक हो। अच्छा अवसर मिला, इसके लिए मुबारक हो।
1: हाँ
0: जी, हाँ जी सुना
1: जी। घर में पधारो नंदलाला कन्हैया, ओ नंदलाला, घर में पधारो नंद

0: वाला।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है श्री कृष्ण जी का। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्ते।
2: ओम शांति दीदी।
1: हाँ हाँ ओम शांति, ये फोन की बहुत आवाज आ रही है, उसको थोड़ा दूर रख के बात करो, ये टूट टूट के आवाज बहुत आ रही है।
2: जी दीदी बंद है वो तो। हेलो।
1: हाँ हाँ सुन रही हूँ, ये टूट टूट की आवाज कहाँ से आ रही है?
2: पता नहीं, मेरे यहाँ तक तो नहीं आ रही है।
1: आपके किसी का फोन ऐसा लग रहा है, ठीक है सुना दीजिए। हाँ आपके फोन में ही आ रही है कह रही हो। हाँ
2: वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों, बाकी दिन मेरा पैगाम ले जाओ। वृंदावन जाने वालों, वृंदावन जाने वालों।
1: आस्था जी बहुत आवाज आ रही, सुनो बहुत फोन की आवाज आ रही है, बहुत ही जोर से आवाज आ रही है। फिर से आप फोन लगाइएगा क्योंकि बहुत ही आवाज आ रही है, तो फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा फोन की आवाज में आपके गीत दब रहा है, तो हर एक के लिए है, इनसे गलती हो रही है वो सबके लिए है कि ध्यान दीजिएगा। टूटू की आवाज आएगी तो आपका गीत साफ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। बाकी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अंताक्षरी कार्यक्रम, और हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह जुड़ते रहिए और अंताक्षरी में भाग लेते रहिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण भजन है, और श्री कृष्ण भजन तो आप सभी जानते ही हैं कि सभी को आते हैं लगभग। हेलो
3: दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
3: सुनाता
1: हूँ।
3: हमें कोई ना के तुमने कारियो रे, कारियो नाम मन गम तू नी। हमें कोई ना के तुमने कारियो रे, कारियो नाम मन गम तू नी।
1: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, और नंद उत्सव की बात आपको बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन माने आज के दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। हाँ आस्था जी सुनाइए।
4: हाँ
1: हाँ जी हाँ जी सुना दीजिए।
4: चोरी चोरी चुपके चुपके मक्खन चुरा के चल दी, हम तड़पते रह गए वो मुस्कुरा के चल दी। भोर बही सखियों के संग में दद बेचन को जाती थी, दद बेचन को जाती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके माखन चुरा के चल दी, हम तड़पते रह गए वो मुस्कुरा के चल दी। थैंक यू।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार शालिनी जी। आस्था सुनाएगी? हाँ आस्था सुना दो
2: जी दीदी।

0: बहुत बहुत आभार आस्था जी, बहुत सुंदर। तो बहुत ही सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां चल रही है यहाँ पर, एक अल्पविराम लेकर के पुनः कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर, आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक। 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: हर मारा मोहन फूट जावेला हो काना अरे रे रे गाना का कर ली मत मारे रे मटकवा फूट जावेला। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में शालिनी जी आस्था जी जुड़ चुके हैं, लेकिन शालिनी जी और आस्था जी आप जुड़े हैं, उसके बाद अभी कोई जुड़े नहीं है, एक बार किसी को जुड़ने दीजिए फिर आपको लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो देखिए जुड़ने की कितनी उत्सुकता है, और आप क्या सोच रहे हैं, इतनी सुंदर सरल थीम है, फिर क्या सोचना है, जुड़ जाइए। अरे श्री कृष्ण जी का तो स्मरण सभी करते रहते हैं, तो कोई ना कोई तो जुबा पर गीत या छंद दोहा आप शेर शायरी सुना सकते हैं हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में। और जैसा कि आपको बता रहे थे कि नंद उत्सव हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन जो मनाने वाला त्यौहार है, आज का दिन आनंद और उल्लास का पर्व है। आज का दिन मान्यता है कि जब नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो पूरे गोकुल में खुशियां छा गई। नंद बाबा ने बधाइयां बांटी, मिठाइयां खिलाई और लोगों ने नृत्य गान करके आनंद मनाया। इसी खुशी की परंपरा को नंदोत्सव कहा जाता है। हाँ जी नमस्ते।
2: ओ शांति दीदी।
0: हाँ अभी कोई जुड़े नहीं है।
2: अच्छा
0: हाँ, 5 मिनट आप इंतजार करिए, कोई जुड़ जाए फिर आप जुड़िएगा, ठीक है? तो देखिए कहाँ उत्सुकता है आस्था जी को और उनके मम्मी शालिनी जी को, आप क्या सोच रहे हैं, उनको अवसर देना चाहते हैं तो आप फटाफट जुड़ जाइए। वो कहते हैं नंद के आंगन में आज खुशियों की बहार आई है, कान्हा की प्यारी मुस्कान गोकुल में छाई है, बज रहे ढोल मंजीरे गूंज रही बधाई, नंद बाबा के घर जन्मे यशोदा के कनाई, माखन मिश्री बाटे सब प्रेम का रंग चढ़ाए, नंदोत्सव के इस पावन दिन मिलकर खुशियां मनाए, नंदोत्सव के इस पावन दिन पर मिलकर खुशियां मनाए। हेलो।
3: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई गाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
3: गाना सुनाता हूँ मैं।
0: हाँ जी।
3: अरे द्वार पालो
0: हो गया, हो गया ये सुरेश भाई सुना दिया, ये आप तुरंत ही दूसरा सुना दीजिए, ब्रेक में सुना दिया। हाँ जी।
3: सारी माँ कैसे पड़े हमें खानूड़ो के सूरे, खांजे तारी माँ कैसे पड़े हमें खानूड़ो के सूरे, केटलो कहता नहीं मानो तो गोकुड़ ले ली सूरे, खांजे तारी माँ कैसे पड़े हमें खानूड़ो के सूरे। जी दीदी नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। अगर आस्था जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो भले जुड़ सकते हैं, जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
2: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी ओम शांति, नमस्ते, सुना दीजिए।
2: कृष्णा भगवान की दादी की मुझे।
0: हाँ जी।
2: तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। थैंक यू।
0: हाँ जी, आपके मम्मी सुनाएंगे
2: जी,
0: उनको पास में ही खड़े रखिएगा ताकि जल्दी तुरंत ही सुना सके। हाँ जी, बाकी देखिए आज शिक्षक दिवस भी है तो शिक्षक दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हाँ जी शालिनी जी नमस्ते।
4: नमस्ते।
0: हाँ जी सुना दीजिए।

0: काना काना काना। थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे शालिनी जी तरतोली से, और देखते हैं आप कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, और हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: जय माता
1: जी, जय श्री हरि।
2: देखो कालिया के फाने पर नाचे कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया के फाने पर नाचे कृष्ण कन्हैया, अरे नाचे कृष्ण कन्हैया सारी सृष्टि रचैया, देखो कालिया के फाने पर नाचे कृष्ण कन्हैया। थैंक यू
1: जी, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और देखते हैं आप कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। देखते ही देखते देखिए, रेडियो मधुबन की घड़ी में 10:20 हो गए हैं, और समय कैसे भागता है पता ही नहीं चलता है। तो आप जो अभी तक सोच रहे और नहीं जुड़ पाए हैं, या कोशिश कर रहे हैं नहीं जुड़ पाए हैं, तो भी आप कोशिश करते रहिए, ज़रूर आपका फ़ोन कॉल्स लगेगा। हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे?
3: पालनपुर से फिरोज भाई। हाँ जी, ओम शांति।
1: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्ते नमस्ते, सुना दीजिए।
3: एक छंद बोलता हूँ
1: जी।
3: ये ब्रज की बाला रूप रसाला, बहुत बिहाला बनवाला, जागी तन ज्वाला विपत विशाला, दिन दयाला नंदलाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी, कानड़ सुखकारी कृष्ण मुरारी, गए बिसारी गिरधारी रजीर, गए बिसारी गिरधारी। जी
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर छंद सुनाया है। आप भी छंद, दोहा, चौपाई और शेर शायरी सुना सकते हैं श्री कृष्ण जी पर। हेलो, हेलो नमस्ते। चलिए फोन नहीं लगता है तो फिर से कोशिश कर सकते हैं। हेलो, हेलो, चलिए ठीक है। तो आज शिक्षक दिवस है, मुझे कुछ बातें याद आ रही जो आपको सुनाना चाहूंगी। हेलो, हाँ जी, जय श्री हरि।
2: ए आज मारे काने डरे कोई हो यो, ए आज मारे काने डरे कोई हो यो, किने किने रीन जेरा लागी हो, आज मारे काने डरे कोई हो यो। थैंक यू
1: बेटा, आभार। देखिए, एक शिक्षक रोज अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ तुम्हें मेरी सबसे बड़ी सीख क्या याद है? एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपने हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, आपने हमें अच्छा इंसान बनना सिखाया। कई साल बीत गए, वही विद्यार्थी एक दिन बड़ा अधिकारी बन करके अपने गुरुजी से मिलने आया। उसने गुरुजी के चरण छुए और कहा, गुरुजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरी गुरु दक्षिणा तब पूरी होगी जब तुम अपने ज्ञान से किसी और का जीवन बेहतर बनाओगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, एक मिनट। तो यही शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वह खुद रोशनी में खड़ा होकर के दूसरों के जीवन में उजाला करता है, वही सच्चा शिक्षक है। हेलो,
4: राधे राधे मैडम जी।
1: हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कौन बोल रहे हैं आप?
4: मैं जयपुर से अतर सिंह बोल रहा हूँ मैडम जी, अतर सिंह यादव।
1: हाँ जी, हाँ जी, अभय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। तो जी,
4: जी मैडम जी,
1: तो आप भी अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं, सुना दीजिए श्री कृष्ण भजन।
4: बिल्कुल सुनाइए मैडम, लेकिन गला थोड़ा हमारा गाने की सुर में कम रहता है।
1: अच्छा, कोई बात नहीं, यथा योग्य जैसा आप सुना सको।
4: जी मैडम जी,
1: जी।
4: राधा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, श्याम का नाम अनमोल बोलो, राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे राधे, विष्णु भी बोले राधे राधे, शंकर के डम

0: राधा का नाम बोलो अनमोल राधे राधे।
1: जी मैडम जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही अच्छे आवाज में आपने सुनाया है, आप जुड़ सकते हैं।
0: मैं प्रोग्राम मैडम सुनता रहता हूँ, पर गला थोड़ा अच्छा जैसा नहीं लगता, इसलिए मैं, पर क्या है, मेरे को आज नंदोत्सव मन रहा है, तो नंदोत्सव पर हम भी भगवान का थोड़ा सा स्मरण कर ले तो थोड़ा सा
1: जी,
0: अच्छा रहेगा, इसलिए आज फिर कॉल लगाया।
1: जी जी, बहुत अच्छा किया। तो बहुत ही मीठी मधुर आवाज है, आप जुड़ सकते हैं और सुना सकते हैं, ठीक है।
0: जी मैडम जी, धन्यवाद मैडम
1: जी, आपका आभार। तो ये थे अभय सिंह जी यादव जयपुर से, और अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि।
2: मेरो राधा रमण तीर धारी,

0: सदारी श्याम बनवारी।
1: जी आभार। तूने बंसी जो बजाई राधा दौड़ी चली आई, तेरी बंसी

बंसी बजा, तूने जो बंसी बजाई, आहा ओ मैं जमुना तट आई, तू गा कर में समाया, मैं तुझे ढूंढन पाई, ओ तूने तूने

0: बजा। हेलो।
1: राधे जी नमस्ते, सुरेश
0: नमस्ते सुरेश भाई।
1: भाई, अच्छा गाना सुना दिया। और शिक्षक दिन है तो दीदी बात को तो आज हमारे मोहल्ले में भी छोटे छोटे बेटियां जो शादियां बहन कर गई है शिक्षक बन के, तो
0: जी,
1: कैसी नन्ही परी कैसी लगती है दीदी, बहुत अच्छी लगती है जो साड़ी पहन
0: बिल्कुल
1: के ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा आपने।
1: ये भी एक जो भी छोटी लड़की का अच्छा मौका मिलता है कि टीचर बनते हैं आज के दिन,
0: हाँ
1: बहुत अच्छा लगा दीदी आज टीचर दिन है। तो
0: जी,
1: बताऊँ गाना में कि यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल है तो सारा जग
0: जू जू जू जू जू
1: नमस्ते।
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो हेलो नमस्ते। अगर किसी का फोन नहीं लगता है तो फिर से आप कोशिश करते रहिएगा और ताकि आपका फोन जरूर लगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो।
2: हेलो, हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते आस्था।
2: वॉइस आ रही है? ठीक
0: हाँ आवाज आ रही है।
2: है दीदी, मैं गा देती हूँ।
0: हाँ जी सुनाइए।

0: राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। थैंक यू।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार। शालिनी जी जुड़ेंगे? हाँ जी, नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: सुना दीजिए।

0: थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे शालिनी जी, बहुत ही सुंदर आपने भी सुनाया है भजन। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, आपका अभी हो गया तो आप रखेंगे तभी दूसरे जुड़ पाएंगे। तो जो भी जुड़ते हैं अंताक्षरी में, आपका गीत पूरा होने के बाद तुरंत ही आप फोन कट कर दीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ जी नमस्ते।
3: हाँ नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: ओम शांति, सुनाइए फिरोज भाई।
3: हाँ, एक गीत बोलता हूँ। अबे मैया रा कंस राजा ना वाला कोई में इन गई ये दान रे, हे मार जयो हो मारो मिली दियो ने कुवर कान रे, हे मार

0: गोकुयुगाव हारे वाला मत वाटे गोकुयुगाव रे हे बार डो मारो मिली दियो ने कुवर का।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत ही मीठी मधुर आवाज में आपने सुनाया है, बहुत ही सुंदर हमने सुना है श्री कृष्ण भजन। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और चलिए हम भी यहाँ साकी सुना देते हैं। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ेंगे तो हम चुप रहेंगे। हेलो जी, जय श्री हरि।
2: मारा चार गुजरा नाथ, मारा चार गुजरा नाथ, मांगू जो तो सगड़ो दीजे जोड़ो दोनों हाथ, मारा चार गुजरा नाथ, मारा चार गुजरा नाथ।
3: थैंक यू बेटा
1: जी, आभार आपका। अटक अटक जट नटपन घट पर नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालिन की छोरी छोरी, मन मोरी मुस्काए साकरी, गली में मेरो काकरी, कन्हैया भर पिचकारी मारी, छररररर भोली पनी हारी बोली अररररर। अरे जा रे हटे नटखट हो घूंघट से घूंघट ना छेड़ में, दूंगी पलट के तुझे गाली रे, मुझे समझो ना ओ मुझे समझो ना, यूं भोली भाली रे भोली भाली रे। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी शालिनी जी, नमस्ते।
4: नमस्ते,
1: हाँ जी सुना दीजिए।
4: दिल मेरो ले गयो सांवरिया उड़ के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया

0: सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया।
1: कांवरिया। थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत आभार। आस्था जी सुनाएंगे?
1: जी। किचन
0: हाँ जी,
1: में
0: सुना
1: रहती हूँ,
0: दीजिए।
1: बाग बाग।
0: हाँ, सुना दो आस्था।
1: मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे

0: दो। थैंक यू
1: जी, आभार। मुरली की मधुर मधुर तान हो, हर दिल में प्रेम का गान हो, कृष्ण कन्हैया का ऐसा धाम, जहाँ हर श्वास बने शुभ नाम, जहाँ हर श्वास बने शुभ

0: जब जब वेद सवरिया हो तेरी पे तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। देखिए ड्राइविंग करते जा रहे और भजन सुनाते जा रहे, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। अगर आपकी भी इच्छा शक्ति है तो आप जुड़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आपका नंबर जरूर लगेगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत कम समय बचा है अब आपके पास, तो जो भी जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। हेलो जी, जय श्री हरि। जी बहुत बहुत आभार। गाया रो भैंस्यारो मारे नहीं टोटो, गाया रो भैंस्यारो मारे नहीं टोटो, हमें तो छाच बिलोती रे गिरे कानूडो छोटो, हमें तो छाच बिलोती रे गिरे कानूडो छोटो। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी सुना दीजिए।

0: दीवानी
1: जी।
0: हाँ
1: जी, बहुत सुंदर। आस्था जी बोलेंगे
2: जी? जी जी,
1: हाँ सुना दीजिए।
2: आएगा आएगा आएगा नीली चढ़ सावला, आएगा आएगा आएगा।

0: लाएगा लाएगा लाएगा खुशियां हजारों संग लाएगा। थैंक यू।
1: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे आस्था जी और शालिनी जी। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। समय बहुत कम बचा है, मैं अल्प विराम भी नहीं ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा समय मिले और आप ज़्यादा जुड़ सके, फिर आपकी शिकायत नहीं रहेगी, फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन नहीं उठाते वगैरह वगैरह, है ना। इसलिए आप जुड़िएगा, आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर तो अल्प विराम लेना ही पड़ेगा। बाकी श्री कृष्ण जी पर बहुत सुंदर सुंदर भजन है। हेलो,
2: हाँ जी सुना है।
1: हाँ जी सुना दीजिए कमला जी। बिल्कुल
2: यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा तू गोरी मैं क्यों काला। राधा
1: कमला जी, ये हो गया, ये हो गया, आप तुरंत ही दूसरा सुना दीजिए। हाँ
2: दूसरा दूसरा
1: जी,
2: सुना दिया। तन डोले मन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये

0: ये कौन बजाए बांसुरिया।
1: जी बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे कमला जी भीलवाड़ा से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9415141415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, फास्ट बोलते हैं ना, तो कभी ऐसा ही हो जाता है। 9414141415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते आस्था जी।
2: नमस्ते नमस्ते दीदी।
1: हाँ सुना दीजिए,
2: सुना दीजिए भजन।
1: हाँ सुना दीजिए।
2: तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाओ, तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाओ। काना ने कर डाला, मर गई मैं, लुट गई मैं।

0: जी आभार। शालिनी जी जुड़ेंगे?
1: जी दीदी।
0: हाँ जी। नमस्ते शालिनी जी। तुरंत जुड़ना होता है, अगर घेप देंगे तो हमारे श्रोता बंधु और भी इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि समय पूरा होने को आ रहा है, कार्यक्रम अंतिम चरण पर चल रहा है, इसलिए जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। हेलो,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार बुरीलाल जी।
2: कृष्ण जिसका नाम है, वैकुल जिसका दान है, एक भगवान को बारंबार प्रणाम है।
0: जी जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। ये थे बुरीलाल जी मानपुर से, हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही जुड़ते हैं और मुस्कुराहट के साथ ही एंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आपको पता है श्री कृष्ण जी को छाछ क्यों पसंद है, वो भी ब्रज की छाछ। भाई क्या कहना ब्रज की छाछ का तो। हेलो
3: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
3: हे कानूना तोड़ी गोवालन, हे जी मुरलिए लल चाणी रे।

0: थोड़ी गोवा।
1: जी बहुत सुंदर, आभार आपका। तो देखिए एक बार क्या होता है, जब श्री कृष्ण जी लीला कर रहे तो ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि सब देवता ठाकुर जी के निकट आए, क्या देखा कि ठाकुर जी अपने पीछे कुछ छिपा रहे हैं। तब देवता बोले, प्रभु आप क्या छुपा रहे हो? श्री कृष्ण जी चुपचाप खड़े रहे, हाथों में एक पात्र रखा है और उसको पीछे छुपा रखा है। देवताओं ने फिर पूछा, प्रभु आप क्या छुपा रहे हो? तो भगवान धीरे से बोले, देखो आप किसी को बताना नहीं, ये जो पात्र है ना, इसमें बड़ी मुश्किल से आज मैं कहीं से छाछ लेकर के आया हूँ। आगे क्या होता है जरूर सुनाएंगे, लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, हाँ जी, जय श्री हरि।
0: नंद ममतानी मूर्ति मारी रह गई तो फूल मानंद बाबा ने माता यशोदा जी सांबड़े। थैंक यू
1: मैम। जी आभार आपका। तो उन्होंने अपने पीछे छुपा दिया, तो देवता बोले, प्रभु आप जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, आप इस छाछ को छुपा रहे हैं तो ये जरूर अनमोल होगी, तो प्यारे एक घूट हमें भी मिल जाए, आप कृपा कर दो ताकि एक घूट हम भी पी सके। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते।
2: नमस्ते
1: जी, सुनाइए।
2: मैं

0: जी आभार। आस्था जी सुना दीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
1: काना सपने में तो आ

0: यू।
1: जी आभार। तो देखिए, ऐसे श्री कृष्ण जी ने छाछ को पीछे छिपा दिया। फिर जब देवताओं ने कहा तो श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं देवताओं, ये छाछ आपके सौभाग्य में नहीं है। आप स्वर्ग का अमृत पी सकते हो, पर ब्रजवासियों की छाछ तो मैं ही पीऊंगा। आप जाओ यहाँ से, स्वर्ग का अमृत पियो, पर ये छाछ मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। देवता बोले, प्रभु ऐसी कौन सी अनमोल बात है इस छाछ में जो हम नहीं पी सकते हैं? आप कह रहे हो कि हम अमृत पिए, तो क्या ये छाछ अमृत से भी बढ़कर है? तो इतना सा सुना
0: हेलो।
1: तो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते।
0: हरी जी नमस्ते। सूरज जी बताए बताना से दूर
1: हाँ जी,
0: नगरी बड़ी दूर नगरी के ते आऊ रे के नैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी रात में आऊ तो काना दर मोहे लागे दिन को आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी
1: बड़ी दूर नगरी।
0: नमस्ते।
1: जी आभार आपका। तो देखिए, देवता ने बोला कि अरे ये कौन सी अमृत से बढ़कर है? छाछ तो छाछ है, इसमें क्या बड़ी बात है? इतना सुना तो ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ गए। आंसू भर करके बोले, देवताओं आपको नहीं पता, इस छाछ को पाने के लिए मुझे गोपिन के सामने नृत्य करना पड़ा है। जब मैं नाचा हूं तब मुझे ये छाछ मिली है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। तो कुछ तो बात होगी ना, गोपियों के प्रेम वश बनाए इस छाछ में। मैं जो इसे पाने के लिए ठाकुर जी को नाचना पड़ा, वस्तुतः भक्त के निस्वार्थ हृदय की गहराइयों से निसरत भजन ही भगवान का भोजन है। परमात्मा इसे ही प्रेम वश भोग लगाया करते हैं। हरि के सब अधीन है, हरि प्रेम अधीन, याही ते हरि आपु ही याही बड़प्पन दीन। तो इस तरह छाछ श्री कृष्ण जी को पसंद है और छाछ पूरी दुनिया पसंद करती है। भोजन के बाद छाछ लेना सभी को पसंद है, तभी से ये छाछ फेमस हुई है। और देखिए, हम कुछ बोल रहे होते हैं तो आप फोन काटिए नहीं, धैर्यता बनाए रखिए, हम आपका फोन उठाएंगे। हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ जी शालिनी जी, अभी कोई जुड़े नहीं हैं तो।
0: अच्छा
1: हाँ, अब वैसे ही कार्यक्रम
0: ठीक
1: समाप्त होने जा रहा है, लास्ट में 2 मिनट में कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है?
0: अच्छा जी।
1: हाँ
0: हाँ जी
1: जी, आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट में जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी कहना चाहूंगी कि आप जुड़ जाइएगा, लास्ट में एंट्री कर लीजिएगा। हेलो।
0: हाँ नमस्कार दीदी। सालन से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
1: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्ते।
0: एक गीत बोलता हूँ।
1: हाँ जी।
0: नंद लाला मैं माता

0: रही गई को कूड़े मां। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब लास्ट में कोई भी एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। हेलो, चलिए कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, अब कोई नहीं जुड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अगला कार्यक्रम भी आपको सुनना है ना, पंडिताइन कार्यक्रम। तो आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा है, सुंदर सा विचार भी रखा है, नुस्खे भी आपने सुने हैं, फिर अंताक्षरी भी बहुत ही सुंदर तरीके से चली, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े और उमंग उत्साह से भाग लिया है। तो मैं नाम सुनाना चाहूँगी, विनर का नाम लास्ट में सुनाऊंगी। सुरेश भाई जोटाना से जुड़े हैं 7 बार, आस्था जी ने 11 बार प्रस्तुतियाँ दी है, भूरीलाल जी मानपुर से जुड़े हैं 5 बार, मधु जी आबू रोड से जुड़े हैं 1 बार, कमला जी भीलवाड़ा से आपने 3 बार प्रस्तुतियाँ दी है, सादिया आप 1 बार जुड़े हैं, सगुना बहन 2 बार जुड़े हैं, शालिनी जी ने 8 बार प्रस्तुतियाँ दी है, फिरोज भाई पालनपुर से आपने 5 बार प्रस्तुतियाँ दी है, अभय सिंह जी जयपुर से 1 बार जुड़े हैं, और आज के विनर है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, जो 14 बार जुड़े हैं। तो पहले मैं सुरेश भाई के लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी, और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई आपको, और बाकी आप सभी जुड़े और अंताक्षर में आपने भाग लिया, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। आज का मीठा मोती है, गीता है माता पिता जिसकी प्रथम रचना है श्री कृष्ण मुरारी, सारी दुनिया जिस पर है हारी, ऐसे है हमारे मोर मुकुट बंसी धारी। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, पुनः नंद उत्सव और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामना सा। आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: और भगवान परम शिक्षक है। परम शिक्षक, जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है? पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में, सातवीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में। लेकिन जब आठवीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, सातवीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में आठवीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं, तो टीचर देखता रहा, ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं? पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा। तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनहार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा, ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा, बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा, अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे। और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था, तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए। जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा, आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी। और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा, कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा, सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूं, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, वो घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा, कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा, मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना, उनके कारण हूं। मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था, आज मैं जो कुछ बना बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते, इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहने सुनाती है, जो बहनों को सुना ऐसा लगे सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया उसने, दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया, तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है। ठीक है, ओम शांति।
1: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: काका बारिश बहुत जोर से हो रही है, कोई आने वाला नहीं है। मैं आपके लिए पकोड़े ले आता हूँ और आप मुझे कुछ अच्छा सा सुना दो।
1: हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताऊंगा।
0: अच्छा काका।
1: हाँ, जानते हो इनका जन्म कहाँ हुआ था?
0: आप बताओ काका।
1: तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, सर्वपल्ली वीरा स्वामी और उनकी पत्नी सीताम्मा का। उन्हीं की 6 संतानों में से एक संतान थे।
0: ऐसा काका?
1: हाँ, इसीलिए बेटा तिरुतानी गांव बहुत खास गांव है।
0: काका, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो राधा कृष्णन की याद में कुछ मनाया जाता था, शायद
1: शिक्षक दिवस। हाँ। है ना? हाँ। बेटा 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझे बेटा?
0: हाँ काका, इतना तो मुझे याद है काका, आगे बताओ।
1: आंध्र प्रदेश के सर्वपल्ली गांव से तमिलनाडु के इस छोटे से गांव में एक छोटे से जमींदार के यहाँ मुलाजिम हो गए थे।
0: तब तो राधा कृष्णन की पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आई होंगी।
1: हाँ बेटा, दिक्कतें तो बहुत आईं, लेकिन बहुत होशियार थे इसलिए छात्रवृत्ति हमेशा पाते रहे। राधा कृष्णन के पिता की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी।
2: हे प्रभु, पाठशाला छूटने का समय हो गया है, काम करने में समय का पता ही नहीं चला।
3: सुनो, मेरे लिए कॉफी बना दो बढ़िया सी।
2: हाँ हाँ, कॉफी मिलेगी, पर बच्चे भोजन कर लें उसके बाद।
3: ठीक है ठीक है, अब तो बाप का नंबर बच्चों के बाद ही आएगा।
2: अरे बाबा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर पहले पहले इस झूले से उतरो और जो सामान मैंने बताया था ना, वो बाजार से ले आओ।
3: पता नहीं ये ग्रह स्वामी नाम किसने दे दिया, जबकि हालत आदमी की सेवक सी होती है, असली स्वामिनी तो औरतें ही होती है।
2: अच्छा अच्छा, अब समय गवाए बिना उतरो झूले से।
3: अरे उठता हूँ भगवान, उठता हूँ। लाओ झूला दो, बाजार जाता हूँ।
2: अरे सुनो तो।
3: अब क्या हुआ भाग्यवान?
2: राधा कृष्णन की गांव की पाठशाला की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी, आगे क्या करना है?
3: मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है।
2: अच्छा, क्या सोचा है?
3: इसके बाद उसे हम तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में भेजेंगे।
2: छी छी छी छी, मैं ना पढ़ाऊंगी उसको वहाँ।
3: क्यों, क्या मिशन स्कूल में इंसान नहीं रहते?
2: रहते होंगे इंसान, पर मिशन स्कूल? अरे धर्म भी कोई चीज होता है कि...

0: आपके खाने का इंतजाम करती हूँ।
1: तो बेटा, गांव से पढ़ाई पूरी कर राधा कृष्णन पहुँच गए तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में।
2: पढ़ाई तब कितनी मुश्किल थी ना काका, छोटी सी उम्र में घर से दूर जाना पड़ता था।
1: जाना तो पड़ता था बेटा, लेकिन वहाँ घर से दूर मिशन स्कूल में पढ़ने से वो बाइबिल के जानकार बन गए और ईसाई धर्म के भी जानकार बन गए।
2: अच्छा काका।
1: हाँ
3: चलो, आज लूथरन की पढ़ाई पूरी हुई,
4: आगे क्या विचार है?
5: अरे इसका क्या है, इसके जैसे होशियार और प्रथम आने वाले छात्र को तो कोई भी कॉलेज खुशी खुशी एडमिशन दे देगा।
4: तो राधा कृष्ण कहाँ लोगे एडमिशन?
3: वेल्लोर के वुरही कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था हो गई है। और तुम लोग क्या करोगे?
5: खोज रहे हैं यार, खर्च का भी तो देखना पड़ता है, पिताजी आखिर मेरी पढ़ाई पर कितना खर्च कर पाएंगे।
4: राधा कृष्णन, तुम तो जहाँ जाओगे वहाँ छात्रवृत्ति मिल ही जाएगी।
3: ठीक कहा तुमने, छात्रवृत्ति के भरोसे ही तो कर पा रहा हूँ पढ़ाई, वरना परिवार की माली हालत कहाँ है ऐसी, उसके भरोसे तो पढ़ाई कब की छूट गई होती।
5: भगवान हूँ मित्र जो ईश्वर ने ऐसी प्रखर बुद्धि दी है,
3: और इसके लिए मैं उस ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ।
4: कहते होगे, हे सर्वशक्तिमान, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।
5: मुझे तो दुख हो रहा है कि हमारा साथ छूट जाएगा।
3: अरे अरे, बस इतना ही तो होगा कि आगे अब हम लोग रोज ना मिल पाएंगे, साथ क्यों छूटेगा भाई?
4: अरे ये साथ छूटना ही तो हुआ।
3: अरे हम भगवान से कभी नहीं मिलते, फिर भी कहते हैं वो हमारे साथ है।
5: हम इंसान हैं, भगवान नहीं।
3: अरे लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि हर इंसान में भगवान बसता है।
4: देखो भाई, ये फिर चालू हो गया अपना दर्शन शास्त्र लेकर।
5: तेरी ये दर्शन शास्त्र की गहरी बातें हमारी समझ में नहीं आती।
4: और तर्क में तुमसे कौन जीत सकता है भला?
3: अच्छा मित्रों, अब मैं चलता हूँ, वेल्लोर से पहले तिरुतानी जाना है, घर परिवार की आस।
0: चल एक रोटी और ले लो।
6: अरे बस बस बस भगवान, बहुत पेट भर गया आज मेरा। और हाँ, हमारे राधे की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है।
0: अच्छा?
6: अब वो कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेगा।
0: रहने दो, अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, बस मेरी आंखों के सामने रहेगा हरदम।
6: तो क्या पुत्र प्रेम के चक्कर में उसकी पढ़ाई छुड़वा दोगी तुम?
0: बहुत होशियार है मेरा बेटा, देखना कोई अच्छी सी नौकरी झट से लग जाएगी उसे।
6: अरे उसे आने तो दो पहले, उसकी मर्जी भी तो जान ले आखिर वो खुद चाहता क्या है।
0: कौन है? आती हूँ। अरे अरे राधे, तू आ गया बेटा।
3: हाँ अम्मा, प्रणाम।
0: आयुष्मान बाबा, खूब बड़ा हो।
6: अरे बेटा, ना कोई चिट्ठी हो ना कोई खबर, यूँ अचानक?
3: अरे सोचा सीधे पहुँच कर चौंका दूँ आप सबको, पहले खबर हो जाए तो ऐसी खुशी कहाँ देखने को मिलती।
0: हाँ, तेरे इंतजार का एक एक दिन कैसे काटती हूँ ना मैं, तू क्या जाने इसे।
3: अरे अम्मा, तू भी जरा जरा सी बात पर रोने लगती है।
0: हाँ, खुशी के आंसू है ये।
3: अब तो चुप हो जा, अब तो मैं आ गया ना।
0: अच्छा चल, अब बातें बहुत हो गई, खाना खा ले, सब तेरी पसंद का बनाया है।
3: अरे वाह, मेरी पसंद का?
6: तेरे घर आने के दिन से एक सप्ताह पहले से ही तेरी और केवल तेरी पसंद का खाना ही खाना पड़ता है हम सबको। क्यों भगवान, ठीक कहा ना मैंने?
0: खाना अच्छा तो बना है ना बेटा?
3: हाँ अम्मा। अप्पा, मद्रास के पास वेल्लोर के वुरही कॉलेज में पढ़ने का मन है।
6: बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा।
0: क्या खाक विचार है, पता है 16 साल का हो गया है मेरा राधे, मुझे इसका विवाह करना है, लड़की भी देख रखी है मैंने।
3: अम्मा
0: अम्मा अम्मा कुछ नहीं, अम्मा अब तुम्हारी एक न सुनेगी, शिव का वो अम्मा भी अब 10 वर्ष की है और तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी एक अच्छी लड़की है।
3: देखो अम्मा, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, बोलो हाँ या ना, तुम बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो, मैं वेल्लोर में एक साल की पढ़ाई कर लूँ, अब फिर कर देना मेरी शादी।
6: हाँ भगवान, ठीक तो कह रहा है हमारा राधे, सिर्फ एक साल की तो बात है, उसके बाद में शादी कर लेंगे इसके हम।
0: हाँ हाँ ठीक है, पर केवल एक साल, उसके आगे एक न चलेगी तुम दोनों की।

0: काका ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप भजिए खाओ और आगे बताओ।
1: अरे क्या बात है बेटा, मजा आ गया। राधा कृष्णन 17 वर्ष की उम्र में ही मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज चले गए। इसी बीच उनकी शादी शिवकमु अम्मा से हो गई।
0: 17 साल की उम्र में ही?
1: हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज में बीए एवं एमए की पढ़ाई उन्होंने दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र लेकर पूरी की। जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेते थे। एमए की पढ़ाई करते हुए प्रबंध लेखन के लिए उन्होंने दी एथिक्स ऑफ वेदांत विषय पर प्रबंध लिखा। उनका कोई भी काम साधारण तो होता ही नहीं था बेटा। इस प्रबंध के लिए उन्हें विशेष प्रशंसा पत्र दिया गया था।
0: क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में प्रशंसा पत्र।

0: राधा कृष्णन, प्रशंसा पत्र मिलने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: हाँ मित्र, भाषा वो अंग्रेजों की है, पर क्या अद्भुत अधिकार है तुम्हारा उनकी भाषा पर।
0: दार्शनिक समस्याओं में तुम्हारी समझ और जटिल से जटिल बातों को आसान तर्कों में समझाने की तुम्हारी प्रतिभा से मैं अभिभूत हूँ।
1: अरे भैया अभिभूत, ये अपने तर्कों से अच्छे अच्छे भूतों को कायल कर लेता है।
0: सच कहा, मैं तो डर रहा था वो स्कॉटिश भूत हमारा दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक डॉक्टर हॉग इस प्रबंध पर बिगड़ जाएगा।
2: थोड़ा डरा हुआ तो मैं भी था, पर उन्होंने तो प्रशंसा पत्र दिलवा ही दिया।
0: पर तुमने प्रबंध लेखन के लिए ऐसा विषय ही क्यों चुना?
2: मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म या इसके विचारों का कोई उपहास करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसा विषय चुना ताकि दुनिया जान सके कि वेदांत में आचार नीति का महत्वपूर्ण स्थान है।
0: राधा कृष्णन, तुमने तो बड़े साहस का काम किया है।
2: मुझे विवेकानंद के भारतीय युवाओं में आत्मसम्मान का भाव जगाने वाले विचार बहुत अच्छे लगते हैं। सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मैंने पढ़ी और मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है इसका।
1: ये बात तो तुम्हारा प्रबंध पढ़कर कोई भी आसानी से जान सकता है।
2: हम में से हर युवा के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, हर एक को गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है।
0: सुना है कि तुम्हारा प्रबंध पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है।
1: केवल 20 साल की उम्र और एक पुस्तक भी प्रकाशित।
2: सच कहूं, पहले पृष्ठ पर मेरे नाम को देखकर मैं भी चकित हूं और हर्षित भी।
0: अब आगे क्या विचार है?
2: शिक्षकों की सलाह है और मेरी भी इच्छा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाकर आगे और पढ़ूं, पर यह संभव नहीं है, मुझ पर बहुत सी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं।
3: तब क्या करोगे?
2: मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक शिक्षक की नौकरी मिल रही है, वही करूंगा।

0: क्या हुआ? आज कुछ परेशान नजर आते हो?
1: हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छिपाना? नौकरी में मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा।
0: अन्याय? कैसा अन्याय?
1: अरे, इतना शिक्षित होने के बावजूद सबसे निचले पद पर सहायक शिक्षक रखा है और वेतन भी मात्र 100 रुपया महीना देते हैं। अन्याय नहीं तो और क्या है?
0: बात तो ठीक है तुम्हारी।
1: अरे, हमें भी राज्य और अखिल भारतीय सेवा के उच्च वर्गीय कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि काम हम भी वही करते हैं। बाकी लोगों ने इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मेरा कहना है, समान योग्यता, समान कार्य, तो समान वेतन और सम्मान क्यों नहीं?
0: तो तुम आप क्या करोगे?
1: करना क्या है, सोतों को उठाना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। सबको साथ लेकर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेंगे न्याय पाने के लिए।
0: अपने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करोगे? अगर वे नाराज हो गए तो?
1: आंदोलन किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं, वरन अन्याय के खिलाफ होगा।
0: जो भी करना है सोच समझ कर करना।
1: भरोसा रखो मुझ पर, शिवकमू। अन्याय को सहना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा अन्याय करना।

0: तो काका उन्होंने आंदोलन शुरू किया?
1: हाँ बेटा, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। राधा कृष्णन इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़े। ये अलग बात है कि परतंत्र भारत के अंग्रेजी राज में जब हर संघर्ष का अंत असफलता में होता था, उनके आंदोलन का भी यही हश्र हुआ।
0: तो क्या सबने साथ छोड़ दिया था?
1: नहीं नहीं बेटा, किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, सब उनके साथ थे। उपनिषद, भगवत गीता, जैन बौद्ध धर्मों के ग्रंथ, शंकर भाष्य, रामानुज, माधव टीका के अलावा ब्रह्म सूत्र आदि का गहरा अध्ययन किया था उन्होंने।
2: अरे बाप रे, इतनी सारी बातें तो समझ में ही नहीं आएंगी।
1: इन सब के बावजूद भी उन्हें अंग्रेजी साहित्य से बहुत लगाव था। पाश्चात्य चिंतकों में प्लेटो, प्लाटिनस, कांट, ब्रेडली और बर्गसन का बहुत असर था उनकी सोच पर।
2: अरे बाप रे काका, ऐसे कठिन कठिन नाम मुझे तो याद भी नहीं, और आपको सब याद है?
1: अरे बेटा, पढ़ने के साथ साथ वो खूब लिखते भी थे, खूब गंभीर लेखन करते थे। दांते, गोएथ, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, ब्राउनिंग।
2: अरे बस बस काका बस, आप इतना बता रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप तो आगे बताओ।
1: इतने पठन पाठन के बावजूद भी उनका अध्यापन का तरीका एकदम सुगम रहता था, हरेक को आसानी से समझ में आ जाए ऐसा। पर बेटा, गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा।

0: आज बहुत देर हो गई।
1: हाँ, एक और ट्यूशन पकड़ ली है आज से।
0: अब बस करो, खुद पर कितना काम का बोझ डालोगे।
1: अरे भाई, बहनों का ख्याल भी तो हमें ही रखना है। पिताजी तो रिटायर हो गए, कुनबा अपना बड़ा हो तो काम तो अधिक करना ही पड़ेगा ना।
0: मुझे बस एक ही चिंता सताती है कि इतने अधिक काम से तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ।
1: अधिक काम से अधिक ऊर्जा खर्च होती है और उससे अधिक प्राप्त होती है।
0: ओह, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती।
1: सो तो कई बार मुझे भी नहीं आती है। पता नहीं मेरे शिष्य और साथी किस बात पर इतनी तारीफ करते हैं।
0: मुझे कहाँ इतना ज्ञान, पर फिर भी एक बात खूब जानती हूँ कि शिष्य और साथी किसी को यूं ही इतना प्यार नहीं करते।
1: बस बस बस, तारीफ से ही पेट भर दोगी क्या? अब खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है।
0: जी, लगाती हूँ खाना। हाँ, एक बात और पूछनी थी। आज अलमारी में मैंने देखा, तुम्हारे वो सारे सोने के मेडल नहीं दिख रहे थे जो तुम्हें विद्यार्थी के रूप में मिले थे।
1: छोड़ो ना इन बातों को।
0: छोड़ कैसे दूं, तुम्हारे कीमती मेडल है वो।
1: अब है नहीं, थे।
0: क्या मतलब?
1: मैंने उन्हें बेच दिया।
0: हे प्रभु, ये क्या कर डाला?
1: अरे पूरा परिवार आर्थिक परेशानियां झेले और मैं मेडल सीने से लगाए घूमूं? उससे ज्यादा अच्छा तो यही है कि उन्हें बेचकर आर्थिक परेशानी कम ही की जाए।
0: ये ठीक नहीं किया आपने।
1: अब बात निकली है तो एक बात और बता ही दूं तुम्हें। एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की तुम्हें याद है?
0: हाँ, तुमने बताया था उसके बारे में कि उसमें मनोविज्ञान पर तुम्हारे दिए आख्यान संकलित हैं। उसे क्या हुआ?
1: मनोविज्ञान पर लिखे लेख मन का बोझ कम करने के लिए काम आ गए। कर्ज का भार काफी हल्का हो गया। मैंने उसका कॉपीराइट बेच दिया। 500 रुपए मिले हैं उसके बदले में।
0: ये तो और भी बुरा हुआ।

0: तो बेटा सल्लू, उनके लेखन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया।
1: हमारे देश के बाहर भी?
0: हाँ बेटा सल्लू, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुज उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने से पहले उनका आशीर्वाद ले गए थे। फिर आई उनकी पहली पुस्तक द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने खुद रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उनकी प्रतिभा का कायल बना दिया।
2: अरे सुनती हो, सामान समेटना शुरू करो, शीघ्र ही हमें ये शहर छोड़ना है।
3: शहर छोड़ना है? कहीं तुम्हारी नौकरी तो?
2: हाँ।
3: हे राम, तुम्हारे जैसे विद्वान और गुणी आदमी की नौकरी छूट गई?
2: छूटी नहीं, छोड़ दी।
3: ये क्या किया?
2: बस मन किया कि छोड़ दो तो छोड़ दी। हम मैसूर जाएंगे अब।
3: वहाँ क्या करने जाएंगे?
2: मैसूर विश्वविद्यालय में फिलोसफी के प्राध्यापक के रूप में चयन हो गया है मेरा।
3: क्या, पहले क्यों नहीं बताया? तुम भी ना।
4: बधाई हो भाई, बधाई हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
5: बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
6: आखिर ये बधाई किस बात के लिए दी जा रही है, जरा मैं भी तो सुन लूं।
4: क्या बात कह रही हैं? क्या सच में आपको नहीं पता?
6: ये कुछ बताते कहाँ है, बस अपनी पुस्तकों और विचारों में खोए रहते हैं।
2: अरे मेरे घर में घुसने के साथ ही ये दोनों भी घर में आए, मुझे तुम्हें बताने का अवसर ही कहाँ मिला है। ये बधाई बधाई करना बंद करें तब तो बताऊं।
4: लो भाई, अब हम हो गए बिल्कुल चुप। जल्दी बताओ भाभी जी को, खुशखबरी कौन सी है?
2: अरे भाई, पंडित नेहरू ने सोवियत संघ में प्रथम राजदूत बनने के लिए मुझे चुना है।
3: क्या, सच में?
2: हाँ भाई सच में। तुम्हारे ही समान मुझे भी हैरानी है इस चयन पर। बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और राजनयिक के बीच पंडित जी ने इस पद के लिए मुझे चुना है और सभी हैरान हैं।
4: राधा कृष्णन, मित्र के नाते नहीं, पर सच में दिल से कह रहा हूँ कि ये एकदम सटीक चयन है।
5: जिनको होना है उन्हें हैरान होने दो, पर मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा मित्र वहाँ भी सफलता के झंडे गाड़ देगा।

0: में 3 साल का कार्यकाल राजदूत के रूप में पूरा करके वो जब देश लौटे तो 1952 में उन्हें देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का सम्मान मिला।
1: उपराष्ट्रपति?
0: हाँ बेटा।
2: मुझे तो अब तक की मेरी तुम्हारे साथ की जीवन यात्रा स्वप्न जैसी लगती है। कहाँ कॉलेज के एक सहायक शिक्षक की पत्नी और कहाँ देश के उपराष्ट्रपति की पत्नी।
3: ये सब कुछ तुम्हारे भाग्य का प्रताप है।
2: नहीं, इसमें मेरा क्या है, सब तुम्हारी योग्यता का सम्मान है।
3: वो कहावत भी है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है।
2: रहने दो।
3: तुमने कभी माना है क्या इस बात को? फिर भी सच तो यही है कि सफर के हर पड़ाव पर तुम मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही, मेरी हिम्मत बढ़ाई।
0: उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटा, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। सन 1956 में 50 साल से अनवरत उनका साथ निभाती आई उनकी पत्नी 5 पुत्रियों और 1 पुत्र को बिलखता छोड़ इस संसार से विदा हो गई।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ काका।
0: हाँ बेटा।

0: भाई भाई।
1: पता नहीं चीन ने इस अमंगलकारी युद्ध की क्यों सोची।
2: हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जिसके लिए हम लगाते रहे, उसी चीन का ये कैसा रूप हमारे सामने आ गया।
1: पंडित नेहरू बहुत व्यथित है इस घटनाक्रम से। मैंने उन्हें शांत रहने की सलाह दी है, यही मेरा कर्तव्य भी है राष्ट्रपति के रूप में।
3: यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस कठिन समय में तुम्हारे जैसे योग व्यक्ति का नेतृत्व मिला हुआ है।
1: हमें एकजुट रहकर देश के सम्मान की रक्षा करनी है।

0: 79 वर्ष की उम्र, 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस असार संसार का त्याग कर दिया। पर एक बात है बेटा सल्लू, अनेकों रूपों के बीच उन्हें उनका सबसे प्रिय रूप लगता था शिक्षक का रूप। आज भी उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: ये बात तो है काका, ये तो मैं भी नहीं भूला हूँ। स्कूल छोड़े टाइम हुआ तो क्या हुआ, शिक्षक दिवस तो मैं भी

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: निर्माण।
1: जिनसे मिला ज्ञान का खजाना, रत्नों का खान,
2: जिससे मिली दुनिया की पहचान,
3: वो है हमारे आदर्श गुरु।
4: रेडियो मधुबन विश करता है उन सभी शिक्षक गणों को अ हैप्पी टीचर्स डे।

0: राम राम रतन, राम राम।
1: अरे राम राम जतन, आओ भाई आओ। कई बात है थो तो अचानक आवे जो मुझे एक बार भी जाऊं मारे कई घाते सके को लिंक टूट जावे ना।
0: हाँ।
1: तो मने यू लागे अरे मारे कुण एकदम आता ही मारे गीत छुड़ा दी तो पर भाई तो आई बढ़िया रहो, अच्छा टाइम पे आगी है, समय पे आगी है। अपना सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा हा घावरी बातें कार्यक्रम में।
0: आप सभी लोगो रो खूब खूब हार्दिक अभिनंदन है। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो। घावरी बातें कार्यक्रम में आज सगला जनारो खूब खूब स्वागत है। जतन थाने यू लाग रहे हुई के माता रानी ने का याद कर रहा
0: भाई,
1: वो कह माँ की याद तो
0: कदी भी
1: आने बाने जावी को नहीं। माता रानी वो के अपनी माँ हो, माँ ने भी आपा माता रानी को ही दर्जो दे।
0: सही बात है,
1: तो माँ ने तो कभी भूल ही नहीं सका।
0: हाँ, लागे पड़े उठे तो यो अब माँ माइस करो। हाँ। लागे तो को ओ माँ उठो तो यो माँ।
1: सही बात है। और मैंने याद आ रही हो कि देखो अपने राजस्थान रा मायने और अपने गांव रा मायने कई कई रूप में चाली। गेणा घाटा भी गजब का चालिया।
0: हाँ, तू गेणोरी तो वाति मत सुन, गेणो कतरो मुमो
1: महंगो तो हुआ पर भाई तो पेरवा थोड़ा छोड़
0: पेरवा पर कतरो प्यारो लागे।
1: नकली पेर रहा पर पेर रहा
0: पेर रहा।
1: विशेष करण अपने घावरा मायने तो रखड़ी रो तो घणो महत्व है।
0: हाँ, रखड़ी रो तो कतरी प्यारी लागे पेरो जरे।
1: बढ़िया लागे रखड़ी, भले बोरलो।
0: हाँ,
1: कोई भी लगा दो, भले टीको
0: टीको, खूब प्यारो लागे।
1: हाँ, बढ़िया लागे। और पहले तो मने याद आवे कि अपने दादी सा नानी सा का जमाना में मार दादी सा कई रोज रखड़ी बांधन रखता।
0: हाँ।
1: तो मुहाने कहती वे 24 घंटा जैसा दाईमा माथो गुथवा।
0: हाँ।
1: देखो पहले भी देखो समय केड़ो हो, आज पार्लर वाली आवे तो
0: बेटा दाईमा आता मने याद आई रखड़ी हाथे माथो गुथता को। हाँ।
1: वे तो वहां के चोटी बनाता।
0: हाँ।
1: अरे तेल वेल सब
0: लगाता।
1: मैं तो देखियो, मैं क्यों यार आपने तो दादी माँ नानी माँ का जमाना में तो पार्लर वाले पाछे पड़े पाछे रहता।
0: सही बात,
1: दाई माँ सब श्रृंगार कर देता,
0: सब श्रृंगार करता। ने गाँव में तो अजय थनवात को हमें दाई माँ ही सावे गहना वहना वे पहरावा वही सावे।
1: हाँ, आज भी यही है, आज भी जापो दापो वे ब्याह मंडो वे सब में दाई माँ नहीं बुलावे। तो याद आवे अठवाड़िया तक 8 दिन तक वह रखड़ी बंधी रहती। पाचे दाई माँ ने खबर है आज रविवार बांधे हो तो आवता रविवार मातो गोतवा।
0: हाँ, हफ्ता में एक वेला।
1: हाँ, हफ्ता में एक वेला। पछे त्योहार वार आता तो त्योहार पे आता।
0: हाँ।
1: मोटा मोटा

0: तो यो चूड़ो 7 महीना तक पेरा राखनो, जेके शादी हो जावे नई नवेली दुल्हन वे वेने 7 महीना तक वो चूड़ो पेरा राखनो।
1: पैर राखनो
0: तो
1: पड़े।
0: पहले तो भाई प्योर हाथी दांत का लाता, धीरे धीरे धीरे नंग वाला प्लास्टिक का लावा लग गया। तो अब आनो भी अब क्योंकि हाथी दांत का तो घना
1: महंगा आवे
0: और महंगा भी आवे विका बावजूद भी अत्रुवी के शोबाजी को नहीं हो गए।
1: सही बात कह रही है।
0: प्लास्टिक का लावे सफेद और लाल कलर का चूड़ा, यहाँ पे मस्त स्टोन चमकता वे वे, तो हाथ में लुक अच्छा
1: लुक अच्छो मारे, लड़की पसंद करे
0: पसंद करे। तो ये 7 महीना तक पहनो पड़े। वैसे चूड़ो ज्यादातर छोरिया खुद ही कहते मामो सामा खरीद ले, आपके भेज देवा, आप मामेराम बता दीजिए, तो मायराम पचे भी बता देवे। माप की भी ठानी पड़े ना,
1: नहीं पड़े
0: एक अपना माप को तब पेरन देखन लावा, तो चूड़ा को अतरो महत्व है।
1: चूड़ो तो है इसे, चूड़ो तो आप राजपूती पोशाक माते पैरो तो कतरो अच्छो लागे। हर कोई पोशाक माते पैरो कतरो शोभा वदे
0: बढ़िया लागे।
1: तो
0: और सासरे तो आवे ही है, सासरे तो पडलो आवे, पडला में गेणा घाटा
1: गेणा घाटा आवे,
0: वे आवे सोना का। वे सोना का आवे चूड़ी पाटला, तो भाई वाह बात अलग है। पर यो मामा काटू आवे मायरा में या विद्या की अलग वे, पचे भाई यू सबने कपड़ा दे देवे, पर मामा चूड़ा में मामा हाथ लगाई, दाइमा फेराई, क्योंकि दाइमा ने हर विधि में आगे रखना पड़े,
1: आगे
0: फेराई वही जाए, हर चीज का नेक ले दाइमा।
1: हाँ तो वो तो ले वनोरा नेक चालू भी है अपने घर में, आपता वनोरा नेक चालू भी है।
0: मन करता तो आगे कतरो ही पर हो जाए,
1: वनोर वगैरह शादी अधूरी लागे,
0: अधूरी लागे। तो फेराई वे पर मामा हाथ लगाई,
1: हाँ मामा हाथ लगाई, कपड़ा ही वही पहरावी, विवाह शादी वही कपड़ा भी जा सब तैयार।
0: दूल्हो आ रहे है, जान छड़ रही है, ठीक है, तोरण पे आ रहे है दूल्हो, तो दुल्हन ने पहले हाफड़ावा के लिए भेज दिया, स्नान कर लो,
1: स्नान कर लो,
0: तो स्नान करान पचे वे कपड़ा मामा का ही पेरा, मामा काटा का ही, फेरा लगावे ना मामा चुंदड़ होवे पाने तर वे जिन्हें पनेत के वहां, तो पनेत के साड़ी और चुंदड़ ऊपर वह मामा काटा की होवे, पचे वे चूड़ो भी परने जती पेरावे।
1: मैं गांव में यू बाली और राजपूत और शादी वेजर चूड़ो पूरा परजो नावे वन में वरी वगैरह सब आवे, पसे वरी ने ओ चूड़ो वदावन माय लेन जाए, पसे जर दूलन झीले करे नावे, पसे हुआर वन वरी गहना चूड़ो पहरावे।
0: हाँ
1: पसे
0: तो देखो थोड़े परंपरा में फर्क सकती है।
1: पसे वो चवरी में चूड़ो हमें पहला तो हाथरी जो चूड़ी पहरो वटे ही चूड़ो वे, तो हमें वटे तो सेट लावे जो ढाल उतार जो राजपूतों में पैर ढाल उतार चूड़ो रंग बिरंगी चूड़ियों वे ने ऊपर पूरा चूड़ो वे ने, अगर चूड़ो नहीं लावे तो पसे होनारी चूड़ी लावे। कोई कोई समाज में यू ले नावे वे में बालिया है हमें वन और सब रे अलग अलग रीति रिवाज वे।
0: हाँ सही है,
1: सब अलग अलग रीति जो है, मैं हर मटे बालियू तू वन और हाथ में जो चूड़ियों वे ने अगर चूड़ो नहीं लावे तो पसे होनारी चूड़ी लावे।
0: हाँ वो तो है,
1: पर
0: तो देखो परंपरा थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी सबकी चेंज होती रहे, पर
1: चूड़ारो तो
0: सबको रीति रिवाज अच्छो लागे,
1: अच्छो लागे, चूड़ारी तो महत्व है इसे, चूड़ो तो अच्छो लागे,
0: चूड़ो तो अच्छो लागे। नई नवेली दुल्हन के तो सबों पहली नजर ही चूड़ा
1: चूड़ा पर, चूड़ा पर इस पड़े।
0: मामा चूड़ो आवे तो भी वो लाल सफेद आवे,
1: लाल सफेद मोटो ही आवे
0: पेरे, क्योंकि पहले तो फिर भी चार चार चूड़िया पहन लेती, पर आजकल तो 15-15, 17-17।
1: अरे नी पहरे तो मन की प्रूक है, नवी नवी पंडित चूड़ियों बेबे तीन तीन पहरे, हाथ भरियो भरियो, पसे वो मेहंदी लागोड़ा हाथ में चूड़ी कतरी प्यारी लागे,
0: खूब बढ़िया लागे।
1: हाँ
0: तो चूड़ा पे भी गीत बनेड़ा,
1: हाँ चूड़ा पर भी तू कह बेड़ा गीत चालू भी है प्रा,
0: हर ज्वेलरी पे गीत बनेड़ा, किने पाछे नहीं रखे,
1: कोई पाछी नहीं है, नत के तू कौन री झूली के गले रो आड़ के हाथोरा चूड़ा के कोई भी कह लो, हर बाजू बंद कमर बंद सब माते, पायल माते
0: बिछिया
1: सब माते, गानो जोड़ी ओड़ो छे
0: ऊपरे बनियोड़ा है, और गीत भी आपने आवे, पर अतरा गीत आप सुना को नहीं सका क्योंकि रेडियो रेडियो को टाइम भी तो देखना पड़ा।
1: सही बात कह रही है, पर अच्छा लागे ऊपरे राजस्थान रा लोग गीत भी प्यारा है, उनोरी वेशभूषा ही खूब प्यारी लागे, जो भी पोशाक पहने उनमें सब प्यारी लागे।
0: सही बात है, और ज्वेलरी में भी अलग अलग डिजाइन अतरी डिजाइन है, पैर वे ठा पड़ जावे के राजपूत है,
1: हाँ
0: कुम्हार है,
1: सब अलग अलग
0: बणिया माजन है, या पछे ये कौन है
1: सब पर प्यारी सब लागे हाँ। कोई भी पोशाक पहने
0: सबको पहरवेश बढ़िया है
1: सबको पहरवेश बढ़िया है मने तो खूब प्यारो लागे राजपूत जोड़े के मुँह घाघरा चोली पहरू घाघरा चोली जो पहरे वो के मुँह राजपूत ही पहरू सबने ओपरो ओपरो अलग अलग तैयार वेणो लुक अच्छो लागे
0: आज कल तो मने यह बात अच्छी लागे कि सबको सब अपनावा लागे
1: हाँ।
0: राजपूती पोशाक हर समाज में
1: हर समाज में पहरवा लागिया
0: और विशेष कारण शादी ब्याह का फंक्शन में तो पेरी
1: पेरिस पेरी
0: एक विधि तो एडी रा की जमे सगला सलाह कर दे आपने यो पहनना
1: हाँ पर वनु लुक इस कतरो प्यारो लागे पेरे जे
0: लागे। हाँ। और साड़ी लहंगा भी हर समाज में
1: हर समाज में पहरवा लागा घाघरा चोली वही हर समाज में पहरवा लागा
0: तो अच्छो लागे जैसा चुंदड़ी है लेरियो है हर समाज में पहरवा लागे
1: हर समाज
0: चलो एक फंक्शन में यो पहरला दूसरा फंक्शन में यो
1: वे हैंग थीम बनावे
0: हाँ।
1: कि आज ओ राखे यो आज ओ राखे यो आज यू रा पहरे यो तो खूब अच्छू लागे कि सब हैंगो ने अपनावा लागा है
0: बिल्कुल।

0: धीरे धीरे धीरे थोड़ी जागृति आ रही है। पहले तो कोई मैचिंग नहीं वे तो साड़ी कटे जा रही, घाघरों कटे, ब्लाउज कटे, पर आजकल है सब एक जैसा, गावा में भी चाल गयो
1: चाल
0: प्रचलन।
1: रहे यार गाँव
0: शादी ब्याह में थीम एक राखी इन सब
1: गाँव
0: मिली।
1: में तो वरे स्टैंडर्ड व्यवहार डूगा है और फिर तो देखो जरूर विचार करो गाँव में ही बालो परिवर्तन आवे रही है। लोग समझदार क्योंकि वही लोग सिटियों में जाए कमावे रही है
0: हाँ,
1: काम धंधा करे रही है पसे शादी ब्याह करवा तो सब घरे ही सावे।
0: खुद का काम ही आवे।
1: हाँ तो वे वटालो देखे पाके इनके भाई ओ आ नवी जनरेशन में यू यू करे तो वे सब फंक्शन सब रीति रिवाज वही करे
0: वे करे
1: तो
0: सही है,
1: अच्छू है के परिवर्तन तो आवे रही हुए
0: परिवर्तन तो आ रहे और आना ही चाहिए, समय का
1: आने
0: साथ
1: जो
0: में परिवर्तन होना ही चाहिए।
1: होने जो जे की नवी पीढ़ी है हमें
0: बिल्कुल। तो वाह भाई, जतन बात तो खूब की दे, और कतरी ज्वेलरी अपनी बाकी रह गई है,
1: अजय तो खूब
0: दो
1: रह
0: तीन
1: गई है
0: ज्वेलरी का आपा नाम ले दा।
1: अब बार तो बेच
0: हाँ,
1: ज्वेलरी री बात की दी है ये ज्वेलरी खूब है।
0: पर एड़ा एड़ा रिवाज है अपना गांवरा मायने है, जो आपा सबका सामने व्यक्त की दा। हाँ, अबे समय हो गयो है चालवा को, तो आजे भाई राम राम।
1: हाँ चलो राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है, आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ने कल सुना था कि सफलता की चाहत क्यों है, तो इस विषय पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आशा करूंगा आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद हम लोग आज जो विषय है हमारा वो है कि मैं ही सफलता हूँ। ये एक थोड़ा सा यूनिक विषय है जो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आशा करूंगा आपको कल और उसके पहले वाले एपिसोड्स भी अच्छे लग रहे हैं। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषय को लेकर बातें कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिर से राजेश जी उपस्थित हैं और वो मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने और आप अगर चिंतन करते हैं, मनन करना चाहते हैं, आप अगर टेंशन फ्री होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप शांति प्रेम के साथ जीना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। राजेश जी हैं, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, मजे में। जी, जी।
0: और मैं चाहूंगा कि आज जो आपने विषय चुना है मैं ही सफलता हूँ, ये विषय क्यों चुना और इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए।
1: मैं ही सफलता हूँ
0: जी,
1: लोग तो सफल होना चाहते हैं लेकिन ये विषय मैं ही सफलता हूँ, इसको थोड़ा स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी,
1: मैं ही सफलता हूँ मतलब कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो सफल है।
0: हाँ।
1: और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मैं ही सफलता हूँ माना बिना किसी शर्त के, बिना किसी आधार के मैं जीवन में सफल हूँ। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सफलता जो है मेरा वो बर्थ राइट है। लेकिन इसको हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की,
0: बिल्कुल,
1: कि एक व्यक्ति जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता तो उदास हो जाता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया है उसी प्रोफेशन में अगर वो नहीं जाता तो सारी उम्र उसके मन में हमेशा ये रहता था, मैं तो ये बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो ये कर नहीं पाया। और बहुत सालों तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार कहते हैं कि टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, लेकिन जब तक वो टाइम उनको हील करता है वो उनके जीवन के वो क्षण, वो महत्वपूर्ण क्षण वो अपने खो देते हैं। क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अपने प्रोफेशन में आनंद नहीं आता, क्योंकि अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर जो उनका ड्रीम था दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं। तो हमने जाना पिछले प्रोफेशंस में कि एक्चुअली अगर वो इंजीनियर या अपने प्रोफेशन में चला जाता तो उसको क्या मिलता। अल्टीमेट उसको चाहिए खुशी, आनंद, प्यार, शांति, लेकिन ये दूसरे प्रोफेशंस में जाकर भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें ये था कि ये प्रोफेशन मिलेगा तो ही हमें ये गुण मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये ऐसा क्यों नहीं है इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मुझे याद है जब मैं विदेश में यूएस में पढ़ा रहा था, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहती हो। तो उसका एक बहुत अच्छा उत्तर था कि मैं जिंदगी में जो भी बनूँ, वॉट एवर आई बिकम इन माई लाइफ, चाहे मैं फोटोग्राफर बनूं, चाहे मैं मॉल में मैनेजर बनूं, या मैं मॉल में काम करूं, या मैं कारपेंटर बनूं, जो भी मैं जिंदगी में बनूं, लेकिन मैं हमेशा जीवन में खुश रहना चाहती हूं। तो अल्टीमेट एम हमारा ये है, हम प्रोफेशन के पीछे ना दौड़ें, उसके कारण अपने जीवन को खराब ना करें, दुखी ना हो जाएं, सुसाइड की तरफ ना जाएं, दूसरों को देखकर उदास ना हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि आपने जो एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट का बताया आपने कि मैं अपने जीवन में कुछ भी बनूं लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि स्वाभिमान है, एक आस्था है जहां पर हमें इस लक्ष्य को लेकर चलना है। क्योंकि हम लोग अगर किसी स्टेटस को लेकर चलते हैं तो वो तो टेम्प्रेरी रहता है और उसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा है कि कुछ भी बनूं मैं, लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसको कह सकते हैं, स्वाभिमान की बात कह सकते हैं, ये आपके लिए स्वभाव कह सकते हैं, इस तरह का स्वभाव जो है आपको खुश रखेगा हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज हम लोग मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, राजेश जी भी हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके बताया। और इंडिया में फिलोसॉफिकली ये सारी बातें जो है बच्चों को, माता पिता हो या अपने दोस्त हो, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करें, तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बन जाती है हमारे साथ में। माता पिता सोचते हैं कि हाँ मेरा लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए, है ना, और दोस्त भी कहते हैं अरे तू स्पेशलाइजेशन कर लेना डॉक्टर के साथ साथ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जिसके वजह से, और फिर वो अचानक अगर वो कहीं सेट नहीं हो पाए तो उसको लगता है कि मैं अब मेरा जी के जीवन जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जो गलत धारणाओं की वजह से भी, गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से भी चीज़ें जो है हमसे मुश्किल कर देती हैं हमारा जीना। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इंडियन फिलॉसफी में और जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं तो उनको कैसे आप बताएंगे कि जीवन में सफलता मैं ही हूँ।
1: इसका अपोजिट देखें कि हमें खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, शांति ही चाहिए। हम जब कॉलेजेस में गए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट्स को गेम खिलाई एक, उनको बोला कि आप ये पेन पास करो अपने दोस्त को, पहले बोला खुशी से पास करो, फिर बोला गुस्से से पास करो। ऐसे चार स्टूडेंट्स को एक एक करके बोला पास करो
0: जी,
1: फिर बोला अभी शांति से पास करो, फिर बोला ईर्ष्या से पास करो। फिर उनसे सवाल पूछा कि आपको वैल्यूज अच्छी लगती हैं या एंटी वैल्यूज अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला हमें वैल्यूज अच्छी लगती हैं। तो उनको पूछा गया आपको ईर्ष्या, दुख, अशांति, क्रोध अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपको खुशी, शांति, आनंद, प्रेम ही क्यों अच्छा लगता है, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, अशांति, उदासी क्यों नहीं अच्छी लगती। तो उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। तो
0: बिल्कुल,
1: इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर ये है क्योंकि ये हमारे मानवीय मूल्य हैं और हम इन मानवीय मूल्यों के साथ ही पैदा हुए हैं। मानव मानव कहलाता है क्योंकि मानवीय मूल्यों के साथ उसका जन्म हुआ है, ये हमारा बर्थ राइट है। हमें कोई प्यार करना सिखाता नहीं, एक माँ नेचुरली अपने बच्चे को प्यार करती है। हमें ये चीजें नेचुरली अच्छी लगती हैं बिकॉज वी आर बॉर्न विद दीज वैल्यूज, हम इन मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सेल से बना होता है जिनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो पता लगता है कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं, लेकिन इन सेल्स को भी कौन बनाता है? इन सेल्स को कहते हैं एक विशेष तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे मिलकर के हमारे शरीर के सेलों को बनाते हैं। और हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन भोजन में भी हम क्या खाते हैं? आप गेहूँ लेते हो, आप फल लेते हो ना, आप सब्जियां खाते हो, उनमें भी क्या होता? उनमें भी वही कंपोनेंट्स हैं जो आपके शरीर में हैं, और हर एक सेल में जितना प्रोटीन है उतना ही आपके भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, हर एक सेल में जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना ही आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो सारे दिन में जो हम भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं तो 70% जो है वो वाटर होना चाहिए। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसी का हमारा शरीर बना हुआ होता है, बचपन से ही हमारा शरीर उसी का बना है, इसीलिए बाहर से हमें वो चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, हम बाहर से मांगते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोफेशन के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों के व्यवहार से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम इन्हीं गुणों के साथ ही पैदा हुए हैं, ये मेरे निज गुण हैं, इनको हम कहते हैं हमारे अनादि अविनाशी गुण, दीज आर द इनेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन वैल्यूज के बिना हम मानव नहीं कहला सकते और मानव जिंदा नहीं रह सकता। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, माँ अपने बच्चे को रोज भोजन कराती है और बड़े प्यार से खिलाती। मान लीजिए किस दिन बच्चा स्कूल में लेट हो गया और लड़की लेट हो गई और माँ को शक हो गया इसने कुछ गलत काम किया होगा, तो बेटी तो रुक गई थी स्कूल में टीचर से बात करने, क्योंकि कल उसका एग्जाम था और टीचर से वो डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनसे समझना है, लेकिन वो लेट होगी। लेकिन माँ ने जाते ही गुस्सा कर दिया, खाना तो खिलाया, भोजन तो वही खिलाया, लेकिन आज गुस्से में खिलाया तो पेट तो आपका भर गया लेकिन मन नहीं भरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त भले हमें कुछ ना दें लेकिन प्यार तो दें, कम से कम प्यार से बात तो करें। जैसे कई बार हम अपने किसी दोस्त से धन मांगने जाते हैं तो कहते हैं भले वो धन नहीं देता लेकिन मेरी रिस्पेक्ट तो करता, इज्जत तो करता, मेरे से प्यार से बात तो करता। इसीलिए जब कोई गलती करता है तो कहते भले मेरे को समझाते लेकिन मेरे को प्यार से बताते ताकि मैं उसको परिवर्तन कर पाता। तो इन मानवीय मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उसको समझें कैसे, उसको अनुभव कैसे करें, रियलाइज कैसे करें, क्योंकि सफलता मेरा आधार है, क्योंकि सफलता माना ही प्यार, शांति, आनंद, प्रेम। लेकिन वो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, हमें वो रियलाइज क्यों नहीं होता? उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता, विधि नहीं पता, तरीका नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में हम अगले सेशन में, एपिसोड में आपसे जरूर बात करेंगे।
0: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या तरीका है, कैसे हम उस चीज को समझ पाएंगे। आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। आपके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर होगा कि कैसे ये संभव है। बिल्कुल संभव है, बस उसके लिए जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया, सफलता मैं ही हूं, इस पर थोड़ा सा आप चिंतन करके देखिए। जो एग्जांपल राजेश जी ने दिया है उस पर बात करके देखिए, अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो टॉक शो हमारा चलता है, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा, जिस प्रोग्राम का नाम ही हमने ऐसा रखा है, ताकि आप जो है सेल्फ एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचें, और जो हमारा मेन मकसद है हमारे जीवन में, खुशी, शांति, प्रेम, वो पाए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मंथन करके आपको बताया जा रहा है, और आपका भी चिंतन मंथन चले, यही हमारी शुभकामना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे राजेश जी?
1: मैसेज हमारा ये रहेगा कि दुनिया में बहुत तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, एक वो होती हैं जिनको बोलते हैं मोनोटोनस पर्सनैलिटीज। मोनो माना उनको एक ही चीज़ पसंद होती है, एक ही तरह का भोजन रोज खाएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या उनकी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, वो टेबल पर रोज उसी सीट पर जा करके बैठेंगे और इधर से उधर कोई भी चीज़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त परिवर्तन होते रहते हैं, उनको हर दिन कोई ना कोई वैरायटी चाहिए, अलग अलग जगह पे बैठेंगे, वैरायटी काम करेंगे। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जो बाय बर्थ होती हैं। लेकिन ये जो हमने कहा अनुभव
0: जी,
1: कि मैं ही खुशी हूँ, शांति हूँ, प्यार हूँ, कल हमने कहा था कि मैं खुशी का सितारा हूँ, अपने को देखें। लेकिन कई हमारे जो दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, या हमारे जो चाहने वाले श्रोतागण हैं, शायद उनको कई बार मोनोटोनस लगे कि हर बार हमने क्या यही विचार रखना आता है। तो उनको हम और भी तीन चार विचार दे देते हैं आज कि जो आपको लगे रोज परिवर्तन कर लीजिए। जैसे रोज आप सब्जी नहीं खाते हैं, फल रोज अलग तरह से खाते हैं, रोज वही नहीं खाते, तो कईयों को तो पसंद होता है, कईयों को नहीं होता। तो उनको हम तीन विचार और देंगे, उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं खुशी का सितारा हूँ, पहले दिन ये ले लीजिए। या एक ही दिन में आप चारों टाइम, सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। मैं शांति का सितारा हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, मैं एक शक्तिशाली सितारा हूँ। ये आप लगातार चार दिन कर सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगे सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो जब आप ये लगातार इस पर विचार करेंगे, ये संकल्प अपने आप को देंगे, ये थॉट्स अपने मन में जनरेट करेंगे स्वयं के स्वयं ही, तो आपको अपने अंदर ही इन गुणों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और सफलता मेरा अधिकार है, शायद ये भी आपको समझना धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आज का जो हमारा विषय था खास, मैं ही सफलता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी मित्रों के जहन में ये बात ज़रूर आ गई होंगी कि हमें कुछ भी करे लेकिन मेरे जीवन में खुशी हो, शांति हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। आप भले पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा करें पढ़ाई और अच्छा मार्क्स भी आप ले आए और अच्छे स्टेटस पे भी बने रहें, लेकिन साथ में अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, उस पर ज़रूर आप चिंतन करें कि मुझे जो है अपने जीवन में क्या चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, ये मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मेरी हॉबीज तो बहुत सारी है, जैसे कि डांसिंग, खेलना कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
1: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को। शिवांशी आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
2: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
1: आपको खाना खाना, मेरी खाना बनाना है।
3: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव, कभी सुनाई दे रहा है खेलना, कभी आर्ट, कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
4: हॉबीज के बारे में।
3: हॉबीज के बारे में, तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना? जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा। आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
2: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
0: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
5: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
6: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
8: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
3: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे दो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
0: खाना बनाना।
3: खाना बनाना, और
0: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
3: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा?
6: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना।
7: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
8: दीदी मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
3: दो बताओ उनमें से।
8: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
3: हंसाने के लिए क्या करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना?
8: जोक सुनाना।
3: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है ना? और राघव को क्या पसंद है?
0: आर्ट और डांसिंग।
3: और शिवांशी को?
2: डांस करना और खाना खाना।
3: और राघव क्या बोल रहे थे आप?
0: दीदी मतलब है ना, जब आप फ्री होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं।
3: सिंगिंग पसंद है आपको, ओके, वेरी नाइस। मजा आना और हॉबी, दोनों में क्या अंतर है?
0: दीदी हॉबी टैलेंट होता है।
3: वेरी गुड।
0: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है।
3: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है। रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो।
0: दीदी मेरी एक और हॉबी है।
3: क्या?
0: पियानो बजाना।
3: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है। अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है टैलेंट के बारे में पता चलता है?
0: दीदी उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। पहले जब पापा छोटे होते हैं तो पापा धीरे धीरे कम आर्ट कर, फिर पापा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर पापा आर्टिस्ट बन जाते हैं।
3: क्रिएटिविटी बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट।
2: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते
8: हैं। और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताए तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है।
3: राइट,
6: और हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते
3: हैं। सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का, बहुत सारे फायदे हैं, है ना? हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए?
0: लॉन्ग टाइम,
2: जिंदगी भर करना,
3: जिंदगी भर करना चाहिए, बिल्कुल। तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
0: दीदी हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे।
3: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब,
0: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं।
6: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ।
3: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
7: और जो शाम को हम रेडियो आते हैं उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं।
3: ओके,
7: हमें कुछ सीखना होता है।
2: स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिलता था उसमें भी कर लेते हैं हम।
3: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी प्रैक्टिस?
7: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं।
3: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
7: रात को।
3: रात को मिलता है, दिन में नहीं मिलता है। ओके,
8: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क।
3: अच्छा, होमवर्क बाद में?
8: हाँ।
3: ओके,
8: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है इसलिए।
3: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब। ओके,
2: दीदी पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में।
3: फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा फिर?
8: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं,
2: मैम प्लीज।
3: हाँ, होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना?
0: हाँ,
3: लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए। अच्छा ये बताओ, हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए, मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज बहुत समय से है ना आपकी,
8: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस।
3: इस साल अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ।
7: हम कहीं से सीख भी सकते हैं।
3: कहीं से सीख सकते हैं? ओके,
8: साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं फन के साथ.
3: हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना. हाँ. फन के साथ. ओके
1: दीदी, अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं.
3: अनुष्का का क्या लगता है,
9: उसमें कुछ नए स्टेप जोड़ दे तो वो और अच्छे बन जाते हैं.
3: हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, उसमें नयापन लेके आना है ना. मान लो अब हम बना रहे हैं ड्राइंग बहुत समय से, सीनरी बना रहे हैं, तो कुछ उसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारी स्किल को और बढ़ाए. आजकल यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो. जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो, तो अपनी ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं. और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो. और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को, किसी और को कुछ लगता है?
2: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने की कोशिश, जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है. अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा.
6: मेरे माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना, गुस्सा हो जाता है.
3: ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना. अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो करते रहना है. और आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग. तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं. आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
8: हाँ, जी, दी, दी.
3: क्या करके देखा है बताओ?
8: क्लासिकल डांस.
3: क्लासिकल डांस, ओके ग्रेट. और किसने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो.
2: ट्रेडिशनल आर्ट कर रखे,
3: मंडला आर्ट. ओके,
8: शास्त्रीय संगीत.
3: किसने सीखा, आपने?
8: हाँ.
3: सीख रहे हो अभी?
8: हाँ.
3: ओके, क्या सीख रहे हो उसमें?
8: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते हैं पियानो पर.
3: क्या कोई राग होता है उसमें?
8: हाँ.
3: अरे वाह, वेरी गुड. और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, इसमें क्या बात है, आप तो बच्चे हो अभी, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग. नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो.
1: मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की.
3: ओके. हाँ, अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
6: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है.
3: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज है ना. खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है लेकिन जरूरत भी है ना, सबको आना चाहिए खाना बनाना. एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो.
1: ज्यादा खाना बनाने में को कम आता है, मतलब ऐसे ही मुझे चावल छोकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीजें.
2: नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, बस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में है.
6: बनाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ.
3: क्या बनाना आता है आपको?
6: मैगी
3: बनानी आती है.
8: Okay. दीदी, मैं तो नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ, फिर अपने घर में सबको खिलाती हूँ और बाहर भी रेडियो में भी सबको खिलाती हूँ.
3: नई नई डिशेज ट्राई करते तो हो आप.
6: और दीदी, मेरी नानी ने खाना बनाना सिखा रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गई.
3: अच्छा, कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
6: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई.
3: अरे वाह, क्या बात है.
8: दीदी, मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है, आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी.
3: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो. वेरी गुड. अनुष्का तो अभी छोटी है ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे.
5: दीदी, लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ.
3: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को.
5: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी मना करते है, पूछता हूँ, ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा हुआ इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है इसमें?
3: हाँ, ये तो कोई गलती नहीं आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो.
5: शिवांशु तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होएगा, मैं खुद बनाऊंगी.
3: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
5: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू.
3: अरे वाह, बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है.
8: दीदी, मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया.
3: ओके.
1: दीदी, मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बना कर मुझे घर वालों को पिलाती
3: हूँ. सबको पिलाते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है.
1: सोचोगी नहीं, जैसे पापा घर में मुझे तो बोलते सबके लिए नींबू पानी बना.
3: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना.
2: पिज्जा से याद आया, कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था.
3: अरे वाह, तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना. मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, है ना. आपकी हॉबीज, एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती है हमारी हॉबीज, कैसे बेनिफिट देती हैं दूसरों को बताओ?
8: कुकिंग से।
3: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है। अच्छा अच्छा,
2: किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, बना सिखा सकते हैं।
3: हाँ, हम उसको सिखा सकते हैं। और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे हैं? क्या लगता है आप लोगों को?
9: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बनाया है।
1: और अगर दीदी कोई स्टेप नहीं आता तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है।
3: राइट।
1: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो
9: हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं।
3: सिखा सकते हैं, है ना? कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं। मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो, तो भी जैसे मंडला आर्ट है, कुछ यूनिक आर्ट है, तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को।
1: तो मदर्स डे था ना, मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
3: मम्मी को।
1: अरे
3: वाह,
9: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था।
1: दीदी आपको पता मैंने कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी।
3: वेरी गुड, क्रिएटिव। तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी हैं। आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे, है ना?
9: पिंक पेपर लिया, उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली और जब वो खोलता है ना तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे।
3: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना? कितने सारे बेनिफिट्स। तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए।
1: दीदी उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना उससे पता चलता है कि हाँ इनको ये ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा पसंद है, तो इनसे सीख सकते हैं हम।
3: हॉबीज से अच्छा दूसरों को तो बेनिफिट हो गया, हमें क्या फायदा होता है हॉबीज होने से?
1: दीदी हमें ये फायदा होता है उससे जो हमारी हॉबी होती है उससे हम खुद सीखते हैं। जैसे मेरे को डांस सीखना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: कुछ नया नया सीखते रहेंगे,
1: नया नया सीखते रहेंगे। जैसे खाना बनाना होता है, अब खाने में जैसे मेरे को ये चीज नहीं आ रही, तो पहले सिखाया तो उसको थोड़ा याद करके बना लेते हैं।
3: अनुष्का क्या लगता है आपको क्या फायदा होता है हॉबीज का? हमको कोई फायदा होता है? क्या फायदा होता है जो आपको लगे बताओ? कोई बेनिफिट होता है हमें कि मैं डांस करती हूँ या मैं आर्ट करती हूँ, उसका मुझे क्या फायदा है?
0: हम किसी और को जैसे आर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं।
3: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
0: दीदी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दीदी हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, तो हम उनको भी सिखा सकते हैं।
3: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो।
1: डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है,
3: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी।
1: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं।
3: राइट।
0: दीदी अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया कि मेरे पास ये हो और उसके उधर कुछ हो रहा है, तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
3: हाँ, कॉम्पिटिशन से अपनी हॉबीज को और हम आगे ले जा सकते हैं।
9: और दीदी अगर हमें कुकिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और दीदी हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं, तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते हैं।
3: बिल्कुल
0: दीदी, मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं, कुछ और देते हैं, तो हमको खुशी भी मिलती है,
3: हमको खुद को खुशी मिलती है।
2: दीदी इतना खाना खाना सुन के भूख लग जाएगी।
3: हाँ भूख लगने लगी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे, और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं। चलो तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई हैं, और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी, और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, उसके बड़े सारे फायदे हैं, है ना? मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बॉडी के लिए फायदेमंद है, खुशी आप खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, कंपटीशन में आगे जा सकते हो, है ना? क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, कितनी सारी चीजें। तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
4: नहीं,
3: कभी नहीं। और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ। कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, गाना गा लिया, तो वो हो जाता है छू मंतर। ठीक है, तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स। तो फिलहाल रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

भाग सात। इस प्रकार बहुत से नरनारी ज्ञान अमृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति, जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ समय के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलने दे सकती थी? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है, वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष को कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में ये गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ। मैं ज्ञानामृत पिलाती हूँ नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में, है ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर में रहती हूँ। निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं, जीवन मुक्त मौज उड़ाती हूँ, सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ। यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर को वैश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। हे आर्य पुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्त आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाए। देखो आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है, हाँ केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि हम अब आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः आओ उस परमपिता परमात्मा के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रखकर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चलें। देखो हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्यों को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगे। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, हम वह भी करेंगे। यहां तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पीक दान की बजाय अपने हाथों को आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं, इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञानामृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। हमें सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की ही भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म में शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि अब हमने काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने पति को जो पवित्र बनने के लिए प्रेरणा देती, वह प्रेरणा का गीत सुरों में इस प्रकार भरा है। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो, चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो, चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का, धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो पवित्र बनो, ओम से मनवा अब साध कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर,
ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो, योगी बनो। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीमची अफीम के बिना, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता और हाय शराब, दो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विकार, हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ो, अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई थी कि दो तीन महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहां तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन माताओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और उनके साथ न जाने क्या क्या अत्याचार किए थे। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए हैं और उन अबलाओं को मायके से लाया गया, जेवर आदि भी निकालकर उन्हें घर से निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है? जब वह धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस तरह के वृतांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी, क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगी। अतः उन्होंने इस प्रकार का एक गीत बना लिया था। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना, है आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न होना, खाते मांस मदिरा बने सर्व भोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना, खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना, करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना, स्वधर्म न भूले एक घड़ी भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना, स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना, फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार वह निश्चय समझना। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय कर लिया। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे, हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः अपनी ही इच्छा से किया था, अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो भी वे काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आ गए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी तीन माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया। सिंध में तो उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति के साथ विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूं, मैं इन्हें कैसे कह सकता हूं कि ये विषय विकार में डूबे। ये सत्संग में ना आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है, उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव अथवा आज्ञा दे सकता हूं। बाबा ने उनको यह भी कहा, मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूं कि यह ब्रह्मचर्य की आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है।
इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानते? ये भी उस परमात्मा की आज्ञा के कारण विवश हैं, और मैं भी। बाबा ने यह भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूं, मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूं? देखो, ये मेरी कोई आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूं। इस विषय में भी उन दिनों एक गीत बना हुआ था, सेवा कचित ही ओम मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूं, ओम मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूं। बाबा ने यह भी कहा था कि यह तो उनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल कर सकता हूं। अब सोचने की बात है कि जब उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसा स्वादन भी कर लिया था, और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो अब वे किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती? उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था, वे तो अब 2-3 वर्षों से इस गीत के भावार्थ में टिक गई थीं। ज्ञान ही मन का मीत सखीरे, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे, यही बुद्धि योग की है रीत, सखीरी सीता और राम की प्रीत। मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे, उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खड़क से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता के नियम का इस दृढ़ता से पालन करते देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा, यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि सतयुग अथवा देवयुग और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल में सतोगुणी लोगों अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता के बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी, और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहां ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्राय माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते हैं और कथा करते हैं। तीसरे, लोगों ने यहां दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण अथवा अशुद्ध खान पान के कारण नहीं समझ सके। अतः अब सिंधी लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस माया नगरी के बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिल गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं माताओं अथवा पुत्र पोत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम बिरादरी में आपका बहिष्कार कर देंगे। कुछ एक को तो डराया धमकाया भी गया कि वे अपनी पुत्रियों या पत्नी आदि का ओम मंडली में जाना बंद कर दें। वहां के मुखिया लोगों का शहर पर काफी दबदबा था, और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियां अथवा बोर्ड में भी उनका उच्च स्थान था। अतः उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी लोग आया करते थे अथवा अपनी बहु बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की भूरी भूरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मंगाराम जी को, जो कि दादा के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे, और वे स्वयं भी इस सत्संग में आते थे। लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय में भी एक बड़ा दिलचस्प वृतांत है, जिसे आप अगले भाग में सुनिए।

0: लेकिन हम तो ये सालों से खाते आए हैं।
1: भाई, प्याज लहसुन खाने से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी भारी होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ये शरीर की राजसिक तामसिक वृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे मन में क्रोध, वासना, उत्तेजना और आलस्य बढ़ता है।
0: पर मेरे पिताजी तो हर खाने में प्याज का सलाद खाते थे, पर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया।
1: बिल्कुल, आपके पिताजी संतुलित स्वभाव के रहे होंगे, लेकिन हम किसी भी सब्सटेंस के इफेक्ट को केवल एक दो एग्जाम्पल से जज नहीं कर सकते।
2: मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदी बदबू आती है उसमें कितनी।
1: हाँ जी, क्योंकि प्याज और लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो कुछ लोगों में बदबूदार सांस और शरीर से गंध पैदा करते हैं।
2: बिल्कुल दीदी, प्याज काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं, अंदर जाके पता नहीं क्या होता होगा।
1: और जब भी आप देखे होंगे भगवान के किसी भी मंदिर में भोग लगता है तो उसमें प्याज लहसुन नहीं डालते।
0: अगर ऐसा है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों?
1: जैसे और भी कई सारे फूल पत्तों के पौधे हैं, प्राकृतिक है, लेकिन हम उसे तो भोजन नहीं मानते। स्पेशली जब हम मेडिटेशन और इनर पीस चाहते हैं, तब इस तरह की चीजों को अवॉइड करना हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है।
0: ठीक है, आपकी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं।
1: ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये तो सदियों पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का हिस्सा है।
0: लेकिन आप होटल का खाना क्यों नहीं खाते? वहां तो शायद जैन थाली भी मिलती है जो बिना प्याज लहसुन की होती है।
1: हाँ जी, किस तरह से होटल में खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार लोग गंदे हाथों से खाना बनाते हैं, जोर जोर से फिल्मी गाने बजाते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए पकाते हैं, जिससे भोजन में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है।
2: हाँ दीदी, मैंने भी यूट्यूब पर देखा है, वो होटल वाले हैं ना, बहुत गंदा पानी यूज करते।
0: आपको क्या कभी गुस्सा नहीं आता? आप भी तो कभी ना कभी दुखी होते होंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम उसे जल्दी से ठीक कर लेते हैं, और स्पेशली खाना पकाते हुए तो हम शांत मन से, शुभ संकल्पों से ही बनाते हैं। भगवान के याद के गीत चलते हैं, अच्छे अच्छे सूदिंग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मंदिरों में मंत्र भजन होता है, तभी भोजन प्रसाद बन जाता है।
0: सच में बहुत ऊंची सोच है दीदी। एक मिनट, मेरे साथ जो भाई आने वाले थे उनका कॉल आया है शायद। अरे भाई, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई,
3: आज तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तबीयत थोड़ी ढीली है।
0: कैसे अचानक? डॉक्टर को दिखा लिया?
3: हाँ, दिखा लिया, दवाई दी है, फूड पॉइजनिंग बताया है।
4: कल होटल से सब्जी मंगा ली थी, उसी को खाने की वजह से हुआ है शायद।
2: What a coincidence. वही बात
0: अभी
2: कर रहे
0: सेंटर पर हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि होटल का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। और वही बात आप भी बोल रहे हैं।
3: हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। अब तो जिंदगी में कभी ना खाऊं ये होटल का खाना, इतनी हालत खराब हो गई है।
0: चलिए, ख्याल रखिएगा, आराम करना।
3: हाँ जी, शुक्रिया।
1: देखा, यही कारण है कि हम प्योर सात्विक फूड पर जोर देते हैं। जब हम प्रेम और शांति से ईश्वर की याद में खाना बनाते हैं, भोजन को पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं, तभी तो वो भोजन एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट बन जाता है।
0: समझ गया दीदी, तभी तो कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल वही वाली बात हो गई
1: जी, इसीलिए हम कहते हैं शुद्ध अन्न से शुद्ध मन।
0: चलो, आपके हिसाब से होटल का खाना भी हमने अवॉइड कर भी दिया, लेकिन रिश्तेदारों से कैसे बचे?
1: आजकल लोग खाना बनाते समय मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गुस्से में हैं या दुखी।
2: हाँ, मेरी मम्मी भी डेली खाना पकाते समय सीरियल देखती रहती है।
1: और हम जिस सोच के साथ भोजन बनाते हैं, वही एनर्जी उस भोजन में चली जाती है और उसका इफेक्ट खाने वाले लोगों पर भी पड़ता है। और इस तरह का खाना खाकर डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब हो जाती है, और साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी भोजन के थ्रू हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है।
0: पार्टी, फंक्शन, प्रोग्राम में तो खाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो क्या कहेंगे लोग?
1: बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपका उपवास होता है तो आप सीधा मना कर ही देते हो ना। जब किसी राह पर हमें चलना होता है ना, तो मन में अपने आप दृढ़ता आ जाती है।
2: लेकिन पापा मेरा पिज्जा।
0: अच्छा सिस्टर, अब पिज्जा पर भी कुछ बोलिए।
2: हाँ मुझे पता है, फास्ट फूड नहीं खाना होता है, लेकिन कभी कभी चलता है।
1: देखो बेटा, फास्ट फूड और पैकेट फूड में हाई सॉल्ट, चीज, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो एडिक्शन बढ़ाते हैं। ये पचने में भारी होते हैं, टॉक्सिन्स और सूजन पैदा करते हैं, मोटापा, एसिडिटी, दिल की बीमारी और आगे चलकर कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों तक ले जा सकते हैं। इसलिए इन्हें अवॉइड करना ही समझदारी है।
2: लेकिन दीदी, टेस्ट का क्या करें? कभी कभी तो टेस्टी खाने का मन करता है ना।
1: हाँ, इसका भी तो सलूशन है। सात्विक फूड बुक्स या रेसिपी देख करके आप टेस्टी सात्विक रेसिपीज को भी सीख सकते हैं।
0: दीदी और एक बात, ये सफेद कपड़े कंपलसरी है क्या?
1: ये केवल प्योरिटी और पीस का प्रतीक है। सफेद कपड़े पहनना कोई कंपलसरी नहीं है। जो लोग सेंटर पर रेगुलर आते हैं वो सफेद कपड़े पहनकर ही आते हैं।
2: जी, मतलब हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म के जैसा।
0: दीदी लेकिन हम घर गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये बातें बहुत मुश्किल हैं। खान पान, सफेद कपड़े, ये नियम अगर नहीं फॉलो कर पाए तो क्या हम यहाँ आ नहीं सकते?
1: जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने बताने के बावजूद भी कभी कभी मीठा तो खा लेते हैं ना, लेकिन हम ध्यान रखते हैं तो जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ का कोई भी नियम कंपलसरी नहीं।
0: लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है।
1: लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं। आप सात्विक लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए। धीरे धीरे ये सारी बातें बहुत नेचुरल हो जाती है।
0: लेकिन सरिता को कौन समझाए? सरिता मतलब राहुल की मम्मी।
2: टेंशन नॉट, मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा सारी बातें मम्मी को।
0: जी जी।

0: दोस्तों, आजकल मैं, आप, हर कोई एक चीज बार बार सुनते हैं, हर चीज का दाम बढ़ गया है, हर चीज की वैल्यू बढ़ गई है, बचत कैसे करें, जीवन बड़ा मुश्किल चल रहा है। इन सब बातों को जब सुनते हैं तब लगता है कि कोई सलूशन नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर कोई सामने उदाहरण बन करके आए और मुझे और आपको ये रास्ता दिखाए कि बचत के द्वारा जीवन को सरल कैसे बनाया जा सके, और केवल सरल ही नहीं, एक उदाहरण भी बना जा सके, तो कैसा होगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के कुछ मेहमान इसी उदाहरण का एक प्रतीक हैं। देश भर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के अवसर पर ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने तथा नागरिकों को एक सस्टेनेबल जीवन कैसे जिया जा सके उसके प्रति भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड का 2025 में जब वितरण हो रहा था तो उसमें एक प्रतिभागी जिसको ये अवार्ड दिया गया वो था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जगदम्बा भवन अर्थात पुणे में स्थित ब्रह्मा कुमारी इसका जो संस्थान है उसे ये अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड को जगदम्बा भवन पुणे की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन जी ने दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से प्राप्त किया। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में सुनंदा दीदी और उनके साथ उनकी सहयोगी शीतल बहन मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कैसे इस अवार्ड तक का उन्होंने मुकाम जारी किया, अवार्ड प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करते हुए क्या क्या मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया जिससे वो इस मुकाम तक पहुंचे, और कैसे इसको मैं और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में धारण कर सकते हैं, हमारे घर में बचत के सुंदर से संस्कार को डेवलप कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के मेहमानों का। मैं मेहमानों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है, आज के एपिसोड में किसी एक व्यक्ति विशेष को भारत सरकार ने सम्मानित नहीं किया लेकिन एक संगठन को किया। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमानों से। मैं स्वागत करने जा रहा हूँ हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पुणे ब्रांच से जो जुड़े हुए हैं हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी और हमारी प्यारी बहन शीतल बहन का। आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू
0: दीदी। एक तो कि आप और आपकी टीम कई फील्ड में सेवा करती हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी आमतौर पे सेवाओं में व्यस्त होते हैं, केवल एक फील्ड की सेवा तो होती नहीं है, बहुआयामी सेवाओं में व्यस्त होते हैं, और उस व्यस्तता में आपने समय निकाला रेडियो मधुबन के श्रोताओं के लिए। सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो
1: थैंक यू भाई, हम तो ये कहेंगे आपने हमको बुलाया, ये हमारा परम सौभाग्य है।
0: दीदी आपका बड़प्पन है।
1: इस बहाने जिसका सुंदर स्लोगन है सुनते रहो मुस्कुराते रहो, ये बहुत प्यारा प्यारा स्लोगन है जो सुनने से ही अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। तो ऐसे रेडियो मधुबन में आपने हमको याद किया, आपके बहुत थैंक्स।
0: तो आज हम सुनेंगे दीदी से और शीतल बहन से उनके अनुभव, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जैसा कि हमारा रिवाज है हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का एक मुकाम है लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने की एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है, उस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण जो कि आमतौर पे एक आध्यात्मिक संस्था के लिए अनकॉमन सी बात मानी जाती है, जनरली सोचा जाता है कि आध्यात्मिक संस्था है तो जो उनका कार्य है जो ज्ञान है उस रीति ही वो सेवा करेंगे, लेकिन ऊर्जा थोड़ा सा अलग लगता है। तो ऐसे में ये कहानी कहाँ से शुरू हुई आपके हिसाब से, कहाँ से आपको प्रेरणा आई, क्या रुकावटें आई, वो जानना चाहेंगे।
1: आप सबको सुनाते हुए बहुत मुझे प्रसन्नता है। ब्रह्मा कुमारी की जो स्थापना है वो भारत देश के लिए है, तो भारत सरकार के तरफ से जितने भी कुछ ऐसी सेवाएं आती है जो हम कर सकते हैं आध्यात्मिकता के साथ साथ, तो वो हम जगदम्बा निवास के अंदर मोस्टली करते हैं। तो ऐसे ही हमको एक बार मालूम पड़ा सौर ऊर्जा जो है, ऊर्जा बचत अगर हम करते हैं तो भारत सरकार का एक उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत
0: जी,
1: तो ऊर्जा में भी बाकी भी जो ईंधन है उसमें भी भारत सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने। उसके लिए अगर हम हर एक थोड़ा थोड़ा भी बचत करते हैं तो वो भारत सरकार को एक मदद हो जाती है। इस उद्देश्य को बुद्धि में रखते हुए हम सभी ने, जो भी वहाँ रहते हैं, सभी ने सोचा कि हम इस क्षेत्र में थोड़ा कुछ काम करेंगे, लेकिन हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा ये कोई हमारे बुद्धि में नहीं था।
0: उस लक्ष्य से नहीं शुरू किया था,
1: उस उद्देश्य से हमने नहीं किया, लेकिन बचत करते हैं तो उसका फायदा हमको संस्था को भी हो जाता है ना, पैसे के रूप में समझो, फिर सरकार को भी हो जाता है और फिर एक एग्जाम्पल भी बन जाता है, दूसरे भी सीख लेते हैं इस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको हर चीज हम लोग दिखाते हैं। तो उस भाव से हम बचत करते गए और इसमें हमको खास जो मार्गदर्शन मिला है, एक बार हमारे पास केदार भाई लातूर वो आए थे, वो ऑडिट एनर्जी का काम करते हैं, तो वो आए थे, उन्होंने सारा हमारा देखा और उन्होंने हमको थोड़ा सा प्रेरित किया कि आप लोग थोड़ा कुछ कुछ बातें चेंज करके एनर्जी की बचत करो। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमने विद्यालय के अंदर ये भी सीखा है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्यालय से कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन कोई अच्छी बात सिखाता है, क्योंकि विद्यालय का मूल है गुणग्राहकता, या कोई अच्छी बात कोई सिखाता है तो वो हमको करनी चाहिए, हमको डोंट केयर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हमको सिखाया कि आप थोड़ा, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं था राष्ट्रपति पुरस्कार का, लेकिन ऐसे ही वो आए थे तो उन्होंने हमारा सारा कैंपस देखा और फिर उन्होंने कुछ बातें हमको सिखाई। तो हमारी जो सारी टीम है ब्रह्मा कुमारीज की, ये टीम बहुत वेल एजुकेटेड है और ये सारी साइंस की बातें समझती है, तो उन्होंने भी अपने थोड़ा मन पर लिया और वो सारे बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे कि समझो हमारी एलईडी लाइट
0: जी,
1: ये हमने बहुत सारी जगह पर लगाई है। फिर स्ट्रीट लाइट जो होती है वो हम बहुत देरी से शुरू करते हैं और बहुत जल्दी सवेरे बंद कर देते हैं। फिर जो हमारे फैन है वो हम एक बार फास्ट करके ठंडा कर लेते हैं, फिर हम एक दो पर ही रखते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: फिर हमारा यहाँ हमारे फ्रिज है, उसमें भी हमने उनके डायरेक्शन के अनुसार कुछ चेंजेस की। ऐसे हमने, हमको एक गाइड अच्छा मिला, उसके अनुसार हम करते गए तो हमने देखा कि हमारा भी थोड़ा बिल कम आ रहा है, ये पहले हमने देखा तो वो हमको बहुत अच्छा लगा, तो करते गए। करते
0: गए, कुछ अच्छा करे तो पहला फायदा खुद को होता है, तो वो आपने देखा। बिल्कुल,
1: तो फिर करते गए। फिर उन्होंने इस बारी एक दिन वो आए और उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया कि हम पुरस्कार के लिए एप्लीकेशन करते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है कर लो, बुरा तो है नहीं, मिले तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है, लेकिन एक हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपति तक पहुंच जाए कि ब्रह्मा कुमारीज ऊर्जा संरक्षण में भी काम करती है,
0: बिल्कुल
1: ये अगर राष्ट्रपति तक पहुंच जाए तो चलो ठीक है ना, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए हमने किया। फिर दिल्ली से ऑडिटर आए सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने सारा चेक किया, वो वन डे हमारे पास रहे, ये हमको पता भी नहीं था।
0: अच्छा कि वो ऑडिटर है।
1: हाँ, कि इतना सब कुछ होता है
0: जी।
1: लेकिन उनका फोन आया केदार भाई का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर दिल्ली से आ रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है आने दो, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं ना, उसमें कोई ऐसे बनावटी तो है नहीं। तो वो आए, वो भी बेहद खुश हुए, उन्होंने भी सारा एक एक चीज देखी, उसके साथ वहाँ का मेडिटेशन भी देखा, हॉल देखा, हमारी आध्यात्मिकता नजदीक से अनुभव की और फिर वो चले गए
0: जी।
1: फिर उसके बाद हमको एक दिन लेटर आया कि ऐसे ऐसे आप राष्ट्रपति अवार्ड के क्या बोलेंगे अधिकारी या चुने गए हैं, फिर वो राष्ट्रपति अवार्ड मिला
0: जी। तो शीतल बेन, आप भी इसी अनुभव में अपना अनुभव अगर जोड़ सके, कि क्योंकि सुनंदा दीदी जी ने अपने एक प्रस्पेक्टिव से, दृष्टिकोण से बताया कि उनके लिए तो ये उद्देश्य था ही नहीं कि भाई हमें अवार्ड मिले, और उन्होंने कहा कि हमारी टीम का भी कभी ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपने भी कुछ ऐसी बातें देखी होंगी इस जर्नी में जिससे आपको लगा कि बहुत मुश्किल है या मुश्किल नहीं है, कैसा था ये पूरा यात्रा, वो अगर हम जाने।
2: तो जैसे हमारे बहन जी ने कहा कि हम लोग तो शुरू से ही, जैसे हमारा जगदम्बा भवन कैंपस बना, तो जनरली हम लोग कोई भी चीज बनाते तो उसके बाद मेंटेन करने के लिए भी हम पर्याप्त चीजों का ध्यान रखे। हमने सोलर एनर्जी, पहले सोलर प्लांट लगा दिया था हॉल के ऊपर, 50 KV का अपना सोलर प्लांट लगा हुआ है और हमारी मैक्सिमम एनर्जी सोलर प्लांट पे यूज होती है और बाकी जितना बचता है पूरा, जैसे आप जानते हैं कि MSEB में जाती है पूरा जो भी जनरेट होता है, यस, और फिर हम जितना यूज करते हैं उसमें से माइनस होता है। तो शुरू से हमने इस बात का ध्यान रखा था जब से कैंपस बना था, क्योंकि कैंपस बड़ा था, फिर बिल इतना हर बार आए, कंटिन्यूस वहाँ इवेंट चलते हैं वीकेंड पे, बहुत पब्लिक इवेंट्स होते हैं पब्लिक सेवा करने के लिए, वैल्यू एजुकेशन जो देते हैं हम उसमें। तो फिर हमने शुरू से ये सोच के वहाँ पर सोलर प्लांट लगा ही दिया था। इसके अलावा LED लाइट्स का भी हमने शुरू से ही किया था
0: जी।
2: और साथ साथ हमारे पास बायोगैस भी है, मतलब एक जो कहते हैं ना रिसाइकलिंग, सारा वेस्ट को बेस्ट बनाना, इस बातों का ध्यान शुरू से रखा गया था। तो बायोगैस भी हमारे पास, जैसे हमारा स्थापना हुई जगदम्बा भवन की, तब से ही बायोगैस भी लगाया हुआ था जो आज तक चल रहा है। क्योंकि जो हमारे दीदी ने जो कहा, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से जो आए थे ऑडिटर सारा चेक करने के लिए, उन्होंने कहा बायोगैस बहुत लोग लगाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करना मतलब रोज उसको खिलाना होता है और खिलाना भी ऐसे होता है कि जो उसको चाहिए उसके हिसाब से, कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, बहुत सोच समझ के कटिंग करके प्रोसेस करके फिर आपको देना होता है। तो जनरली लोग वहाँ हिम्मत हार जाते हैं समहाउ, बट जगदम्बा भवन का 8 साल हो गए हैं और कंटिन्यूस डेली उसको फीडिंग किया जाता है और डेली वो गैस चलता है। तो उन्होंने कहा आप दिखाओ हमें चलता है कि नहीं चलता।
0: 365 दिन,
2: यस यस, 365 डेज,
0: बच्चे को बड़े करने के जैसा है।
2: जी जी, तो उसमें हम कई सब्जियां कई तड़का लगा के फिर जो पकती है तो हम बायोगैस पे छोड़ देते हैं ताकि वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो पकता रहेगा। दूध आया तो हम दूध गर्म वहां करते हैं, कभी चाय बनानी है तो हम ध्यान रखते, किचन वालों को डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो भी गैस चलता रहे भले साइमल्टेनियसली, क्योंकि कैंपस बड़ा है, आने जाने वाले बहुत है, तो दूसरे गैस भी हमको यूज करने पड़ते हैं, बट वी ऑल्सो कीप अ वॉच की वो जो गैस है बायोगैस भी कंटिन्यूस हमारा चलता रहे तो शाम तक वो पूरा हो जाए ताकि वो फीड करे तो नेक्स्ट डे के लिए अवेलेबल हो। तो इस रीति से हमने उसको चालू रखा। तो जो ऑडिटर आए थे तो उन्होंने कहा आप चालू करके दिखाओ, हमने तुरंत चालू करके दिखाया उनको तो वो देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि आज तक वो बायोगैस काम कर रहा है। फिर उन्होंने सोलर का प्लांट तो देख ही लिया था, LEDs देखिए, फिर हमारे पास रिमोट वाले फैंस हैं, क्योंकि कई बार लोग उठकर फैन बंद करना या टेम्परेचर चेंज करना उसमें थोड़ा सा लेजीनेस फील करते हैं, तो रिमोट के फैन होते वो एनर्जी सेव भी करते हैं और इमिजिएटली हम टेम्परेचर जैसे चाहे वैसे। फिर जैसे हम फ्रिज के बारे में हमने ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश सब्जियां लाए, बहुत लेफ्ट ओवर ना हो, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जितना बड़ा उतना बढ़ता ही जाता है। तो उसके लिए भी उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि जितना फ्रेश खाओ उतना हेल्थ के लिए भी अच्छा है,
0: यस,
2: हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और तो इस हिसाब से हमने वो भी थोड़ा ध्यान रखा। तो ऐसी कई चीजें, छोटी छोटी टिप्स जो हमें केदार भाई, जो खुद एक एनर्जी ऑडिटर है महाराष्ट्र में और उन्होंने कई राज्य लेवल पर भी अवार्ड्स लिए हुए हैं और अभी ये एक नेशनल अवार्ड भी उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त हुआ,
1: मिला हुआ।
2: हाँ, जगदम्बा भवन का भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर पहले अवार्ड मिला था एक। तो क्योंकि वो जब जैसे दीदी ने कहा कैंपस विजिट करने आए थे तो उन्होंने देखा यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं तो ज्यादा इनको काम करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे मैं टिप्स दे दूं तो भी इनका बहुत अच्छा हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, उन्होंने कहा सोलार का जो एनर्जी है प्रोडक्शन तो जगदम्बा भवन में हो रहा है तो डे टाइम में हम जितना कंज्यूम करते हैं तो वो जैसे फ्रिज ऐसा हो जाता है हमारे लिए, हम कितना भी कंज्यूम करें और फिर जो बचता है इट इज गोइंग टू MSEB। तो फिर उन्होंने कहा आपको प्रेस यूज करनी है या जो भी ऐसी हेवी ड्यूटी चीजें यूज करनी है आप डे टाइम में ज्यादा यूज करो। तो हम लोगों को शुरू से बताया गया 7 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही आयन को यूज करो, आयनिंग आपको इसी टाइमिंग में करनी है। आप ये छोटी छोटी बातें करोगे तो आपका भी पैसे बच जाएगा और ऊर्जा भी बच जाएगी। तो हमारे सच में, और ये भी अच्छी बात है कि हमारे जो निवासी है, हम 15-20 लोग रहते हैं जगदम्बा भवन में रेगुलर बेसिस पे, बाकी आने वाले विजिटर वगैरह वो रेसिडेंट अलग होते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा कि आपको प्रेस इस समय करने, सबने सहयोग दिया, सब उजाला जब होगा तभी प्रेस करनी है, अंधेरे में आपको प्रेस नहीं करनी, क्योंकि अंधेरे में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो MSEB से लेते हैं और वो हमें 1.5 या 2 गुना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो वाई नॉट टू यूज फ्री। तो इसलिए हमने वो बात का भी ध्यान रखा, फ्रिज का भी ध्यान रखा। और AC के लिए उन्होंने हमें बताया था कि आप 24+ ही टेम्परेचर रखा करो, शुरू में आप 24 पे रखो, एक सिंगल या एक या दो पे फैन ऑन रखो तो धीरे-धीरे रूम कूल होता है फिर आप टेंपरेचर 26 27 28 जैसे आपको कितना ठंडक चाहिए उस हिसाब से तो एक फैन भी अगर स्लो ऑन रहता है तो वो ठंडा पूरे रूम को ठंडा करती है हां फैल जाता है और हो सकता है

0: और इससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन सुनने के बाद उसको करना, ये अपने में एक बात होती है कि भाई मुझे ही करना है, मुझे सुन करके नहीं बैठना है, मुझे करना है। तो ये बीड़ा उठाना, ये भी एक अपने आप में सहयोगी बनना है। लेकिन देखा गया दीदी कि आजकल कोई भी छोटी सी चीज को करने के लिए लोगों को सहयोग की ही कमी लगती है। आपस में भी देखा गया है कि अकेलापन बढ़ता जा रहा है, तो साथी या दोस्ती या अपनत्व की जो भावना है वो इतनी कम हो गई है। तो सहयोग तो बहुत बड़ी बात लगती है, कोई किसी को मदद भी करने जाए तो सोचता है कि क्यों करूं मैं मदद, मुझे क्या मिलने वाला है। या कभी ऐसी भी भावना आती है कितना भी मैं मदद करूं लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये जो भावना है सहयोग की, ये वास्तव में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है?
1: मैं तो ब्रह्मा कुमारी को हाईलाइट नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जो सत्यता है वो मुझे बतानी पड़ेगी,
0: जी
1: क्योंकि यहाँ पर हम जो डेली नॉलेज सुनते हैं तो नॉलेज के अंदर कई सारे वैल्यूज़ को बताया जाता है, और बहुत एक सुंदर महावाक्य यहाँ पर सिखाया गया है कि वैल्यूज़ से ही आप वैल्यूएबल बनोगे।
0: मूल्यों से मूल्यवान बन जाएंगे
1: हाँ,
0: जी।
1: क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू हम रखते हैं। कोई खरीदी करनी है समझो हमको, तो हम चाहते हैं कि पापा नंबर एक की चीज़ हमको खरीदी करनी है, लेकिन हम जीवन के प्रति कभी ये नहीं सोचते हैं कि जीवन को भी हमें नंबर वन बनाना चाहिए। और ऐसे भी देखो, जीवन शब्द ही इतना सुंदर है, G+1।
0: बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: जी।
1: तो वन नंबर से जीना चाहिए ना, लेकिन चलते चलते मनुष्य ये बातों को भूल गया है, वो चीजों को ज्यादा महत्व देता है, जीवन को नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे सौभाग्यवश हमको इस ब्रह्मा कुमारीज की नॉलेज मिली, जिसके अंदर हम रोज वैल्यूज के प्रति बहुत सुनते हैं कि कैसे एक एक वैल्यू। और ये बहुत सुंदर बात हमने सुनी कि वैल्यू कोई लाने की चीज नहीं, वो आपके अंदर ही है,
0: जी
1: खाली आप उसको समय प्रति समय यूज करो।
0: जी
1: और यूज करने के लिए जो पावर चाहिए उसके लिए अभी हमारा ये इनर्जी का ही काम मतलब इनर्जी के कारण हमको प्राइज मिला, अवार्ड मिला। तो ऐसे जैसे वो एक इनर्जी है, ऐसे हमारे अंदर भी हमारे मन की इनर्जी बढ़ती जाए, उसके लिए भी एक मेडिटेशन की विधि यहाँ पर हम सीखते हैं। और वो जब मेडिटेशन करते हैं तो मनुष्य के मन में सारे वैल्यूज है ही,
0: बाहर से लाने की
1: हाँ,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: नहीं।
1: वो बाहर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। उसको पता पड़ता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब
0: मतलब ये शक्तियां या जो मूल्य हैं, ये जो गुण हैं, ये भीतर हैं लेकिन
1: है।
0: क्रियान्वित नहीं है, उनको एक्टिवेट करने की
1: हाँ,
0: आवश्यकता है और
1: हमको
0: उसके
1: तो
0: लिए
1: हमेशा
0: ज्ञान।
1: वो एक एग्जाम्पल याद रहता है, जैसे जमीन के अंदर
0: जी
1: पानी है, लेकिन आपको बोर मारना पड़ता है ना। तो जब वो ऐसे ऐसे करके अंदर चला जाता है तो अंदर का पानी बाहर आता है। इसी प्रकार मानव के मन में बहुत सारे वैल्यूज है। तो राजयोग एक ऐसी प्रोसीजर है, विधि है, मेडिटेशन एक समझो साधना है, बहुत नहीं 10-15 मिनट भी रोज करे तो वो अंदर जो वैल्यूज है ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सहयोग तो सबसे बड़ा वैल्यू है, इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बोलते हैं, बिना सहकार नहीं उद्धार।
0: बहुत सुंदर।
1: हाँ, और आजकल हमने बहुत जगह ऐसे चित्र देखे हैं कि बीच में ग्लोब है,
0: जी
1: सारे मनुष्य आत्माएं
0: चारों ओर
1: एक दो के
0: बैठ के
1: हाथ में हाथ डाल करके जैसे खड़े हैं, मना सहयोग के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो सहयोग का महत्व हमने यहाँ पर समझ लिया मेडिटेशन के आधार से, सहयोग का महत्व, बचत इकोनॉमी उसका महत्व, फिर कोई कुछ बात बोलता है तो वो हमको स्वीकार करनी चाहिए, अगर वो अच्छी है तो वो स्वीकार करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं बालक और मालक का बैलेंस, कि मालक बन करके राय दो, बालक बन करके स्वीकार करो
0: राय देना, लोग कहते हैं
1: मालक।
0: राय बहादुर बन के राय देते हैं, लेकिन जब
1: हाँ
0: कोई आपको राय देता है तो फिर कईयों के ईगो को हर्ट हो जाता है कि मुझे
1: हाँ
0: कैसे राय दे रहे हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ पर जो वो बचपना है, जो बालकपन है,
1: हाँ
0: वो अगर आता है तो फिर व्यक्ति उससे कुछ सीख सकता है।

0: जी
1: तो हमको फायदा ही हो जाता है ना उसका। तो ये सारे वैल्यूज को हमने सीखा है यहाँ पर, इसलिए ये सारे वैल्यूज हम करते गए। और हमारे आज्ञाकारिता भी एक वैल्यू है, अगर कोई अच्छी बात है आपको कही जाती है करो तो वो समझो आप क्यों करनी चाहिए। ऐसे अंधश्रद्धा से नहीं बोलो हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन समझो वो क्यों करना जरूरी है। और जब वो समझता है कि हाँ ये करने से ये लाभ होता है, फिर वो सभी जो भी जगदम्बा निवासी है उन सभी ने इन सारी बातों को समझ लिया और फिर सभी करते गए, तो सभी के मेहनत के कारण समझो ये सुंदर अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा हमको प्राप्त हुआ।
0: शीतलबेन, आप क्या कहना चाहेंगे? सहयोग का जो आपने बोला कि केवल ऐसा नहीं कि बड़ों ने कहा और हमने किया, लेकिन आपस में भी जो गेस्ट आते थे बाहर से वो भी मानते थे कि ये करना है।
2: अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक वाइब्रेशन भी होता है, जब करने वाले दिखते हैं सामने तो करना इजी हो जाता है।
0: मतलब
2: अगर
0: कोई उदाहरण है सामने
2: एग्जैक्टली
0: तो
2: आप उदाहरण मूर्त जब बन जाते हैं, जब आप खुद करना शुरू करते हैं और आप खुद बेनिफिट फील करते हैं, तो आपको देख देख कर दूसरों को भी लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। जब वो देखते हैं कि यहाँ के लोग इतना सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करके देखें। और वो देखो, कभी भी कोई इंसान अच्छा कर्म करता है ना, भले वो फॉलो करके करे या एक बार करके देखे, लेकिन उसका जो अनुभव वो खुद कर लेता है तो उसको वो जो लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, वो फीलिंग बहुत उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है कि हाँ मैंने इतना तो भले मैं वहां नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ किया। जैसे हमारे रूम्स में भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के रखे हैं कि आप जाने से पहले नल को एक बार चेक कर लीजिए कि पानी बंद हो गया है, आपने एसी फैन ऑन किया है तो आप बंद कर दीजिए। तो ऐसे अगर हम प्यार से लिखते हैं कुछ डायरेक्शन, क्योंकि अगर वो पहले से संस्कार नहीं है तो इमिजिएटली फॉलो करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और बार बार रिमाइंड करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जब लिखे जाते, इवन हम जो थालियां धोते हैं वहां पर भी हमने पूरा ठीक से लिखा हुआ है कि आप पानी उतना ही यूज करना जितना आवश्यक है। कई लोग नल खुला छोड़ के फिर थाली धोने में लग जाते हैं और उतना पानी कई लंबा समय तक वेस्ट हो जाता है। तो जो एक अच्छे मैनर्स है, विद्यालय का एक ये है ब्रह्मा कुमारीज में हम देखते हैं कि मूल्यों की शिक्षा तो है ही, लेकिन एक छोटे छोटे बातें जो हमारे मैनर्स को बढ़ावा दे, अच्छे आचरण के लिए जो बातें हैं। और ये इकोनॉमी का जो आपका संस्कार है ना, वो आपका जमा का खाता भी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि आप पानी जितना वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे एक कर्म फिलोसॉफी हर चीज के साथ बनती है, पानी के साथ भी आप वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हो सकता है आगे चलकर पानी की कमी पड़े। और आप पानी का पहले से बहुत प्यार रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपको कभी का पानी है, इस पानी से भी आपको मदद मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, पानी की बचत को हो, ऊर्जा की बचत, और जैसे बहन जी कह रहे थे कि यहाँ पर हमें सिखाई जाते वैल्यूज की बातें, और बचत का संस्कार तो पहले से इस विद्यालय में मिल रहा है, तो वहाँ बहुत सूक्ष्म रीति से बचत सिखाई जाती है। एक सबसे पहले बचत जो इंसान को करनी चाहिए वो है संकल्पों की बचत, उसके विचारों की बचत,
0: विचारों की बचत।
2: क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी जब एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है, कई नई भी लगती है, और जब नई लगती है तो हमारे बहुत वेस्ट थॉट्स अंदर में चलते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए।
0: ये तो जैसे आम बात हो गई,
2: बहुत आम बात
0: इसको लोग नेचुरली समझते हैं
2: और कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट हैज टू हैपन, बट वो थॉट चलने से मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। वही एनर्जी में अगर किसी और, वही संकल्प में किसी और चीजों की तरफ फोकस करती तो शायद मेरा कुछ और काम अच्छा बन जाता था, लेकिन मेरा टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और उसके बाद जब निगेटिव चलता है या वेस्ट चलता है तो हम थोड़ा ड्रेन भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
2: हम आत्मा की एनर्जी थोड़ा
0: थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं कोई बात पे सोच रहे, सोचते इतने थक जाते कि लगता है चलो जाके सो जाते हैं।
2: और जब आप बहुत लंबा विस्तार करते हो, बीच का जब विस्तार किया जाता है वो झाड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर आप कहते हो अभी फुल स्टॉप लगाया, अभी अभी छोड़ दे, तो झाड़ को बीच में ले आना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कोई चीज बीज लेवल तक है तो थोड़ा ही समझ के कि ये व्यर्थ है या मैं क्यों सोचूं इस बारे में, लेट हिम थिंक, मैं वो सोचूं जो मेरे लिए जरूरी है। तो ऐसा अगर हम उसी समय कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे संकल्पों की बचत, हमारे विचारों की बचत सबसे बड़ी बचत है, क्योंकि विचारों के आधार से ही आपकी वाचा काम करती है, विचारों के आधार से ही आपके कर्म काम करते हैं, आपका व्यवहार काम करता है, आपके रिलेशंस काम करते हैं। सब जगह पे तो मेन बीज हमारा संकल्प ही
0: है,
2: विचार है, थॉट्स है। अगर इसका हम अच्छी तरह से यूज करें, पॉजिटिव दिशा में यूज करें, अपना समय, दूसरों का समय अच्छा करने के लिए व्यतीत करें, तो ये जैसे विचारों की बात हो गई, समय के रिलेटेड भी हम फालतू में बहुत समय सोशल मीडिया पे रील्स देखते देखते कितना समय, एक घंटा दो घंटा बीत जाता है और हमें लगता है हम थोड़े एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा एंटरटेन हो गया। और आप देखो प्रैक्टिकली एक घंटा रील देखने के बाद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको जो काम करना है वो आप कर नहीं पाते हो,
0: और कई बार जो काम करना तो भूल भी जाते
2: कि करना क्या था, और वो इतना एग्जॉस्ट होने के बाद वो काम करने का मन भी नहीं करता है। और हम सोच रहे थे 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली वो होता नहीं है। तो यहाँ समय की बचत, संकल्पों की बचत, तो ऐसे हर बचत का जो संस्कार यहाँ पे सिखाया जाता है वही कहीं ना कहीं सूक्ष्म संस्कार स्थूल संस्कार में परिवर्तित, फिर पानी की बचत कहो, ऊर्जा की बचत कहो, तो ऑटोमेटिकली ये संस्कार हमारे अंदर डेवलप होना लगते हैं।
0: तो मैं इसको ऐसे अगर समझूं कि मान लीजिए मैं नया व्यक्ति हूं और मैंने आज आपका कार्यक्रम सुना और मुझे मन किया कि चलो मैं भी ऊर्जा की बचत करूं, तो क्या ऐसा भी संभव है कि भले मैं संकल्प की बचत नहीं करता और समय की बचत नहीं करता लेकिन मैंने ऊर्जा, पानी, भोजन इनकी बचत करना शुरू किया है, तो क्या ये बचत का जो कार्य मैं कर रहा हूँ इससे क्या मेरे अंदर संस्कार जो है वो बचत करने के वो डेवलप हो सकते हैं, या पहले बचत का संस्कार आएगा फिर मैं कुछ करूँ?
1: नहीं, कोई भी बात पहले तो संकल्प में ही आती है ना।
0: ओके
1: हाँ, जैसे अभी सुना है किसी ने तो किसी को लगेगा पापा मैं बचत करूँ, तो देखो संकल्पों की उत्पत्ति भी कैसे होती है, जैसे कभी कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद उत्पत्ति होती है, कुछ पढ़ते हैं तो भी वो संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो सुनने से, पढ़ने से, तो बचत, अभी मेरे को लगता है मैं बचत करूं
0: जी,
1: तो संकल्प तो आ गया, फिर मैंने करना शुरू कर दिया, तो शुरू करने के बाद भी कभी आप थोड़ा लूज हो सकते हैं, फिर आपको ध्यान देना पड़ता है, अरे अभी मेरा पानी वेस्ट मैंने गवाया, संकल्पों को थोड़ा वेस्ट किया, फिर थोड़ा अटेंशन रखते हैं, तो अटेंशन देने से कोई भी संस्कार, और पहले भी मैंने बताया कि हमारे अंदर सारी अच्छाई है ही
0: है।
1: हाँ, इंसान बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है जो हम कहेंगे कि वो देव मानव है, जो हम हमारे पूर्वज कहते हैं देवी देवताएं थे, वो एक्चुअली मानव के अंदर वो सारे दैवी गुण वैल्यूज है ही है। आज भी देखो ना, किसी के अंदर बचत का संस्कार है, ऑलरेडी है, लोग भले उसको कभी कभी कंजूस भी कहते हैं, बहुत कंजूस है बोलते हैं, लेकिन कंजूसाई अलग है और बचत अलग है।
0: कई लोगों का मैंने देखा है कहते हैं ये तो ना जैसे देवता समान है,
1: हाँ,
0: कई किसी में अगर गुण होता है तो कहते हैं ये तो जैसे देवता समान है, ये तो बिल्कुल जैसे ठाकुर हैं,
1: हाँ,
0: कोई बहुत शांत रहता है तो कहते हैं ये तो ठाकुर जी जैसे हैं। तो ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये सारे संस्कार इंसान में पहले से मौजूद है, केवल उस पर अटेंशन देने की बात। और एक और चीज जो आपने बताया कि कई बार हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं लेकिन बीच में फिर हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं, तो वहां पर हमको अटेंशन देने की जरूरत है, लेकिन वो अटेंशन कैसे लाएं, कौन मदद करेगा या कहां से शुरू करें?
1: दो बातों से अटेंशन हो सकता है। एक, मैंने खुद जो अनुभव किया कि जब हम कोई बात फाइनल करते हैं कि मुझे ये करनी है
0: जी,
1: लेकिन आज मेरे से वो नहीं हुई, तो मैंने जो संकल्प किया है मुझे करना है और मैंने अभी 25 बार कर भी लिया, आज भले नहीं किया लेकिन 25 बार कर लिया, वो थोड़ा सा संस्कार मेरा बन गया है ना, तो अच्छा। आज जब मैंने नहीं किया तो न करने के बाद याद आ जाता है, अरे तुमने क्या सोचा था कि तुमने थे, हाँ ये सोचा था ना कि ये करना है,
0: मतलब तो आप बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि नहीं करना भी आपको याद दिलाएगा आपका संकल्प।
1: हाँ,
0: ये तो बहुत ही अलग दृष्टिकोण है।
1: हाँ, और देता है प्रैक्टिकली भी, आप देख लेना। फिर हम कभी कभी दूसरों को भी बोल के रखते हैं, देखो भाई मैंने ये सोचा है कि मैं ये अच्छा संस्कार धारण करने वाली हूँ, कभी मेरे से कुछ नहीं भी हो गया
0: तो
1: आप मेरे को याद दिला।
0: बहुत अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब इसमें तो फिर नम्र होना पड़ेगा बहुत, क्योंकि अगर सामने
1: की
0: वाला
1: मदद
0: याद
1: से भी हम अच्छे बने ना, क्या बिगड़ा उस।
0: लेकिन कई बार होता है कि कोई हमें याद दिलाता है, अरे तुम तो बोल रहे थे तुमको बचत करना है और तुम अभी उड़ा रहे हो, तो फिर कई बार लोग उल्टा ही कहते हैं तो इतना किया ना बचत मैंने, अभी थोड़ा सा मैं कर लूं।
1: हाँ,
0: तो वहां पर नम्र होना पड़ेगा कि हाँ,
1: आपने जो बोला ना कि शीतल बहन को कि दूसरे लोग कैसे मानते हैं, तो प्रैक्टिकली हमने देखा है कि कोई भी बात आप किसी को भी कहते हो रिगार्ड के साथ, प्यार के साथ अगर आप कहते हैं तो सामने वाला मान जाता है, उसको शिक्षा देने के हिसाब से नहीं सुनाओ आप, या उसको ठीक करना है मुझे ये बता करके, ये आपके अंदर अहम भाव नहीं होना चाहिए। चलो एक अच्छा काम मैं भी कर रही हूँ, ये व्यक्ति भी कर लेवे तो उसको भी फायदा हो जाएगा, उस सहज भाव से अगर आप किसी को कोई भी बात सुनाते हैं, उसका रिस्पेक्ट रखते हुए, बहुत बड़े व्यक्ति को आपको बोलना है तो उस ढंग से बोलना पड़ेगा, और छोटों को भी थोड़ा इधर करना है तो उनको भी उस ढंग से, और वो सारी कलाएं मेडिटेशन से आ जाती है, क्योंकि वो कलाएं भी हमारे अंदर है ही, लेकिन मेडिटेशन के बाद वो खुल जाती है, इमर्ज हो जाती है सारी अच्छाई ना इंसान के अंदर, मर्ज है अब।
0: दोस्तों आप दीदी का शक्ल नहीं देख सकते, मैं देख पा रहा हूँ, दीदी जब ये कह रही है ना कि सारी अच्छाई इंसान में है, उनके आंखों से देख के लगता है कि एकदम सच बोल रही है, और उनको देखते हुए लगता है कि ये तो सच बात है। सच में मैं तो कहूंगा कभी आपको मौका मिले तो या तो आप पुणे जाइए जगदम्बा भवन में दीदी से मिले, या फिर यहाँ आकर के रेडियो मधुबन के स्टूडियो में कभी आप उनसे मिले, आपको भी वो शक्ति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। शीतलबेन जी आपसे मुझे ये जानना था कि जैसे दीदी ने बताया कि कभी छोटों को भी हमको सही दिशा में लेके जाने के लिए प्यार से चलाना पड़ता है, और आपने भी बात की सोशल मीडिया की, कई बार लोग कहते हैं मैं तो अच्छी चीजें ही देख रहा हूँ ना, तो इसमें क्या गलत है, लेकिन वो अच्छी चीजों को देखते देखते देखते देखते कितना समय चला जाता है पता ही नहीं चलता, और देखने से वो अच्छी चीज कब मैं कुछ खुद कुछ अच्छा करूँ वो पीछे रह जाता है। तो आप कैसे गाइड करते हैं, क्योंकि आपने कहा आपके वहां पर कई यूथ भी आते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करें?
2: जैसे कहा जाता है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो जहां पर भी हमारा अटेंशन जाता है, अगर समझो हम सोशल मीडिया के आदि है, क्योंकि आजकल युग ही सोशल मीडिया का चल रहा है, और वो कोई बुरा है ऐसा मैं नहीं करूंगी, बट एक कहा जाता है कि हर चीज को मर्यादा में यूज करना और अपने बेनिफिट के लिए यूज करना वो बात अलग होती है। लेकिन जैसे विवेकानंद जी को भी पूछा गया था कि जहर क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना या यूज करना तो वो जहर बन जाती है। तो वैसे सोशल मीडिया इज ऑल्सो गुड, क्योंकि ये हमें कई चीजों में कनेक्ट करने के लिए, हमारा कई आजकल का जो विस्तार होता जा रहा है हमारे कारोबार का, उसको हेल्प करता है हमें अच्छी तरह से चलाने में, तो इसको यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अधीन हो जाना। जैसे आजकल हम देखते हैं बाकी जो एडिक्शंस, अभी तो एडिक्शन में वो बीड़ी सिगरेट और दारू ये तो सब पीछे रह गया है, अब तो वो तो चलो कुछ कुछ लोग परसेंट में एडिक्टेड है, बट यहाँ सोशल मीडिया एडिक्शन तो ऑलमोस्ट हर किसी को लग चुका है, और ये एडिक्शन है। जैसे अगर रात को मुझे रील देखकर सोने की आदत है, तो मैं आज नहीं देखती हूँ तो मुझे नींद में तकलीफ होती है, आई फील लाइक आई एम मिसिंग समथिंग, तो जैसे वो खींचता है, क्योंकि समवेयर इन ब्रेन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एडिक्शन के बाद होते हैं और जो बार बार खींचते हैं आपको वो एडिक्शन की तरफ, वैसे ही कुछ हार्मोन्स जब आप सोशल मीडिया के रील्स देखते हैं तो उसी प्रकार के हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, और वो जब आपको नहीं दिया जाता
0: तो आपको उसकी खींच
2: होती है, तो यू फील कि आपको लगता है मैं थोड़ा अपने समय, क्योंकि क्या होता है जब हम रील्स देखते हैं बहुत ज्यादा, कुछ अच्छे जैसे आपने कहा अच्छे ही देख रहे हैं हम, कोई गलत नहीं देख रहे, लेकिन जब कोई भी चीज टू मच में जाती है हमें याद भी नहीं रहता वो कौन सी अच्छी बात मैंने सीखी थी जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, बस मैं अपने आप मन को तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं अच्छा सुन रहा हूँ अच्छा देख रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले तो एक दो घंटा अच्छा देख के भी फायदा क्या। और होता यूं है कि फिर हम लोग सोते देरी से हैं, उठना तो वापस समय पर ही होता है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या घर में किसी के टिफिन बनाना होता है, तो फिर आपको लगता है मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है। आजकल देखो हर एक की यही कंप्लेंट है कि हमारे पास टाइम कम है, इनफैक्ट हर एक के पास बहुत टाइम है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये देखना है कि हम अपने टाइम को कहाँ और किस रीति से स्पेंड कर रहे हैं, कितना वर्थ वाइल डिस्ट्री से यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जैसे कह रहे थे कि अच्छा देखना, तो हम यूथ को यही बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया को यूज करो। इनफैक्ट आजकल जो एआई की बात निकल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास पहले से बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है, आप पहले उसको इस्तेमाल करो, फिर उसको पॉलिश करने के लिए, उसको थोड़ा और ढंग देने के लिए आप एआई को जरूर यूज करो। लेकिन आजकल मैं देखती जा रही हूँ यूथ को कि एआई को पहले ही, चलो एआई बता देगा ना, एआई बता देगा ना, तो दे हैव स्टॉप यूजिंग देयर इंटेलेक्ट। और अगर हम लंबे समय तक अपनी चीजों को यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जंक लग जाएगी, तो ब्रेन भी हमारा, तो इसीलिए एआई को भी यूज करो, बट लास्ट मोमेंट, नॉट एट द फर्स्ट स्टेप। पहले आप अपने खुद के इंटेलिजेंस को यूज करो, क्या क्या निकलता है देखो अपने आपके अंदर से, फिर उसको थोड़ा सा अच्छा ढंग देने के लिए आप एआई को जरूर यूज करो. तो हम उनको कहते हैं कि आप सब कुछ करो बट सही समझ के साथ यूज करो.
0: समझ के साथ
2: करना ये इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको हम आजकल की भाषा में डिजिटल वेलनेस कहते हैं. क्योंकि डिजिटली नॉट ओनली यूथ, लेकिन आज हम किसी भी एज के लोगों को देखते हैं वो इस तरह से जा रहे हैं. तो ये भी एक समय की बचत है, ऊर्जा की बचत है, क्योंकि आत्मा इटसेल्फ इज अ ऊर्जा, सोल इटसेल्फ इज अ ऊर्जा. वो कहां कितना इस्तेमाल करेगी तो उसका वो ये प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया से हमारी आंतरिक ऊर्जाएं बहुत वेस्ट में खर्च होती है, और फिर जो करना चाहते उसके लिए पास समय और एनर्जी हमारे पास नहीं बचती. इसीलिए आज लोग फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सोचते मुझे इतना कुछ करना था लेकिन मैंने किया नहीं. और कहते हैं कि टाइम नहीं था. आप अगर रिव्यू करो अपने सारे दिन को तो कितना टाइम तो हमने यूं ही वेस्ट कर दिया.
0: इसका आपने पहले भी उत्तर दिया था कि बचत का संस्कार है तो वो समय भी बचाएगा. पहले संकल्प फिर समय, और उससे फिर आपके आचरण में परिवर्तन आने लगेगा.
2: जी.
0: एक परिवार में चार लोग अगर हैं, उनको अगर मान लीजिए शुरू करना है ऊर्जा की बचत, चाहे वो जल हो, चाहे विद्युत हो, या भोजन हो, या कोई भी चीज का अगर बचत शुरू करना है, तो कुछ अगर आप छोटे मोटे ऐसे टिप्स दें हमारे श्रोता साथियों को कि वो कहाँ से शुरू करें, तो वो सुनना चाहेंगे हम.
1: मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक परिवार को ये सारी बातें करनी है, वो परिवार को पहले समझ लेना पड़ेगा. और परिवार में ये अपेक्षा करके नहीं चलता है कि सभी साथ साथ करेंगे. हो सकता है चारों ने महत्व तो सुना लेकिन दो करेंगे, दो ना भी करेंगे. तो जो दो ना करते हैं उनको भी थोड़ा सा कभी प्रेम से, कभी शक्ति से, ऐसे अलग अलग ढंग से बता करके मोटिवेट करना पड़ेगा. मतलब किसी भी कारण से कलह उत्पन्न नहीं होना चाहिए. समझो कोई अच्छी बात मैं कर रही हूँ लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाती हूँ, मैं उसको कैसे भी अलग अलग शब्दों से उसके साथ व्यवहार करती हूँ, तो वो और भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना. इसलिए कोई भी अच्छी बात अच्छे तरीके से ही करवानी पड़ती है.
0: अच्छी बात अच्छे तरीके से बोली जाए तो ही होगी. बहुत अच्छा
1: तरीका भी अगर हम थोड़ा चेंज कर, बात अच्छी है लेकिन हमारे बताने का ढंग ठीक नहीं है, उसको हम थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं समझो बोल बोल करके, तो वो भी नहीं चलता. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है.
0: रिगार्ड देना बहुत जरूरी है जी,
1: और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है. कभी कभी थोड़ा लिख के भी रखना पड़ता है ताकि बोलने की जरूरत नहीं, जैसे शीतल बहन ने कहा. तो ऐसे करते
0: मैंने
1: हैं
0: ये देखा
1: तो...
0: है आपने जो कहा लिखने की बात, कई लोग कहते हैं घर में हम कैसे लिखें, फिर मेरे को ख्याल आया कि नहीं, आप मसालों के डिब्बे पे तो लिखते ही है ना, कहाँ चीनी है, कहाँ नमक है.
1: यस.
0: तो ऐसे ही अगर आप टैप के ऊपर लिख दो कि पानी को प्यार से यूज करो, तो वो आपके घर में कोई मेहमान आए तो वो भी इस चीज को देखेगा कि चलो ये अपने घर में भी एक अवेयरनेस क्रिएट करके रखते हैं. बहुत अच्छा.
1: और मैं भले उस घर में रहती हूँ लेकिन मैं अभी समझो मैंने नल का खोल दिया है, लेकिन जब मेरा ध्यान वहां गया तो थोड़ा तो मेरे ऊपर असर आ ही जाता है ना. कोई बोलेगा तो फिर मैं थोड़ा डोंट केयर भी कर सकती हूँ,
0: लेकिन
1: रोज
0: तो...
1: रोज क्या ये बोलता ही रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होगा. इसलिए हमारे घरों में पहले पहले जमाने में बहुत अच्छे अच्छे सुविचार लिखे जाते थे ताकि बच्चे पढ़ते रहे, बड़े पढ़ते रहे, तो वो जीवन में भी उतारे. उसी प्रकार मतलब कोई भी अच्छी चीज सब मिलकर के शुरू करे, आज नहीं तो कल मदद मिल ही जाती है, और अच्छे में सफलता मिलती ही.
0: शीतल बहन, आप कौन से पॉइंट्स को ऐड करना चाहेंगे?
2: जैसे अगर आप घर की बात करें जहाँ तीन चार लोग रह रहे हैं, तो जैसे बहन जी ने गाइड किया कि किसी एक को शुरुआत करनी होती है, चार एकदम करे ये तो बहुत ही अच्छा है अगर कर पाए, बट एटलीस्ट वन पर्सन वो शुरू कर सकता है वो रियलाइजेशन के साथ कि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, हम भारत सरकार को भी मदद करेंगे, साथ साथ हमारा बिल भी कम आएगा तो पैसे की भी बचत होगी, उसी पैसे से आप और कुछ कर सकते हो, तो क्यों हम ये वेस्ट करें. तो ये संस्कार इस रीति से कोई एक भी अगर इस बात को ठीक से समझ ले और फॉलो करना शुरू करे, और जैसे बहन जी ने कहा कि बार बार याद तो नहीं रहता और बार बार किसी को टोकना अच्छा भी नहीं लगता है, तो जहाँ नल है तो वहाँ उसके ऊपर आप लिख दो कि पानी बचाने से फायदे क्या होंगे. हमारे पास ऐसे छोटे छोटे स्लोगन्स हैं, जैसे अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहे बट ऐसे स्लोगन्स मिलते हैं, या तो आप खुद इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, उसको प्रिंट करके वहां पे लगा सकते हो, पानी बचाओ और ऊर्जा बचाओ, या जहां भी जो भी है. तो इस रीति से वो लिखा हुआ होगा तो तुरंत वो कार्य करते समय ऊपर दिखाई देता है, और वो कुछ ही बार अटेंशन देना पड़ेगा कोई भी तो, उसके बाद तो वो संस्कार बनना ही
0: है, बन जाएगा
2: ऑटोमेटिक बनना है. कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन आप उसको अटेंशन से यूज टू बार बार बार बार अटेंशन देके जब उसको करने लगते हैं तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली योर संस्कार. फिर तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वहां लिखा क्या है. आपको पता है पानी कई बार क्या होता है, नल चालू रहता है टप टप टप टप पानी गिर रहा होता है, तो कई बार हम तो ध्यान भी नहीं देते, फटाक से कहीं निकल जाते हैं. तो मतलब ये चीजें हम अगर पहले से जाने से पहले एक बार मैं देख लूं नल ठीक से बंद हुआ है, तो एक आदत है. रूम से बाहर निकलते हुए फैन बंद किया है, एसी बंद किया है, लाइट्स बंद है, तो ये चीजों का छोटा छोटा. और जैसे एसी के बारे में मैंने कहा था, घर में आजकल एसी लोग यूज करते हैं और अभी तो समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मेजोरिटी लोग तो एसी यूज करते ही है. तो जैसे कहा कि हमेशा टेम्परेचर 24+ रखना, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एंड इट इज गुड फॉर एनर्जी सेविंग एज वेल. तो दोनों हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक बॉडी अगर आप ले लेते हैं उस समय और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं तो तुरंत कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बॉडी टेम्परेचर के नियर बाय ही टेम्परेचर रखो, बस इतना कि आपको थोड़ा ठंडक में फील हो. तो 24+ रखेंगे तो एनर्जी सेविंग भी बहुत होती है और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है. और जैसे एक स्लो पे आप एक या दो पे फैन रखो तो रूम ठंडक में हो जाएगी. और हाँ, और मैंने देखा है कई घरों में, प्रैक्टिकली देखा है, हम लोग भी एक बार रूम ठंडी हो जाए तो उसके बाद एसी भी ऑफ कर देते हैं. आपको रात भर एसी चालू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह तक तो इतने ठंडे हो जाते हैं कि कुछ कंबल ओढ़ना पड़ता है. तो
0: कई बार लोगों को देखा है वो पंखा भी चलाते और कंबल
2: भी ओढ़ लेते हैं, है ना. तो मतलब इस तरह से अगर हम देखें कि मुझे इतनी ठंडी लगी रही है तो इतना घंटा ऑन रखने की जरूरत है. और आजकल स्लीप मोड भी होते हैं रिमोट में, आप स्लीप मोड पे भी डाल सकते हैं, एक घंटे के बाद दो घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए. तो टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ ऑफर कर रही है, लेकिन हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करें. बस है, हम अफोर्ड कर सकते हैं बिल, इसीलिए हम कितने पे भी रखें वैसे ही छोड़ के जाए नहीं, क्योंकि ये चीजें फिर और कई जगह पे रिफ्लेक्ट होगी, नॉट ओनली एट होम बट और जगह पे रिफ्लेक्ट होगी. तो जो संस्कार बनेगा वो हर जगह एक जैसा ही रिफ्लेक्ट होगा. तो इसीलिए फिर हम इन बातों का ध्यान रखें. फ्रिज के लिए जो मैंने कहा था, आजकल हम देखते हैं, हम इवन हमारे आते पास उनके फ्रिज देखते हैं तो आज पहले छोटा था फिर बड़ा लिया, क्या करें बहन जी, वो भी कम पड़ जाता है. तो मैंने जैसे कहा कि फ्रिज ऐसी चीज है कि एक बार आपको स्टोर करने की आदत लग गई
0: तो फिर वो नहीं,
2: हाँ, तो बस वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए आप कोशिश करो कि फ्रेश वेजिटेबल्स, और तीन चार लोग हैं तो आप आते जाते भी मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रेश सब्जियां ला, दो तीन दिन के भले आप स्टोर करो, पर 8-10-15 दिन की सब्जियां स्टोर करने के लिए फिर उतना स्टोरेज लगता है आपको, और हेल्थ वाइज भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है.
0: हाँ जी.
2: और अगर जहाँ कोई ऐसा घर हो, मतलब जो इंडिपेंडेंट घर हो, तो वो बायोगैस जरूर लगाए, उसका भी बेनिफिट हमने देखा है, बहुत यूजफुल है बायोगैस. तो ऐसे और सोलर के भी आजकल कितने छोटे छोटे डिवाइसेस निकले हैं, है ना. आज सोलर कुकर भी मिलता है, तो अगर आप 3-4 लोगों का बना रहे हो, इतनी कोई बहुत फास्ट में बनाने की जरूरत नहीं है, तो सोलर में आप एक बार तड़का लगा के, क्योंकि धूप तो निकलने वाली है अभी समर में, तो उसको उससे तंग होने के बजाय क्यों ना उसका फायदा लिया जाए. तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सोलर डिवाइसेस अगर हम अपने घर में भी यूज करते हैं तो काम भी बन जाएगा, एनर्जी भी सेव हो जाएगी, पैसों की भी बचत हो जाएगी. तो ऐसे मुझे लगता है छोटे छोटे टिप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
0: और राजस्थान में बैठे हमारे सभी श्रोता साथी इसको बहुत बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सूर्य देवता बहुत ही खुश रहते हैं. जाते जाते मैं शीतल बहन और सुनंदा दीदी दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके निर्देशन में लगभग 170 के करीब ब्रह्मा कुमारी के छोटे बड़े ब्रांचेस हैं, अलग अलग प्रकार से लोग आते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, आप महाराष्ट्र ही नहीं सब जगह जाते हैं, भारत के कई जगहों पे जाते हुए भी आपने कोई एक बात ऐसी देखी हो जो पूरे भारत को एक करता है, मतलब आप चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे असम जाएं, चाहे बंगाल जाएं, कहीं पर भी जाएं, बहुत भिन्नता है, लेकिन कोई एक बात आपकी नज़र में ऐसी पड़ी हो जो कि आपको लगता है नहीं ये तो हर जगह सेम है, एक है और ये भारत की विशेषता है, वो कौन सी बात होगी?
1: जहाँ तक मैंने देखा है ये भारत की एक विशेषता ये है कि जब उसके घर में कोई मेहमान आता है वो मेहमान की बहुत खातिरी करता है. एक झोपड़ी में भी अगर कोई मेहमान जाएगा ना तो भी उसकी वहाँ खातिरी होती है. और एक राजा के घर में कोई मेहमान आता है तो उस ढंग से उसकी मेहमान निवाजी होती है. तो मेहमान को भगवान समझ कर, अतिथि को एक महान आत्मा समझकर उसकी परवरिश करना, ये मैंने भारत के सारे स्टेट में और 95% अमीर हो गरीब हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, मध्यम हो, सब लोगों के अंदर ये विशेषता मैंने देखी है और जो बहुत महान हमारे भारत को बनाती।
0: बहुत सुंदर। शायद इसीलिए भारत जो है इतना पुण्य भूमि माना जाता है, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं भारत में। शीतल बहन जी, आपको क्या लगता है कौन सी एक बात भारत को खास बनाती है?
2: जो बहन जी ने कहा उसे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, अतिथि देवो भव तो है ही है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर फैमिलीज के अंदर जो अपनापन है, कोई तो पूछने वाला है, लाइक सपोज बीमार पड़ते हैं तो कोई केयर करने वाली माँ है या पिता है या भाई है, तो मतलब एक दूसरे की जो केयर करने का संस्कार है अपने घर के अंदर, अतिथि को तो डेफिनेटली हम करते ही है, लेकिन एक दूसरे की केयर करना, एक फैमिली टाइम स्पेंड करना, तो ये जो फैमिली की फीलिंग है ना, एक अपनेपन की जो फीलिंग है, वो मैं देखती हूँ कि सब जगह है ही है, किसी भी स्टेट में आप जाओ वो फैमिली की फीलिंग है। और मैंने अधिकतर ये सुना है जो विदेश में जाते हैं वो बाकी तो साधनों से और ये सुविधाओं से तो संपन्न है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनापन, वो जो संबंध में प्यार है, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, एक दूसरे की केयर का संस्कार है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है जो हमारे भारत में नहीं है। और यही, और वहाँ हम देखते हैं विदेश में बहुत जल्दी बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फैमिली से दूर भी चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन भी बनाना शुरू कर देते हैं और दूर हो जाते हैं रिश्तों से और इस सब से। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे 21 साल के हो गए, 25 साल के हो गए,
0: तो भी
2: परिवार के साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर एक बात है कि ये जो परिवार का फीलिंग है, एक आपका एक एसेट है ये परिवार भी, परिवार का प्यार भी, जो आपको आपकी बाकी डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है। तो ये मैंने भारत के हर स्टेट के अंदर जरूर देखा है।
0: और यहाँ हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथी भी, मैं कहता हूँ और मानता भी हूँ, एक परिवार के जैसे हैं। रेडियो केवल उनके लिए एक साधन नहीं सूचना का, लेकिन रेडियो उनके लिए एक परिवार है। और स्पेशली रेडियो मधुबन का जो परिवार है वो बहुत ही खास है। हमें गर्व होता है हमारे इस रेडियो मधुबन परिवार पर, क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं। लेकिन अभी हम समय की सीमा को देखते हुए आज के एपिसोड को हम फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आप दोनों ही जो पहला उत्तर आपके मन में आए आप उसको बताइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, पहला सवाल, ऊर्जा क्या है?
1: ऊर्जा माने एक शक्ति है, जैसे शक्ति जहाँ होती है वहाँ निर्माण का काम होता है, अगर शक्ति नहीं होती है तो निर्माण नहीं होता है। जैसे अभी एक सोलर की ऊर्जा हमको मिलती है तो हम भोजन बनाते हैं, ये एनर्जी अपनी लाइट इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा मिलती है तो बल्ब जलता है, एसी लगता है, तो ऊर्जा माना
0: शुरुआत करने का बल।
1: हाँ,
0: बहुत सुंदर,
1: एक पावर।
2: उसी में ऐड करूंगी पावर टू ड्राइव समथिंग, एनर्जी इज पावर टू, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ड्राइव करती है, वैसे ह्यूमन को भी ड्राइव करने वाली जो जिसको हम सोल कहते हैं, है ना, तो आध्यात्मिक ऊर्जा वो आत्मा को या इस शरीर मनुष्य के शरीर को चलाने वाली शक्ति है, तो समथिंग विच ड्राइव्स, दैट्स द एनर्जी,
0: चला रही है। सेवा क्या है?
1: एक्चुअली सेवा माना किसी को सुख देना,
0: बहुत
1: जिससे दूसरों की प्रगति हो।
0: सेवा मतलब सुख देना, सामने वाले की प्रगति हो।
2: सेवा माना दुआ लेना का बहुत सुंदर साधन।
0: सेवा मतलब दुआ कमाने का साधन, बहुत बढ़िया। शांति क्या है?
1: शांति एक मन की स्थिति है जिसमें केवल होती है पॉजिटिविटी, केवल होती है प्यूरिटी, केवल होती है पावर, और बहुत ही व्यक्ति को एक रिलैक्स अंदर से लगता है,
0: जो मुझे अभी फील हो रहा है आपके सामने बैठ करके। तो सुना दोस्तों, दीदी ने कहा कि शांति मतलब एक मन की ऐसी स्थिति जहाँ पर स्वच्छता है, सफाई है, सादगी है, स्थिरता है और शक्ति भी है।
2: शांति में और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्लैरिटी। जितना मन शांत होता है चीजों को हम उतना ही क्लियरली समझ पाते हैं और क्लियर और उसी स्पष्टता के साथ रिस्पॉन्ड कर पाते हैं।
0: आखिरी सवाल, भारत क्या है आपके लिए?
1: भारत क्या है, भारत क्या नहीं है? भारत हमारे लिए सब कुछ है
0: जी।
1: हमारी माँ भी है, हमारे पालनहार भी है, हमारे रहने का स्थान भी है, भगवान के आने का स्थान है, यहाँ से लाइट सारे संसार को मिलेगी, सारे संसार के परिवर्तन का आधार भारत है। भारत माना ही भरपूर
0: भारत मना ही भरपूर,
2: भारत विश्व के लिए एक लाइट हाउस और एक माइट हाउस है जहाँ से आध्यात्मिक प्रकाश सारे विश्व की ओर भी फैलता है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। भारत में जो आज हम देखते हैं जीवन जीने की कला बहुत सही तरीके से चल रही है, और एक माइट हाउस शक्ति का भी केंद्र है जहाँ आध्यात्मिकता के लिए लोग भारत की तरफ ही मुड़ते हैं।
0: ये केवल कहने की बात नहीं, ये हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं। कभी भारत की तरफ से जो सेवाओं का विस्तार होता है, कहीं पर भूकंप हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये जो शीतल बहन ने आपने भी बोला था कि ये जो पारिवारिक भावना है ये केवल भारत के अंदर तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व को अपना मानना। और ये शास्त्रों में भी जो कहते हैं, शुरू से हम कहते आए हैं, हमारे प्रार्थनाओं में हम ये गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सब का सुख चाहते हैं, केवल हम हमारे देशवासी सुखी हों ऐसा कभी नहीं चाहते। ये दर्शाता है कि भारत जो है विश्व के लिए एक लाइट हाउस है जहाँ से प्रकाश चारों ओर फैलता है। लेकिन हमारे लिए आज सच में बहुत सौभाग्य की बात थी कि सुनंदा दीदी जी स्वयं और शीतल बहन ने भी समय दिया हमको, हमारे श्रोताओं से मिले आप, उनके साथ आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, मैं कहूँगा वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें, प्रैक्टिकल बातें। क्योंकि आज जिस तरीके से दरो दाम बढ़ रहा है जीवन शैली का, उसमें कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने जीवन को सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, लेकिन केवल बचत के नाम से नहीं, लेकिन उससे अपने संस्कारों को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आज बहुत अच्छा सीखा आपसे, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों ने भी सीखा होगा। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यशस्वी भारत कार्यक्रम का पार्ट एक भाग बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू शंतनु भाई और पूरा रेडियो मधुबन परिवार जो सुन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दीदी आपके मुख से कुछ सुनना चाहेंगे?
1: सुनने वालों को भी मैं बोलेंगी कि आप केवल सुनना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऊर्जा बचत करना, संकल्पों की बचत करना, बचत का खाता बढ़ाना। आप सभी जो भी रेडियो मधुबन को सुनते हो, आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये रेडियो जो है वो ऐसे स्थान से प्रसारित होता है, जो स्थान आप देखेंगे तो आप ऐसा फील करोगे कि ये भारत का या विश्व का स्वर्गीय स्थान है।
0: जी,
1: जहां आप आएंगे तो केवल रेडियो मधुबन ही मुस्कुराता नहीं, लेकिन यहां आप आएंगे तो गेट से लेकर हॉल तक और हॉल से लेकर भंडारे तक सब जगह आपको प्रसन्नता से खिले हुए चेहरे दिखाई देंगे, और उससे आप भी प्रसन्नता सीखेंगे और भी कई सारी आध्यात्मिक बातें भी सीखेंगे, क्योंकि ये सीखने का टाइम है, ये परिवर्तन होने का टाइम है, ये कुछ बनने का टाइम है। तो आप सभी जरूर इसका लाभ उठाइए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।
0: थैंक यू सो मच।
2: आप सभी ऐसे ही सुनते रहे और सदा मुस्कुराते रहे, और इस रेडियो मधुबन से बहुत सुंदर सुंदर बातें जो आप तक पहुंचती हैं अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, तो आप जरूर इसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाके इस बहुत सुंदर अनुभव कीजिए, एक जीवन जीने की सुंदर कला सीखिए, और आपका जीवन खुशियों भरा हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको सदा मिलती रहे। इस शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
0: दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही विशेष था, एक नहीं दो दो विदुषियों से हमें जानने को सुनने को मिला। सुनंदा दीदी जी का ये कहना कि जीवन शब्द में ही वन आता है, जीना ऐसा है जैसे वन नंबर के साथ जिए, एकदम अव्वल दर्जे का जीवन हो, लेकिन उसकी शुरुआत मूल्यों से होती है। मूल्य हर इंसान में है, केवल उन्हें बाहर लाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा ये मूल्य जो है, वैल्यू जो है, बचत का, हर वो चीज जिससे जीवन को जिया जा रहा है, हर वो वैल्यू या हर वो साधन जो जीवन को सहारा देती है, उसका बचत करना मेरा आपका हम सबका धर्म है। केवल इस बचत के एक संस्कार से व्यक्ति उदाहरण मूर्त बन जाता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और ऐसे ही भारत के विद्वान विदुषी रत्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रेडियो मधुबन परिवार हमेशा आपके साथ बना हुआ है, और आज जैसे आपने सुना भी कि भारत की विशेषता ये पारिवारिक फीलिंग है जो कि हमारे इस परिवार में साफ झलकता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर मैं शांतनु लेता हूँ आपसे अलविदा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में दोबारा करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
3: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
4: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
5: आ रही हूँ, रुको तो जरा। अरे आप लोग कौन हो?
6: मैम मैं सोमाराम हूँ।
5: कौन हो?
7: मैम मैं बबली हूँ।
8: मैम मैं किशन हूँ। 10 साल पहले आपने मुझे पढ़ाई करने के लिए समझाया था, मुझे लगा आप मेरी शिकायत करेंगे, मारेंगे, पर आपने जो शब्द प्यार से बोले उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी।
9: मैम हम सब आज आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, उन सभी शिक्षाएं और उन सभी बातों के लिए जिनके वजह से आज हम जिंदगी को जीना सीख पाए हैं। थैंक यू।
5: बच्चों इतने सालों के बाद भी तुम लोग यहाँ आए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। खुश रहो बच्चों, खुश रहो।
10: जीवन को संवारने वाले, हमें सही दिशा देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमारे हुनर को निखारने वाले, ये हैं हमारे टीचर। हमारे शिक्षकों को हम शत शत नमन करते हैं। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर रेडियो मधुबन सभी शिक्षकों को कहता है अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। जीवन एक सुख दुख चढ़ाई उतराई का खेल है। प्रत्येक मानव जीवन में खुशी या गम के पल आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान हर समय गम की अनुभूति में ही अगर रहे तो सुख का अनुभव कब कर सकेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि संगीत ही एकमात्र सहारा हो जाता है ऐसे पलों को सहजता से गुजारने के लिए। वर्तमान समय विभिन्न साधनों द्वारा मन को प्रफुल्लित तो किया जा सकता है, मगर सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं कि बिना संगीत के जीवन अधूरा है। ऐसे ही हर पल को जीने के लिए संगीत रूपी आधार को सिखाने के लिए हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, जितने सारे लिसनर है सबको प्रणाम करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने संगीत का आधार या संगीत का हमारे जीवन में क्या रोल है,
1: हाँ जी,
0: इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की। तो सच में जीवन में अगर संगीत न हो तो हम गेस कर सकते हैं कि क्या हो जाता।
1: हाँ जी, सुख दुख का खेल में अगर कुछ तो चाहिए, दवाई चाहिए, संगीत एक दवाई जैसी है
0: जी।
1: अगर संगीत हर समय काम काज करते उसके धंधा धड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन के टाइम हम संगीत सुन सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, भारीपन जो होता है मन की, जो भारीपन हो वो निकल जाते हैं।
0: जी जी जी, बहुत बड़ा फायदा संगीत का हमारे जीवन में।
1: हाँ जी।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा नया राग लेकर आए हैं?
1: हाँ, आज बहुत सुंदर राग है पटदीप।
0: पटदीप?
1: हाँ हाँ जी, बहुत सुंदर राग। इसमें जैसे कि हमने पहले भूमपलासी राग सिखाए थे, उसमें गा और नी कोमल था
0: जी,
1: लेकिन खाली उस राग को अगर नी शुद्ध नी में बदल दिया जाए तो पटदीप राग हो जाते हैं।
0: बस इतना सा फर्क,
1: बस, क्योंकि वो भी ठाट काफी है, इसमें भी ठाट काफी है, तो खाली नी सा गामा पानी सा नी धापा मागारे सा एक जैसी है, लेकिन खाली इसमें नी शुद्ध है। पटदीप राग में नी शुद्ध है और गा कोमल है, और भीम पलासी में गा नी दो कोमल है
0: जी।
1: तो इसको थोड़ा हम परिचय देते हैं पटदीप राग की। ठाट है काफी, तो औरव संपूरण की जाती है। वादी जो है, वादी स्वर है पा, और समवादी है सा। समय जो है दिन में चौथा प्रहर, मतलब 3 से 6।
0: अच्छा।
1: इसमें हम बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा है पटदीप राग।
0: ओके।
1: शांत प्रकृति का राग है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें गा कोमल सर है और बाकी सब सर शुद्ध है। अच्छा, हम क्या करते हैं अभी थोड़ा आरोहण अवरोहण करके सुनाते हैं, पकड़ करके सुनाते हैं लिसनर को, ठीक है? अगर लिख लेते हैं तो अच्छा है।

0: इसमें जो है भीम पलासी, अगर हम करते हैं नी सा गा रे सा, ये भीम पलासी है
1: जी।
0: और अगर हम करते हैं नी सा गा रे सा, खाली ये अंतर है भीम पलासी राग के साथ, जो प्रदीप राग जो है इसका अंतर है, बाकी सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो लिसनर को बहुत अच्छा से ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध नी है, नीसा गा कुमल है, मापा नीसा और अब संपूर्ण है सानी धापा मागा रीसा।
1: सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब समानता है।
0: समानता है
1: जी।
0: ठीक है, अभी क्या करते हैं लिसनर, अगर किताब पेंसिल लिख लेते हैं, स्वरलिपि देंगे
1: जी,
0: तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अभी जितना हम ऊपर जाएंगे चढ़ते जाएंगे थोड़ा तो टाफ आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये ताल तीन ताल की है, लेकिन इसका जो मुकरा जो होता है, हमने कभी फाक से लेते हैं, कभी सोम से लेते हैं, लेकिन हम सोम से फाक से नहीं लेते हैं। तीन ताले जब गिरते हैं, जैसे ना तीन तीन ताल, 12 मात्रा से उठाना है, 12 13 14 15 16, मतलब मुकरा है 5 मात्रा की।
1: ओके,
0: तीन ताल जो है, तीन ताल जब लास्ट ताली गिरेंगे उसके पहले मात्रा से लेना है, मतलब 5 मात्रा से लेना है, मुकरा 5 मात्रा की है। तो हम बोलते हैं तो सम 5 मात्रा की बात गिरेंगे, पा मा पा गा मा, लिसनर को भी शायद याद है गा कोमल है
1: जी,
0: पा मा पा गा मा पा, ये जो पा है इसके ऊपर सम गिरते हैं। ठीक है, पा मा पा गा मा पा नी ई ई सा आ रेनी सा, रेनी एक साथ है, ऊपर की सा है, रे ऊपर की है, रेनी सा ऊपर की है, धा धा पा पा मा पा गा आ, ये तक है फर्स्ट जो लाइन है इसका है। अगर पा आते हैं बीच में, पा है वो 5 मात्रा की जो है, हमने पूरा मात्रा ले लिया, 16 मात्रा ले लिया, फिर से मैं दोहराती हूँ कैसे करना है, पा मा पा गा मा पा नी ई ई सा आ रेनी सा धा धा पा पा मा पा गा आ नी सा, ये जो नी है नीचे का है, नी सा गा मा पा नी ई सा ऊपर की है, धा पा आ पा मा पा गा मा, फिर से ओ आएंगे, जैसे हमने 5 मात्रा किया। जब हम उसको स्वर में सजाएंगे या बोल से सजाएंगे तब लिसनर को शायद पता लगेगा,
1: चल जाएगा।
0: तो अंतरा भी दे देती हूँ, अंतरा क्या करते हैं, हम फाक से लेते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे 5 मात्रा की है, जब हम करेंगे ना वो लिसनर को पता पड़ जाएगा। तो फाक से शुरू करेंगे, मा पा गा मा पानी सा सा नी ई सा गा, ये जो ऊपर की है, सा ऊपर की है, गा की ऊपर की है, नी ई सा गा

0: सा नी धा पा, रेसा जो है ऊपर की है, मा पा गामा पानी सासा ऊपर की है, सासा नी ई सा रे ऊपर की है, रे सा रे नी सा रे ऊपर की है, सा ऊपर की है, नी धा पा पा मा पा गामा, ये जो है पांच मात्रा जो है इसमें आ गया, पा मा पा गामा, ये मुक्र है, पा मा पा गामा, हम जब करेंगे ना पता पड़ जाएंगे
1: जी,
0: तो हम शुरू करते हैं, ठीक है।

0: ये जो हमने साई किया है पा मा पा गा मा, हम करते हैं वो उसके साथ पूरा करके फिर पा मा पा गा मा करते हैं
1: जी।
0: फिर से एक बार सुनाती हूँ।

0: ये हमने स्थाई जो है स्थाई को दिखाया, अच्छा। अभी अंतरा करना है।
1: ओके श्यामली जी, अंतरा हम आपसे जरूर सुनेंगे, सीखेंगे भी।
0: हाँ जी,
1: लेकिन अभी समय कहता है एक अल्प विराम लेते हैं और उसमें हम अपने श्रोता मित्रों को एक सुंदर सा मीठा सा गीत सुनाते हैं, पट्टदीप राग से संबंधित। श्रोता मित्रों, आप इस गीत का आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने पटदीप राग के बारे में श्यामली जी से सुना और अभी हम उनसे आगे भी जानकारी लेंगे। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है और आगे आप हमें क्या सिखाने वाले?
1: हाँ, हमने जो अंतरा जो स्वर लिपि दे दिया वो थोड़ा सुनाते हैं, कैसे उसको फाक से शुरू करते हैं। पहले तो पांच मात्रा की मुखड़ा करेंगे, करने के बाद सोम गिरेंगे, सोम के और भी आठ मात्रा करेंगे, तब जाके फाक आएंगे। तो हमने पा नी किया है, उसके बाद सा आ रे नी सा हमने किया है, वो अगर निकल देते हैं लिसनर की सुविधा की लिए कि पानी वो जो नी लगा देना है,
0: ओके
1: रखना है, ठीक है, हम करके सुनाते हैं।

0: अभी शायद लिसनर को मैं
1: समझ में आ गया होगा,
0: समझ में भी आ गया। अब अगर नहीं भी होता है तो अगर जो तबला ठेका बजाते हैं अगर उनसे सलाह करते हैं या गुरुजी के पास तो शिक्षा लेना ही है, तबला जो ठेका दे रहे वो जो ये है तबलिया है वो आपको दिखा देंगे।
1: अच्छा,
0: वो भी आपको
1: वो भी गाइड कर सकते,
0: गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ताल में उठाना है। पहले पांच मात्रा की मुकरा है, उसके बाद सोम कहाँ गिरता है, कहाँ से वो अंतरा लेना चाहिए। हाँ, पूरा हमने नी किया, साढ़ निशा नहीं किया है, नी पूरा उतना तक करना है जो सुंदर लगता है। अगर साढ़ निशा अच्छा नहीं लगता है, जो अगर हम अगले एपिसोड में आप जब बंदिश बना देंगे, बैठा देंगे, तब जगह और भी पक्के हो जाएंगे।
1: अच्छा।
0: अगर इसमें आ कर सकते हैं, जितना आ करेंगे उतना उसको समझ में आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, मेहनत मुक्त हो जाएंगे जब हम बंदिश दे देंगे।
1: कोई भी राग हो मगर उसको आकार के साथ किया जाए तो ज्यादा सहजता हो।
0: अच्छा, हाँ, जी,
1: जी। तो श्यामली जी आगे आप क्या सिखाना चाहेंगे?
0: मैं एक प्रदीप राग के ऊपर छोटे से गीत करना चाहती हूँ।
1: अच्छा,
0: कृष्ण जी का जो छोटे जो बचपन है उसके ऊपर आधारित है।
1: ओके।
0: हम करते हैं बोलते हरी मधुर बोल।
1: ओके,
0: बहुत सुंदर है। मैं प्रदीप राग के ऊपर करती हूँ,
1: मगर ये बंदिश के आधार पर आप नहीं?
0: ना ना, ये छोटे से गीत के जैसे करती हूँ।
1: जी, ठीक है जी।

0: श्यामली जी, ये छोटा सा गीत तो आपने सुनाया, लेकिन जाते जाते आप बिना गीत सुनाए तो नहीं जा सकते।
1: हाँ जी, एक बहुत अच्छा फिल्म है चुपके चुपके
0: जी,
1: उसमें जो चुपके चुपके चल रही पूरा भैया जो गीत है,
0: अच्छा
1: है, लता जी का है कंपोजिशन, बहुत सुंदर। तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है
0: जी जी।

0: ये समय भी चुपके चुपके चुपके आगे बढ़ते
1: है। लगे तो अच्छा है।
0: नहीं, लिसनर को जरूर अच्छा ही लगता होगा क्योंकि आप चुन चुन के हर राग के गीत लाते हैं और बहुत दिल से गीत को गाते हैं तो दिल तक छूता है। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको चुपके से इजाजत और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: मैं हूँ दीप्ति, मैं आपको एक गुरुदेव की प्रार्थना सुना रही।

0: टीचर्स डे पर रेडियो मधुबन के पूरे परिवार के ओर से आप सभी शिक्षक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कब कहेंगे कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं, इसी को जीना कहते। खास करके जब महिलाओं की बातचीत करते हैं तो एक मानसिक चित्र होता है कि महिला का मतलब शादीशुदा हो, बच्चे पाल रहे हो, घर का काम कर रही हो या फिर नौकरी कर रही हो। इससे ज्यादा तो हम ज्यादा उम्मीद या फिर ज्यादा चित्रण नहीं कर पाते हैं या ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, महिलाओं का काम या महिलाओं की जो प्रोफेशन इतना तक ही सीमित है या महिलाएं यहाँ तक सीमित है? नहीं, महिलाएं देश के हर वो काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। न सिर्फ देशभक्ति लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी वो बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भावना है वो बहुत उनको आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आध्यात्मिकता और हमारी जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहे कि हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो जीवन बहुत ही नीरस या दिशाविहीन होता है। ऐसे में आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाकर ना सिर्फ अपनी जीवन को लेकिन अनेकों को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय कविता दीदी जी आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में हैं। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन से आप सभी को रूबरू कराएंगे और हम जानते हैं कि एक महिला होते हुए उन्होंने कैसे ये सादगी समर्पण जीवन को चुना है और वो कैसे इस जीवन में सफल रहे हैं। कविता दीदी जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति दीदी। हम सबसे पहले ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ जन्म लिया और आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली, और क्या आपकी जीवन में या आपके बचपन में आपके परिवार में धार्मिक परिवार से थे? क्या वो जीवन रहा आपका बचपन और लौकिक जीवन?
2: हम लौकिक जन्म तो महाराष्ट्र गोंदिया में लिए हैं, जो नागपुर के बाजू में ही है, महाराष्ट्र में, और वहाँ से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लौकिक में, हमारे लौकिक में चाचा जी और चाची ज्ञान में चलते थे। बचपन से ही वो गीता पाठशाला चलाते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो भी बहुत छोटे आयु में ज्ञान में आए। उनके बाद में उनका विवाह हुआ तो जो हमारी लौकिक चाची थी उनको भी ज्ञान में लेके आए और दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद में लौकिक चाचा जी, उनका गाँव जो गोरेगांव था, तो इस कारण से वो गोंदिया में रहते थे और गोंदिया में हमारे पास रह करके प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर के। तो उस समय हमारी जो मम्मी थी बहुत भावभक्ति में पूजा आदि करती रहती थी। तो मात्र मेरी आयु जो 7 वर्ष की थी, तो जैसे वो पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, आरती करती थी, तो मैं उसको देख देख के वैसे ही करती रहती थी। तो चाचा जी को एक दिन बहुत संकल्प चले कि बाकी सब बच्चे तो सोए पड़े हैं लेकिन यही मतलब मम्मी के पीछे पीछे जाके सब कुछ करती है, इसको लगता है बहुत इंटरेस्ट और इन सब बातें इसको अच्छी लगती है। तो देखते देखते मेरे एक बार मम्मी को कहा कि भाभी मैं घर जा रहा हूँ अपने, तो मैं इस गुड़िया को लेके जाऊँ, कुछ दिन मेरे पास रहेगी। तो छोटी थी तो उस समय बोला कोई बात नहीं, भाई के बेटी है तो भाई के पास ही जा रही है। तो बड़े इजीली माता पिता ने छुट्टी दिया और वो मुझे लेके गए। लेकिन वहां देखा तो लौकिक में तो पूजा आराधना चलती थी, लेकिन जब चाचा जी के पास गई तो वो सारा दिन बाबा को याद करना, मुरली पढ़ना, कोर्स करना, शिव बाबा के गीत सुनना, शिव बाबा करते रहते थे। तो मुझे कुछ परिचय नहीं था, कुछ समझ में नहीं, छोटी आयु के कारण। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो बात हर बात मुझे सिखाते थे, समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो जैसे जैसे मुझे गाइड करते थे मैं वैसे करती जाती थी।
1: तो ये क्या उम्र रही है?
2: 7 साल की उम्र थी मेरी मात्र आयु।
1: जी, मतलब आपकी लौकिक और अलौकिक जीवन में बहुत सारा अंतर नहीं रहा, बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग से चलने लगे।
2: जी,
1: तो फिर आपकी पढ़ाई और ये सब चीजें कैसे
2: तो
1: आगे बढ़ी?
2: पढ़ाई चाचा जी के पास भी हुई और लौकिक माता पिता के पास भी हुई, क्योंकि जब मम्मी पापा के पास में थी तो गर्मी की छुट्टी में जो है तो चाचा अपने पास लेके चले जाते थे, बाकी तो मम्मी पापा के पास रह के पढ़ाई किया और कुछ पढ़ाई वहाँ किया। तो लेकिन ज्ञान में लगातार चलती रही हूँ, वो आते रहते थे, वहीं आते थे, एक सेंटर पर मुझे लेके जाते थे। और उस समय जो मेरा नाम था लौकिक में, तीजा नाम अच्छा। था मेरा अभी तो जो कविता नाम है ये मेरा अलौकिक नाम है। तीजा बाई बिसेन करके मुझे जाना जाता था। मेरी सरनेम है बिसेन और मुझे तीजाबाई, क्योंकि तीजाबाई जो नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो जन्म है, जो हरतालिका होती है ना, माताएं व्रत करती है, कन्याएं बहनें व्रत करती है, तो उस समय महाशिवरात्रि के लक्ष्य में भी करती है, तो हरतालिका बहुत ही धूमधाम से दुनिया में मनाई जाती है। तो मेरा उसी दिन सोमवार का दिन था जन्म हुआ, तो उस त्योहार का नाम है तीज। तो तीज के बाद कहा कि इसका नाम हम तीज ही रखेंगे, क्योंकि गौरी पूजा के दिन इसका जन्म हुआ तो हमारे घर में गौरी ने जन्म लिया, ऐसे करके वो मानते थे हमारे महाराष्ट्र में। तो जब उन्होंने कहा कि गौरी माना देवी आई हमारे घर में, तो इसका नाम ही हम तीज रखते हैं, तो मेरा नाम ही तीज, तीजा से फिर तीजा कर दिया स्कूल में जा करके।
3: दीदी फिर जैसे आप इस तरफ घर में आते हैं तो भक्ति मार्ग चल रहा था, और अब चाचा के पास जाते हैं तो फिर आध्यात्मिकता, मेडिटेशन और ये सारी जीवन, तो दोनों की चीजों की बैलेंस कहे, या फिर आपकी घर में भाई बहन ने आपकी, उनका कैसा रहा आप लोगों का?
2: वो ज्ञान में नहीं चलते थे, काफी विरोध होता था, जैसे मुझे भोजन करने में बहुत तकलीफ होती थी। तो जैसे चाचा जी ने एक बात बताते कि जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान सुनते हैं वो तामसिक भोजन नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं जब घर में आती थी तो दूध के साथ भोजन लेती थी, या तो दही होता था घर में उसके साथ भोजन लेती थी। तो माता पिता बहुत विरोध करते थे कि ये कौन सा ऐसा धर्म है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसा तो हमने कभी कोई धर्म देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत पूजा करते, परिवार पूरा धार्मिक था, वो भी शिव की पूजा करते थे, देवियों को मानते थे, आराधना करते थे, लेकिन वो लहसुन प्याज बहुत प्यार से खाते थे, कहते थे लहसुन प्याज मैंने एक औषधि है, और मुझे भी जबरदस्ती वो करते थे कि आपको खाना ही चाहिए, और नहीं खा देती तो थोड़ी सी डांट तो पड़ती ही थी, लेकिन फिर भी मैं बाबा बाबा करके चुपके चुपकाते करते बाद में खा लूंगी करके, ज्यादातर हमारे घर का ही दूध होता था, खेती के कारण गाय वगैरह रखी थी तो घर के दूध में ही दही इसी के साथ में रोटी खा लेती थी।
3: फिर आपकी कितने भाई बहन है? वो
2: तो हम चार बहने और एक भाई, पांच लोग थे
3: जी।
2: तो सभी लोग मतलब मम्मी पापा के साथ मिलकर के मुझे छेड़ते रहते थे, और मैं फिर उनको ज्ञान सुनाती रहती थी कि देखो बाबा ऐसे कहते, बाबा वैसे कहते, तो पंडिता इन करके मुझे छेड़ते रहते थे, देव जो तो पंडिता इन लोग ज्ञान सुनाती है। मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इसमें होता था, क्योंकि हमारे लौकिक चाचा ने एक ही बात सुनाई कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं ये सतयुग की पढ़ाई नहीं आएगी, लौकिक दुनिया की, लौकिक दुनिया में ही काम आएगी, लेकिन अगर हम नई दुनिया सतयुग के लिए जाते हैं तो उसमें ये पढ़ाई तो काम नहीं आएगी। तो इसलिए अधिक महत्व बाबा की मुरली में देना है, बाबा से योग करना है, तो
3: मैं मतलब
2: अधिक परमात्मा के ऊपर परमात्मा का चिंतन करना है, और परमात्मा जो शिक्षाएं देते है और इसी अनुसार चलना है। तो ये बात मैंने अपने दिल में गांठ बांध ली कि जैसे परमात्मा की वाणी में बाबा महावा के उच्चारण करते हैं मुझे ऐसे ही चलना है। और मुझे एक लक्ष्य मिल गया था कि जैसे चाचा जी ने एक ही बात मुझे सिखाई थी कि छह कर्म करते हैं तो हम देवी देवता बनते हैं, और थोड़ा भी गलत कर्म करते हैं तो आसुरी वृत्ति के कारण हमारे पद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए। और उन्होंने फिर एक बात मुझे बहुत अच्छा सिखाया था कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सोचते भी है, लेकिन भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं। तो जब बचपन में भी ये बातें मुझे बहुत याद रहती थी कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ भले मुझे कोई ना देखे लेकिन भगवान मुझे देखते हैं। तो ये बात मुझे आज तक याद रहती है कि परमात्मा की संपूर्ण नजर हम पर होती है, और हम क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या सुनती है, क्या करते है, वह हर प्रकार के हम पर अटेंशन रखते हैं। और
3: तो बाल्यकाल में ही आपको इन चीजों का अटेंशन
2: जी अटेंशन था। हाँ जी।
3: तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी छोटी हूँ, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके भाई बहने भी वो भी अपनी जीवन एंजॉय कर रहे हैं, और मैं पता नहीं क्या कौन सी रास्ते में जा रही हूँ?
2: नहीं, खेलती तो थी उनके साथ में, खेलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उनके साथ जो वो भोजन करते थे उस समय अपने आप को साइड कर लेती थी, क्योंकि वो चाचा ने बड़े प्यार से समझा के बताया था, चाची ने भी, कि आप खेलना जरूर लेकिन भोजन उनके साथ बैठ के नहीं करना है, भोजन अलग से करना है, वो भी घर में जो कुछ हो तो बाबा, और वो भी बाबा की याद करना है, पहले योग करना है तभी खाना है। तो विरोध सब करते थे, लेकिन फिर मैं बाबा की मदद मिलती है और बाबा की मदद से ही चलती थी। बाबा पर उन्होंने जिस मुझे कोर्स कराया तो कोर्स में ही मेरा निश्चय हो गया और मुझे समझ में आने लगी सारी बातें, और मुझे भी लक्ष्य, और फिर मुझे सेंटर पर लेके जाते थे, जो बड़ा सेंटर था हमारा, आश्रम था गोंदिया में, आज भी है, तो वहाँ लेके जाते थे, और वहाँ दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर वो भी मुझे सिखाती थी ऐसे करना ऐसे करना, तो मैं उसी अनुसार करती थी। फिर हमारे चाचा जी बताते थे देखो ये ऐसे बनना है, ऐसी ड्रेस पहननी है, ऐसी सेंटर की सेवा करनी है, तो ऐसे तुम दीदी बन जाओगी। तो ये मुझे जैसे आकर्षण हो गया था।
3: तो ज्ञान में वो कौन सी बात थी जिसे आपको लगा कि ये सत्य ज्ञान है, यही मेरे जीवन परिवर्तित करेगा और मुझे ये फॉलो करना है?
2: अपनापन बहुत लगा मुझे दीदियों से, जैसे कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन दीदी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरे तो मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, मेरे बाल ठीक करना, मुझे ड्रेसेस तैयार करके देना, और वो अपने बेड पर भी बिठा के अपने साथ सुला लेती थी, मुझे गोद में का प्यार देती थी, और फिर जब भी डांस सिखाती थी सेंटर पर, जब प्रोग्राम होते थे तो मुझे डांस सिखाती थी, मैं स्टेज पर डांस करती, वेलकम डांस करती थी, और दीदियाँ जहाँ जाती थी मुझे अपने साथ साथ लेके जाती थी और कुछ मुरली की बातें अच्छी अच्छी सुनाती थी, तो वो मुझे बहुत आकर्षण किया।
3: लेकिन एक उम्र के बाद तो आपको समझ में आया होगा ना, वो तो बचपन में प्यार मोहब्बत अच्छे लगते हैं
2: जी,
3: लेकिन ज्ञान के ऊपर जो निश्चय है, जब आप थोड़ी सी उम्र आई और ज्ञान को समझने लगे, तो वो कौन सी बात थी जिसे आपको निश्चय?
2: जब मैं स्कूल में गई एक बार, स्कूल में मेरी फ्रेंड थी, मतलब बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके ना सातवीं क्लास में थे हम दोनों, तो उन दोनों के जुड़वा बहने थी और दोनों की शादी हो गई, तो शादी हुई और
3: छोटी उम्र में
2: दोनों की शादी हो गई, सातवीं क्लास में पढ़ते थे हम लोग, मतलब हम 14 साल की तो थी, नहीं 14 साल की भी नहीं थी, 12 साल की थी, तो 12 साल की उम्र में दोनों बहनों की शादी हो गई। फिर एक साल जैसे हम आठवीं कक्षा में गए, तो आठवीं कक्षा में गए और गर्मी के दिन में छुट्टी दिन होते हैं, तो उनकी शादी हुई, तो शादी हुई तो मुझे भी बुलाए, मैं भी देखने के लिए गई, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब देखते हुए पता नहीं ऐसा लग रहा था ये गलत हो रहा है, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं ज्ञान योग करती हूँ ये भी करना चाहिए। फिर 6 महीने भी शादी को हुए नहीं और उनको दोनों को जला के मार डाले, और दहेज के कारण मार डाले। जब मैंने वो सीन पहले सुना और फिर मैं उनको देखने के लिए गई, तो पूरी तरह से जल के उनकी लाशें पड़ी हुई थी। जैसे वो देखा मैंने सीन, और जैसे मुझे मन में एक संकल्प चला कि आज के बाद तो शादी का कभी जिंदगी में नाम भी नहीं लेना चाहिए, शादी के बाद देखो कितनी अच्छी थी दोनों, मैं बहुत रोती थी उनके लिए क्योंकि बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही दैवी संस्कार वाली आत्माएं थी, पर परिवार था, ज्ञान में चलते नहीं थे, तो उनकी शादी हो गई और उनको जला के मार दिए दहेज के लिए। उस समय मैंने संकल्प लिया दृढ़ता, चाहे मुझे परिवार कितना भी प्रेशर दे, कितना भी मुझे गलत ठहरा दे, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगी, मैं तो ब्रह्मा कुमारी ही बनूंगी। और मुझे तो ज्ञान वैसे मिल चुका था और मुझे पता चल गया था कि विकार क्या चीज है, शांति क्या चीज है, अच्छाई क्या, बुराई क्या, तो ये सातवीं क्लास में तो फिट बैठ गया था। और फिर आठवीं क्लास के बाद तो मैं संपूर्ण चाचा के पास सेंटर पर ही आ गई थी। फिर उसके बाद में मैं
3: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की?
2: पढ़ाई तो 12वीं तक क्लास में गई, लेकिन 12वीं के एग्जाम नहीं दे पाई, क्योंकि 12वीं की जिस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे परिवार वाले बहुत प्रेशर देके, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी तो उनकी भी शादी करनी थी, वो मेरे से कद काटे में छोटी लग रही थी और मैं थोड़ी हेल्थ में अच्छी लग रही थी, तो सारे परिवार में एक ही कह रहे थे कि दोनों बहनों की शादी साथ में कर दी जाए। अब उनके तो शादी जुड़ी नहीं रही थी, तो कहा कि छोटी वाले की शादी जोड़ो तो बड़ी वाले की शादी जुड़ जाएगी। मेरी फोटो, मैं चाचा के पास रहती थी, तो फोटो दिखा के उन्होंने शादी जोड़ लिया। अब शादी जोड़ लिया तो मुझे कहा देखने आपको आना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, हम तो नॉर्मली फ्रॉक पहनते थे, फिर

0: बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हमको देखने के लिए आए करके। तो पूरे परिवार में मेहमान आदि बैठे हुए है, मुझे कहा गुडे चाय लेके आओ, पानी लेके आओ। तो मैं जैसे गई, कहा आप भी बैठिए, तो हम भी बैठे। जब हम बैठे साथ में, तो मुझे पूछा, मेरा नाम पूछा। तो हम तो बाबा के ज्ञान में चलते थे, तो बाबा का नशा था। तो मैंने जैसे आपका नाम क्या है, तो हमने कहा मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम तीजाबाई बिसेन है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने कहा मैं परमधाम निवासी हूँ, मेरे अलौकिक परमात्मा का नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में जाते हैं तो परमात्मा शिव कहते हैं, और मेरा जो नाम है वो कविता बिसेन है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि बोल क्या रही है आत्मा परमात्मा। तो मेरे पिताजी गुस्से से मुझे देख रहे थे कि आप ऐसे कुछ नहीं बोलो, बस अपना सीधा सीधा नाम बताओ कि आपका अमुक नाम है। तो मैंने कहा मेरा ऐसा ही नाम है, मेरे को ऐसे ही बोला जाता है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये देह आपसे मिली है, तो आप देहधारी पिता हो, आत्मा तो परमात्मा की है। तो वो सारे परिवार वाले मुझे देखने लगे। फिर कहा आपको खाना बनाना आता है, तो मैंने कहा हाँ जी बनाना आता है, मैं तो पहले खाना भगवान के लिए बनाती हूँ, फिर भगवान को भोग स्वीकार कराती है, फिर हम सब खाते हैं। तो कहा कौन से भगवान को खिलाती हो, तो मैंने कहा निराकार शिव परमात्मा, जिस परमात्मा की आप शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, उस परमात्मा को हम भोजन स्वीकार कराते हैं, उसके बाद हम और उन्हीं याद में बनाते हैं, तो भोजन शक्तिशाली बनता है, फिर हम भोजन खाते हैं। फिर कहते हैं कि आपने खाना बनाया हो तो आपको पता है कि अगर 1 किलो चावल होगा तो उसमें कितने दाने हो सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत प्यार से, मैंने कहा कभी गिनती तो नहीं किया है मैंने, लेकिन गिनती करके मैं जरूर बताऊंगी आपको कल ऐसे मैंने कहा
1: जी।
0: फिर उसके बाद में उन्होंने और कोई सवाल किया, तो मैंने सोचा सवाल का ही करते ही जा रहे हैं, तो मैं बाबा को याद करने लगी, बाबा मुझे इनके जाल में फंसना नहीं है, मैं आपकी हूँ, आप आओ बाबा मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इनके कोई सवालों के जवाब अभी देने नहीं, आप कुछ तो ऐसा युक्ति रचो कि ये मुझे इस जगह से मुक्त करे और मैं जल्दी चाचा के पास चली जाऊँ। तो ऐसे देखने लगी, जस्ट 2-4 लोगों के पास मुझे पेन दिखाई दी उनके जेब में, तो मुझे कभी संकल्प भी नहीं आया कि मुझे कुछ सवाल पूछने भी आएगा, पर जस्ट बाबा को याद किया और जस्ट टचिंग हुआ, और उनका पेन को देखते हुए मुझे जैसे याद आया कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स बैठे थे मुझे आँख दिखाने लगे, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं पूछने का, मैंने कहा बस मैं एक ही बार पूछना चाहती हूँ। तो कहा भले पूछो, क्या पूछना है, क्योंकि बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा पूछो। मैंने कहा आपके जेब में ना पेन है, आप इसे कितने अक्षर लिख सकते हो, आप बताएंगे इसमें। तो एकदम से गुस्से में आके खड़े हो गए, ये कैसे बेहुदा सवाल है। मैंने कहा सही बात है,
1: आप चावल पूछ सकते
0: हैं, 1 किलो चावल आज तक किसी ने गिनती नहीं की है, दाने छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो वो कोई गिनती आज कर भी नहीं सकता, तो एक पेन है जिसमें कितनी स्याही होगी और कितने अक्षर आप लिख सकते हो, अगर आप हिसाब बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं भी कल चावल गिनती करके बताऊंगी। तो एकदम गुस्से में आके वो लाल चेहरा हो गया और खड़े हो गए, मेरे माता पिता भी साथ में थे, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, ये कैसे हमारी इंसल्ट कर दिया, इनको बहुत बुरा लगा, अभी क्या सोचेंगे। जैसे वो दरवाजे के बाहर विदाई करने के लिए गए, फिर मेरे पिताजी आए और बहुत गुस्सा होकर मुझे चमाट मारी, कहा आज के बाद तो तुमको बिल्कुल बाहर नहीं लेके आना, अब तो तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, अब जो भी मिले। तो बोले रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, फिर उनके पास जाके मेरे पिताजी हाथ पैर जोड़े कि मेरी बेटी ने बहुत गलत सवाल किया, मेरी बेटी से आपने परेशान हुए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सब देख रही थी, रोते जाके देख रही थी क्या क्या हो रहा है। माताजी ने तो सर ही छोड़ दिया था, फिर पिताजी क्या किए, हमको घर में बंद कर दिए सारी बहनों को।
1: माताजी ने कब शरीर,
0: माताजी ने मुझे लगता है 25-30 साल हो गए सर ही छोड़ दिया था,
1: मतलब छोटी थी, बारहवीं से पहले,
0: हाँ 12वीं से पहले माताजी ने सर ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में पिताजी ने क्या किया, हम सब बच्चों को गर्मी के दिन चले, सब बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिए, और घर के अंदर सब कुछ था, तो वाड़ा था हमारा, तो उधर से क्या किया उन्होंने, पूरा घर बाहर से बंद करके चले गए और खेत में चले गए, कहा कोई लड़कियों को बच्चों को घर के बाहर निकलना नहीं है। तो सब रोने लगे, आपस में छोटे छोटे थे तो रोने लगे, अभी दीदी आपके कारण हमको ऐसे पनिशमेंट मिली, हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते ऐसे करके। तो मैं बोली बाबा है ना, उनको कुछ कुछ बातें सुनाने लगी अच्छी अच्छी। उसी बीच में हमारी पड़ोस में एक चाची रहती थी जिनको चाबी देके गए थे कि भाई मैं तो जा रहा हूं, तो बीच में आप बच्चों का ध्यान रख लेना करके। तो वो आई और जैसे दरवाजा खोला और सब बच्चों को पूछने लगी कैसे हो, कुछ खाए नहीं खाए, और मैं रोने लगी, फिर मेरे को कुछ खिलाने लगी, तो कुछ फल रखे हुए थे, अमृत रखा हुआ था, वो कहता है तुम ये खा लो, तुम तो खाना नहीं खाओगे ना लहसुन प्याज का, तुम ये खा लो। तो मैंने वो खा लिया। फिर करते करते मुझे अचानक याद आया कि कुछ तो मैं करूं ऐसा और यहीं से छुटकारा पाऊं। तो बाजू में किराना की दुकान थी हमारे घर के सामने, तो बहुत अच्छे थे हमसे इस रिलेशन में। तो जस्ट वहां गई और ड्रिंग ड्रिंग वाले पहले टेलीफोन होते थे, और चाचा का नंबर मालूम था मुझे, तो वहां जाके फोन किया और फोन करके तुरंत बोला कि चाचा ऐसे ऐसे हुआ, सारी कहानी सुनाई। तो कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मेरी दादी थी पापा की मौसे भाई, क्योंकि चाचा जो थे पापा के मौसे भाई थे और वो ज्ञान में चलते थे। तो मेरी दादी, मेरी बुआएं, मेरे चाचा चाची फोर व्हीलर से आए। फिर जैसे वो चाची थी 15 मिनट लगते थे आने में, तो बैठी थी। तो कहा क्या हुआ कैसे हुआ? तो कहा हम तो इसको लेके जाएंगे गुड़िया को। तो कहा नहीं नहीं इसके पिताजी है नहीं, आप इसको कैसे लेके जा सकते हो? तो मेरे चाचा ने लेटर लिखा लेटर पैड पर, कहा देखो ये बेटी हमारी है और हमने इसको गोद ले लिया है और अब हम इसको लेके ही जाएंगे क्योंकि ये नहीं रहेगी यहाँ पर। और मैंने भी कहा मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पर ना, मैं शादी के लिए तैयार हूँगी, अगर यहाँ रहूंगी तो फिर तो वो शादी कर देंगे मेरी और मुझे नहीं करनी है शादी। बाबा मुझे पक्का निश्चय हो गया था। फिर उसके बाद में चाचा जी, और मैंने भी लिख दिया कि अभी मैं वापस कभी नहीं आऊंगी।
1: फिर समर्पण का कैसे हुआ?
0: फिर उसके बाद में चाचा के पास में रहने लगी। तो फिर शाम को, जैसे शाम हुई तो गांव के कुछ लोगों को मेरे पापा आए लेकर के कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए करके। तो चाचा ने तब तक मुझे बुआओं के पास छोड़ दिए थे, घर में थी नहीं। तो कहा बेटी यहाँ है पर वो चली गई है, यहाँ है नहीं। तो बहुत विरोध किया, झगड़े हुए कि हमारी बेटी वापस दो, को आपकी बेटी नहीं है, वो तो परमात्मा की बेटी है और वो हो गई है। तो काफी दिन चाचा और पापा से विरोध रहा, बातचीत नहीं रही। फिर रहती रही सेंटर पर, उसके बाद फिर बड़े सेंटर पर, मेरी बुआ भी सेंटर इंचार्ज थी तो उनके पास, मेरी बुआ के पास भेज दिया था, वहां पर ही रही। जब मेरा समर्पण होने का दिन आया तो समर्पण, चाचा बोले समर्पण कराना जरूरी है और जो भी खर्चा लगेगा तो हम करेंगे लेकिन हम तो करना है। तो माता जी आई थी एक बार मिलने के लिए कि इसके पिताजी बहुत विरोध कर रहे हैं, हम साइन नहीं देंगे, तो कभी सिग्नेचर नहीं देंगे, माता पिता की साइन तो फाड़ के फेंक देंगे, ऐसे ऐसे। और फिर आए एक दिन मिलने के लिए, दोनों भी समझाने लगे। तो मैंने कहा मैं तो शादी शिव बाबा से करूंगी। तो कहा ये फोटो से शादी करूंगी, ऐसे ऐसे मुझे बोलने लगे। तो मैंने कहा फोटो नहीं है, ये परमात्मा शिव है, निराकार है, कितनी सारी बहनें परमात्मा से शादी करके ब्रह्मा कुमारी बनी, सेंटर के उदाहरण दिए, नहीं मान रहे थे। फिर भी मैंने चाचा चाची को, मैंने कहा चाचा मैं तो करूंगी। फिर चाचा चाची ने सिग्नेचर किया, सब कुछ किया, माता पिता का कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मेरी चाची गीत बहुत गाती थी तो मुझे भी गीत गाना सिखाया, तो मुझे कवि बोलती थी बहुत प्यार से। तो चाचा कहते हैं ऐसा करते हैं, इसके माता पिता तो सिग्नेचर देने वाले नहीं है, इसका नाम भी बदल देंगे, फिर तो क्यों इसका नाम रखे लौकिक नाम, तुम तो कवि कहती हो, इसको ता जोड़ देते हैं, बन गई बाबा की कविता। तो इस तरह से मेरा एक अलौकिक नाम हो गया और तब से मेरा सेंटर से लेके आज तक अलौकिक नाम ही चलता है।
1: बहुत सुंदर। तो फिर आप जब समर्पित हुए, आपकी भाई बहन भी आपसे मिलने आए?
0: हाँ मिलने आए, लेकिन जब समर्पण हुआ माउंट आबू में हुआ, दादी प्रकाशमन जी के रहते, लेकिन मेरे परिवार से, लौकिक परिवार से कोई भी नहीं आए, बल्कि वो और भी नफरत करने लगी कि ये क्या किया, पिताजी मान नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे है, फिर भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो चाचा जो ज्ञान में भाई बहने चलते थे, गीता पाठशाला थी, और कुछ रिश्तेदार तो जो ज्ञान में चलते थे वो सब आए। फिर क्या हुआ, जब स्टेज पर आए तो दादी जी कहने लगी कन्या के माता पिता को बुलाओ, कन्यादान करे, हाथों में हाथ देवे दादी जी के। जब मैं सभी बहनों को देख रही थी, सभी बहनों के साथ में उनके माता पिता साथ में थे और मेरे माता पिता तो थे ही नहीं जो मेरे हाथ में हाथ देवे। तो जैसे मैं चाचा को देखी और मैंने कहा मेरे तो माता पिता है ही नहीं जो दादी के हाथ में हाथ, और मुझे अचानक ही रोना शुरू आ गए और मैं रोने लगी। तो दादी कहती क्या क्यों रो रही हो? मैंने कहा दादी सबके माता पिता है, मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ परमात्मा से शादी, तो भी मेरे माता पिता नहीं आए हैं, तो मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ ना उनकी नजरों में, तो ऐसे करके मैं रोने लगी। तो फिर दादी प्रकाशमणि ने देखा कि रो रही है, तो कहा क्यों रो रही है आपकी लड़की, क्या हुआ? कहती इसके माता पिता नहीं आए ना। तो बोले क्यों इसके माता पिता नहीं ज्ञान में चलते? तो फिर दादी ने थोड़ा शॉर्ट में बताया कि विरोध करते हैं वो और ये पक्की चलना चाहती है, लेकिन हमें ना इनके साथ में, ये चाचा चाची इसके माता पिता के रूप में ही है और हमें हाथ में हाथ देंगे, और ऐसे करके फिर दादी ने समझाया और फिर मेरा समर्पण हुआ, डायमंड हॉल में हुआ।
1: बहुत सुंदर। तो आपके जीवन में रोल मॉडल कौन थे, किनको आप ज्यादा आदर्श मानते थे?
0: तो मैं सेंटर की दीदियों को ही देखती थी, अपने लक्ष्य को देखती थी कि ऐसे बनना है। और जो लौकिक चाचा चाची थे तो मुझे समय प्रति समय बहुत अच्छी अच्छी धारणा की और मधुबन की मुरली की बातें सुनाते रहते थे। और जो प्रोग्राम होते थे तो आए दिन मुझे चाचा सेंटर पर लेके जाते थे, नागपुर सेंटर पर लेके जाते थे। तो पुष्पा रानी दीदी से मिलना, सावित्री दीदी जो हमको बहुत प्यार करती थी, और हमारी सेंटर की बहनें बड़ी बड़ी जो माला दीदी है अपने, उनको देखती थी, बड़ी बहनों को देखती थी कितना सुंदर जीवन है। तो उनकी ड्रेस मुझे बहुत भाती थी, जो व्हाइट साड़ी पहनती थी ना दीदी लोग, तो मुझे भी ऐसे बनना, मैं इनके जैसे सेवा करूंगी, इनके जैसे भाषण करूंगी, ऐसे मुझे बहुत आकर्षित मैं तो हुआ। और तब मुझे बहुत पक्का मान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। तब से मेरे परिवार से, मेरे परिवार वालों ने फिर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया, तो कहा आपके बाद आप मर गई हमारे लिए, कभी नहीं आना हमारे पास। तो 7 साल तक कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा घर से, कुछ भी नहीं रहा।
1: चाहे आप उनकी पसंद की शादी करो या फिर अपनी पसंद की शादी करो, एक महिला के जीवन में संघर्ष तो देखना ही है
0: जी।
1: चाहे वो मायके से हो या फिर ससुराल से हो, हर बात में खुद का निश्चय, खुद के जीवन के प्रति खुद का मार्गदर्शन। तो आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी क्लैरिटी कि मुझे यही जीवन जीना है और इसी को जीवन जीना कहते हैं, ये कब महसूस हुआ?
0: मुझे ये महसूस तब हुआ जब मैं अमृत वेला मेरे लौके चाचा चाची करते थे, और वो बाबा से बहुत दृष्टि लेके, शक्ति लेकर के वो जो भी कहते थे वो सिद्ध होता था। बाबा की बातें सुनाते थे, गांव-गांव जाते थे, सेवा करते थे, गरीब आत्माओं को देखते थे, दान धर्म करते थे, अनेक आत्माओं के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया, खुद भी परिवर्तन करते थे अपने जीवन में। और वो बातें सब मुझे देखती थी मैं आंखों से, और सीखती थी, खुद भी करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि ये जीवन बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन है। तो धीरे धीरे मुझे बहुत निश्चय होने लगा, और ऐसा लगता था जैसे बाबा की मुरली रोज मुझे पढ़ने के लिए देते थे। मैं स्टेज पर बैठ के मुरली पढ़ती थी, और एक बार तो ऐसा होता था हमारे लौकी चाचा चाची कितना मतलब ध्यान खिंचवाते थे, जब प्रेजेंट मार्कर लगाई जाती थी तो मेरे लौकिक परिवार के कम से कम 10 लोग बैठे होते थे। अब मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ ना, तो लौकिक में बोलती थी हिरण दादी, शालिग्राम चाचा जी, सावित्री चाची। कहती थी कौन है आपका यहाँ चाचा चाची, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम आत्मिक रूप से बैठे हैं। इस दीवार के बाद जाओगी ना तुम्हारा लौकिक परिवार आएगा, यहाँ कोई लौकिक नहीं, यहाँ सब अलौकिक और बाबा के बच्चे बैठे होते। जब तक तुम हम शालिग्राम भाई नहीं बोलोगे, हिरण बहन नहीं बोलोगे, तब तक हम ओम शांति भी नहीं बोलेंगे, इतना मुझे उन्होंने पक्का कराया था। तो जब मैं अपने लौकिक चाचा चाची का नाम लेती थी, दादी का, मेरे फूफा जी, मेरे मौसा जी सब बैठते थे, जब तक हमारा नाम नहीं लोगी तुम, हम ओम शांति नहीं करेंगे, बाकी सबका नाम लेती हो तो हमारा भी नाम लो। तो इतना उन्होंने आत्मिक स्थिति को भी पक्का कराया, तो मुझे एक दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा आए हैं हमारे लिए, और हमें अपना संपूर्ण जीवन इतना सच्चाई से, अच्छे से, श्रेष्ठ जीवन जीना है ताकि हम अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सके।
1: बहुत सुंदर। तो जब आप इतनी दृढ़ता और इतनी क्लैरिटी के साथ अपने जीवन का निर्णय लिया और उस पे अडिग रहे हैं, और पिछले 4 दशकों से अधिक समय से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, इस पवित्र जीवन को जी रहे हैं, सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो आप अपनी जीवन में ऐसी क्या उपलब्धियां या प्राप्तियां या जीवन में ऐसे कौन से परिवर्तन को आप देखते हैं?
0: कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी मुझे चिड़चिड़ापन होता था, तो जब कोई भी कुछ कहता था तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब मैं माउंट आबू आई, मैंने दादियों को देखा, जब माउंट आबू सेंटर पर रहने लगी, बाद में मेरा परिवर्तन हो गया, माउंट आबू आने लगी, और माउंट आबू मैंने मनोहर दादी, दादी प्रकाश मनी, दादी ईशो जी, मैंने सब दादियों को देखा, तो सब दादियों में जैसे इन गुणों की खान, इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी सुकून, हर प्रकार से जब उनको जीवन को देखती थी तो लगता था कि दादियों को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता है, न कभी जोर से भी नहीं बोलते हैं, कभी ऐसे गुस्से में आंख भी नहीं दिखाते, कितना प्यार। तो उनकी सब दादियों को देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि इन जैसे बनना है, ऐसे दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना, और निश्चय मेरा बढ़ता गया कि जो दादियों ने बाबा की शिक्षाओं को लेके इतना ऊंचा जीवन बनाया, आज विश्व में नंबर वन जीवन जी आदर्श जीवन है सभी दादियों का। दादी ने कहते लेकिन दादी माँ के रूप में प्रत्यक्ष हो गई है, तो बस ये मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे दादियाँ, और आज भी वही है कि उन जैसा बनना है और बाबा की शिक्षाओं को जो बाबा शिक्षा देते उनको संपूर्ण रीति से अपने जीवन में धारण करना है। ऐसी कोई बात न हो जाए जो मेरे से छूट जाए, तो इसीलिए मैं रोज अमृत वेला भी 2 बजे उठती हूँ। 2 बजे उठ के स्नान करके मैं 3-3 तक अमृत वेला करने बैठ जाती हूँ और 5:30 तक मेरा अमृत वेला चलता है। उसके बाद भी स्नान करके फिर मुरली क्लास में जाती हूँ। तो ये मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है कि मुझे जीना है। संकल्प बचपन से एक था कि जीवन जीना है तो ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना है, जीना है तो एक आदर्श जीवन जीना है और सच्चाई और अच्छाई के साथ जीना है।
1: बहुत सुंदर। तो वर्तमान समय में आप तो इस ब्रह्म कुमारी मुख्यालय परिसर में रहते हैं, तो आपकी क्या सेवाएं होती है?
0: अभी तो खास मतलब इस प्रकार की दीदियों ने विशेष मुझे निर्धारित नहीं किया सेवा के लिए, लेकिन जो सेवाएं सुचारू रूप से दादी जी के कॉटेज में चलती थी कि काफी भाई बहने मिलने आते हैं, उनसे हम मिलते हैं, ज्ञान की रोरियान करते हैं और आध्यात्मिक रीति से जो भी स्टूडियो में बुलाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, कई जगह मुरली सुनाने के लिए जाते हैं, ज्ञान की रोरियान चलती रहती है। तो जहाँ भी बुलाते हैं ऑल इंडिया में वहाँ भी हम जाते रहते हैं और हमारी सेवाएं हम देते रहते हैं।
1: बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच दीदी जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए और एक महिला और उसमें भी खास एक छोटी सी बच्ची को जब आध्यात्मिक ज्ञान की स्पष्टता जब मिलती है, उनके अंदर एक दृढ़ता और उनकी अपनी जीवन को सजने संवारने की एक ताकत क्या होती है और वह कैसे आगे बढ़ती है, आज हमने आपके जीवन से देखा और इसे ही कहते हैं जीना, इसी का नाम है। थैंक यू सो मच दीदी।
0: ओम शांति।
1: दोस्तों यहीं पर हम आप सभी से विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: और भगवान परम शिक्षक है, परम शिक्षक। जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है? पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में। 7वीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में, लेकिन जब 8वीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, 7वीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में 8वीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं, तो टीचर देखता रहा, ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं? पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा, ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा, बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा, अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे। और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था, तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए, जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा, आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी। और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा, कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा, सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूं, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, वो घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा, कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा, मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना, उनके कारण हूं। मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था, आज मैं जो कुछ बना बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते, इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहनें सुनाती है, जो बहनों को सुनो ऐसा लगे सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया, उसने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया। तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ? देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है। ठीक है, ओम शांति।

0: ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज कार्यक्रम का नाम है नई दुनिया नया जमाना और प्रोफेसर ओंकार चंद जी हमारे साथ हैं। आप सोच रहे होंगे जीवन रोशनी तो नहीं है, जीवन रोशनी नहीं है, ये कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। और क्योंकि प्रोफेसर ओंकार चंद जी शर्मा, जिन्होंने NIT में लेक्चरशिप भी किया है, इसके साथ साथ आपने MTech भी किया है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है और आप कई सारे यूथ्स को मोटिवेट भी करते हैं और वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन है उसके आप एडिटर भी हैं, कई लेख आप लिखते हैं, इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वर्कशॉप्स भी कराते हैं, सेमिनार्स भी देते हैं और साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो जगह जगह जाकर के आप लोगों को मोटिवेट करते हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, इको केयर के ऊपर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि इको केयर ये कॉन्सेप्ट क्या है और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या करने वाली है आगे। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्ते सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल संस्था है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग है ये, और ये इस प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको मेडिटेशन सिखाने के लिए है शायद, लेकिन आप ये इको केयर जो मूवमेंट चला रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: इको केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट ये हमारे ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट विंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम केवल मेडिटेशन ही नहीं सिखाते बल्कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो आज चैलेंजेज हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं, इकोलॉजिकल चैलेंजेज हैं, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज आज जो हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करें ताकि इस धरती को रहने लायक रखा जा सके। अगर धरती ही नहीं रहेगी, प्रकृति ही नहीं रहेगी, जलवायु में इतना बड़ा परिवर्तन होगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी दुनिया, कैसी धरती, कैसे वातावरण दे के जाएंगे। तो इसलिए हमने अपनी सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते और एक ब्रह्मा कुमारीज एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है
1: जी।
2: तो इसलिए और हम इंजीनियर्स की सेवा करते हैं, साइंटिस्ट की सेवा करते हैं, तो ये एक साइंटिफिक चैलेंज भी है, ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे और प्रकृति के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ हुआ और जिस खिलवाड़ के कारण आज हम देखते हैं नित कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा नेपाल में इतना बड़ा जो फ्लड आया, अचानक इतना बड़ा ग्लेशियर जो कहते हैं कि फुटबॉल का

0: है और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएं। तो आज हम सबका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना केवल ब्रह्मा कुमारीज की बल्कि हर आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके लिए अपने आप को अवेयर रखे, अपने अंदर जागृति लाए। इको केयर का तो सिंपल सा भाव है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण को नुकसान जैसा अभी किया जा रहा है उसे होने से रोकना है। हमने धरती और प्रकृति के लिए फिर से वो रिस्पेक्ट, एक इमोशनल बॉन्डिंग अपने मन में पैदा करनी है और एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लाना है ताकि हम इस धरती को, इस प्रकृति को बचा सकें, इसकी रक्षा कर सकें और कम से कम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे इको फ्रेंडली बनाना है ताकि हम वो चीज़ें यूज करें, उन चीज़ों को प्रेफरेंस दें जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, जो पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो इन सब उद्देश्यों को सामने रखकर हम जगह जगह जाकर भारत में ये अभियान निकाल रहे हैं। अभी तक हमारे विंग ने 30 अभियान हम निकाल चुके हैं। हर अभियान 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का होता है। एक स्थान से लेके, एक सिटी से लेके दूसरे सिटी, फिर तीसरे सिटी। तो 15 दिन का मान लो अभियान है तो हम 15 अलग अलग सिटीज, टाउन्स में जाते हैं। वहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या और गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको प्लेज दिलाते हैं कि हमने कौन कौन से चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में लानी हैं जिससे हम इको फ्रेंडली बन सकें, हम अपनी नेचर को बचा सकें।
1: जी, तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है कि इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये अभियान चलाया जाए देश भर में आपकी विंग की तरफ से?
0: हमारे विंग के माननीय चेयरपर्सन परम आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी, वो एक साइंटिस्ट रहे हैं ONGC में, काफ़ी साल उन्होंने एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में सेवाएं दी और वो ब्रह्मा कुमारी से भी बचपन से जुड़े थे। तो उन्होंने ये मन में थॉट लाया कि क्यों ना हम एनवायरनमेंट के लिए लोगों के अंदर जागृति लाएं। और अब तो यूनाइटेड नेशन भी इसके ऊपर काम कर रहा है। पिछले 30 सालों से आप देखेंगे कि UN हर साल एक कॉन्फ्रेंस, कॉप नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से, लास्ट ईयर ये कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में हुई जो इसका नाम COP30 था। तो अब सारी दुनिया में सब देशों को इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहा, धरती रहने लायक नहीं रही तो हमारी डेवलपमेंट का भी क्या फ़ायदा। हम विकसित भारत, विकसित दुनिया बना रहे हैं लेकिन अगर पानी ही पॉल्यूटेड हो गया, अगर हवा ही जहर बन गई और अगर ये मिट्टी ही विषैली हो गई तो कैसा अनाज खाएंगे, कैसा पानी पिएंगे, कैसा हमारी हेल्थ होगी और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी। इन सब बातों को ध्यान में रख के आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमारे विंग 1988 से कार्य कर रहा है और तभी से उनके मन में ये रहता था कि पर्यावरण के लिए हम अभियान निकालें। और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अराउंड, मैं समझता हूँ, 86 में ये लॉ बनाया था जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ बना। पहले तो लोग ध्यान ही नहीं देते थे कि ये भी कोई चीज़ है
1: जी,
0: लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई तो गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके पेड़ नहीं काट सकता, पॉल्यूशन नहीं कर सकता, उसके ऊपर रूल्स बनाए गए, लॉज बनाए गए। लेकिन लॉज के साथ साथ जब तक लोगों में समझ ही नहीं होगी तो लोग प्रदूषण फैलाते रहेंगे
1: जी।
0: तो हमारा काम है, हम ब्रह्मा कुमारीज के एक डेडिकेटेड मेंबर होने के नाते हम जगह जगह जाके लोगों को इसके लिए अवेयर करते हैं कि भाइयों जागो, पर्यावरण को बचाओ। एटलीस्ट दूसरा कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, लेकिन हम अपने लेवल पे कम से कम वो काम ना करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
1: ओके जी, तो ये हमने जाना कि इको केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके संकल्प कहाँ से आया और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 1988 से ये विंग बना हुआ है और भ्राता मोहन सिंगल जी जो सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि इस विंग के द्वारा इस अभियान को चलाया जाए। अब मैं आपसे समझना

0: जाऊंगी कि इको केयर में आप क्या क्या कवरेज करते हैं, क्या क्या लोगों को सिखाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं।
1: हम कई इसके पैरामीटर्स हैं। एक है फिजिकल पैरामीटर कि लोग प्रदूषण बढ़ रहा है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, पीने वाला पानी कम होता जा रहा है, जो भी है बाहर बाहर की चीजें, ये हो गया फिजिकल लेवल पे। तो हम इसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और साथ में हम एक कॉन्शियस लेवल पे भी, एक मेंटल लेवल पे भी लोगों को जागृत करते हैं कि इसके पीछे रूट क्या है, क्यों व्यक्ति प्रदूषण करता है। तो हम लोगों को समझाते हैं कि फिजिकल पॉल्यूशन इज द आउटकम, वो तो रिजल्ट है
0: जी,
1: बट द रूट इज मेंटल पॉल्यूशन। कारण मानसिक प्रदूषण है, बाहर का प्रदूषण लोगों को दिख रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति का मन प्रदूषित है, जो प्रदूषित मन का मतलब है जिस मन में नेगेटिविटी है, जिस मन में सेल्फिशनेस है, जिस मन में एंगर है, वो व्यक्ति ही नेचर के साथ खिलवाड़ करता है, नेचर की चीजों का मिसयूज करता है, रैकलेस एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति मन से खाली है, मन में जिसने नेगेटिविटी भर रखी है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति के मन में एंगर होगा वही कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, झगड़ा वही पैदा करता है। जिस व्यक्ति के मन में ग्रीड होगी, लालच होगा, लोभ होगा, वही ज्यादा से ज्यादा चीजों का ओवर एक्सप्लाइटेशन करेगा, ज्यादा से ज्यादा उनका अंधाधुंध दोहन करेगा, मिसयूज करेगा, ओवर कंजम्पशन करेगा। चाहिए उसको इतना सा, लेकिन वो उसको परवाह ही नहीं है कि इससे कोई नुकसान भी हो रहा है, तो वो उसका मिसयूज कर रहा है। घर में बैठा है, कोई बिजली की जरूरत है नहीं, फिर भी पंखा चल रहा है, फिर भी एसी ऑन है, क्योंकि उसे लगता है मेरे पास पैसे हैं, मैं बिल दे सकता हूँ। लेकिन पैसा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, जो एनर्जी वेस्टेज हो रही है, हम खाना ही खा रहे हैं, मान लो हम कितना खाना छोड़ के चले जाते हैं। जो जिस व्यक्ति का मन पॉल्यूटेड है वो आधा खाएगा, आधा छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मन में उसके पहले लालच था इसलिए ज़्यादा ले लिया, अब खाया नहीं जा रहा तो छोड़ना पड़ रहा है। तो उसका मन नेगेटिव है, मन को पॉजिटिव बनाना भी बहुत जरूरी है, साइड बाय साइड दोनों जरूरी है।
0: मतलब हमारे जो सोच की शुरुआत और जो भी पोल्यूशन है वो अपने प्लेट से ही शुरू हो रहा है फिर तो।
1: हमारे घर से, मेरी सोच से, मेरे कमरे से, फूड में भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे कॉल किया कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त दुनिया में है, एनर्जी का क्राइसिस। जब ये
0: मन की बात
1: और फॉरेन कंट्री में वो गए हुए थे और ये लड़ाई जब चल रही थी अमेरिका और ईरान इसराइल की, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े एक डिजास्टर, एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस है। उन्होंने कहा कि फूड को भी बचाना है, फूड ऑयल जो है उसको भी कम यूज करना है, दूसरा जो एनर्जी के फ्यूल है उसको तो कम से कम यूज करना ही है, फूड के लिए भी कहा। तो इसका मतलब जरूर दुनिया में इन चीजों की संकट है कि हम अपने लिए रख रहे हैं और कितने लोग हैं जिन्हें ये चीजें नहीं मिल
0: मतलब
1: पाती।
0: ग्रीड है,
1: ग्रीड इंसान की जो लालच है, लोभ है, लालसा है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठे करने की, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बना लेने की, चाहिए उसको इतनी लेकिन वो रख रहा है 10 गुना। तो कहीं से ना कहीं से वो बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, लोड नेचर के ऊपर पड़ रहा है
0: जी।
1: उसके कारण कितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं, कितने नेचर के रिसोर्सिस कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, वो यूज बेस्ड ही तो है
0: जी।
1: हम कहते हैं हमारी जरूरतें बढ़ गई, पहले सिंपल लिविंग थी तो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होता था
0: जी,
1: और आजकल वो नीड बेस्ड लिविंग थी, पर आज हमारी जिंदगी कैसी बन गई है, ग्रीड बेस्ड बन गई है। अब हमें लालच है, पहले एक कपड़े से, दो जोड़ी से गुजारा होता था, अब हमारी अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पहना जाए, कौन सा ना पहना जाए।
0: रीयूज रिसाइकल करना बंद कर दिए हैं,
1: रीयूज रिसाइकल, यहाँ तक कि प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हैं, कितना पॉलीथीन, कितना प्लास्टिक और कितना वो कचरा इकट्ठा हो रहा है जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो सड़ नहीं सकता, जो गल नहीं सकता, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और वो 100 साल तक भी उसको दबा के रखेंगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लास्टिक और पॉलीथीन सिंगल यूज
0: जी।
1: तो लेकिन आदमी सोचता है कि कौन बैग उठा के जाए, कौन कपड़े का थैला उठा के जाए या जूट का थैला उठा के जाए, तो सोचता है मैं प्लास्टिक यूज कर लेता हूँ अपने स्वार्थ के कारण, अपनी कन्वीनियंस के कारण। लेकिन उसके कारण कितना ये पोल्यूशन फैल रहा है, आप देखो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जहाँ पॉलीथीन पड़े रहते हैं वो पॉलीथीन आपकी गाय खा जाए, जानवर खा जाए, वो बीमार पड़ जाएगा, वो आपकी सीवरेज में चला गया, आपके पानी की निकासी की जो पाइप्स होती हैं उनमें चला गया, वहाँ ब्लॉक करेगा, ब्लॉक होगा तो पानी बारिश होगी और पानी निकल नहीं पाएगा, शहर में बाढ़ तक आ जाएगी। पीछे क्या है, वही आपका प्लास्टिक, वही पॉलीथीन,
0: राइट।
1: तो क्यों ना हम थोड़े जागरूक बने, एक समझदार बने और समझदार रीति से माइंडफुल कंजम्पशन करें। ये भी नहीं कि हम चीजों को छोड़ ही सकते हैं, चीजें यूज भी करनी है, लेकिन एक माइंडफुलनेस चाहिए, एक समझदारी चाहिए कि मुझे कितना जरूरत है, कितना मैंने यूज करना है, क्या मैं इसकी जगह कुछ और यूज कर सकता हूँ,
0: और मैं क्यों कर रही हूँ, देख के दूसरों को कर रही हूँ या
1: हाँ मेरे लिए आवश्यकता है या केवल शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए मैं ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी हैबिट से जुड़ी हुई है, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ी हुई है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ये कहती है कि आप कितने भी लॉज बना दीजिए, कितना भी लोगों को बता दीजिए, जब तक उनके मन सही नहीं होंगे, जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं कर लाएंगे, जब तक वो अपना वे ऑफ लिविंग चेंज नहीं करेंगे, तब तक इको केयर असल में हो नहीं पाएगा।
0: ओके, ठीक है। तो आप किन किन संस्थाओं में जाकर के क्या क्या अवेयरनेस देते हैं, कैसे देते हैं?
1: हम नंबर वन इंडस्ट्रीज में जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं वर्तमान में
0: जी,
1: और जहाँ इंडस्ट्री लगानी होती है वहाँ जंगल काटे जाते हैं
0: जी,
1: पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो अगर इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं तो वो अगर अवेयर होते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, हर जगह उनकी कंट्रीब्यूशन है
0: जी।
1: तो नंबर वन हम इंडस्ट्रीज को प्रेफर करते हैं, नंबर टू हम इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेजेस जहाँ, या कोई और भी कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ हमारे यंग लोग हैं, युवा पीढ़ी है, अगर वो युवा पीढ़ी भी जागरूक हो जाती है तो बहुत हद तक हम इस उद्देश्य में कामयाब हो सकते हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं, तीसरा हम ऑफिसेस में भी जाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, पुलिस स्टेशंस, पुलिस लाइंस, और जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो जाए और लोग हमें मिले, गांव में भी जाते हैं, लेकिन गांव के लोग ऐसा प्रदूषण नहीं करते, ज़्यादातर प्रदूषण शहरीकरण के कारण हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ है
0: जी।
1: तो हम उन लोगों को समझाते हैं और इसके रिजल्ट भी कुछ ना कुछ आते होंगे, जो कोई चार आदमी भी समझ गए, दस आदमी भी समझ गए, हालांकि हम जहाँ जाते हैं तो लोग 100, 200, 1000, 500 इकट्ठे होते हैं, उन्हें एक घंटे तक इसके बारे में अवेयर किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि भाई यू शुड हैव द रेवरेंस फॉर नेचर, आपके मन में सम्मान होना चाहिए नेचर के प्रति, नेचर के लिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म में कितना प्रकृति प्रेमी रहा है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ नदियों को भी माँ कह के पुकारा जाता रहा,
0: राइट,
1: गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ कहा जाता है ना
0: जी।
1: अच्छा, पहाड़ों को यहाँ पिता तुल्य समझा गया है, पेड़ों की भी लोग पूजा करते रहे, देवी देवता समझ के पूजा करने का भाव यही है कि हम उन्हें सम्मान देते हैं,
0: राइट,
1: हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको लगाया जाता था पहले, और आजकल लगाने के बजाय हम उनके काटने पर विश्वास करते हैं, काट देते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं आज ही एक डाटा पढ़ रहा था कि 1880 में भारत में 40% ऑफ द लैंड में फॉरेस्ट थे, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था उसमें 40% फॉरेस्ट थे
0: जी,
1: और आज ये डाटा 22% है,
0: और जनसंख्या भी बढ़
1: गई है, उस वक्त की जनसंख्या और आज की जनसंख्या 150 साल में हम लगभग 10 गुना पॉपुलेशन दुनिया की बड़ी होगी या भारत की बड़ी होगी, पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई, और उस पॉपुलेशन के लिए जो एनवायरमेंट बनना चाहिए था, जो जंगल लगने चाहिए थे, वो 10 गुना तो बड़े नहीं, और ही आधे रह गए। वो 40% से 22% पे आ गए
0: जी।
1: तो इसका मतलब फिर हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? हमें ये पौधे ही तो, पेड़ पौधे ही तो हवा को शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो एयर को तो क्लीन करना ही करना है, नेचर को तो क्लीन करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले माइंड को क्लीन करना है
0: जी।
1: बाहर का बैलेंस जो बिगड़ा है वो इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हमारा अंदर का बैलेंस आज खराब है
0: जी।
1: अब वो एक व्यक्ति जो दुखी है, टेंशन में है, उसे क्या लेना देना जंगल से, पेड़ों से? वो कहेगा एक बाल्टी क्या, मैं 10 से नहाऊंगा। वो बर्तन साफ कर रहा है लेकिन नल का ऑन है, वो ब्रश कर रहा है फिर भी पानी बह रहा है, उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है कि ये पीने वाला पानी बहुत कम है। हालांकि हम कहते हैं कि 3/4 ऑफ जो भी एरिया है वो वाटर है, लेकिन उसमें से 97% वाटर वो है जो साल्टी है, जो ओशन का है, सी का है, जिसे यूज नहीं किया जाता
0: जी।
1: केवल 3% है, और उस 3% का भी 70% हिस्सा ग्लेशियर्स में है या अंडरग्राउंड है वाटर के रूप में, जो हम वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। केवल और केवल टोटल वाटर का 0.5% या 0.3% से लेके 0.5% तक ही हमारे लिए हमारी कंजम्पशन या ड्रिंकेबल है
0: जी।
1: बहुत कम पानी है, और उसका अगर हम मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन खराब है,
0: राइट,
1: मन सही नहीं है। तो हम ये भी लोगों को समझाते हैं कि अपने मन को ठीक करो, बाहर के प्रदूषण को रोकना है तो मानसिक प्रदूषण उसका कारण है, अपने मन को सही बनाओ, सही आदतें डालो, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो,
0: तभी जाकर के आपको शक्ति मिलेगी और समझ भी मिलेगी कि आप बाहर के जो प्रदूषण है उससे कैसे
1: मुक्त हो सकते
0: हैं। और क्योंकि मन में अगर खुद के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरों के प्रति भी रिस्पेक्ट नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो प्रकृति के प्रति भी
1: नहीं होगा।
0: तो इसलिए पहले अपने
1: जो व्यक्ति दूसरों को ही रिस्पेक्ट नहीं देता, जो जीते जाते हैं ह्यूमन बीइंग, वो नेचर को क्या रिस्पेक्ट देगा?
0: जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस की बात करें हम, आप जब जाते हैं बाहर तो आपको सबसे पहले क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है लोगों को समझाने में?
1: हम लोगों को समझाते हैं तो लोगों के मन में, लोग बहुत प्यार से हमें बुलाते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, सुनते हैं, लेकिन कई बार उनका एक डाउट होता है कि अकेले हमारे से क्या होगा। जब गवर्नमेंट लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई जाती हैं और वो इंडस्ट्रीज वाले भी अपनी सेल्फिश ग्रीड के कारण इकोलॉजी का ध्यान नहीं रखते, ना अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं, तो हम अकेले क्या कर लेंगे? ये ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं
0: जी।
1: कि हमारे अकेले अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? तो हम उनको एक ही बात समझाते हैं कि अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप में हिम्मत है, कुछ करने की तमन्ना है, इरादे मजबूत हैं, तो दुनिया में बड़े बड़े काम भी अकेले लोगों ने ही किए हैं। अकेला सूरज सारे जग के अंधकार को दूर कर देता है, अकेला शेर पूरे जंगल को हिला के रख देता है, अकेली अगरबत्ती सारे कमरे में खुशबू फैला देती है, अकेली एक छोटी सी गोली, मेडिसिन, टेबलेट, कैप्सूल शरीर की भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक कर देती है। तो कभी अपने को अकेला ना समझो। अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे देख के दूसरे होंगे, दूसरे तीसरे होंगे, मान लो वो ना भी खड़े हुए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सही काम कर रहा हूँ
0: जी,
1: मैं वो काम नहीं कर रहा जो गलत है। दुनिया सही सही ही होता है चाहे उसे कोई भी नहीं कर रहा हो, और गलत गलत ही होता है चाहे सारी दुनिया उसे कर रही हो। तो मैं अगर पर्यावरण का ध्यान रख रहा हूँ तो ये मेरा अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए मेरा बहुत बड़ा एक योगदान है, कर्तव्य है, सेवा है। दूसरा करे या ना करे, ये हम उनको समझाते हैं तो वो बहुत एग्री करते हैं कि आज से हम भी आपकी तरह ही हर चीज़ का यूज़ बड़ी सोच समझ से करेंगे
0: जी। बिल्कुल।
1: एक और कहानी अगर मैं आप कहें तो मैं सुना दूं।
0: बिल्कुल।
1: वो भी इस बात को जस्टिफाई करती है। तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, अगर ना भी कर सकें तो भी आपके होने से बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनको बताया कि एक बार जंगल में आग लगी, और आग लगी तो सारे जानवर भाग गए जंगल छोड़ के
0: जी।
1: एक चिड़िया थी जो अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर के एक तालाब से ला रही थी और आग वाली जगह पे डाल रही थी
0: जी।
1: तो जब वो तालाब में पानी भर रही थी तो वहाँ हाथियों के झुंड नहा रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए चिड़िया को कहा कि चिड़िया बहन, क्या हमारे तुम्हारे इस चोंच से, चोंच के अंदर जितना भी पानी है उससे क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, बेशक आग बुझे या ना बुझे मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जिन्होंने जंगल में आग लगाई, मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जिन्होंने जंगल में आग लगी और भाग गए, मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जो जंगल में आग लगी तो वो दूर बैठ के टॉन्ट कर रहे थे, मेरा नाम उन लोगों में होगा कि जब जंगल में आग लगी तो इन्होंने जंगल की आग बुझाने के लिए काम किया।
0: राइट। तो अब आपको छोटा नहीं समझो।
1: हाँ, तो हम दूसरे कुछ भी करें, दूसरों को भी समझाएं, पर वो समझे या ना समझे, एटलीस्ट मैं अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दूं, मैं तो दे सकता हूँ।
0: बिल्कुल। तो हम सब जो इस वक्त सुन रहे हैं सब एक एक स्टेप लेंगे, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हम इस विषय को हरा भरा और फिर से रहने लायक
1: बना सकते हैं।
0: फिर भी प्रकृति का धन्यवाद कि अब भी प्रकृति हमारे
1: कितनी रक्षा कर रही है, कितना हमें देती है,
0: खाद्य भी मिलता है हमें,
1: जितनी चीजें हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो अनाज, जो फल, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, सब धरती से, सब इस प्रकृति से ही तो आ रहा है।
0: इसलिए प्रकृति माता को धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन है,
1: बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है धरती को, तभी तो धरती माता कहा गया। भारत को माता, भारत मतलब भारत की जो धरती है वो हमारी माँ है, माँ की तरह हमारी केयर करती है, तो हमें भी उसकी केयर करनी है, हमें भी उसके एक रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन की तरह बिहेव करना है।
0: जी बिल्कुल। क्या सर आप प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव?
1: हम करते भी हैं, दूसरों को करने के लिए भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि केवल प्लांटेशन नहीं करनी है, प्रोटेक्शन भी करनी है।
0: राइट।
1: प्लांट तो बहुत लोग कर देते हैं, लगाना आसान है, लेकिन उन पेड़ों को, नन्हे पौधों को छोटे बच्चों की तरह संभालना है। जैसे हम हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन पैदा करना बड़ी बात नहीं है, पैदा करने के बाद
0: नर्चर करना,
1: उनको नर्चर करना, उनको प्रिजर्व करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मेरे घर यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ मैंने 8 पेड़ अपने घर की बाउंड्री के बाहर लगाए, तो वो 8 पेड़ पिछले 5-6 साल में धीरे धीरे करके काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो जब हर रोज़ तो नहीं, या तीसरे चौथे दिन में उनको पानी देता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं देखता हूँ आज ये कितने बड़े हो गए, अब ये कितने बड़े हो गए, अब इनमें कितनी टहनियाँ आ गई, जो एक दिल को सेटिस्फैक्शन होती है। क्योंकि जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारी जो अंदर की प्रकृति है, हमारी अंदर की जो नेचर है, वो अच्छी बनती है।
0: राइट।
1: आज हमारी नेचर खराब हो रखी है क्योंकि हमने बाहर की नेचर खराब कर दी, तो अंदर की भी खराब है।
0: राइट।
1: तो अब हम उससे जुड़े, उगते हुए सूरज को देखो, पेड़ों से दिल लगाओ, पौधों से दिल लगाओ, फूलों को देखो, पत्तियों को देखो, हरे भरे खेतों को देखो, कितना दिल को सुकून मिलता है
0: जी। हीलिंग भी,
1: हीलिंग होती है और खुशी मिलती है, क्योंकि हम आजकल का जो जीवन है थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया है। पुराने टाइम में लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और सब कुछ धरती से लेते थे, इसलिए वो हमेशा तंदुरुस्त रहते थे, खुश रहते थे, हेल्दी रहते थे। आज हमने एक गैप बना दिया, शहरों में रह रहे हैं, एक कंक्रीट के जंगल बना दिए, कहाँ नेचर वाले जंगल थे, और आज हम कंक्रीट के जंगलों में बैठे हैं। लोगों ने ना कभी तारे देखे होंगे आजकल की पीढ़ी ने, ना चांद देखा होगा रात को, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं।
0: जी बिल्कुल। तो इसीलिए अपने धरती से जुड़िए, हमें अपने रूट्स भूलना नहीं चाहिए।
1: अगर फिजिकल लेवल पे भी देखें इस प्रॉब्लम को, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाएं। कुछ हम प्लेजेस लोगों को दिलाते हैं, उनको वचन दिलाते हैं कि हम वही प्लास्टिक यूज करेंगे जिसको रिसाइकल किया जा सके, जिसको जो रीयूजिंग हो, दोबारा से जिसको यूज किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना है, चाहे वो प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल के रूप में हो, पॉलीथीन के रूप में हो, बैग्स के रूप में हो, बॉटल्स के रूप में हो, हमें कम से कम उसका इस्तेमाल करना है। हमें उसकी जगह कपड़े के थैले यूज करने हैं, जूट के थैले यूज करने हैं, वो ज़्यादा देर सस्टेन करेंगे और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे। एक तो हम लोगों को इसकी शपथ दिलाते हैं, दूसरा हम लोगों को कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। ज़्यादा नहीं लगा सकते, कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो अपनी माँ के नाम लगा दो
0: जी,
1: अपने पिता के नाम लगा दो, अपने नाम पे लगा दो, कम से कम एक पेड़ एक साल में लगाओ। ज़्यादा लगा सकते हैं तो और वेल एंड गुड, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। और तीसरी चीज करनी है पानी की बचत
0: जी,
1: पानी को वेस्ट नहीं जाने देना है। अब आपने देखा नेपाल में पानी ने कितनी बड़ी प्रलय ले आया, आज हम प्रकृति को इंसान ने तंग किया तो प्रकृति इंसान को तंग कर रही है। तीसरा बिजली की बचत, एनर्जी की बचत
0: जी,
1: और चौथा फ्यूल की भी बचत करनी है। अगर हम अपने आप को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम अपनी अपनी गाड़ी में अलग अलग पेट्रोल डीजल जला के चलने के बजाय कार पूलिंग करें, इकट्ठे चलें, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कितना प्रदूषण होने से बच जाएगा। और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, उस एनर्जी को हम प्रेफरेंस दें, उस चीज़ को प्रमोट करें जो रिसाइकल होती है, रिन्यूएबल है, इसको फिर से पैदा किया जा सकता है, वो एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ऐसे कई तरीकों से हम लोगों को समझाते हैं, प्रतिज्ञाएं भी कराते हैं और उन्हें ये भी समझाते हैं कि जब हमारी नेचर और बाहर की नेचर हारमनी में थी, दोनों के बीच में सामंजस्य था, तो धरती पर सतयुग था, प्रदूषण नाम की चीज नहीं थी। आज हमारी नेचर, ह्यूमन नेचर और ये जो एक्सटर्नल नेचर है, दोनों के बीच में डिसहार्मनी जो क्रिएट हुई है, इम्बेलेंस पैदा हुआ है, इसके कारण आज सारी समस्याएं हैं। तो अब हम अपनी इनर नेचर, इनर हैबिट्स, इनर वे ऑफ थिंकिंग, उसे चेंज करें, उसे अच्छा बनाएं, सारी चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी।
0: राइट,
1: मेन घूम फिर के बात वहीं आती है
0: कि अपनी नेचर को,
1: हम कितने भी पेड़ लगा लें, हम लगाएंगे चार काटते भी रहेंगे, लेकिन मेन है कि हम वे ऑफ लाइफ सारा ये बना दें, अपनी कॉन्शियसनेस में चेंज लाएं। तो ये जो एनवायरमेंटल हीलिंग होगी ये ऐसे नहीं होगी, ये एनवायरमेंट का क्राइसिस, ये कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है, साइंटिफिक क्राइसिस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, कि आज व्यक्ति ही खराब हो रखा है।
0: राइट,
1: उसकी सोच को ही कीड़ा लग गया है। तो जब तक उसकी सोच सही नहीं होगी, हैबिट्स में चेंज नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज ना केवल बाहर बाहर से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए मोटिवेट कर रही है, बल्कि उसके रूट में भी जाके, ताकि लोगों के मन अच्छे हो जाएं, लोगों की हैबिट्स अच्छी हो जाएं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो उस तरह के लेक्चर्स भी हम देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, जो स्पिरिचुअल होता है, तो वो नेचर फ्रेंडली तो होगा ही होगा
0: जी,
1: वो इको फ्रेंडली होगा ही होगा, क्योंकि नेचर हमारी वाइब्रेशन कैच करती है। अगर हमारे वाइब्रेशन नेगेटिव है, पोल्यूटेड हैं, जो हमारे थॉट्स से जनरेट होते हैं, तो नेचर उसको अडॉप्ट करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी और उसी तरह से हमसे बिहेव करेगी। इसलिए बीच बीच में हम देखते हैं कि नेचर भी हमसे बदला लेती है, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कितनी नेचर हमें
0: हमारे अंदर ले रही के संस्कार का,
1: क्योंकि हमारी वाइब्रेशन को वो कैच कर रही है। हम नेगेटिव हो गए हैं तो नेचर भी उसी तरह से फिर बिहेव कर रही है। अगर हम पॉजिटिव रहें, नेचर का रिस्पेक्ट करें, क्यों नेचर को देवी देवता मानकर, माँ मानकर उसकी पूजा की गई, ताकि हमारा रिस्पेक्ट, हमारा जो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड नेचर के प्रति है वो बना रहे
0: जी,
1: हमें लगे कि हम, वो हमारी माँ है, तो हमें उसका दोहन नहीं करना, उसका शोषण नहीं करना, माँ से उतना ही लेना है जितना हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, अंधाधुंध उसका मिसयूज नहीं करना है। तो पहले ऐसी सोच थी, पर आजकल ग्लोबल वे ऑफ लाइफ बदल गया है, आजकल लोगों को इन चीज़ों की परवाह नहीं रही। डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन है, और जिसकी सजा सबको भोगनी पड़ रही है। लेकिन अब सबको इसके ऊपर अवेयर होना पड़ेगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और ब्रह्मा कुमारीज समाज के कंधे से कंधा मिला के, देश की सरकार के साथ भी कंधे से कंधा मिला के इस दिशा में काम कर रही है। हम पूरे भारत में हर जगह जा रहे हैं। पिछले महीने हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश थे
0: जी।
1: जून और मई में हम गुजरात और महाराष्ट्र में थे
0: जी।
1: अप्रैल में हम हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और J&K में थे। तो जगह जगह हमारी टीम जाती है और इस दिशा में अवेयरनेस और लोगों को अलर्ट करने का काम कर रही है
0: जी। तो आगे आपके क्या लक्ष्य, भारत के पूरे जितने भी जिले हैं सभी जिले में जाने का, सभी
1: स्टेट
0: में
1: चाहते तो हम हैं कि सब जगह तक हम पहुंचें। लगभग 650 जिले शायद हैं, या मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा हूँ भारत में। तो हम जगह जगह जाएं और लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक करें, क्योंकि जब हम दूसरों को समझाते हैं तो हमें भी याद रहता है कि भाई मुझे पॉलीथीन कम से कम यूज करना है, मुझे अब कपड़े वाला थैला ज्यादा से ज्यादा यूज करना है।
0: तो उनको फिर से याद दिलाना,
1: हमें भी, हम भी अपने को भी रिमाइंड कराते हैं, दूसरों को भी रिमाइंड कराते हैं। तो जल जन अभियान भी ब्रह्मा कुमारी ने छेड़ रखा है कि जल को भी बचाना है और साथ में प्रदूषण को भी बचाना है। ये धरती रहेगी तभी तो हम रहेंगे, नहीं तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो जंगल हमारी हवा को शुद्ध करते हैं, जो नदियां हमें पीने के लिए पानी देती है, जो मिट्टी हमें खाने के लिए कितनी चीजें दे रही है, अगर वो धरती ही नहीं रही, वही पॉल्यूटेड हो गई, तो फिर कहाँ हम जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी, उसके ऊपर जरूर सोच विचार करना चाहिए
0: जी। बिल्कुल। तो आपके आगे के जो जर्नी है आपके विंग के माध्यम से, साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग के माध्यम से, तो हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अगर आप कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप मतलब उनके गांव में हो, उनके डिस्ट्रिक्ट में हो, उनके स्कूल कॉलेजेस में करना चाहते हैं ये प्रोग्राम, तो किससे संपर्क कर सकते हैं?
1: हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं और वो तो एक फिक्स्ड प्रोग्राम होता है कि इस महीने वहाँ जाना है। अब नेक्स्ट इस सितंबर में हमने उड़ीसा को चुना है, सितंबर और अक्टूबर में। बाकी हमारी ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस हर गांव में हैं, हर शहर में हैं, वहाँ संपर्क किया जा सकता है और उनके माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम वो लोकल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं
0: जी।
1: और हमें यहाँ हेडक्वार्टर से भी इनवाइट करके हम भी वहाँ ये प्रोग्राम देने के लिए जा सकते हैं।
0: ओके। तो आप रेडियो मधुबन अगर सुन रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं 94-14-15-14-15 यानी कि 9414151415 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें इको केयर के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट इस मुहिम के बारे में आपने बताया। उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ जुड़ करके कार्य करेंगे, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, शुक्रिया,
0: नमस्ते,
1: शांति, नमस्ते।
0: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये था कार्यक्रम नई दुनिया नया समाना। ऐसे ही हम पर्यावरण से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट एंथुजियास्टिक है, उन लोगों से आपको मिलवाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। और आज हम लोग एक ऐसे करियर के बारे में बातें करेंगे जो सम्मानजनक भी है और सेवा प्रदान करियर है। जी हां साथियों, मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही सुंदर सम्मानजनक सेवा प्रदान करियर है, दंत चिकित्सा, डेंटिस्ट। जी हाँ साथियों, एक सम्मान और सेवा प्रदान करियर है डेंटिस्ट बनना। जी हाँ साथियों, आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है दांतों की परेशानी झेल रहे हैं, दांतों के अंदर कीड़े लगना, बहुत सारे ऐसी समस्याएं दांतों के साथ हुई हैं, क्योंकि दांतों को ठीक रखना ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, जिसके कारण आज जगह जगह आप देखेंगे शहरों में गांव में डेंटिस्ट ही जो है क्लिनिक मिलते हैं। दंत चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं जो दांत, मसूड़े और जबड़े और मुख्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निदान और उपचार करता है। आज के समय में जहां पर एक हेल्दी टीथ यानी स्वास्थ्य दांत केवल सुंदर मुस्कान का प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसे में दंत चिकित्सक का करियर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है बल्कि सामाजिक सेवा और मानवीय संतोष से भी भरपूर है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग एक अच्छे डेंटिस्ट करियर के बारे में बातें करने वाले हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी कुछ ही पल में आपके लिए। आप सुनाए हैं रिमोट 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं दंत चिकित्सक बनने की योग्यता के बारे में। अब साथियों, एक डेंटिस्ट बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय के साथ पास होना आवश्यक है। इसके बाद NEET यानी नीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में प्रवेश मिलता है। ये कोर्स लगभग 5 वर्षों का होता है जिसमें 4 वर्ष की पढ़ाई और 1 वर्ष की इंटर्नशिप शामिल होती है। BDS के बाद जो छात्र और अधिक विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं वे MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं। इसमें ऑर्थोडेंटिक्स, ओरल सर्जरी, पीडोडेंटिक्स और बहुत सारे अलग अलग विकल्प, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जैसी कई शाखाएं उपलब्ध है। अब फिर आपकी रुचि के अनुसार आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा एक अच्छे करियर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम लोग अगर समझें तो एक दंत चिकित्सक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज के समय में वे निजी क्लिनिक खोल सकते हैं, सरकारी या निजी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बन सकते हैं या फिर शोध के क्षेत्र में भी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लीमेंटोलॉजी और डिजिटल डेंटिस्ट्री जैसे आधुनिक क्षेत्र में भी अपार संभावनाएँ समाई हुई है। तो आपके लिए क्षेत्र कम नहीं है, क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन आप किस में रुचि रखते हैं उसके ऊपर आप शूट कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा आपको रुचि है उन्हीं चीज़ों को लेकर आप अच्छा जो है शूट कार्य कर सकते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जीवन कौशल करियर ऑप्शन कार्यक्रम में डेंटिस्ट करियर के बारे में। तो चलिए, आशा करूँगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट है जो सिर्फ दांतों को इम्प्लांट करते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन वो है, यानी आपके दांत ख़राब हो जाते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं 70-80 तक पहुंच जाते हैं तो उनके दांत अगर ख़राब होते हैं तो सारे दांतों को वो इम्प्लांट भी करते हैं। और कुछ जगह पे आप जितनी चाहे उतनी दांत लगा सकते हैं और कुछ जगह पर ऐसा करते हैं कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो पूरे के पूरे एक जो है चेंज कर देते हैं और उसमें नया आपको दांत लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं और कई बार हमारे जो है दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है, तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है और वो चीज़ें समय पर अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है शरीर का हर अंग कितना इम्पोर्टेंट है ये इससे हम समझ सकते हैं। दांतों की सड़न या फिर दांतों की कमी के कारण भी हमारे चेहरे पर मुस्कान कम हो जाती है। तो हमारे चेहरे की, हमें अगर अपने चेहरे की मुस्कान बढ़ाना है तो दांतों की सफ़ेदी बरकरार रखना, तो इसलिए आज डेंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आपके आसपास में दिखाई दे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आज के समय में बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और 4 से 5 साल अगर आप मेहनत करते हैं पढ़ाई का तो आप लाइफ टाइम के लिए एक अच्छे करियर कौशल को अपना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जहां पर हम डेंटिस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, दंत चिकित्सा। जी हाँ साथियों, एक सफल दंत चिकित्सक बनने के लिए केवल डिग्री की नहीं बल्कि कुछ विशेष कौशल की भी जरूरत होती है। अवश्य जैसे कि मरीजों से अच्छे संवाद की क्षमता। अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, उनके पास अगर आप अच्छे से बात करते हैं, उनको ट्रीट अच्छा करते हैं, तो वो आपके परमानेंट ग्राहक भी बन जाते हैं और साथ ही साथ एक सम्मानजनक जो है भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है धैर्य और संवेदनशील रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दंत चिकित्सा में काफ़ी मशीनरी यूज़ होती है, तो यहाँ पर धैर्य के साथ आपको काम करना है, संवेदनशीलता आपके अंदर हो। तीसरा हाथों की सफाई और एकाग्रता, क्योंकि मशीन जो है वो स्पीड वाली होती है और बहुत सारे चीज़ें वायर्स आपके हाथ में होते हैं, प्लस पेशेंट की जो है बहुत ज़्यादा निगरानी के साथ देखा जाता है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। तो हाथों की सफाई और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है और इसके साथ में आती है नवीन तकनीकों को सीखने की इच्छा भी हो और जिससे आपको मरीजों को आसानी से चेक कर सके और उनका इलाज आसानी से कर सके। आखिरी में स्वच्छता और अनुशासन, ये बहुत ज़रूरी क्योंकि दांतों की सफाई के साथ साथ आपके आसपास की चीज़ें भी उतनी ही स्वस्थ स्वच्छ और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। साथियों यहाँ पर करियर की संभावनाएं जो है बहुत है और एक दंत चिकित्सक के रूप में

बैठते हैं, जिससे ये जागरूकता क्या ही कमाल है कि आज ग्रामीण लोग भी इस दंत चिकित्सा के बारे में जान चुके हैं और वो भी अपने दांतों का इलाज करते हैं। साथियों, समाज में दांत चिकित्सा की भूमिका कैसी है? समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेंटिस्ट। वे केवल दांतों का इलाज ही नहीं करते, बल्कि लोगों को स्वच्छता, सही खानपान और नियमित जांच के प्रति जागरूक करते हैं। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में दंत शिविर लगाए जाते हैं, जहां हजारों लोगों को वो मैसेज देते हैं और लोग वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए एक सम्मान का प्रोफेशन है, ये एक अच्छी प्रोफेशन है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर हम कुछ सुंदर कहानियाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, एक सफल डेंटिस्ट की कहानी आपको सुनाऊँगा थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। डेंटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर ली हमने, अब एक सफल डेंटिस्ट की कहानी भी आपके नाम। यहाँ पर मैं डॉक्टर आरती शर्मा जो डेंटिस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर आरती शर्मा की मुस्कान मिशन। जी हाँ साथियों, डॉक्टर आरती शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके गाँव में लोग दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते थे। BDS पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहर में क्लिनिक खोलने का अवसर छोड़कर अपने गांव में ही सेवा करने का निर्णय लिया। शुरुआत में मरीज बहुत कम आते थे, लेकिन डॉक्टर आरती ने हार नहीं मानी और उन्हें इस बात का एहसास भी था जब लोगों को यह पता चलेगा कुछ लोग ठीक हो जाएंगे तो अपने आप ही दूसरे लोग भी आएंगे। उन्होंने लगातार कंटिन्यू जो है अपने क्लिनिक को चालू रखा और उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को दांत साफ करने की सही विधि बताई और रेगुलर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिविर भी करती रही। महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर भी लगवाए और धीरे धीरे इसके कारण लोगों का भरोसा बढ़ गया डॉक्टर आरती शर्मा पर। और आज उनका क्लिनिक न केवल सफल है बल्कि उनके गाँव को स्वस्थ मुस्कान गाँव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर आरती मानती हैं कि दंत चिकित्सा केवल पेशा नहीं बल्कि समाज को मुस्कुराने का या मुस्कान देने का माध्यम भी है। तो साथियों, आशा करूँगा डॉक्टर आरती शर्मा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक प्रेरक कहानी है जो हमें एक अच्छा डेंटिस्ट बनने की ओर आकर्षित करती है। तो आइए यहाँ पर जाते जाते एक और सुंदर कहानी आपके लिए, डॉक्टर विवेक मेहता का। जी हाँ साथियों, डॉक्टर विवेक मेहता बचपन से ही तकनीक में रुचि रखते थे और BDS और MDS करने के बाद उन्होंने डिजिटल डेंटिस्ट्री पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने क्लिनिक में 3D स्कैनिंग, लेजर ट्रीटमेंट और दर्द राहित तकनीकों को अपनाया। शुरुआत में लोगों को नई तकनीक पर भरोसा नहीं था, लेकिन बेहतर परिणामों ने सबका मन बदल लिया। आज डॉक्टर विवेक का क्लिनिक आधुनिक दंत चिकित्सा का उदाहरण बन चुका है और देश विदेश से मरीज उनके पास आते हैं। डॉक्टर विवेक का मानना है कि यदि ज्ञान के साथ नवाचार जुड़ जाए तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई जा सकती है। साथियों, डॉक्टर विवेक ने अपनी मेहनत और लगन से नवाचार की राह चुनी और आज सफलता के शिखर पर वो है। चुनौतियाँ और समाधान। साथियों, हर करियर में कुछ चुनौतियाँ ज़रूर होती हैं लेकिन उसके समाधान भी होते हैं। हर करियर की दांत चिकित्सा के पेशे में भी चुनौतियाँ हैं जैसे दूसरे पेशे में हैं। शुरुआत में निवेश, मरीजों का भरोसा जीतना और लगातार बदलती तकनीक के साथ काम करना, लेकिन निरंतर सीखने, ईमानदारी से, सेवा भाव से इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर दंत चिकित्सक का करियर उन लोगों के लिए आदर्श है जो विज्ञान, सेवा और सम्मान को एक साथ पाना चाहते हैं। ये पेशा न केवल आर्थिक स्थिति को बनाए रखता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी प्रदान करता है। सही मार्गदर्शन, मेहनत और समर्पण के साथ दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक उज्ज्वल और संतोषजनक भविष्य सुनिश्चित किया जाता है। एक स्वस्थ मुस्कान एक बेहतर जीवन की पहचान और इस मुस्कान के शिल्पकार होते हैं डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। तो साथियों, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर अच्छा बनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए करियर के बारे में बातें करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम 69 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा को सर, ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आज के आपके फेवरेट शो को लेकर आया हूँ फिर से आपके बीच। और शो का नाम है जुनून, और आप मेरी आवाज पहचान ही रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और आज के शो का होस्ट शरद, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आप इसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। और मेरे साथ हैं आज एक फिर से एक नए जुनून के साथी, और उनका जुनून है रूरल डेवलपमेंट, उनका जुनून है ट्राइबल वेलफेयर, उनका जुनून है रेडियो कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ उनका जुनून है कि वो कैसे अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो बादल फिल्म का गीत आपको याद है ना, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो वही बात है। और ऐसे ही जुनूनी जो इस गीत को सच्चा साबित करते हैं, हमारे साथ हैं विनोद। विनोद, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में। आप तो जानी बानी आवाज हैं और मुझे लगता है श्रोता आपको जानते भी होंगे। जी विनोद
1: जी, बिल्कुल, रेडियो मधुबन से मेरा पुराना रिश्ता है और मेरी शुरुआत जो है वो रेडियो मधुबन से ही हुई है, क्योंकि रेडियो मधुबन में से ही मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी अपनाया, और अब अपनाते हुए जो है वो मेरे अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ।
0: जी, आपसे शुरुआती दौर की बातचीत में मालूम चला, और साथियों बता दूं कि दुनिया के नक्शे में जब कोटड़ा में भूख से कुछ मौतें हुई थी पिछले सालों में, और इसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया, सरकारें जागी, प्रशासन चेता, और लोगों को मालूम चला कि क्या हमारे देश में एक ऐसा इलाका भी है जो इतना पिछड़ा हुआ है। कोटड़ा उस तहसील का नाम है जहां से विनोद आते हैं, और कोटड़ा की आबादी आदिवासी आबादी है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान किए हैं, और इन विशेष प्रावधानों के बावजूद आजादी के इतने सालों बाद भी उस इलाके का विकास ना हो पाना, उसका ह्यूमन इंडिकेटर उसके पीछे रह जाना, हम सबको सब सोचने पर मजबूर करता है। और विनोद से हम चर्चा करेंगे इस इलाके के बारे में, आदिवासी जनजीवन के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में, विनोद की क्या योजना है। तो विनोद, आपको ये जुनून कैसे लगा कि आप आदिवासी समाज में काम करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के मानव इंडिकेटर से, ह्यूमन इंडिकेटर से उनके विकास की बात करते हैं, ये विचार कहाँ से आया, ये जुनून कहाँ से आया?
1: जी, वो कहते हैं ना कि स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे होते तो आसपास बहुत कुछ दिखता है, और मेरी जो पढ़ाई है वो आधी गुजरात में हुई और आधी राजस्थान में। तो 10 तक जब मैं पढ़ रहा था गुजरात में, मैंने 11 12 जो है वो आबू रोड में एडमिशन हॉस्टल में लिया, जो कि रेडियो मधुबन के थोड़ा सा सामने ही है, और उसी के जरिए मैं रेडियो मधुबन से भी कनेक्ट हुआ 2011 के बाद से, जब मैं 12वीं में या फिर 11वीं में था तब जुड़ा था, और वहीं से फिर मुझे लगा। और मेरे अंदर ये तो बहुत सारी कविताएं हैं, गीत है या फिर जानकारी है, वो इकट्ठे करने का शौक था और इकट्ठी करके जानकारी रखता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मैं करूंगा क्या या फिर बाद में काम आएगी, केवल यही एक मुझे लग रहा था मन में। लेकिन रेडियो मधुबन के टीम जो है वो हमारी हॉस्टल में स्कूल में आते थे, तो उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई रेडियो में आकर बोलना चाहता है तो बोल सकता था। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि रेडियो में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार गया तो फिर मुझे बताया गया, और उस समय मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कविताएं थी, कहानियां थी, और जो जानकारी अखबारों में आती है वो इकट्ठी कोई वो थी जो मैंने प्रस्तुत की थी। और फिर धीरे धीरे रेडियो मधुबन से जुड़ा, और उस समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, मेरा एक घर गुजरात में भी है जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो गांव में नहीं रहता था, तो जब मैं गांव में नहीं आता था, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ा तो गांव में आ गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमारे गाँव में जो है वो बिजली नहीं थी, और गांव के अंदर बोर्ड लग चुका था कि विद्युतीकरण हो चुका है, तो फिर मुझे लगा कि बिजली लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सरपंच को लेटर लिखा कि हमारे गांव में बिजली नहीं है लेकिन बिजली का बोर्ड लग गया है, तो वो बिजली आने चाहिए। और फिर सरपंच ने कुछ नहीं किया, 7 दिनों के बाद फिर मैंने वो जो लेटर है उसको अटैच करके विकास अधिकारी के नाम से लिखा, पीडीओ को, बीडीओ ने भी 7 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर सीधा मैं कलेक्टर के नाम से लेटर लिखा और सरपंच वाली विकास अधिकारी वाली वो एप्लीकेशन ले जाकर कलेक्टर ऑफिस में दी। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में उदयपुर जब मैं गया मिलने के लिए तो उधर पहले लिख के देना पड़ता है पर्ची में कि मिलने के लिए कौन कहाँ से आया है। तो जैसे ही वहां पर जो पियोन या फिर जो भी होगा उन्होंने देखा कि कोटड़ा से आया है तो मुझे फिर कलेक्टर से मिलने दिया। और उस समय कलेक्टर से क्या बात ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस आबू रोड चला गया था लेकिन मुझे फोन आता है कि गांव में बिजली का काम शुरू हो चुका है। तो वो एक पहली शुरुआत थी, गांव के अंदर बिजली नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है, रात को अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सके। तो वो एक पहली शुरुआत थी लाइफ का, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बिजली लाने की स्टार्टिंग की और उसके बाद फिर हैंडपंप के लिए भी प्रयास किया। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ का, काम का। और उसके बाद फिर रेडियो से जुड़ने के बाद तो बहुत सारे कई जो प्रोजेक्ट रेडियो के थ्रू भी चले। और एक और चीज की मैं

0: मैं भील समाज से आता हूँ तो मेरी अपनी भाषा तो मैं जानता था, भील भाषा में बात करना। और अबुरोड एरिया में ग्रासे समुदाय के लोग रहते थे, उनकी भाषा हालांकि मिलती जुलती लेकिन अलग थी। तो मुझे वहाँ के रेडियो मधुबन की जो दीदी है कृष्णा बहन जी, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ की लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर जब गांव
1: जी
0: में जाकर लोगों से ग्रासे भाषा मुझे उस समय नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने वो सीखा और स्टार्टिंग की लोगों के साथ बातचीत करना। तो और लोगों को भी लगा कि ये हमारा ही एक अंदर समाज का है और हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और लोगों को भी अपनापन लगने लगा। तो जैसे स्कूलों में जाता था, स्कूलों में रिकॉर्डिंग करना, गांव में जाके लोगों से उनकी खेती के बारे में बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में, वो लोग कैसे रहते हैं, या फिर उनका जो भी गांव की जैसे समस्या है, सड़क की है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, तो जब वो लोग अपनी भाषा में बातचीत करके रिकॉर्डिंग करवाते थे तो उन्हें एक अलग खुशी होती थी। समस्या का समाधान तो शायद सेकंड नंबर पे था, पहला तो उन्हें ये
1: जी
0: लगता था कि कम से कम हमारी बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और जब वो लोग शाम को सुनते थे तो उन्हें एक अलग ही खुशी होती थी,
1: जी
0: और इस वजह से वहां के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ, जो कि वो जो जुड़ाव तब हुआ था वो जुड़ाव आज तक है। और केवल वहां नहीं, आबू रोड में मेरे अपने कोटड़ा में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और एक अलग ही पहचान छोटी सी उम्र में। और मुझे उस समय इतना ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि जब मैं रेडियो में था तो अपनी एक अलग पहचान बनी थी, और वही पहचान आज भी मेरे बहुत काम आती है। और उस रेडियो में ही रहते हुए मैंने साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल चलाना तब सीखा जो कि आज भी मैं साइकिल ही चलाता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और उधर के गांव में साइकिल चला के जाके लोगों के बीच रिकॉर्डिंग करना ये होता था। और यहाँ के कोटड़ा के तो लोग ये बोलते हैं कि साइकिल वाला आया, साइकिल वाला लड़का, मतलब वो खुशी ही अलग है।
1: जी
0: आज भी मुझे अंदर लगता है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन होना तब सफल होता है जब आप कुछ कर पाते। एक तो है कि सोच कर कुछ करना, और एक ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ हो रहा है और आप करते जा रहे करते जा रहे। मेरे साथ वैसे हो रहा था, और कभी लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब बस अपने जीवन को जी रहा हूँ और जो जरूरी लग रहा है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है ऐसा कभी ये नहीं कि मतलब मैं बदलाव के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो रहा, बदलाव की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ ऐसा।
1: जी ये बदलाव कैसा था, कि जुनून किस तरह के बदलाव के लिए है?
0: वो जो
1: नहीं
0: बदलाव है कि जैसे लोगों की एक प्रॉब्लम है कि अगर पानी की समस्या है तो रेडियो में लोग अपनी बात रख पा रहे मेरे जरिए, और मुझे ये लगता था कि हाँ रेडियो में बात जाएगी, प्रशासन तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो समाधान होगा ही। और जैसा कि गांव के अंदर सरपंच से भी तो मुलाकात होनी ही है, अगर गांव के लोग बता रहे कि ये समस्या है तो सरपंच भी समस्या के समाधान के लिए शायद कुछ प्रयास करेगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसी समय या ऑन द स्पॉट या फिर बाद में भी हो पा रहा था, क्योंकि सरपंच को भी पता चल रहा था कि लोगों की समस्या है। अगर रेडियो पे जा रही है तो गांव की एक अच्छी इमेज या कैसी इमेज जाएगी अगर समस्या रहती है तो।
1: जी देखिये, मैं ये सोचता हूँ कि जो विकास का बदलाव की जो बात आपसे हो रही है, हम ये चाह
0: हाँ
1: रहे हैं कि बदलाव किस दिशा में है, अगले 20 साल बाद आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं अपने इलाके में?
0: जी, मैं हालांकि एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, हालांकि लाइफ में अब थोड़ा सा मुझे अभी जून महीने में ही एक वर्कशॉप कहूँ या फिर कार्यशाला कहूँ संविधान प्रचारक की हुई, उसको मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद थोड़ा एक और नजरिया बदला है। उससे पहले मेरा नजरिया ये था कि जहां जहां आदिवासी समुदाय हैं, और एक और पॉइंट ये था कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के जितने भी लोग हैं और जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं उन्हें मिल पाए, क्योंकि उन सुविधाओं को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में और उनके साथ जितने भी संविधान निर्माण करता आया थे या फिर जो भी उनका सहयोग करने वाले थे, उन लोगों ने इतना प्रयास किया कि संविधान बने हुए जितना टाइम हुआ है 1950 में बना, लेकिन आज भी उन संविधान में इतना कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो सारे नियम और वो सुविधाएं लोगों को अब भी अगर कहा जाए तो अगर वो सारी सुविधाएं मिल जाती है तो बेहतर होगा। और वो सारी सुविधाएं, एक तो मूलभूत सुविधाएं जो है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन है, क्योंकि जितने अधिकार संविधान में दिए हैं वो सारे इंसान की अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। केवल मैं पहले ये सोचता था कि आदिवासी समुदाय और पीड़ित पक्ष, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि भारत के वो सारे लोग जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होनी चाहिए वो मिल पाए।
1: जी तो युवाओं को जब आप चलते हैं, कि आपने जब एकला चालों को थामा है, तो एकला चालों के आपकी गति के साथ क्या क्या और लोग जुड़े हैं आपसे, युवाओं ने कैसी प्रतिक्रिया दी आपको आपके क्षेत्र में?
0: हाँ, जैसे कि आपने एकला चालों की बात की, तो जब मेरे अपने खुद के कोटड़ा टाइम्स की मैं बात करूँ, तो जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब इसका नाम भी कुछ और था कि आदिवासी क्षेत्र की जो खबरें वो लोगों तक पहुंचे, और मैं अकेला ही जहाँ कहीं कुछ घटना हो जाती है खुद चले जाता, रिकॉर्डिंग करता। कई बार तो लोग ये भी कहते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा कुछ गलत कर दोगे, तो खतरे जैसे भी डर लगते थे, क्योंकि अगर कहीं पर हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक मौताना नाम से प्रथा है, और अगर किसी का मर्डर हो गया तो फिर वो लाश जो है वो बहुत दिनों तक रहती है, और जब तक उस लाश का फैसला नहीं होता वो रहेगी ही। और अगर मैंने एक पक्ष की बात रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे चला दिया और दूसरे पक्ष की बात को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर ऐसा भी हुआ है कि एक जगह पर मैं गया हूँ तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा है कि हम अपनी बात नहीं रखना चाहते, लेकिन उन लोगों को मैंने समझाया कि अगर आपकी बात को मैं रखूंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसके बाद फिर मैं दूसरे पक्ष के पास भी गया और उनकी भी बात को रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई तब मैं अकेला था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, हम भी इनके साथ जुड़े, और वो भी फिर अपने क्षेत्र की खुद की जो खबर है वो देने लगे। और एक और मैं बताऊं तो मेरे साथ एक मेरा साथी था प्रकाश डामोर करके, तो पहले वो मेरे साथ काम करता था, कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वापस जिस तरीके से मैं अपना खुद का चला रहा हूँ कोटड़ा टाइम्स, वैसे उसने भी अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे गुजरात के दांता तहसील करके वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि जो यूथ मेरे साथ जुड़े थे वो पहले केवल मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो अब एक साथ 3-4 मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, केवल गांव की जो खबरें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसके अलावा वो दूसरा भी काम करते हैं जिसके जरिए उनकी अपनी इनकम भी होती है। और जो लोग कोटड़ा टाइम्स के साथ जुड़े थे वो सारे वॉलेंटियर थे, और वॉलेंटियर इसलिए थे क्योंकि मेरी अपनी जो सोच थी वो ये थी कि आदिवासी समुदाय जो है वो अपना खुद का विकास कर सके, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोगों तक पहुंचा सके। और इसको शुरुआत करने के पीछे एक कारण ये था कि हमारी जो अपनी खबरें हैं, मैं अगर दूसरे मीडिया को देता हूँ मेन स्ट्रीम को, तो वो उनका मन होता तो या तो आगे उनको जगह मिल पाती तभी वो खबरें छपती थी, और इस कारण क्या होता था कि वो खबरें प्रशासन तक भी नहीं पहुंचती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए खुद का ही होना चाहिए ताकि मैं उसको अपने मेन स्ट्रीम में डालूं। और आज ऐसा टाइम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो मेरे पास न्यूज मांगते हैं कि आप गांव की अपनी जो खबरें हैं वो हमें भेजिए।
1: तो आपके इस टाइम्स आपके अखबार में, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि लोगों तक पहुंचना है तो अखबार निकाल, तो ये बात है। और गांधी जी ने तो कितने सारे अखबार चलाए, भगत सिंह जी ने काफी सारे अखबार निकाले, तो हर क्रांतिकारी का अपना अखबार रहा है। आपके अखबार में कितने लोगों की टीम है और क्या छपता है?
0: मेरा अखबार तो नहीं है, कोटड़ा टाइम्स जो है वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है और यूट्यूब चैनल है कोटड़ा टाइम्स के नाम से। और शुरुआत में इसमें 11 लोग थे, सारे वॉलेंटियर थे, अभी कुल 5 लोग हैं, वो वॉलेंटियर हैं और अपने अपने क्षेत्र की न्यूज भेज रहे हैं। और फ्यूचर में तो ऐसा भी प्लान है कि जो कोटड़ा टाइम्स यानी कि उसके अंदर केवल कोटड़ा की न्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे आबू रोड हो गए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र आसपास के हैं, करीबन 6-7 तहसील और 4-5 जिले हैं, उनको मैंने शामिल किया हुआ है।
1: आप इस कम उम्र के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं विनोद जी?
0: मैं शुरुआत रेडियो मधुबन की बात से करना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो मधुबन में रहते हुए ही बहुत सारे जगह ट्रेनिंग में भी गया, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा और समझा है। और रेडियो में रहते हुए ही मैंने कैसे लिखना है, कैसे ऑडियो एडिटिंग करनी है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सब कुछ सीखा था। अगर रेडियो मधुबन नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, अपना खुद का चैनल बनाया है और लोगों का इंटरव्यूज ले पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि बड़े पोस्ट पर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना सामान्य होगा, लेकिन आज मैं आराम से अगर कोई भी बड़े पोस्ट का व्यक्ति है तो उससे मिलके उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया, तो रेडियो में रहते हुए जितने जो प्रोजेक्ट थे जो कि आदिवासी समुदाय को लेकर भी कुछ बनाए थे, एक तो पेशा एक्ट की जानकारी वाला था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उसमें टोटल 11 शक्तियां थी और उनके ऊपर आदिवासी भाषा में गीत, आदिवासी स्टोरीज बनाई गई और आदिवासी नाटक उसमें कार्यक्रम के लिए शामिल किए गए। और इसके अलावा जो है वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारे कार्यक्रम किए थे और उसके

0: आदिवासी समाज की जो संस्कृति है वो बची रहे उसको लेकर रेडियो मधुबन में सिंगिंग का कार्यक्रम हुआ था, मेरी आवाज ही पहचान नाम से। तो फिर मुझे खुद को भी लगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो तो हिंदी गीत का हुआ है, तो हमारे आदिवासी गीतों का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस समय रेडियो मधुबन की टीम और हम सब लोगों ने मिलकर, मुझे लगा तो वो हम लोगों ने डिजाइन किया कि आदिवासियों के गीतों का कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिशन होना चाहिए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उस कार्यक्रम का नाम रखा था मेरी आवाज आदिवासियों की पहचान, इस नाम से था और वो पूरा आदिवासी भाषा में ही था। और उसके जो गीत है वो उस समय रिकॉर्डिंग किए गए थे और कई बच्चों को कैसे गीत बनाने हैं उसकी भी जानकारी नहीं थी, मुझे खुद को भी नहीं थी क्योंकि मैं भी गांव में ज्यादा नहीं रहता था। लेकिन मैंने खुद ने भी फिर गानों को सीखना शुरू किया और लिखना शुरू किया, और फिर जो बच्चे ऑडिशन में सिलेक्ट हुए फिर राउंड में आए उनको फिर मैंने देशभक्ति गीत है, संस्कृति का गीत है, प्रकृति का गीत है, वो सब कुछ कैसे लिखना है वो उन्हें गाइड करके करवाया और फिर ये कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम जब मैंने रेडियो में किया तो उसके बाद जैसे ही मैं रेडियो से 2017 में गांव लौट जाता हूँ उसके बाद फिर मैंने अपने ही क्षेत्र में यहाँ की स्कूलों के साथ एक दूसरा नया कार्यक्रम डिजाइन करके करवाना शुरू किया था। हालांकि कोरोना आने की वजह से फिर वो बीच में ही अटक गया था, लेकिन शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ते पर चलते हैं तो चुनौतियां तो आती ही है, और उन चुनौतियों के बीच में जो है वो प्रयास जो है वो जारी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जारी रहते हैं। तो हालांकि काम तो उस समय सिंगिंग का ये सब कुछ रुक गया, क्योंकि मैंने एक ये भी सोचा था कि हमारे जो आदिवासी अपने गीत है वो ये जो टैक्सी वगैरह चलती है उसमें भी बजने चाहिए। तो उस समय मेरी कल्पना थी और मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि वो टैक्सियों में गीत बजेंगे, क्योंकि जब भी मैं टैक्सियों में गुजरता था तो हिंदी गाने, गुजराती गीत यही बजते थे। और आज ऐसा समय है कि आबू रोड में भी और हमारे इस एरिया में भी और गुजरात का भी जो आदिवासी एरिया है वहां पर हमारे आदिवासी कलाकारों के जरिए आदिवासी गीत जो है वो प्ले हो रहे म्यूजिक वाले। तो वो भी एक बदलाव मेरी वजह से तो नहीं आया लेकिन आया है, ये मैं देख पा रहा हूँ।
1: जी, मेरे रेडियो के साथियों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, और हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी विनोद, और विनोद ने अपनी यात्रा, अपने जुनून के बारे में भी कुछ कुछ बातें हमसे की हैं, लेकिन हम उससे उसके बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे विनोद से। और विनोद से जानना चाहेंगे, विनोद, आदिवासी समाज में कौन सी कुरीतियां हैं जो अभी भी युवाओं के मध्य हैं और उनके विकास में क्या महत्वपूर्ण बाधा आपको लगती है और सरकार उसमें कैसे सहयोग कर सकती है?
0: तो मैं अपने जितने भी रेडियो मधुबन के श्रोता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोहताना जो है वो आदिवासी समाज में बहुत पहले से चलती आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण लोगों को अपने घर बार छोड़ के चले जाना पड़ता है। और इसका अर्थ ये होता है कि मौत का मुआवजा, यानी कि किसी की मौत हो गई है तो उसका मुआवजा देना, यानी कि जब तक उस मौत का मुआवजा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी। और मौत होने का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी है, डिलीवरी हो रही है उसकी और अचानक उसकी मौत हो गई, तो उसके पीर पक्ष के जो लोग हैं वो उसके पति से पैसे की मांग करेंगे, और जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो या तो अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खेत में है खड़ा और सांप ने काट लिया और वो खेत किसी और का हुआ, तो जिसका खेत है उसको मौत का मुआवजा भरना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमारे एरिया में एक केस हुआ था जिसमें जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु बिजली के संपर्क में आने से हुई, बिजली लगने से, तो उसका जो मुआवजा है वो सरकार से मांग की लोगों ने और सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ा। तो तब तक कुछ नहीं होता है जब तक लाश को उठाया नहीं जाता। ये है मोहताना, और ये जो परंपरा वो पहले से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, और इसे रोकने के लिए समाज के जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन इतनी सफल नहीं रही। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं रेडियो में था तब कोटड़ा SDM कार्यालय से मुझे इसी के लिए सम्मानित किया गया था, मोहताना की कुप्रथा को हटाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है इसीलिए, और मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ये अभी भी लग रही है। तो वो

0: सम्मान मुझे नहीं लगता है कि सही था। और क्योंकि केवल प्रयास करने से ये नहीं हो रहा है, हर एक इंसान के अगर ये अंदर ये जागरूकता आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जागरूकता कुछ नहीं आई है। अभी जैसे एक रिसेंटली केस मैंने बिजली वाला बताया, तो एक केस ऐसा है जिसमें बाइक और टैक्सी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें टैक्सी वाले ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरा परिवार होता है वो सामने वाले पक्ष को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है और उनसे वो बात करता है कि जो बीमा राशि है उसके जरिए इसका समाधान किया जाए। क्योंकि अगर मौताना की बात भी होती है हमारे समुदाय में, तो केवल इतना होता है कि 1,50,000 या फिर 50,000 केवल राशि दी जाती है, बाकी अगर 14-15 लाख या 3 लाख की बात भी होती है तो वो राशि टुकड़ों में बटती है, लेकिन जो पीड़ित परिवार होता है उसको नहीं मिलती है। एक और बात ये कि मौताना में ऐसा भी होता है कि अगर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति का मामला है तो दूसरे गांव के जो लोग हैं वो उस गांव पे जाके चढ़ाई भी करते हैं, यानी कि पूरा गांव खाली भी हो जाता है। उस गांव के अंदर जो परिवार होता है वो परिवार, या फिर उस परिवार के अंदर भी जो उसी जाति के लोग होते हैं, उन लोगों को पूरा अपना घर बार छोड़ के चला जाना पड़ता है। दूसरा पक्ष आके लूटपाट करता है, घर बार तोड़ देता है। और रिसेंटली ऐसा ही केस गिरवर में एक महीने पहले देखने को मिला है। पुलिस भी वहां पर थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया था। तो बदलाव की काफी जरूरत है, ये जो एक प्रथा है वो अभी भी चल रही है।
1: तो इसके लिए आपने क्या अभियान शुरू किया और कैसे आपने युवाओं को जोड़ा इस प्रथा को रोकने के लिए?
0: स्टार्टिंग में जब किया था तो गांव में जाकर मीटिंगें करते थे और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस बारे में बताते थे, और सामाजिक संस्था के साथ भी मिलकर इसके लिए प्रयास किया। और प्रयास ऐसे थे कि उसमें हम लोगों को इकट्ठा करके केवल हम नहीं बात करते थे, लोगों से ही पूछते थे कि अगर ये चीजें घट रही है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। और उन बातचीत में लोग ये भी बताते थे कि कैसे एक गांव पूरा खाली हो जाता। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर तो गांव के अंदर बहुत सारे घटनाएं घटी हुई है, लोग गए हैं 10-10, 12-12 साल से और उनकी पीढ़ियां भी निकल गई, वो दूसरी जगह बाग की खेती में जाकर रह रहे हैं। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। और जो आपने पूछा युवाओं को जोड़ने की बात, तो युवा उस समय जुड़ा था और वो युवा जुड़ा था जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, और वो सारे युवा उस समय मेरे साथ मिलकर, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपना खुद का दुकान थी, बिजनेस था, वो भी मिलकर साथ में जागरूकता का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर मैं पीछे हटा, और पीछे हटने के पीछे कारण ये था कि मेरे अपने परिवार में भी मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो फिर मुझे घर आना पड़ा और फिर मैंने एक कदम पीछे लिया, तो फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि सबकी अपनी एक जिंदगी होती है और जो युवा जुड़े हुए थे वो खुद का अपने बिजनेस नौकरी में भी चले गए। अभी इस प्रथा के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो कुछ संस्थाएं काम कर रही है, और मैंने ये भी देखा है कि जो सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए बैठक आयोजित कर रहा है और कोशिश ये करता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों को समझाइश करता है, और जो भी मुआवजे वाली बात होती है वो बीमा के जरिए उन्हें दिलवाने की कोशिश की जाती है, ताकि जान हानि एक तो हुई है लेकिन दूसरी ना हो।
1: जी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक लॉजिक क्या है, मतलब इस बात को लेकर, इस परंपरा को इतने सालों तक लोग चला रहे हैं, मुआवजे का अपना एक स्थानीय कानून बना रखा है, जबकि देश दुर्घटना बीमा है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, न्यायालय के माध्यम से क्षतिपूर्ति भी होती है, इसका लॉजिक क्या है, इतने सालों से ये कैसे चल पाए?
0: लोगों के चलाने के पीछे का लॉजिक यही है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर हमने सामने वाले पक्ष को जवाब नहीं दिया तो ये और ऐसी घटना कर सकता है, केवल इतना सा लॉजिक है, और लॉजिक जो है वो पहले से चलता आ रहा है। और इसमें ऐसा भी हो रहा है कि अगर मैं कोटड़ा रहता हूँ तो मुझे स्वरूपगंज जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो अगर कुछ उस समुदाय के लोग बीच में रहते हैं तो वो पूरा रास्ता भी बंद कर देते हैं, कहीं आने जाने भी नहीं देते, ये भी हो रहा है। और लॉजिक बस इतना सा ही है कि अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारे और किसी व्यक्ति को ये मार सकते हैं, जैसे राजा महाराजाओं का बदला लेने की जो भावना रहती थी, वो भावना मतलब अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है उससे समझ पाया हूँ।
1: तो ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये पूरे क्षेत्र में है या कुछ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का समुदाय के साथ ये समस्या है, ये परंपरा?
0: केवल समुदाय में नहीं, अगर दूसरे समुदाय का भी व्यक्ति है तो उस समुदाय के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाता। कि हालांकि होता यह है कि उसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है, जिस वजह से वो दूसरे समुदाय को समुदाय नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन ऑन द स्पॉट तो उस व्यक्ति को वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि जो तुमने किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हालांकि जान हानि का नहीं करते, लेकिन पैसों की बात जो है वो पहले रहती है। और इसमें ये जो परंपरा चल रही है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के पंच है उन्हें उसमें दो पैसे मिलते हैं और पंच अपनी रोजगारी चलाने के लिए भी इसको चला रहे हैं, ये भी देखा गया है।
1: तो ये जो विवाद है, ये पंचायत में का निर्णय लिया जाता है, पंचायत का समझौता करवाया जाता है, या ये है कोई भी पक्ष इसमें पक्षकार होता है?
0: पंचायत में इसका निर्णय नहीं होता है, ये जो है वो गांव के सरपंच होते हैं, और गांव का सरपंच को हालांकि उसमें शामिल जरूर किया जाता है, लेकिन उस गांव के जो दूसरे लोग होंगे, उस परिवार से भी हो सकते हैं और उस गांव के भी लोग हो सकते हैं, वो लोग और दूसरे गांव के लोग, वो दोनों आपस में मिलकर इन बातों को समझाइश करते हैं। एक पक्ष बात करता है, फिर दूसरे पक्ष को सुनाने जाता है कि उस पक्ष का ये कहना है, और आपस में पूरे दिन चर्चा चलती है। पूरे दिन भी चर्चा हो सकती है, और ऐसा अगर एक दिन में चर्चा नहीं हुई तो 10 दिन भी चर्चा चलती है, और तब तक जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी, ना पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी तो पुलिस, क्योंकि लाश ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इसीलिए इसका निपटारा करने की कोशिश जो वो है वो जल्दी करती है। और ऐसे भी देखा गया है कि पुलिस कई जगह पर अगर एक्टिव नहीं होती है तो लाश जो है वो करीबन एक एक महीने तक भी रहती है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दों को अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा है, जहां पर करीबन 41 दिन तक लाश बर्फ की पेटी में रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, सामने वाले पक्ष पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा भी हो रहा है। और जब इन सब चीजों को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तब प्रशासन को लग रहा है कि नहीं, इसमें हमारी भी बदनामी हो रही है, तब जाकर प्रशासन जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो अभी तक अगर ये परंपरा चल रही है तो प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि लोगों की भागीदारी उसमें नहीं रहती है। और यहाँ के प्रशासन की बात की जाए तो फिर प्रशासन जो है वो दोनों पक्ष से निपटारा लोगों से ही करवाती है और उसका अपना बेनिफिट भी निकाल देती है, वो यही सच है। और फिर इस वजह से परंपरा जो वो चली जा रही है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि परंपरा खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी रोजी रोटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये एक्यूरेट बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली चल भी रहे हैं, और अगर कोई नया व्यक्ति आ गया पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो थोड़े दिन प्रयास करेगा कि ये बंद हो जाए, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ की यही परंपरा है और इसे ऐसे ही चलाना होगा, तो फिर वो चलते ही रह रही है।
1: तो इस विकृत परंपरा को लेकर सरकार ने कोई कानून बनाया है, या इसके लिए प्रशासन ने कोई नियम बनाए हैं जिससे कि इस पर रोक लगाई जाए?
0: प्रशासन ने तो नियम बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी अपनी परंपरा है और उनके अपने नियम है। एक तो रूढ़िगत परंपरा जो कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में जिसका वर्णन है, और पीस एक्ट में भी जिसका वर्णन है कि उनके अपने निपटारे जब वो खुद करेंगे तो पुलिस भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने कायदे हैं। हालांकि समुदाय नहीं जानता है, उसके बावजूद भी उसके अपने निपटारे वो खुद करता है, और इसीलिए ये नहीं रुक रहा है, और पुलिस ने भी कोई नियम जो है वो लागू नहीं कर पाती है।
1: आपको क्या लगता है पूरे इलाके में जिसमें आप काम कर रहे हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय समुदायों की क्या चुनौतियां हैं?
0: स्थानीय लोगों की चुनौतियां तो अगर देखा जाए तो हालांकि आबरूड क्षेत्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ की अधिकतर स्कूलों में टीचरों की कमी नहीं है। और कोटड़ा एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर कई स्कूल ऐसे है जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, केवल जो पंचायत सहायक है उनके जरिए स्कूलें चल रही है, और स्कूल भवन नहीं है, बच्चे आ रहे तो वो किसी और भवन में बैठ रहे हैं, एक से लेकर करीबन 4-5 क्लासे जो है वो एक साथ बैठ रही है, रोजाना जो पीरियड होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे। तो एजुकेशन की अगर ये हालत है तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो वैसे ही मैं जिस एरिया में रहता हूँ कोटड़ा एरिया में, यहाँ पर बांध बनाकर यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के प्लान भी चल रहे हैं। प्लान विस्थापित करने के हैं, ये यहाँ के लोगों को लग रहा है और सरकार को लग रहा है कि वो दूसरी जगह के लोगों को डैम बनाकर पानी बचाकर रोक कर पानी पिलाना चाहती है। तो ये भी एक यहाँ पर चुनौती देखने को मिल रही है, और इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ काम भी कर रहे हैं कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे। और जो बांध वाली बात की तो उसको लेकर मैं और मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि डैम जो है वो यहाँ पर नहीं बने, क्योंकि दो डैम बनने से करीबन 10-12 पंचायत के बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं विस्थापित, और उनके पुनर रखने की वापस जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं की गई है। हालांकि उनको जमीन दिखाई गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों से वापस अनुमति भी लेनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चुनौतियां तो यहाँ पर ऐसी है कि लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही मतलब कंप्लीट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी चीजें तो उन्हें मिलने से ही रही, क्योंकि कई गांव में ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली पहुंच गई है, लेकिन आज भी गांव के कुछ घरों में बिजली नहीं है, और कुछ बड़ी पोस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के पास से, हालांकि कहने का मेरा भावार्थ यह है, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज भी चलाई थी उसको लेकर कि एक सरपंच है उनके घर बिजली कनेक्शन जा रहा है, लेकिन जहां से कनेक्शन जा रहा है उसके वायर ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले घर में बिजली नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा कि सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, या तो लोग उस सुविधाओं को लेने का तरीका नहीं जान पा रहा है, या फिर उनको सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही है।
1: इस पूरी यात्रा में विनोद भाई आपने बताया कि आपने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा है, मोहताना की जो परंपरा है, जो कुरीति है, उसको लेकर आपने अभियान अपने इलाके में चलाया है, आपने पुलिस और प्रशासन का भी साथ लिया है, लेकिन इस पूरे अभियानों के साथ आपने एक संविधान प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और एक फेलोशिप की आपने कई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? आपको लगता है ये सारे प्रोजेक्ट निरंतरता में हैं, या इनको हम ये एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कुछ बदलाव होने का संभव है?
0: जो प्रोजेक्ट है वो निरंतर अगर चलाया जाए तो चल सकते हैं, और उन्हीं के जरिए बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में हर एक व्यक्ति के अपने टर्निंग पॉइंट आता है। जब तक मैं एक्टिव था, कुछ काम कर रहा था, तब तक यूथ भी जुड़ा हुआ था, वो भी करने के लिए प्रयासरत था। अभी मैं अगर अपनी जीवन की बात करूं तो मेरा पूरा जो शेड्यूल है पहले से अब चेंज हो चुका है। मुझे अपने समुदाय में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपनी खुद की एक अपनी शॉप है, सुबह स्कूल जाना, शॉप पे रहना, लोगों का ऑनलाइन कुछ काम है तो वो करना, और अगर मेरी अपनी लाइफ बदली है तो लोगों की अपनी लाइफ भी बदली है। और जो लोग पहले सोचते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए और कर रहे थे, तो वो जो बदलाव है वो मैं अभी सोच भी रहा हूँ, करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। पहले प्रोजेक्ट के रूप में हो रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि सिस्टम में आना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ बदलाव होंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, उनको बेसिक, मैं 8-9-10 के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं संविधान प्रचारक की जो कार्यशाला थी उसमें जाके आया, मुझे खुद को समझ में आया कि संविधान जो है वो बहुत सरल है और हमें आसानी से समझ में आ सकता है और हमारे जीवन के लिए है। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि संविधान जो है वो हमारे जीवन के लिए है, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, और मुझे केवल यही लगता था कि संविधान में हमारे अपने अधिकार है और कर्तव्य है। और कर्तव्य का ये मतलब है कि मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और अधिकार का मतलब है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। लेकिन संविधान के अंदर तो मुझे कैसे जीना है उसका भी वर्णन है, और मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करूँ ये भी वर्णन है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरा व्यवहार लोगों के साथ बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी समझ में आएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और अगर संविधान के मूल्य को, वैल्यू को, लोग ऐसा नहीं कि संविधान के मूल्य इसीलिए उन्हें करना है, लेकिन अगर वो खुद उन चीजों को समझेंगे कि मुझे सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबको अगर कोई चीज मिल रही है बेनिफिट तो मुझे जितना मिल रहा है उसको भी उतना मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे इसका समाधान किया जाए ताकि किसी को ठेस नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे। तो प्रोजेक्ट जो पहले थे वो हालांकि सीमित थे, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट को अगर वापस भी स्टार्ट किया जा सके, लेकिन उनमें वैल्यूज को शामिल करके, वैल्यू के साथ साथ ये है कि लोग उसको महसूस कर सके, क्योंकि पहले केवल ये था कि चीजें खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है, इसलिए कार्यक्रम स्टार्ट किया सिंगिंग वाला, या फिर समाज में कुछ कुरीति है और वो बदलनी चाहिए इसीलिए कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन नहीं, लोगों को अपना जीवन एकदम सुंदर बने उसके लिए अगर ये सोच बना के अगर वापस ये सारी चीजें स्टार्ट की जा सकती है तो बदलाव होंगे। और ये मैं अपने से शुरुआत जब से मैंने ये समझा है तब से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि शॉप में रहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार एक समान सा, या फिर वो लोग अगर दूसरे तरह का व्यवहार भी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जानकारी वैसे देना ताकि वो जो व्यक्ति दूसरा उसे नहीं दे पा रहा है उससे भी वो उसी व्यवहार में बातचीत करके उसको ले पाए, ताकि कुछ गलत ना हो, सब प्रेम भाव से समझ पाए।
1: तो आपकी आगे क्या यात्रा है, अब आप अपने जीवन में क्या देखते हैं, आप कैसे और इस बदलाव को परिपक्व करने, पल्लवित करने और इसको स्थायी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
0: स्थायी करने के लिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अपनी छोटी बच्ची है, अगस्त में उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और मैंने खुद से भी मतलब सोचा कि एक छोटे बच्चे का जो मैसेज है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, वो और मैं हम दोनों मिलकर कैसे लोगों तक एक जो संविधान की जानकारी है, अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, और इस तरीके से हमारे अपनी स्वतंत्रता है, या फिर जो कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता, या फिर हमारे समुदाय में भी जब किसी की मौत हो रही है, अगर मुआवजे की बात हो रही है, मौताने की बात हो रही है, तो तुरंत ही अगर वो भावना आ रही है तो लोग उस चीज को बदल पाए, वैसे कुछ विज्ञापन या फिर वैसे कुछ कार्यक्रम डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। और साथ साथ में स्कूल के जो जिन बच्चों के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उन बच्चों के साथ कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मैं कैसे इन चीजों को शामिल करूँ, ताकि बच्चे कंप्यूटर तो सीख ही रहे लेकिन साथ साथ में मूल्य को भी समझे, अधिकार को भी समझे, और उसको अपने जीवन में अपनाते हुए उन्हें जो चाहिए वो भी मिल पाए। क्योंकि अगर मैंने इन चीजों को अभी समझा है तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसकी शुरुआत अभी कर दूं तो जो अभी तक नहीं समझ पाए वो लोग भी इन चीजों को समझ पाएंगे। और समझने का मतलब यही है कि अगर मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं भी सीधा उस पर गुस्सा करूंगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो स्वभाव कैसे बदले, ऐसी चीजों के ऊपर भी मैं काम करने का सोच रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे शॉप है तो कैसे मतलब ऐसी कुछ चीजें वहां पर रहे, क्योंकि विजिटिंग तो रहता ही है, तो बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं तो चीजों को देखकर भी उसको केवल पढ़ते हैं तो भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, ये चीजें करने का प्लान है। और अपनी खुद की वेबसाइट जो है, न्यूज चैनल यूट्यूब, तो उसमें अपनी जो न्यूज चला रहा हूँ मैं, उसमें भी उन मूल्यों को शामिल करो, ताकि समस्या के साथ मूल्य जाए, कौन से अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी समस्या है ये।
1: जी, कोटड़ा में बताते हैं कि कोटड़ा में कई सालों पहले सड़क भी नहीं पहुंचती थी, और कोटड़ा में आज का जो जनजीवन है वो अब विकास की जो मूलभूत संरचनाएं हैं वो उनका विकास हुआ है, कुछ विद्यालय भी बने होंगे, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बने होंगे, लेकिन फिर भी जो ये बुराइयां हैं ये सामाजिक चेंज और सामाजिक आंदोलन से ही होगा, और सामाजिक आंदोलन के लिए किसी एक व्यक्ति को ही आगे आना होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो बुराइयां हैं लगभग सभी समुदाय में वहां एक जैसी बुराइयां हैं, तो इसका क्या कारण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो, और ये पंच पटेल जो है समाज के वो तो लेकर आगे क्यों नहीं आते?
0: जैसा कि मौताने के ऊपर बदलाव करने के लिए मैंने इस पे जब रिसर्च किया तो देखा ये कि मौताना जो है वो शुरू करने के पीछे उद्देश्य अच्छा था, लेकिन समय के साथ इसका जो उद्देश्य है वो पूरा बदल चुका। केवल इतना ही था कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए वो बदले की भावना थी, और उस समय कुछ और यानी कि मौत का मुआवजा यानी कि पैसे की बात नहीं थी, ताकि व्यवहार जो है वो बना रहे, और अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिले, इस उद्देश्य के साथ पहले का था, लेकिन वो समय के साथ बदल गया, अब केवल बदले की भावना रह गया। और अभी के जो पंच पटेल की बात करें तो उनका इतना ज्यादा बदलाव को लेकर नहीं है, लेकिन आज की जो युवा है वो इससे काफी प्रभावित है। प्रभावित होने का मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि नहीं बदल रही है, इसलिए वो अपना खुद का पैसा सेविंग करके अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे, क्योंकि घर बनाएंगे कुछ घटना घटे उन्हें घर बार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। और इसको लेकर हमारे कोटड़ा में भी कुछ जो युवाएं हैं उनका अपना ग्रुप बना के वो बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांव के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। और अगर आबू रोड क्षेत्र की बात करो तो वहां पर भी चीजें प्रचलन में है, तो वहां पर भी वहां का जो आदिवासी ग्रुप है वो अपने खुद की अपनी टीमें बनाकर अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहा है, उनकी अपनी मंथली मीटिंग भी होती है, पैसे भी सेविंग हो रहे हैं, और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और अपनी संस्कृति भी बची रहे, साथ साथ में जो परंपराएं समाज को आगे बढ़ने से रोक रहे, उन्हें रोका जा सके। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग गए हैं।
1: लेकिन एक बात तो है कि इस सबके बावजूद क्या

0: नए कानून है या जो हमारे मुआवजे का कानून है या बीमा कंपनियों के से मुआवजा प्राप्त करने का जो कानून है, दुर्घटना बीमा का प्रावधान है, तो ये सब बदलते समय के साथ जो नई वित्तीय सेवाएं सरकार ने शुरू की हैं और एक व्यवस्था बनाई है, एक जिला न्यायालय बनाया है, जिला पंचायत बनाई है, तो क्या इस सरकार के नियमों को फॉलो करने की आदिवासी समाज तैयार है?
1: आदिवासी समाज तैयार है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अगर उनके साथ, आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो अभी का यूथ है या उनके माता पिता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी अपनी शॉप है और स्टेशनरी भी है, तो दिन में करीबन 10-12 लोग रिपोर्ट के जो पेज होते वो खरीदने के लिए आते। इसका मतलब यह है कि अगर गांव में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मामला पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस तक जाने से उसका समाधान जल्दी हो सके, ये सोच लोगों में आई है, क्योंकि गांव से उसका निपटारा नहीं हो रहा है, और गांव से निपटारा नहीं हो रहा है ये भी है, प्लस गांव के लोग गांव की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो लोग भी अब चाहने लगे हैं कि समाधान जो है वो प्रशासन के पास जाए और उसी तरीके से हो, कानून के दायरे में रह कर हो।
0: एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो लिविंग की परंपरा है, इसके क्या ऐसे फायदे थे जो ये एक प्रचलन में आया कुछ समुदायों के बीच, और ये क्या सभी समुदाय में है या किसी व्यक्तिगत या किसी पर्टिकुलर समुदाय में ही ये परंपरा देखी गई है?
1: लिव इन रिलेशनशिप बाकी समुदाय का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरे अपने आदिवासी समुदाय में और जहाँ मैं रहता हूँ और आबुरुड क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो पहले बहुत ज्यादा था कम उम्र का लिव इन रिलेशनशिप, अब भी जो है लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, लेकिन 18 या फिर उससे प्लस में, और इसके पीछे के जो कारण है वो ये भी है कि समुदाय के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो उसकी जो शादी है वो तुरंत करवा सके, और इसीलिए कुछ समय तक लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर जो लड़का होता है वो खुद ही अपने पैसे कमाता है, और फिर पैसे इकट्ठे होने के बाद शादी होती है, और अगर कुछ शादी हो भी जाती है तो फिर उसकी ये भी वजह रहती है कि लड़का और लड़की साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले अगर वो रहते हैं तो उसके बाद शादी करनी है या नहीं करनी वो भी उनके माता पिता को समझ में आता है, और लड़के लड़की उन्हें भी समझ में आता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जितना ये मैं समझ पाया हूँ, ये अपना मेरा विचार है, लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से शायद मेरा अपना समुदाय वो ये भी सोच सकता है कि मैंने ऐसी क्यों बात की, तो मेरा अपना ये विचार है, मैं ये समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने देखा है, अगर किसी को ठेस पहुंचे हो तो इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ।
0: नहीं जी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो भी अपनी तरीके से सोचने के लिए आजाद है, लेकिन बात ये है कि हमें सोचना होगा संविधान के दायरे में और समाज की बेहतरी के लिए और समुदाय की बेहतरी के लिए। तो अभी शिक्षा को लेकर या नौकरी को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर क्या एक चेतना विकसित हुई है आदिवासी समाज में, उदयपुर के इलाके की जो आदिवासी समाज है उसके अंदर?
1: जी बिल्कुल, जागरूकता आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही है जो कि केवल शिक्षा का नहीं, समुदाय के बीच में जाकर भी, और रिसेंटली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बात में यहाँ बांध बनने का जिक्र किया था, और उसे रोकने के लिए यहाँ का समुदाय काफी विरोध कर रहा है। इसकी घोषणा जो है वो 2022 में हुई थी, 2026 हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन डैम बनने की शुरुआत अभी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध के पीछे यही है कि विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते हैं ये। और मैं अपनी बात करूँ तो इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बनी रहे और सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, और वो ऐसे किया गया है कि जब घोषणा हुई थी तब भी किया गया और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है, और सूचना के अधिकार के तहत ही लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसको बनाने को लेकर कहां कहां से अनुमति ली गई है और कौन से प्रावधान के तहत क्या मुआवजा मिलेगा, या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे चलने वाला है, ये जो सब बातें हैं वो सूचना के अधिकार के तहत जो डिपार्टमेंट है उनसे मांगी है लोगों ने, और सूचना के अधिकार को भी मैंने समझा तो मेरे साथ के कुछ युवा है वो भी समझ रहे, उनके खुद के नाम से RTI लगा रहे, और यही जो बात है वो एजुकेशन पर भी लागू होते, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने खुद के नाम से RTI लगा के कि कोटड़ा में आखिर शिक्षकों की जो कमी है या फिर स्कूल भवनों की कमी है वो क्यों पूरी करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर अभी चर्चाएं हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चा खुद सूचना के अधिकार को जानेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए जवाब मांग सकता है, और जवाब मांगेगा तो उसे जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो फिर उसे क्या करना है और कैसे अपनी बात को लोगों के बीच में रखना है ताकि लोगों की जागरूकता भी बढ़े, लोगों की एकता भी हो और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। प्रयास जारी है।
0: हाँ, कोशिश करने वाले की हमें और प्रयास जारी रहना चाहिए। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपको फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। बहुत ही रुचिकर और आनंददायी बात चल रही है, हमको गहराई में समझने को मिल रहा है एक समुदाय, एक कृषि के बारे में और एक युवा जीवन के बारे में, एक जुनूनी के बारे में, जिनका एक जुनून है कि वो अपने समुदाय को विकसित करना चाहते हैं और विकसित भारत 2047 के सपने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हमसे जानना चाहेंगे कि अब उनकी क्या कार्य होता है और संगठन को तैयार करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं।
1: मेरे आगे की जो योजनाएं हैं वो संविधान को लेकर ज्यादा है, क्योंकि संविधान के मूल्य लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए मेरी अपनी जो कोटला टाइम्स की टीम है मैं उसके साथ भी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में, क्योंकि केवल एक कार्यशाला अटेंड करने से मुझे ये समझ में आया कि संविधान से ही मेरा जीवन है, अगर संविधान नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ शायद मैं वहां नहीं होता, जितना मैं कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। और एक इंसान की जिंदगी जो अभी चल रही है उसमें संविधान का अपना रोल है, और वो रोल लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान है तब हम है, और तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, तभी मैं नौकरी जा पा रहा हूँ, तभी मैं गाड़ी में सफर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुली हवा ले पा रहा हूँ। क्योंकि जब संविधान नहीं बना था तब की परिस्थितियां कुछ और थी और अब की परिस्थितियां कुछ और है। तो आगे का जो मेरा खास भविष्य में सोच रहा हूँ वो संविधान की अवेयरनेस को लेकर ही ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे अभी 32-33 इयर्स चल रहे हैं, 33वें साल में मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये मेरे जीवन से है, तो वो लोगों को लोगों को एहसास हो, और वो मैं एहसास दिलाने के लिए युवाओं के साथ, गांव के लोगों के साथ फील्ड में, हालांकि जाना नहीं हो पा रहा है लेकिन कैसे भी मुझे वो टाइम निकालना है, क्योंकि सप्ताह में अगर मैं 1-2 घंटे भी समुदाय के बीच जाता हूँ तो इससे यही होगा कि मैं उनके साथ बातचीत कर पाऊंगा और जान पाऊंगा। और मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि संविधान ने हमें ये सब कुछ दिया है, केवल मेरी नॉर्मल बातचीत में वो सब कुछ आए और लोग समझ पाए।
0: जी, चलते चलते आपसे विनोद जी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है कोटड़ा का और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आबू रोड पे, अभी आधारभूत संरचनाएं जो है उसके विकास की क्या स्थिति है, और सरकारों ने क्या सफलतापूर्वक अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को कर पाया है?
1: आधारभूत संरचनाएं तो जो गवर्नमेंट की कहे या फिर क्षेत्र की कहे, जो थी पहले वो बदल रही है, और गवर्नमेंट भी जो है वो अपना देखा जाए तो 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि गांव के अंदर शिविरें हो रही है, और जो शिविरें है वो करीबन 3 महीनों में 6 महीनों में, और उनके अधिकारी जो है, चाहे सरपंच हो, पटवारी हो, विकास अधिकारी हो या तहसीलदार, SDM, सबका अपना रोल जो है वो गांव में, क्योंकि हर पंचायत में कैंप लगाकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचे उस पर प्रयास चल रहे हैं, और लोग वंचित ना रहे उसके लिए उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो या फिर उससे नीचे के जो अधिकारी हो उन्हें भी। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं सारी मिल पाए, और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि कौन से दिन कैंप है, कौन से दिन क्या कुछ हो रहा है, पर सरकार का जो प्रयास है वो पूरा चल रहा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है तो वो जागरूक युवाओं की बनती है, जिन तक मैसेज पहुंचता है कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है, वो युवा के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचे। तो और जितना मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत कम युवा जो है वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत कम युवा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे दूसरे युवा उसमें जुड़ेंगे, और जुड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि जो युवा नहीं जुड़े हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका लाभ कैसे लेना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वही युवा एक पुरुष बन रहा है, अपना परिवार बना रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन अधिकारों की जरूरत है, वो जानेगा तो फिर उसके जरिए लोगों तक भी पहुंचा सकता है।
0: जिम्मेदारी युवाओं की है और ये आपकी फाइनल बात ये हम लेते हैं आज का टेक अवे हमारे श्रोताओं के लिए, और ऐसे ही जुनूनी के साथ फिर मिलते रहेंगे। विनोद जी, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आम जन तक अपने विचार और अपनी बात आपने पहुंचाई, और एक विशेष समुदाय जिसके लिए संविधान ने भी विशेष प्रावधान किए हैं उनके साथ किए गए छोटे से विशेष प्रयासों पर की चर्चा, और ये आज का हमारा जुनून था। फिर मिलेंगे ऐसे ही साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

जब बाहर कदम रखा था एक नई दुनिया में, तब सरल मुस्कान से सब आसान बनाया आपने। जब बाहर कूल दिखने की होड़ लगी थी, तब अंदर कूल रहना सिखलाया आपने। निस्वार्थ किसी को आगे बढ़ाना देखा हमने, स्नेह से सबको अपना बनाना सीखा हमने। हर बात में इतनी आत्मीयता समाई थी कि डांट को भी प्यारा बनते देखा हमने। समाज हित की ऐसी विचारधारा हो या सादगी और उच्च विचार का नारा हो, शब्दों को जीवंत आप में देखा है, हमें बेहतर इंसान बनाया आपने। किताबों से आगे जीवन होता है क्या, हर बोल का मोल सिखलाया आपने। सभी शिक्षक जनों को रेडियो मधुबन की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हम बहुत खुशी और हर्ष का साथ आज आपका पास रखने जा रहे हैं, क्योंकि आज है शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे। हम भली भांति जानते हर साल मनाते हैं और खासकर आज का शुभ दिन पर जो संबंध है टीचर्स का और स्टूडेंट का, विद्यार्थी और शिक्षकगण का जो संबंध में जो कोऑपरेशन देखने को मिलता है और सम्मान का जो दिन होता है आज, इतने मेहनत जो सार लोग करते हैं, टीचर्स लोग करते हैं, उनको देने के लिए आज का दिन को देश भर मनाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को और सुंदर रूप में सजाने के लिए आध्यात्मिकता का साथ जोड़ने में हमारे साथ त्रिवेणी सिस्टर है, तो उनको भी स्वागत करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। दीदी आपका स्वागत है। आप टीचर्स डे के बारे में थोड़ा सा रूपरेखा बताएंगे?
1: जी, थैंक यू। आज विशेष मेरा सौभाग्य है कि टीचर्स डे के निमित्त सभी आदरणीय टीचर्स को तथा सभी स्टूडेंट स्टाफ को और सबसे प्रथम परम शिक्षक, परम शक्ति के स्रोत परमात्मा को प्रथम वंदन करती हूँ और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हर साल की तरह 5 सितंबर को पूरे भारत देश में ये टीचर्स डे शिक्षक दिन के तौर पर मनाते हैं। तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। बताया जाता है इतिहास की श्रृंखलाओं में कि एक बार कुछ छात्रों ने एक समूह के साथ भारत के हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय क्यों ना हम 5 सितंबर को इसी उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाए। तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा, डॉक्टर कृष्णन ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा। उसके बाद से 1962 से पूरे भारत देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि जैसे कहा जाता है माता पिता हमें जन्म देते हैं, जन्म देने के पश्चात जब हम बड़े होते हैं तो हमें स्कूल में डाला जाता है, स्कूल में जब दाखिला होता है तो शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करते हुए शिक्षा के रूप में एक अच्छे नागरिक, आदर्श व्यक्तित्व बनाने की भूमिका निभाते हैं।
0: जी,
1: जब हम टीचर शब्द को सुनते हैं तो टीचर्स शब्द में ही बहुत अमूल्य गुण छिपे हुए हैं। अगर हम एक एक शब्द की वैल्यूज करें तो उस वैल्यू के आधार पर हम समझ सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षा इसमें कितनी समानता है। तो सबसे पहले टीचर शब्द में टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। टी अर्थात ट्रुथ, सत्य। जिसके पास सत्य ज्ञान है वही सच्चा शिक्षक है। इस शब्द का प्रयोग किया है अर्थात एनलाइटेन, जो सत्य ज्ञान समझकर विद्यार्थी के जीवन को प्रकाशित करता है। ए अर्थात अटेंशन, शिक्षक की बातों को समझने के लिए ध्यान देने का गुण सर्वप्रथम उतना ही आवश्यक है। अटेंशन होगा तो कंसंट्रेशन को हम बना सकते हैं, और कंसंट्रेशन है तो हम इस मूल्यों के साथ साथ अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ए के बाद आता है जैसे सी, सी अर्थात क्लीन और क्लियर। शिक्षक की बातें उसी के बुद्धि में बैठेगी जिसकी बुद्धि स्पष्ट साफ होगी, उस पर कोई मैल न हो। इसलिए पढ़ाई जो है हमेशा ब्रह्मचार्य में पढ़ी जाती है। उस अवस्था में हम पढ़ते हैं जिसमें हमारी बुद्धि बिल्कुल एक क्लीन कागज की तरह होता है, प्लेन पेपर, जिसमें हम अपनी अच्छी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। एच अर्थात हाइट, ऊंचाई यानी शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जीवन का स्तर अथवा कहे चरित्र ऊंचा बन जाता है। ई इजी अर्थात सहज, ज्ञानवान मनुष्य जो होता है वे बड़ी सहजता के साथ अपने कार्य को करता है, उसके जीवन में सच्चाई होने के कारण वे सहज रीति से हर बात को स्वीकार करने के काबिल बन जाता है। इजी नेचर, मोल्डेबल नेचर, ये हमें नम्रता भी सिखाती है। तो शिक्षक नम्रता के साथ हमें इस विद्या को देता है और जब हम उसी नम्रता के गुण को समाते हुए जब अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छी बातों को धारण करते हैं तो हम अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए

0: बहुत ही सहजता के साथ अपने मन को तैयार करते हैं। आर राइट अर्थात सही और योग्य। एक महान संत से जब पूछा गया कि सही अथवा योग्य क्या है, तो उसने कहा इजी इज राइट अर्थात जो सहज है वे सही है। इस प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति के जीवन में सत्य होने के कारण सहज हो जाता है और जीवन सहज होने के कारण उसका हर कार्य सही उचित और राइट हो जाता है। ये हमें प्रेरणा मिलती है टीचर शब्द के भावार्थ में छिपा हुआ रहस्य के अर्थ से। जब हमने इसके अर्थ को समझा ही है तो प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमने बचपन से लेकर के हमारी युवा अवस्था तक हम उस टीचर के सानिध्य में रहे हैं, स्कूल लाइफ जी है, तो इस स्कूल लाइफ के जीवन में हमने बहुत सुंदर अनुभव भी किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारी शिक्षक के साथ। तो शिक्षक का क्या महत्व है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में शिक्षक की इतना ही महत्व है जितना कि हमारे श्वासों का महत्व हमारे जीवन में है। टीचर्स का गहरा प्रभाव हमारे बुद्धि के और राष्ट्र के विकास के लिए होता है। लोग, समाज और देश का विकास एवं वृद्धि शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो केवल एक अच्छा शिक्षक ही हमें प्रदान कर सकता है। जो स्वयं आदर्श होता है, उसका व्यक्तित्व आदर्श होता है, तो वह आदर्श व्यक्तित्व को ही तैयार करता है। ऐसा एक सैंपल है हमारे भारत देश में शिक्षक वर्ग। छात्रों के व्यक्तित्व को एक आकार देने के लिए या कहो उसके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स निभाते हैं। देश के लिए आदर्श नागरिक बनाने का एक बड़ा महान कार्य शिक्षक के द्वारा होता है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम।
1: सही में
0: इस आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कोरोना काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद भी शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बदलते हुए समय में भी सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से सिर्फ 12 या 6 घंटे की ड्यूटी नहीं, लेकिन 24 घंटा ऑनलाइन अवेलेबल होते हुए आज भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक हमारे समाज की न्यू ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगी हर एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हम चल नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से मूल्यवान शिक्षण के बिना हम चल नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों को चरित्रवान तथा भारत के आदर्श नागरिक में रूप देने के लिए या उस रूप में ढालने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, ऐसे शिक्षक हमारे देश में कई उदाहरण हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना तथा सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणाएं देना, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। ज्ञान के आधार से हमारे जीवन का पोषण करना, ये देहधारी शिक्षक के साथ साथ परम श्रद्धेय, परम शक्ति के स्रोत परमात्मा कार्य करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, यह भी हमें समझना उतना ही आवश्यक है। जैसे शिक्षक का स्थान हमारे लिए बहुमूल्य है, इसी प्रकार से शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों हमें शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, तो जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है वो चाहे मूल्य के रूप में हो, या किताबों के माध्यम से हो, या आदर्श शिक्षक की अनुभव की गाथाओं से हो, वे हमें पारदर्शिता, स्थायित्व और सुशासन में लाती है। सुशासन हमें अपने जीवन को ढालती है। शिक्षा वास्तव में बहुत अद्भुत एक उपकरण है, या कहो एक ऐसा एक यंत्र है, जिस यंत्र के द्वारा हम अपना व्यक्तिगत विकास कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी बुद्धि की वृद्धि करते हैं। बुद्धि का विकास, बुद्धि की स्वतंत्रता में शिक्षा ये बहुत बड़ा प्रधानता का कार्य करती है। शिक्षा हमें नैतिकता, नियम, सामुदायिक जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाना है, इसकी प्रेरणाएं प्राप्त करती है। अच्छी शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए एक ताकत बन जाता है। हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में भी ज्ञान के आधार से शिक्षक किताबों के आधार पर, या जो लेख किताबों में होते हैं, इतिहास की हिस्ट्रियां, इनके आधार से हमें प्रेरित करते हैं। निरंतर मैं कहूंगी कठिन परिश्रम करते हैं विद्यार्थियों को दिशा निर्देशन करने में, और उन्हें अच्छे करियर के लिए भी रास्ता बताते हैं। अलग अलग विद्यार्थियों में कैसे क्रिएटिविटी आए, वो हमें हमेशा प्रेरणाएं देते रहते हैं। हमें अपने कौशल्य को किस प्रकार से विकसित करना है, इसका भी मार्गदर्शन हमें शिक्षक के उस रूप में प्राप्त होता है। मैं समझती हूँ कि भारत में ऐसे कई महान अध्यापक हैं जिन्होंने अपने आप को आने वाले शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया है। उसमें से सर्वप्रथम आज जिसकी हम जयंती मनाते हैं, तो उनका प्रथम स्थान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। 40 वर्ष की शिक्षा की इस क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को हर टीचर्स के आगे एक एग्जाम्पल बनाया है, एक ऐसा रोल मॉडल बनाया है कि शिक्षक क्या होता है उनके जीवन कहानी से हर कोई प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं बात करती हूँ कि हमें स्कूलों में जो किताबों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा जो प्रेरणाएं प्राप्त होती है, उतनी ही आवश्यक प्रेरणाएं आंतरिक शक्ति की भी है। हमने किताबी ज्ञान तो पढ़ लिया, समझ लिया, उसे स्वीकार भी कर लिया, इसके आधार पर आज साइंस खड़ा है, कई इन्वेंशन हमने की है, लेकिन क्या हम आंतरिक रीति से उतने ही सक्षम हो गए हैं? हम अपने आप में पूछे, अपने मन को पूछे कि हम शिक्षा के रूप में जितना शिक्षकाओं ने बलिदान दिया है उतने हम सक्षम हैं? उस शक्ति को, उस क्षमता को अगर हमें अपने जीवन में लाना है, तो हमें जुड़ना पड़ेगा उस मास्टर टीचर के साथ। उस मास्टर टीचर को हम सुप्रीम टीचर कहते हैं, सर्वोच्च टीचर, जो किताबों के आधार पर नहीं, लेकिन एक परम शक्ति का स्रोत है। वे अपनी शक्ति के आधार से इन वैल्यूज को अपने जीवन में, आंतरिक शक्ति को विकसित करते हुए किस प्रकार से जीवन में ला सकते हैं, इसकी प्रेरणाएं देते हैं। या को प्रेरणा ही नहीं, लेकिन उस प्रेरणा के साथ साथ वो बल व शक्ति देते हैं जिसमें हम

0: ईश्वर परम पिता जो परमात्मा है, तो हमें ऐसे दिव्य संस्कारों की वो प्रेरणाएं देते हैं। प्रेरणाओं के साथ साथ दिव्य संस्कारों को अपने आचरण में लाने का बल भी प्रदान करते हैं। ऐसे परम शिक्षक को मैं प्रथम वंदन करती हूँ और अंत में इस समाज में हमारे देश के लिए जो भी शिक्षक निमित्त बने हैं, जो हमें मूल्य शिक्षा के साथ साथ जोड़ देते हैं, उन शिक्षकों को भी मैं वंदन और आभार प्रदान करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन दीदी, आपने खासकर शिक्षक, शिक्षा और परम शिक्षक इतना सुंदर रूप में तीनों को जोड़े हैं, क्योंकि ये तीनों का बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को, खासकर टीचर्स डे स्पेशल के तहत।
2: टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, बट एवरी डे इज अ टीचर्स डे इन दिस यूनिवर्स of Om Shanti. We know that we are the children of Sri Baba, our spiritual teachers. As their necessity of teaching from the childhood, your mother is the best teacher, then comes the father who shows you the path to go in the right way, to do right thing and to be always do your work and get the effort and the result. And your mom guides you to be a great human being. Then comes your technical life, where you learn engineering or doctors or anything. The teachers will teach you this subject. But the real teaching of life comes from the spiritual life. Here after coming to Om Shanti, I have known what is life, what purpose we are born, what is Atma, and what is Paratma, and how to face the blessing of Sri Baba. In Om Shanti, in this institution, not only teaches us how to be great human beings and to helping each other, but also it is giving us the immense power of control ourselves. Control our anger, control our anxiety, control our ego, control our lust. So let us come together, join hand, recognize our supreme teacher, and always we have to do Guru Vandana, because Agyana Tibirandascha Gyananjana Salakaya Chakramilitam Jena Tasme Sri Gurave Namo. From the darkness of ignorance, our teachers, it may be spiritual teachers like Sri Baba, to go to the right path and make our life easy, simple and happy.
3: गुरु दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। आज टीचर्स डे, जीवन में टीचर्स का महत्व हम सभी भली भांति परिचित हैं। हमारा माता पिता प्रथम शिक्षक बनते हैं, माता पिता के बाद हमारा शिक्षक ही शिक्षा का शिल्पकार है। उनके पास कोमल कलियां पहुंचती है, उनको शिक्षा देकर अपने स्नेह प्यार सद्भावना की जल सींच कर उन पुष्पों को पल्लवित करते हैं, समाज को सुगंधित करने के लिए लायक बनाते हैं। शिक्षक ही सारा जीवन की नींव है। शिक्षा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट, श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए, एक महान व्यक्ति निर्माण करने के लिए शिक्षक का योगदान महान है। शिक्षक दिवस मनाना हम सबके लिए गौरव की बात है। वैसे शिक्षक का गुरु की उपस्थिति में हमारे जीवन को सही दिशा मिलती है। कोई भी व्यक्ति संपूर्णता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसको सच्चे आदर्श शिक्षक मिल जाता है। शिक्षा ही हमारी चेतना का विकास करता है, संपूर्ण दुख से मुक्त कराता है। शिक्षा ही हमें जीवन की कला सिखाती है ईश्वर को।

0: हम प्रार्थनाओं में ज्ञान की रोशनी प्रदान करने की कामना करते हैं। ईश्वर ही ज्ञान का प्रकाश द्वारा अंधकार से उजाला की ओर ले जाते हैं, महान चरित्रवान अच्छे दिव्य गुणवान बनाते हैं। अगर शिक्षक अपने शिक्षा देने के साथ साथ परम शिक्षक परमात्मा शिक्षा को स्वयं के साथ साथ अगर बच्चों को प्रदान करे तो वास्तविक रूप में उनका भविष्य उज्जवल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज शिक्षक दिवस का शुभ अवसर पर आपने खासकर शिक्षक शिक्षा को लेकर इतना विस्तृत जानकारियां दी हैं। सम्मान देना चाहिए क्योंकि जिसका बदलत हम आज यहाँ तक पहुँचे, बुद्धिमान बने हैं। शिक्षक तो है ही है, शिक्षक के साथ साथ जब परम शिक्षक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मदद करता है और जिसका बदलत हम आज यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। तो हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासी इससे जरूर प्रेरणा लिए होंगे। समाज का प्रति हो चाहे हमारे बच्चों का प्रति शिक्षक का अवदान उसको स्मरण करते हैं आज का दिन में। आज का शुभ दिन पर सभी शिक्षकगण को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और शुभ भावना रखते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और किसी बात को लेकर, खासकर शिक्षक दिवस स्पेशल चल रहा है।

0: आ रही हूँ, रुको तो जरा। अरे आप लोग कौन हो?
1: मैम मैं सोमाराम हूँ।
0: कौन हो?
2: मैम मैं बबली हूँ।
3: मैम मैं किशन हूँ। 10 साल पहले आपने मुझे पढ़ाई करने के लिए समझाया था, मुझे लगा आप मेरी शिकायत करेंगे, मारेंगे, पर आपने जो शब्द प्यार से बोले उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी।
2: मैम हम सब आज आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, उन सभी शिक्षाएं और उन सभी बातों के लिए जिनके वजह से आज हम जिंदगी को जीना सीख पाए हैं। थैंक यू।
0: बच्चों इतने सालों के बाद भी तुम लोग यहाँ आए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। खुश रहो बच्चों, खुश रहो।
4: जीवन को संवारने वाले, हमें सही दिशा देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमारे हुनर को निखारने वाले, ये हैं हमारे टीचर। हमारे शिक्षकों को हम शत शत नमन करते हैं। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर रेडियो मधुबन सभी शिक्षकों को कहता है अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
5: ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं, खासकर शिक्षक दिवस पर। शिक्षक और सर्वोच्च शिक्षक यानी टीचर्स एंड सुप्रीम टीचर्स का बारे में यथार्थ ज्ञान सुनते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को।
6: हम जानते हैं बाहर का दुनिया कैसा है। पेरेंट्स जब बच्चा को स्कूल भेज देते हैं तो उनके मन में शंका ही होता है कि बच्चा ठीक से स्कूल से आ जाए। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आजकल के स्कूल में इतना सभ्यता भरना, इतना मोरालिटी देना, इतना आदर्श को समझाने के लिए समय तो नहीं है। भले बहुत डीप पढ़ते हैं जो जनरल एजुकेशन में कह रही हूँ, लेकिन एक पेरेंट्स ही ऐसे रह जाते हैं जो सिखाने वाले गुरु कह जाते हैं। लेकिन सिलेबस इतना टाइट है, बच्चे स्कूल भी जाएंगे, ट्यूशन भी करेंगे, तो समय ही कहाँ है। सारा स्ट्रेन तो स्टूडेंट पर है। तो भी मैं कहती हूँ, आग्रह है तो, उत्सुकता है तो रास्ता मिल जाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई बहनों स्कूल भी जाते हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जितना डिसिप्लिन है सब ऑब्जर्व करते हैं। अमृत वेले का योग 4 से 4:45 से शुरू करके मुरली क्लास और जो भी धारणा, जैसे सात्विक भोजन, जैसे दिव्य गुणों की धारणा और जैसे जैसे सेवा अर्थात अन्य को सहयोग देना, ज्ञान धन का डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सेवा भी करते हैं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माला दीदी। आपने वर्तमान परिस्थिति में बच्चों का विद्यार्थी जीवन में जो बोझ है, शिक्षा पद्धति को लेकर आपने स्पष्ट रूप में बताए। हमारा सभी अभिभावक और माता पिताओं को जरूर इससे फायदा मिलेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी है जो कि सब जोन इंचार्ज बरमपुर के, तो उनसे सुनेंगे आज का टीचर्स दिवस संदर्भ में शिक्षक और परम शिक्षक का बारे में। सुनते हैं दीदी जी से।
7: शिक्षा द्वारा चारित्रिक विकास होता है, शिक्षा द्वारा जीवन जीने की एक राह मिलती है, शिक्षा द्वारा अपना भविष्य उज्जवल होता हुआ दिखाई देता है कि हाँ मैं इस जीवन में कुछ कर सकता हूँ। जब तक नैतिकता जीवन के नहीं है तब तक उदासीनता विद्यार्थी के जीवन में रह जाती है। तो शिक्षा हमें एक ऐसी नैतिकता को जन्म देती है जिस नैतिकता के आधार पर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास अगर बच्चों के अंदर नहीं है तो फिर वो जितनी भी पढ़ाई पढ़ने जो भी कुछ कर ले, लेकिन वो अपने जीवन में सदा ही सदा अपने आप को समझते मैं कुछ नहीं कर पाता, माना आत्मविश्वास नहीं तो निराशा ही है, आत्मविश्वास का उल्टा पक्ष तो निराशा है ना, तो इसलिए शिक्षा हमें आत्मविश्वास पैदा करती है। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो शिक्षा का पद दिया वो विश्व के अंदर भारत की शिक्षा को एक ऊंचा स्थान दिया, और सचमुच मानना चाहिए हाँ सारे विश्व के अंदर सब प्रकार की डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन सारे विश्व के अंदर मानसिक उत्थान, नैतिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान, इसके लिए कोई शिक्षा की डिग्रियां मिल जाती हैं, कारोबार धन अथवा उपार्जन कर लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ शिक्षा से नहीं मिलती। तो मुझे याद आता है भारत का वह समय जब बच्चों के जीवन को निर्णय करने के लिए माता पिता सोचते थे कि इन्हें कौन सी शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा इस भौतिक जगत की तो चाहिए, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये शिक्षा तो चाहिए, इसके शिक्षा के बिना तो हम चल नहीं सकते। लेकिन ये जीवन हमारा दो चीज़ों से मिल करके बना है, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो जब आत्मा शरीर में है तब हम इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं भौतिक जगत को, जिससे हमारी जीविका चलती है। लेकिन आत्मा जब शरीर में है तो जीवन भी तो है ना, तो जीविका के लिए हम इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लेकिन चरित्रवान बच्चे ही उन्नत होकर के आने वाले विद्यार्थियों को दे सकते हैं, देश के लिए अच्छे नागरिकों को तैयार कर पाते हैं, देश के लिए एक ऐसे श्रेष्ठ वक्ता दे पाते हैं, देश के लिए ऐसे श्रेष्ठ कर्मठ दे पाते हैं, जिससे कि वो जिस दिशा में भी काम करें वो सच्चे होकर के करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, ऐसे नहीं कि समय को बर्बाद करें, ऐसे नहीं। वो सब जो नैतिक भावनाएं हैं, चारित्रिक भावनाएं हैं, सामाजिक भावनाएं हैं, वह ये शिक्षा इसका हमारे में वृद्धि करती है। लेकिन उससे पहले, इस शिक्षा के महत्व से पहले, भारत का एक समय था जब भारत में शिक्षा के लिए तीन स्थान माने जाते थे और उसका विश्व में भी स्थान था, विश्व भी उसको नतमस्तक होता था, मानता था। पहला स्थान था गुरुकुल, गुरुकुल भी भाइयों का अलग, बहनों का अलग, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, तो वो देहरादून में था और भाइयों का रुड़की अर्थात कांगड़ी में था। वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी भौतिक शिक्षा के साथ साथ ये आध्यात्मिक, नहीं आध्यात्मिक शब्द तो यूज़ नहीं करते, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे में हमारे वेद पढ़ाए जाते थे, जिसके अंदर हमारे को परमात्मा के बारे में, समय के बारे में, जीवन के बारे में, मनुष्य आता कहाँ से जाता कहाँ से, मुक्ति और मोक्ष के बारे में, जीवन मुक्ति शब्द बोलते थे लेकिन जीवन मुक्ति की परिभाषा वो नहीं थी, शब्द बोलते थे, वो पढ़ाया जाता है। दूसरा एक स्थान जो सिर्फ राजस्थान लेवल पर ही था, जयपुर में वनस्थली, उसको सिर्फ राजस्थान लेवल पर माना जाता था, लेकिन पूरे भारत के लेवल पर गुरुकुल जरूर माना जाता था, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जो देहरादून में था। अभी क्या है मैं नहीं जानती, मैंने भी वहाँ से ही 4 साल की उम्र से जाकर वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, अपनी शिक्षा का प्रारंभ वहाँ से किया और 7वीं 8वीं क्लास तक वहाँ शिक्षा ली। लेकिन एक स्थान और है, आज भी नालंदा में उसके खंडहर हैं, राजगिरी के पास में नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है, वहाँ से कौमार्य वंश के तो युवक पढ़ते ही थे, विद्यार्थी पढ़ते ही थे, लेकिन विश्व के कोने कोने से भी वहाँ पर उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते थे। और तीसरा स्थान हमारे भारत के अंदर एक शिक्षा का था, जिसको नैतिक शिक्षा कहा जाता है या धार्मिक शिक्षा कहा जाता है, वह स्थान था हमारा तक्षशिला, जो कि आज भारत के, जो अविभाजित भारत था तब वो भारत में, जब विभाजित भारत हो गया तो वो भारत से बाहर चला गया, लेकिन वह स्थान है। लेकिन उसकी क्या रूपरेखा है वो तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अभी गुरुकुल चल रहे हैं, किस लेवल पर चल रहे हैं वो नहीं मैं बता सकती हूँ। लेकिन हमारा जो ये है, नालंदा विश्वविद्यालय वो तो खंडर हो गया, वहाँ कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा की यादगारें हैं। एक म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पर में, और उस म्यूजियम में उनके वो चित्र दिए हुए हैं, शिष्यों के भी, वो शिष्य नहीं विद्यार्थियों के भी वो चित्र दिए हुए हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में भौतिकता की वृद्धि होती चली गई, हमारा भारत पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ने लगा, तो पाश्चात्य संस्कृति में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता तो शब्द तब नहीं था, धर्म की कमी होने लगी। इस बाह्य जगत का विकास होने लगा, मनुष्य इस जगत की चीज़ों को जानने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए बढ़ने लगा। उस समय जब ऐसा समय हो गया, तो भारत का ओरिजिनल रूप क्या था, जब हमारे भारत के अंदर धर्म अर्थात वह धारणाएं जिसका नाम कहा जाता है आध्यात्मिकता, उस आध्यात्मिकता को देने के लिए आज हम भारत के गौरव को अगर याद करते हैं, तो याद करो सत्काल को, सतयुग के काल को, जहाँ भौतिकता अपनी चरम सीमा पर थी, सुंदरता अपनी चरम सीमा पर थी, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, धन धान्य से वो संपन्न था, धन धान्य से वो संपन्न था, लेकिन साथ साथ चरित्र से भी वो श्रेष्ठ था। तो वो जगत दिव्य गुणों से संपन्न जगत कहा जाता था, जहाँ धर्म का नाम नहीं था, धर्म शब्द नहीं था, जहाँ धारणा शब्द थी, दिव्य गुणधारी मनुष्य जिनको देवी और देवता कहा जाता था। ये किसी धर्म के सूचक नहीं है, प्रतीक नहीं है, ये चित्र जो हमको मिलते हैं वो किसी धर्म के चित्र नहीं होते हैं, लेकिन ये उन धारणाओं के मनुष्य हैं, जिन मनुष्यों के अंदर उन धारणाओं का आदर्श था, जिनको हम देवी देवता कहा जाते हैं। वहाँ भी शिक्षा थी, लेकिन वो शिक्षा हर कलावान शिक्षा थी, जो हमारी कलाएँ थी। जैसे पहली हमारी कला है ये जो है नृत्य कला, नृत्य कला की वहाँ शिक्षा मिलती थी, संगीत कला शिक्षा मिलती थी, चित्रकला, ये सब कलाओं के रूप में उस समय शिक्षा मिलती थी, भाषा का ज्ञान होता था, राज विद्या थी, लेकिन राज विद्या ऐसी विद्या नहीं कि हम अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश को जीतने के लिए क्या पढ़ाई पढ़ाते, वो नहीं थी। राज विद्या मतलब राज कारोबार को कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ नेचुरल चलती थी, अननेचुरल कुछ नहीं था कि ऊपर से कोई आया और करके चला गया, नहीं। जो मनुष्य इस धरा पर, जो देवी देवता इस धरा पर जन्म लेते थे, उनके द्वारा ही ये विश्व संचालित था। धरा पर कोई और हो, संचालन कोई और करे, ऐसा कुछ नहीं था। वह चीज हमें कैसे प्राप्त हुई, तो हम सब जानते हैं आज की जो शिक्षा में कुछ सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या सुधार होना चाहिए, कौन सुधार करे, कैसे सुधार करे, और उसका सुधार का सही रूप क्या है, और बच्चे सारे उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी है, ये सब महसूस करते हैं, लेकिन संपूर्ण सुधार क्या है उसका भी नक्शा किसी के पास नहीं है, लेकिन किसी को साहस भी नहीं है कि आज के बच्चों को वो चीज़ समझा सके और बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, वो भी नहीं है। जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अन्नामलई और ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से वैल्यू एजुकेशन क्लासेस शुरू हुई, तो उन्होंने भी अपनी अपनी अन्नामलई यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एक एक क्लास चला, जिसके अंदर एक क्लासेस चलती थी। तो यह शिक्षा और एक आध्यात्मिक जगत की शिक्षा, मैं धार्मिक शब्द यूज़ नहीं कर रही, धर्म में विवाद हो जाता है, भेद हो जाता है, ऊंच नीच का भाव हो जाता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन आध्यात्मिकता जीवन से जुड़ी हुई वह चीज़ है जो हमें हमारे सांसों को, जो आज हमारी कोई भी नेगेटिव बात होती है, कोई भी उत्तेजना वाली बात होती है, सांस कितनी ज़ोर से चलता है, संकल्प कितनी ज़ोर से चलते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेन और हार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और जब वो ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो आयु कम

0: होने लगती है, कंट्रोलिंग पावर कम हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज इस शिक्षा को देखते जाओ तो आज जरूर किसी एक और शिक्षा की जरूरत है। तो इस शिक्षा के यहाँ गुरु शब्द बोलते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु शब्द उसको कहा जाता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु उसको कहा जाता है जब मनुष्य का जीवन अंधकारमय बन जाता है, तो उसे जीवन में एक प्रकाश चाहिए, जीवन के बाद प्रकाश नहीं चाहिए। जीवन रहते हुए, जीवन जीते हुए, भौतिक जगत की शिक्षा लेते हुए, भौतिक जगत के परिवार को चलाते हुए, व्यवहार में आते हुए, समाज और संबंधों में रहते हुए, अपनी नौकरी वगैरह सब करते हुए, लेकिन उसको एक ऐसी रोशनी चाहिए, एक ऐसा प्रकाश चाहिए जिसको गुरु अर्थात अज्ञान अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो ये शरीर है, इसमें आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, सब कुछ है। कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं है? रेटिना भी कोई आत्मा के अंदर नहीं, रेटिना भी आँख के अंदर ही है। लेकिन अगर रेटिना ठीक होता भी है और अगर आत्मा नहीं है शरीर के अंदर, चेतना नहीं है शरीर के अंदर, लाइट नहीं है, तो वो रेटिना भी तो काम नहीं करता ना। पल्पिटेशन हार्ट का होता नहीं, नाड़ी हमारी चलती नहीं, किडनी हमारा वर्क नहीं करती है, ब्रेन हमारा वर्क नहीं करता है, जबकि ब्रेन सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो गुरु उसके लिए चाहिए जो इस अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश की ओर ले जाए। तो शरीर एक अंधेरी कोठरी, एक अंधेरा रूम। रूम के फर्नीचर फेंक देने से हमारी समस्या समाप्त नहीं होगी, अर्थात हम एक एक चीज़ को त्यागते जाएं, फिर आखिर में घर को त्याग के जंगल में चले जाएं, तो भी हमारी शांति की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। हमारी समस्या का समाधान क्या है? हम इस समाज में रहें, परिवार में रहें, व्यवहार में आए, शिक्षा लेवें, नौकरियां करें, सब कुछ करें हम, लेकिन इसके अंदर रहते हुए मैं कौन हूँ उसको हम जाने। उसके लिए गुरु चाहिए हमारे को, और गुरु भी वह जो गुरुओं का गुरु अर्थात सदगुरु हो। तो वो तो एक आज अलग विषय है, लेकिन आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो परमात्मा पिता है, जिसको भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो कुछ भी बोलो, उसको कहा ही जाता है परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु। वही गुरु है, लेकिन शिक्षक पहले है, गुरु बाद में। आप कहेंगे कैसे? हाँ, पिता पहले है, शिक्षक बाद में है, गुरु उसके बाद में। पिता अर्थात वो अपना घर परम धाम छोड़ के पार ब्रह्म परमेश्वर, वह निराकार है, हम साकार हैं, हमसे कैसे मिले हम तो जानते नहीं, और हम जा भी नहीं सकते उसके घर, लेकिन वो अपने परम धाम से इस धरा पर आता है। उसको मालूम है मुझे किस मनुष्य तन द्वारा ये कार्य करना है, ये उस मनुष्य तन का आधार लेता है, और उस मनुष्य तन का आधार तब लिया जब सृष्टि धीरे धीरे धीरे धीरे अंदर अंदर अंदर अंदर विकारों की अग्नि में तप रही थी, बदला लेने की भावना में तप रही थी, अपने आप को भौतिक संपदा बोलो, मिसाइल्स बोलो, एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अंदर अंदर विद्रोह की भावना से भरपूर करती जा रही थी। उस समय 1936 में निराकार परमपिता परमात्मा ने एक ऐसे व्यक्ति के तन में प्रवेश किया जो वृद्ध था, समाज का राजा और रंक दोनों का अनुभवी था, जो परिवार में रहते हुए एक जैसे परिवार से न्यारा था। आज एक प्रैक्टिकल मिसाल देती हूँ, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में जब से व्यापार का अपना शुरू करा, 11 महीने व्यापार करके, 1 महीने व्यापार बंद करके, साधुओं की गुरुओं की मंडली में जाके बनारस हरिद्वार जा कर के बैठते थे, उनके साथ में सत्संग करते थे। आज का एक बिजनेसमैन तो मुझे दिखा दो जो 1 घंटा भी पहले दुकान बंद कर ले, 1 घंटा बाद में खोले, नहीं। तो वह परम शिक्षक जब इस सृष्टि पर आया तो वह पिता बन करके हमें शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी? अब वह शिक्षा है अंधकार से प्रकाश की ओर। जो कार्य व्यक्ति कर रहे हैं उस कार्य को परमात्मा को करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नहीं कर सकता, जो इस कार्य को मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, उस कार्य को परमात्मा करता है। परमात्मा वह करता है जो हमें शरीर के अंदर विराजमान चैतन्य आत्मा है उसकी पहचान देता है, पिता बनकर हमारे को अपनी संतान बनाता है, और अपनी संतान बना करके वह कहता है, बच्चे तुम अज्ञान के अंधेरे से उठो, मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश देता हूँ। और वह ज्ञान का प्रकाश के रूप में संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को मना नहीं है, विश्व में जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं सारे महाद्वीपों में सब जाति सब धर्म सब भाषा सब आयु सब वर्ग के लिए खुले हुए हैं, किसी के लिए मना नहीं है, कोई फीस नहीं है। यह वह शिक्षा देता है जिसमें हम अपने आप को जानते हैं, यह वह शिक्षा देता है रियल हमारा कौन है, यह वह शिक्षा देता है ये सृष्टि रंगमंच पर हम क्यों आए, यह वह शिक्षा देता है कि हम यहाँ से पहले हमारा रियल घर कहाँ पर है, यह हमारे गुणों की शिक्षा देता है, हमारी शक्तियों की शिक्षा देता है, हमारे जीवन के आदि मध्य अंत काल की शिक्षा देता है, ये सृष्टि नाटक का ज्ञान बताता है। परंतु परम सदगुरु बन करके गुरु का कार्य क्या है, ये शिक्षा का कार्य है, हमें रोशनी दे दिया। लेकिन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अर्थात इस संसार से इस जीवन से हमारे मन बुद्धि को शरीर को त्याग करके नहीं, अगला जन्म के लिए कहते हैं अगले जन्म में जाएंगे कि मरने के बाद, नहीं, जीते जी इस शरीर में बैठे हुए अपने को जो मैं हूँ रियल, मैं शरीर होती थी तो उसको जलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ जो थी है और रहेगी, सदा रहेगी, जो आती है और चली जाती है, जिसका कहीं अलग निवास स्थान है लेकिन इसका कर्तव्य यहाँ पर है। कोई कितना भी अच्छा डॉक्टर हो लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, नहीं तो वो कितना होशियार डॉक्टर है बिना इंस्ट्रूमेंट के कैसे पता चले, तो उसको तो वो चीज़ चाहिए ना, मशीनें चाहिए ना जिसके द्वारा ऑपरेशन, ऐसे आत्मा को भी वह शरीर रूपी मशीन चाहिए जिसमें आँख हो हाथ हो नाक हो पैर हो, वह पहचान हमारे परम शिक्षक ने दी है। तो आज इस संसार के भौतिक जगत के अंदर राधा कृष्ण की तो थैंक्स है जो बच्चों की इच्छा शिक्षा की ओर बढ़ी और शिक्षा को ऐसा सरल करके समाज में दिया, और विश्व में जाकर के भी उन्होंने भारतीय शिक्षा का सम्मान बढ़ाया, और सभी भारतीय शिक्षा को बाहर से भी गुरुकुल में पढ़ने वाले आते थे, अभी तो गुरुकुल में वो शिक्षा नहीं रही, विदेश से पढ़ने के लिए भारत में भी आते थे। तो आज इस शिक्षक दिवस पर मेरा विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए, चाहे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं या चाहे विश्व के जहाँ भी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आज के दिनों पर यही है, जैसे ये जीवन हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना है, चेतना और जड़, ठीक इसी प्रकार से जड़ की जो शिक्षा ले रहे हो, जहाँ भी हमारे सारे विश्व में सेवा केंद्र है आप जाकर के शिक्षा लेवें, तो ये परम ये हमारे राधा कृष्णन जी के लिए एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। हमारा चित्र तैयार हो गया और चरित्र नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देती हूँ, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर सिगरेट पीता हुआ आता है, बच्चों को जो भी उसने पाठ देना होता है लिखने के लिए दे देगा, बच्चे डिक्टेशन लिखते रहेंगे अपना काम करते, वो बैठ के सिगरेट पीता रहेगा तो कैसा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो चित्र है टीचर का, लेकिन चरित्र भी एक टीचर का ही होना चाहिए। हम वह काम करें जो बच्चे कर सकें, हम वह काम ना करें जो बच्चों के करने के लिए नहीं। मेमोरी को बढ़ाने के लिए, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए, हमारे व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सम्मान देने के लिए, या जो कुछ भी कहो, उन सब के लिए हमें इस शिक्षा की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी शिक्षा उस शिक्षा की जीविका के लिए ज़रूरत है, इस शिक्षा की जीवन के लिए ज़रूरत है। अगर जीवन नहीं तो जीविका कैसी, जीवन नहीं तो जीविका कैसी। इसलिए आज मुझे इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना है, आप बहुत अच्छे हो विद्यार्थी जो बैठ करके आप अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हो, अभी तो ऑनलाइन पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे, उसके साथ पढ़ते पढ़ते इस ईश्वर विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ेंगे, जो पाठ आप 4 घंटे में याद कर सकते हो वो मैं गारंटी से कहती हूँ आप 1 घंटे में याद कर लें। तो मैं आज परमपिता परमात्मा परम शिक्षक परम सद्गुरु को इस मंच से उनको यही कहती हूँ कि आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया कि आप आए, हमारे जीवन को प्रकाशित किया। आज हमारा भारत क्या विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही ये विश्व ऐसा गौरवपूर्ण बन जाए और विश्व में एक ऐसा प्रकाश आ जाए जहाँ से अज्ञानता का प्रकाश खत्म हो के चारित्र और ज्ञान का प्रकाश आ जाए, यही शुभकामना मेरे शिक्षक दिवस पर है। सब प्राप्तियों से संपन्न है, सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी संपन्नता पूर्ण जीवन जीने के लिए आप बच्चों को आप विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं दुलार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम को सभी ने सुंदर रूप में सजाए, जरूर हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी इससे कुछ फायदा लेंगे और शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी का जो समन्वय कितना आवश्यक है, हम आज का कार्यक्रम से बहुत कुछ लाभ लिए हैं। इन शुभ भावना के साथ हमें और सभी दीदियों को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन एफएम पर।
2: और भगवान परम शिक्षक है। परम शिक्षक, जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है? पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में, सातवीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में, लेकिन जब आठवीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, सातवीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में आठवीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं तो टीचर देखता रहा, ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं? पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनहार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा, ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा, बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा, अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे, और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए, जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा, आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी, और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा, कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा, सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूं, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, फिर घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा, कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा, मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना, उनके कारण हूं, मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी, जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था, आज मैं जो कुछ बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते हैं इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहनें सुनाती है, जो बहनों को सुनो ऐसा लगे सुनते ही रहे। लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया, उसने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया, तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है। ठीक है, ओम शांति।
3: अभी बजे हैं 8:00 PM, स्वयं के प्रति 1 मिनट का समय दें।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: सभी सुनने वालों को नमस्कार, मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है, उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
3: जी नमस्ते।
2: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
3: हाँ, मेरे गांव का नाम है धानपुर।
2: जी धानपुर, जी
3: यस,
2: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, आप एक स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं। तो आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
3: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपिपला शहर से बिलोंग करता हूं, और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहाँ जहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहाँ वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
2: तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपिपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
3: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
2: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए, या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए, या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए। इस संबंध में
3: बिल्कुल
2: डिबेट बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने
3: बिल्कुल
2: तो एक बार पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं, या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
3: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
2: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है, और आपकी
3: यस
2: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे इसलिए पटेल जी?
3: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा

0: संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
1: जी
0: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा
1: जी
0: व्यक्तिगत ड्रीम है।
1: जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं। और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
0: बिल्कुल
1: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
0: हाँ।
1: पर्सन। तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
0: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
1: जी
0: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा किए कार्य से खुशी मिल रही है तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
0: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
1: जी,
0: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
0: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
1: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है और हमें तो
0: बिल्कुल
1: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
0: बिल्कुल हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
1: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
0: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
1: जी
0: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
1: जी
0: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
1: जी
0: बिल्कुल
1: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाहे
0: कोई भी
1: स्पोर्ट्स का
0: सेक्टर
1: क्षेत्र।
0: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
1: जी, तो आपकी
0: बिल्कुल,
1: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
0: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
1: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं
0: बिल्कुल
1: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं। लेकिन
0: जान
1: हमें
0: रहे हैं।
1: भी, जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है, खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
0: बिल्कुल
1: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
0: बिल्कुल
1: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
0: बिल्कुल,
1: करते
0: वही
1: अवेयरनेस
0: वही वही काम इधर
1: प्लान,
0: इधर वही
1: अवेयरनेस
0: काम
1: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
0: बिल्कुल, हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
1: जी
0: क्योंकि देखो, मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
1: जी सोचा हूँ जो
0: और
1: हमसे,
0: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
1: आपके
0: और
1: काम, जी
0: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
1: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना जिन्होंने, जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए, और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है, और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
1: हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
0: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
1: जी खैर,
0: हाँ
1: कोई
0: बस,
1: बात नहीं। और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे?
0: बिल्कुल देखो, मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए, सो मैंने मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ, बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे

0: वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नज़र के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
1: जी
0: और उनके
1: निश्चित,
0: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
1: आपकी
0: मैं।
1: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें?
0: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
1: जी
0: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी, किस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: है? अच्छा,
0: और मेरी मदर,
1: जी, तो
0: हाँ
1: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी
0: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
1: जी
0: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं आपके जिले नर्मदा में, क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला, कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने

0: है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलंटरी सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेकर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
1: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
0: कम्युनिटी हाउसिंग,
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग, क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 72-80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
0: जी, नर्मदा और बड़ौदा लगते हुए जिले हैं दोनों।
1: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: 75। यस
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ, और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल,
0: और लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है।
1: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ।
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है। जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ। फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है, और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधौन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधौन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में, और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया, और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा, और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण, शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने किस, क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से। वो एक दिन मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पर बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था और मुझे पढ़ाई की तो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 KD, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाए, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था। वो उन्होंने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माता जी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गई, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है, तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने वार्षिक एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को, टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बैठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए है स्कूलिंग, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे सिक्स क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर हैं मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर सिक्स क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाए, तो सर मैंने सेवन्थ क्लास जंप किया। अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में, अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं एट्थ क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी जगह मिली, हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने नाइन्थ क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर नाइन्थ क्लास आई तो सर नाइन्थ क्लास में ये होता है कि एसएसटी और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दिए इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की और सर मैं नाइन्थ निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने टेंथ क्लास में पहुंचा मैं, तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा। सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कोऑपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे टेंथ क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं, तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को जो जो फ्री होते थे तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है टेंथ का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है, तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी नाइन्थ क्लास का था तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती है 89% फिक्स। अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय थर्ड रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में। मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी।
0: जी
1: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी, फिर
0: आपने अपनी
1: तो
0: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
1: हाँ
0: दे
1: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको इस चीज में मतलब एक तरीके से
0: दी। जी
1: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
0: जी
1: टीसी भी ले ली, दो तीन
0: जबकि
1: बच्चों की
0: हमारा
1: टीसी चेक
0: उद्देश्य
1: करने के
0: नहीं
1: लिए।
0: था, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
1: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
0: हाँ,
1: अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
0: बचपन से ही लेती है ना। जी
1: हाँ फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
0: जी
1: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
0: जी
1: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
0: जी
1: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
0: जी
1: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता
0: जी
1: क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
0: जी
1: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे। अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
0: जी
1: सर ऐसे जो भी दो तीन कार्यक्रम और हुए, एक युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
0: जी
1: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है आप।
0: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2 2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकलकर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
1: जी
0: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
1: जी
0: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th 10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
1: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी
0: जी
1: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो
0: जी
1: सर CBSE में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
0: जी
1: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर
0: जी
1: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया, तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके, और एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, और इतना वो बढ़िया था मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो, तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले जा रहा था, तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे। और
0: जी, नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
1: मैंने
0: चुनौती।
1: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
0: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पे गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
1: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से, फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं, और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं, मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
1: और मैं चाह रहा हूं कि हम
0: परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
1: आप देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल देखिए। तो
0: जी, मुझे तो हंसी आ रही है सकलांग लोगों पर आज।
1: हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम ये भी समझें कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें, और अवश्य ही यदि हम वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
0: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
1: जी
0: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
1: जी
0: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने उनको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
1: जी
0: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो
1: जी
0: उन सज्जन ने उनके लिए दो सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
1: जी
0: उनको लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर
1: यही
0: वापस
1: यही
0: गए।
1: चीज
0: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना। या कई बार आप
1: जी
0: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवार जन उससे पूछेंगे कि ये
1: जी
0: चाय पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं
1: जी
0: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
1: एक बार
0: चलते।
1: हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था, कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है, तो वो बोल रहे थे किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी, तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे, मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है। हाँ
0: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
1: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
0: जी, हमें
1: जी
0: हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
1: जी
0: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
1: जी
0: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग
1: जी
0: विद अस।
1: जी
0: सो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
1: जी
0: श्रोताओं
1: सर
0: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर, और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। सो श्रोताओं एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
2: अभी बजे हैं रात के 9, 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: मोर पंख सा पावन वो, क्यों ना हम भी उन जैसे पावन बन जाएं। विकारों भरे इस दलदल में भी क्यों ना कमल समान खिल जाए।
3: आप सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

teacher for showing us the path. Thank you, teacher, for guiding us. Thank you so much. Happy Teacher's Day. जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप. बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप. सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप. शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं. वैसे साथियों, चहुं ओर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की उमंग की लहर है, और इन लहरों में लहराते हुए आ गया है एक नया दिन, नया उत्सव. एक ऐसा दिन जब हम अपने शिक्षकों को बहुत उनके कार्य के लिए कृतज्ञता अर्पित करते हैं. हम उन्हें यह दिखाते हैं, हम उन्हें यह दर्शाते हैं कि हम आपको कितना मानते हैं, क्योंकि आपने ही तो हमें जीवन जीना सिखाया. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आप हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर. कार्यक्रम है गुलदस्ता. आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम एक ओर शिक्षक दिवस भी मनाएंगे, तो दूसरी ओर क्या करेंगे वह बताते रहेंगे.

0: निर्माण।
1: जिनसे मिला ज्ञान का खजाना, रत्नों का खान,
2: जिससे मिली दुनिया की पहचान,
3: वो है हमारे आदर्श गुरु।
4: रेडियो मधुबन विश करता है उन सभी शिक्षक गणों को अ हैप्पी टीचर्स डे।
5: गुरु बिन कौन बताए बात, गुरु ही तो सही गलत की पहचान देते हैं, गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं। तभी तो हम सभी अपने टीचर्स को, गुरु को या ट्रेनर्स को, मेंटर्स को, आज देखिए ना कितने सारे नाम आ गए। कोई स्पेसिफिक फील्ड में आपको ट्रेन करते हैं, वो भी आपके टीचर हैं। कोई आपको कोई कला सिखाते हैं, वह भी आपके टीचर या गुरु हो जाते हैं। कोई आपको कार्य क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक स्किल सिखाते हैं, वो भी आपके टीचर या गुरु या मेंटर कहलाते हैं। आज टीचर्स की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। आई वॉज लकी टू हैव अ टीचर एज वंडरफुल एज यू आर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे हम अपने टीचर्स को लिखते थे और आज जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को ऐसे कार्ड्स देते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल टीचर, हैप्पी टीचर्स डे, ऐसे आप सब भी लिख रहे होंगे। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे है जाना, हैप्पी टीचर्स डे। तो ऐसे गीतों को सुनते हुए हम क्यों ना श्री कृष्ण, जिनके जन्म उत्सव पर पूरा संसार जो है अभिभूत है, उनको एज ए टीचर मानकर हम उनसे भी शिक्षा ले लें और उनके जन्म उत्सव को भी मनाएं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, जहां पर हम शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को भी और श्री कृष्ण को भी हम दिल से क्या कहते हैं, थैंक यू।
6: हे कृष्ण, क्या तुम सुन रहे हो आज भी, या मैं इतना खो गया हूँ कि तुम्हारी आवाज भी अब नहीं आती। सब कुछ बिखर रहा है, सपने, उम्मीदें, और मैं खुद कभी पढ़ाई में हार, कभी अपनों की नाराजगी, कभी खुद की ही नजर में गिर जाना। हर कोई कहता है संघर्ष करो सफल हो जाओगे, पर कोई ये नहीं बताता कि जब मन ही हार जाए तो कहाँ जाया जाए। हे माधव, मुझे बस ये जानना है, क्या तुम आज भी मेरे साथ हो?
7: वत्स, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर आंसू में हूँ, तेरे हर सांस के साथ हूँ। तू हार नहीं रहा, तू सीख रहा है। समय तुझे तोड़ नहीं रहा, वो तुझे गढ़ रहा है। जो रुकते नहीं वो ही रचते हैं इतिहास। क्या तू जानता है, अर्जुन भी टूटा था, उसके हाथों से धनुष छूट गया था, उसका मन डगमगा गया था, पर तभी उसने सुना मुझे। मैंने नहीं कहा तू जीत जाएगा, मैंने बस कहा तू कर्म कर पूर्ण समर्पण से। सफलता मिले या न मिले, तू वही बनेगा जो दुनिया देख नहीं पाई।
6: पर कृष्ण, कभी कभी लगता है जैसे सब आगे निकल गए और मैं अब भी वहीं खड़ा हूं, उसी मोड़ पर अकेला।
7: वत्स, तुलना वो जहर है जो आत्मा को धीरे धीरे मारता है। दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी दिशा मत भूल। तेरा रास्ता तुझसे शुरू होता है और तुझी पर खत्म। याद रख, हर रात सबसे गहरी होती है सवेरा होने से पहले। रुक मत, बस चल, थक जा।

जय नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं श्री कृष्ण के लिए। सतयुगी दुनिया के बालक श्री कृष्ण का राज दिलों में और मन में है। उसके दर्शन व प्रेम के अभिलाषी सारी दुनिया है, हम सब हैं। कान्हा संग प्रीत के रंग में रंग जाने की खुमारी है इन हवाओं में। इन हवाओं में बहुत कुछ है। एक ओर तो टीचर्स डे मनाया जा रहा है और दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो यह एक उमंग उत्साह का वातावरण है वह भी छाया हुआ है चारों ओर, और उसमें हम सब रंगे हुए हैं, है ना। तो क्यों ना आज का जो दिन है जिसके लिए हम सब यहाँ पर कुछ गीत लेकर आए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति होने के नाते उनका जन्म उत्सव आज मनाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने आज के दिन को

महान दिन बनाया। उनके जन्म उत्सव को जब मनाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, आज के दिन को मैं उन सभी टीचर्स और गुरु और मेंटर्स के नाम डेडिकेट करता हूँ जिनके बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। यानी मैं आज एक राष्ट्रपति के रूप में जो पूरे भारतवर्ष में मेरा जो एक नाम हुआ है, वह नाम इसलिए हुआ क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे इस काबिल बनाया। तो आइए ना आज हम टीचर्स के प्रति भी उतना ही नतमस्तक हों जितना हम श्री कृष्ण के प्रति हो रहे हैं। सुनने वाले सभी श्रोता बंधु हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुनें और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

शुक्रिया टीचर्स, शुक्रिया। आज कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में सभी छात्र अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हैं, और यह दिन जो ऐसे हम मना रहे हैं, इसका श्रेय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जाता है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देते रहे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। यह है राधा कृष्णन जी के उच्च विचार। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ऐसे उनके कई अनमोल विचार हैं जो जीवन को राह दिखाते हैं। रेडियो सुनने वाले सभी हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो आज हम गुरु को नमन कर रहे हैं, शिक्षकों को थैंक यू दे रहे हैं दिल से।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हम सब मना रहे हैं शिक्षक दिवस और कान्हा का जो जन्मदिन है वह भी हम ध्यान में रखते हुए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। यह एक विशेष दिन है, चारों ओर जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है तो उस दिन को भी हम छोड़ नहीं सकते। कान्हा करें खुशियों से भरपूर आपका जहां, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुरली की धुन में सजे हर अरमान, मुरली की धुन में सजे हर अरमान, माखन चुराने वाला नटखट नंदलाल, हर ले आपके जीवन के सारे मलाल। दोस्तों, ऐसे जो भी ग्रीटिंग्स हैं उसे सुनते हुए और आज का जो विशेष दिन है टीचर्स डे का, इन दोनों को जब हम सामने रखते हैं तो हमें लगता है श्री कृष्ण को भी एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल सभी मानते हैं। लगभग जो श्री कृष्ण की पहचान रखते हैं वो उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, तो पथ प्रदर्शक भी मानते हैं, उन्हें एक ग्रेट एडवाइजर और टीचर के रूप में भी मानते हैं। जब श्री कृष्ण और अर्जुन की छवि सामने आती है तो हम सब उसी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का जो श्लोक है उसे हम अनायास ही याद करते हैं। तो आज के दिन को हम इस रूप में भी मनाएं, तो आइए ना हम श्री कृष्ण पर भी कुछ गीत सुन लें। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, आप हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में।

मीरा के गिरधर नागर, यशोदा के नंदलाला और हम सब के कृष्ण कन्हैया के जन्म का उत्सव है प्यार का, निर्मलता का और आनंद का। रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

कभी कभी हम भगवान से नहीं अपनी किस्मत से नाराज होते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरों की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए किस्मत को नहीं तुम्हें बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम वही सोचोगे, वही करोगे, वही गलतियां दोहराओगे तो कल भी लगभग वैसा ही होगा जैसा आज है। एक लड़का रोज अपनी जिंदगी से परेशान रहता था। वो कहता था, काश मेरी किस्मत अच्छी होती। एक दिन उसने कृष्ण से पूछा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, फिर मेरी जिंदगी बदलती क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो लेकिन अपनी आदतें नहीं। लड़का चुप हो गया क्योंकि बात छोटी थी लेकिन सच बहुत बड़ा था। तुम कहते हो मुझे सफल होना है लेकिन जब पढ़ने का समय आता है तुम फोन उठा लेते हो। तुम कहते हो मुझे मजबूत बनना है लेकिन छोटी सी परेशानी आते ही तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो। तुम कहते हो मुझे आगे बढ़ना है लेकिन अपने पुराने डर को पकड़कर वहीं खड़े रहते हो। और फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन हर बार किस्मत दोषी नहीं होती। कभी कभी हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस ही हमारी पूरी जिंदगी बना रही होती हैं। सोचो अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, आज थोड़ा कम गुस्सा, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ना, आज थोड़ा कम फोन, आज एक गलत आदत को रोकना, आज एक जरूरी काम पूरा करना, ये चीजें छोटी लगती हैं लेकिन जिंदगी

0: जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, हजारों छोटे फैसलों से बदलती है। और खुद को बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कल वाला तुम आज वाले तुम से थोड़ा बेहतर हो। तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, ठीक है, हर बार खुद से ये मत पूछना मुझ में क्या कमी है। किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है, अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू कर दोगे उस दिन दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम होने लगेगी। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खराब है, शायद प्रॉब्लम यह है कि तुम हर दिन अपने पुराने डर, पुरानी सोच और पुरानी आदतों को अपने साथ लेकर चल रहे हो। तुम नई जिंदगी चाहते हो लेकिन रोज वही पुराना वर्जन लेकर उठते हो। नई जिंदगी चाहिए तो नया तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में हर परिणाम नहीं है लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज से किस्मत से लड़ना बंद करो, खुद से लड़ना शुरू करो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने कल से बेहतर क्या कर सकता हूं। बस इतना। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने अपनी जिंदगी नहीं बदली थी, मैंने पहले खुद को बदला था। और शायद वही दिन था जब तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हुई थी। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी सही नहीं चल रही, खुद को दोष मत दो, बस खुद से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा और धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि याद रखना, खुद को बदलो किस्मत बदल जाएगी। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, चेंज।
1: कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी हमने एक कान्हा पर गीत सुना और दूसरी प्रस्तुति थी जिसमें श्री कृष्ण जो हैं हमें राह दिखा रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाना है, कैसे हमें अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करना है। जो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट है उससे हम बाहर कैसे निकलें, हम अपनी किस्मत को कैसे संवारें। तो ऐसे ही कुछ आपके लिए हम शिक्षाएं लेकर आए ताकि इन्हें सुनकर हम उस रणभूमि को याद करें जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पथभ्रष्ट होने से, उन्हें कन्फ्यूजन से निकाला। तो ये सब बातें हमें याद आ रही हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी हम कार्यक्रम के अंतिम छोर पर आ गए हैं और इस अंतिम मोड़ पर हम आपको यही बताना चाहेंगे कि शिशु के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में और साजन के रूप में कृष्ण को सभी पाना चाहते हैं। घर घर में ऐसे ही खुशहाली छाई रहे, घर घर स्वर्ग बने, इसी दिव्य उमंग का रंग भरते हुए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मना रहे हैं और श्री कृष्ण को एज ए शिक्षक के रूप में मानते हुए भी हम अपने जीवन को समृद्ध करें। सो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। और हाँ, जाते जाते टीचर्स डे स्पेशल सॉन्ग आप सभी के लिए और श्री कृष्ण पर भी एक गीत है आप सभी के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चारों ओर है उत्सव छाया, जन्माष्टमी का त्योहार है आया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है बहुत सुंदर झांकी का आयोजन। स्थान ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर आबू रोड, 4 सितंबर 2026 शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक, 5 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य पधारें।
1: बांसुरी में प्रेम धारा, जमुना का प्यारा वो किनारा।
2: और भगवान परम शिक्षक है, परम शिक्षक। जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है? पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में। 7वीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में, लेकिन जब 8वीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, 7वीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में 8वीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं, तो टीचर देखता रहा, ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं? पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा, ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा, बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा, अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे। और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था, तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए। जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा, आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी। और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा, कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा, सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूं, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, वो घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा, कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा, मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना, उनके कारण हूं। मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था, आज मैं जो कुछ बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते हैं, इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहनें सुनाती है, जो बहनों को सुना ऐसा लगे सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया, उसने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया। तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है। ठीक है, ओम शांति।

0: जिन्होंने जिंदगी का किया नव निर्माण,
1: जिनसे मिला ज्ञान का खजाना, रत्नों का खान,
2: जिससे मिली दुनिया की पहचान,
3: वो है हमारे आदर्श गुरु।
0: रेडियो मधुबन विश करता है उन सभी शिक्षक गणों को अ हैप्पी टीचर्स डे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आज कार्यक्रम का नाम है नई दुनिया नया जमाना और प्रोफेसर ओंकार चंद जी हमारे साथ हैं. आप सोच रहे होंगे जीवन रोशनी तो नहीं है. जीवन रोशनी नहीं है, ये कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना. और क्योंकि प्रोफेसर ओंकार चंद जी शर्मा, जिन्होंने NIT में लेक्चरशिप भी किया है, इसके साथ साथ आपने MTech भी किया है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और आप कई सारे यूथ्स को मोटिवेट भी करते हैं, और वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन है उसके आप एडिटर भी हैं, कई लेख आप लिखते हैं. इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वर्कशॉप्स भी कराते हैं, सेमिनार्स भी देते हैं, और साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं. तो जगह जगह जाकर के आप लोगों को मोटिवेट करते हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, इको केयर के ऊपर. तो आइए उनसे बातचीत करते हैं नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि इको केयर ये कॉन्सेप्ट क्या है, और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या करने वाली है आगे. प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. नमस्कार.
0: नमस्ते सर. आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल संस्था है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग है ये, और ये इस प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको मेडिटेशन सिखाने के लिए है शायद, लेकिन आप ये इको केयर जो मूवमेंट चला रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए.
1: इको केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट ये हमारे ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट विंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. हम केवल मेडिटेशन ही नहीं सिखाते, बल्कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो आज चैलेंजेज हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं, इकोलॉजिकल चैलेंजेज हैं, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज आज जो हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करें ताकि इस धरती को रहने लायक रखा जा सके. अगर धरती ही नहीं रहेगी, प्रकृति ही नहीं रहेगी, जलवायु में इतना बड़ा परिवर्तन होगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी दुनिया, कैसी धरती, कैसे वातावरण दे के जाएंगे. तो इसलिए हमने अपनी सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, और एक ब्रह्मा कुमारीज एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है
0: जी,
1: तो इसलिए, और हम इंजीनियर्स की सेवा करते हैं, साइंटिस्ट की सेवा करते हैं, तो ये एक साइंटिफिक चैलेंज भी है, ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे और प्रकृति के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ हुआ, और जिस खिलवाड़ के कारण आज हम देखते हैं नित कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती हैं. अभी आपने देखा होगा नेपाल में इतना बड़ा जो फ्लड आया, अचानक इतना बड़ा ग्लेशियर, जो कहते हैं कि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है अगर वो 6 ग्राउंड मिला लें, इतने बड़े साइज का एक ग्लेशियर अचानक हिमालय से टूटता है और वो फ्लड लेके आता है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि 4800 लाख

0: केयर रखे, अपने अंदर जागृति लाए। इको केयर का तो सिंपल सा भाव है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण को नुकसान जैसा अभी किया जा रहा है उसे होने से रोकना है। हमने धरती और प्रकृति के लिए फिर से वो रिस्पेक्ट, एक इमोशनल बॉन्डिंग अपने मन में पैदा करनी है और एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लाना है ताकि हम इस धरती को, इस प्रकृति को बचा सकें, इसकी रक्षा कर सकें और कम से कम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे इको फ्रेंडली बनाना है ताकि हम वो चीज़ें यूज करें, उन चीज़ों को प्रेफरेंस दें जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, जो पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो इन सब उद्देश्यों को सामने रखकर हम जगह जगह जाकर भारत में ये अभियान निकाल रहे हैं। अभी तक हमारे विंग ने 30 अभियान हम निकाल चुके हैं। हर अभियान 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का होता है। एक स्थान से लेके, एक सिटी से लेके दूसरे सिटी, फिर तीसरे सिटी, तो 15 दिन का मान लो अभियान है तो हम 15 अलग अलग सिटीज, टाउन्स में जाते हैं। वहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या और गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको प्लेज दिलाते हैं कि हमने कौन कौन से चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में लानी हैं जिससे हम इको फ्रेंडली बन सकें, हम अपनी नेचर को बचा सकें।
1: जी, तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है कि इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये अभियान चलाया जाए देश भर में आपकी विंग की तरफ से?
0: हमारे विंग के माननीय चेयरपर्सन परम आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी, वो एक साइंटिस्ट रहे हैं ONGC में, काफ़ी साल उन्होंने एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में सेवाएं दी और वो ब्रह्मा कुमारी से भी बचपन से जुड़े थे। तो उन्होंने ये मन में थॉट लाया कि क्यों ना हम एनवायरनमेंट के लिए लोगों के अंदर जागृति लाएं, और अब तो यूनाइटेड नेशन भी इसके ऊपर काम कर रहा है। पिछले 30 सालों से आप देखेंगे कि UN हर साल एक कॉन्फ्रेंस, कॉप नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से, लास्ट ईयर ये कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में हुई जो इसका नाम COP30 था। तो अब सारी दुनिया में सब देशों को इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहा, धरती रहने लायक नहीं रही, तो हमारी डेवलपमेंट का भी क्या फायदा
1: जी?
0: हम विकसित भारत, विकसित दुनिया बना रहे हैं, लेकिन अगर पानी ही पॉल्यूटेड हो गया, अगर हवा ही जहर बन गई और अगर ये मिट्टी ही विषैली हो गई, तो कैसा अनाज खाएंगे, कैसा पानी पिएंगे, कैसा हमारी हेल्थ होगी और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी। इन सब बातों को ध्यान में रख के आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमारे विंग 1988 से कार्य कर रहा है और तभी से उनके मन में ये रहता था कि पर्यावरण के लिए हम अभियान निकालें। और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अराउंड, मैं समझता हूँ, 86 में ये लॉ बनाया था, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ बना। पहले तो लोग ध्यान ही नहीं देते थे कि ये भी कोई चीज़ है
1: जी,
0: लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई तो गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके पेड़ नहीं काट सकता, पॉल्यूशन नहीं कर सकता, उसके ऊपर रूल्स बनाए गए, लॉज बनाए गए। लेकिन लॉज के साथ साथ जब तक लोगों में समझ ही नहीं होगी तो लोग प्रदूषण फैलाते रहेंगे
1: जी।
0: तो हमारा काम है, हम ब्रह्मा कुमारी इसके एक डेडिकेटेड मेंबर होने के नाते हम जगह जगह जाके लोगों को इसके लिए अवेयर करते हैं कि भाइयों जागो, पर्यावरण को बचाओ। एटलीस्ट दूसरा कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, लेकिन हम अपने लेवल पे कम से कम वो काम ना करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
1: ओके जी, तो ये हमने जाना कि इको केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके संकल्प कहाँ से आया, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 1988 से ये विंग बना हुआ है और भ्राता मोहन सिंगल जी जो सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि इस विंग के द्वारा इस अभियान को चलाया जाए। अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इको केयर में आप क्या क्या कवरेज करते हैं, क्या क्या लोगों को सिखाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं?
0: हम कई इसके पैरामीटर्स हैं। एक है फिजिकल पैरामीटर, कि लोग प्रदूषण

0: बढ़ रहा है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, पीने वाला पानी कम होता जा रहा है, जो भी है बाहर बाहर की चीजें, ये हो गया फिजिकल लेवल पे। तो हम इसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और साथ में हम एक कॉन्शियस लेवल पे भी, एक मेंटल लेवल पे भी लोगों को जागृत करते हैं कि इसके पीछे रूट क्या है, क्यों व्यक्ति प्रदूषण करता है। तो हम लोगों को समझाते हैं कि फिजिकल पॉल्यूशन इज द आउटकम, वो तो रिजल्ट है
1: जी,
0: बट द रूट इज मेंटल पॉल्यूशन। कारण मानसिक प्रदूषण है, बाहर का प्रदूषण लोगों को दिख रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति का मन प्रदूषित है, जो प्रदूषित मन का मतलब है जिस मन में नेगेटिविटी है, जिस मन में सेल्फिशनेस है, जिस मन में एंगर है, वो व्यक्ति ही नेचर के साथ खिलवाड़ करता है, नेचर की चीजों का मिसयूज करता है, रैकलेस एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति मन से खाली है, मन में जिसने नेगेटिविटी भर रखी है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति के मन में एंगर होगा वही कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, झगड़ा वही पैदा करता है। जिस व्यक्ति के मन में ग्रीड होगी, लालच होगा, लोभ होगा, वही ज्यादा से ज्यादा चीजों का ओवर एक्सप्लाइटेशन करेगा, ज्यादा से ज्यादा उनका अंधाधुंध दोहन करेगा, मिसयूज करेगा, ओवर कंजम्पशन करेगा। चाहिए उसको इतना सा, लेकिन वो उसको परवाह ही नहीं है कि इससे कोई नुकसान भी हो रहा है, तो वो उसका मिसयूज कर रहा है। घर में बैठा है, कोई बिजली की जरूरत है नहीं, फिर भी पंखा चल रहा है, फिर भी एसी ऑन है, क्योंकि उसे लगता है मेरे पास पैसे हैं, मैं बिल दे सकता हूँ। लेकिन पैसा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, जो एनर्जी वेस्टेज हो रही है, हम खाना ही खा रहे हैं, मान लो हम कितना खाना छोड़ के चले जाते हैं। जो जिस व्यक्ति का मन पॉल्यूटेड है वो आधा खाएगा, आधा छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मन में उसके पहले लालच था इसलिए ज्यादा ले लिया, अब खाया नहीं जा रहा तो छोड़ना पड़ रहा है। तो उसका मन नेगेटिव है, मन को पॉजिटिव बनाना भी बहुत जरूरी है, साइड बाय साइड दोनों जरूरी है।
1: मतलब हमारे जो सोच की शुरुआत और जो भी पॉल्यूशन है वो अपने प्लेट से ही शुरू हो रहा है फिर तो।
0: हमारे घर से, मेरी सोच से, मेरे कमरे से, फूड में भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे कॉल किया कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त दुनिया में है, एनर्जी का क्राइसिस, जब ये
1: मन की बात
0: और फॉरेन कंट्री में वो गए हुए थे और ये लड़ाई जब चल रही थी अमरीका और ईरान इसराइल की, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े एक डिजास्टर, एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस है। उन्होंने कहा कि फूड को भी बचाना है, फूड ऑयल जो है उसको भी कम यूज करना है, दूसरा जो एनर्जी के फ्यूल है उसको तो कम से कम यूज करना ही है, फूड के लिए भी कहा। तो इसका मतलब जरूर दुनिया में इन चीजों की संकट है कि हम अपने लिए रख रहे हैं और कितने लोग हैं जिन्हें ये चीजें नहीं मिल पाती।
1: ग्रीड है,
0: ग्रीड इंसान की जो लालच है, लोभ है, लालसा है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बना लेने की, चाहिए उसको इतनी, लेकिन वो रख रहा है 10 गुना। तो वो कहीं से ना कहीं से वो बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, लोड नेचर के ऊपर पड़ रहा है
1: जी।
0: उसके कारण कितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं, कितने नेचर के रिसोर्सिस कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, वो यूज बेस्ड ही तो है
1: जी।
0: हम कहते हैं हमारी जरूरतें बढ़ गई, पहले सिंपल लिविंग थी तो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होता था
1: जी,
0: और आजकल वो नीड बेस्ड लिविंग थी, पर आज हमारी जिंदगी कैसी बन गई है, ग्रीड बेस्ड बन गई है। अब हमें लालच है, पहले एक कपड़े से दो जोड़ी से गुजारा होता था, अब हमारी अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पहना जाए, कौन सा ना पहना जाए।
1: रीयूज रिसाइकल करना बंद कर दिए हैं,
0: रीयूज रिसाइकल, यहाँ तक कि प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हैं, कितना पॉलीथीन, कितना प्लास्टिक और कितना वो कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो सड़ नहीं सकता, जो गल नहीं सकता, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और वो 100 साल तक भी उसको दबा के रखेंगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लास्टिक और पॉलीथीन सिंगल यूज
1: जी।
0: तो लेकिन आदमी सोचता है कि कौन बैग उठा के जाए, कौन कपड़े का थैला उठा के जाए या जूट का थैला उठा के जाए, तो सोचता है मैं प्लास्टिक यूज कर लेता हूँ अपने स्वार्थ के कारण, अपनी कन्वीनियंस के कारण। लेकिन उसके कारण कितना ये पोल्यूशन फैल रहा है। आप देखो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जहाँ पॉलीथीन पड़े रहते हैं, वो पॉलीथीन आपकी गाय खा जाए, जानवर खा जाए, वो बीमार पड़ जाएगा, वो आपकी सीवरेज में चला गया, आपके पानी की निकासी की जो पाइप्स होती हैं उनमें चला गया, वहां ब्लॉक करेगा, ब्लॉक होगा तो पानी बारिश होगी और पानी निकल नहीं पाएगा, शहर में बाढ़ तक आ जाएगी। पीछे क्या है, वही आपका प्लास्टिक, वही पॉलीथीन,
1: राइट।
0: तो क्यों ना हम थोड़े जागरूक बने, एक समझदार बने और समझदार रीति से माइंडफुल कंजम्पशन करें। ये भी नहीं कि हम चीज़ों को छोड़ ही सकते हैं, चीज़ें यूज भी करनी है, लेकिन एक माइंडफुलनेस चाहिए, एक समझदारी चाहिए कि मुझे कितना ज़रूरत है, कितना मैंने यूज करना है, क्या मैं इसकी जगह कुछ और यूज कर सकता हूँ,
1: और मैं क्यों कर रही हूँ, देख के दूसरों को कर रही हूँ या
0: हाँ मेरे लिए आवश्यकता है या केवल शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए मैं ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी हैबिट से जुड़ी हुई है, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ी हुई है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ये कहती है कि आप कितने भी लॉज बना दीजिए, कितना भी लोगों को बता दीजिए, जब तक उनके मन सही नहीं होंगे, जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाएंगे, जब तक वो अपना वे ऑफ लिविंग चेंज नहीं करेंगे, तब तक इको केयर असल में हो नहीं पाएगा।
1: ओके, ठीक है। तो आप किन किन संस्थाओं में जाकर के क्या क्या अवेयरनेस देते हैं, कैसे देते हैं?
0: हम नंबर वन इंडस्ट्रीज में जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं वर्तमान में
1: जी,
0: और जहाँ इंडस्ट्री लगानी होती है वहाँ जंगल काटे जाते हैं
1: जी,
0: पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो अगर इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं तो वो अगर अवेयर होते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, हर जगह उनकी कंट्रीब्यूशन है
1: जी।
0: तो नंबर वन हम इंडस्ट्रीज को प्रेफर करते हैं, नंबर टू हम इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेजेस जहाँ, या कोई और भी कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ हमारे यंग लोग हैं, युवा पीढ़ी है, अगर वो युवा पीढ़ी भी जागरूक हो जाती है तो बहुत हद तक हम इस उद्देश्य में कामयाब हो सकते हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं, तीसरा हम ऑफिसेस में भी जाते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, पुलिस स्टेशंस, पुलिस लाइंस, और जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो जाए और लोग हमें मिले, गांव में भी जाते हैं, लेकिन गांव के लोग ऐसा प्रदूषण नहीं करते, ज़्यादातर प्रदूषण शहरीकरण के कारण हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ है
1: जी।
0: तो हम उन लोगों को समझाते हैं और इसके रिजल्ट भी कुछ ना कुछ आते होंगे, जो कोई चार आदमी भी समझ गए, दस आदमी भी समझ गए, हालांकि हम जहाँ जाते हैं तो लोग 100, 200, 1000, 500 इकट्ठे होते हैं, उन्हें एक घंटे तक इसके बारे में अवेयर किया जाता है और उनको समझाया जाता है। आपके मन में सम्मान होना चाहिए नेचर के प्रति, नेचर के लिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म में कितना प्रकृति प्रेमी रहा है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ नदियों को भी माँ कह के पुकारा जाता रहा,
1: राइट,
0: गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ कहा जाता है ना
1: जी।
0: अच्छा, पहाड़ों को यहाँ पिता तुल्य समझा गया है, पेड़ों की भी लोग पूजा करते रहे, देवी देवता समझ के पूजा करने का भाव यही है कि हमने सम्मान देते हैं,
1: राइट,
0: हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको लगाया जाता था पहले, और आजकल लगाने के बजाय हम उनके काटने पे विश्वास करते हैं, काट देते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं आज ही एक डाटा पढ़ रहा था कि 1880 में भारत में 40% ऑफ द लैंड में फॉरेस्ट थे, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था उसमें 40% फॉरेस्ट थे
1: जी,
0: और आज ये डाटा 22% है,
1: और जनसंख्या भी बढ़
0: गई है, उस वक्त की जनसंख्या और आज की जनसंख्या 150 साल में हम लगभग 10 गुना पॉपुलेशन दुनिया की बड़ी होगी या भारत की बड़ी होगी, पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई, और उस पॉपुलेशन के लिए जो एनवायरनमेंट बनना चाहिए था, जो जंगल लगने चाहिए थे वो 10 गुना तो बड़े नहीं, और ही आधे रह गए, वो 40% से 22% पे आ गए
1: जी।
0: तो इसका मतलब फिर हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? हमें ये पौधे ही तो, पेड़ पौधे ही तो हवा को शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो एयर को तो क्लीन करना ही करना है, नेचर को तो क्लीन करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले माइंड को क्लीन करना है
1: जी।
0: बाहर का बैलेंस जो बिगड़ा है वो इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हमारा अंदर का बैलेंस आज खराब है
1: जी।
0: अब वो एक व्यक्ति जो दुखी है, टेंशन में है, उसे क्या लेना देना जंगल से, पेड़ों से? वो कहेगा एक बाल्टी क्या, मैं 10 से नहाऊंगा। वो बर्तन साफ कर रहा है लेकिन नल का ऑन है, वो ब्रश कर रहा है फिर भी पानी बह रहा है, उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है कि ये पीने वाला पानी बहुत कम है। हालांकि हम कहते हैं कि 3/4 ऑफ जो भी एरिया है वो वाटर है, लेकिन उसमें से 97% वाटर वो है जो साल्टी है, जो ओशन का है, सी का है, जिसे यूज नहीं किया जाता
1: जी।
0: केवल 3% है, और उस 3% का भी 70% हिस्सा ग्लेशियर्स में है या अंडरग्राउंड है वाटर के रूप में, जो हम वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। केवल और केवल टोटल वाटर का 0.5% या 0.3% से लेके 0.5% तक ही हमारे लिए हमारी कंजम्पशन या ड्रिंकेबल है
1: जी।
0: बहुत कम पानी है, और उसका अगर हम मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन खराब है,
1: राइट,
0: मन सही नहीं है। तो हम ये भी लोगों को समझाते हैं कि अपने मन को ठीक करो, बाहर के प्रदूषण को रोकना है तो मानसिक प्रदूषण उसका कारण है। अपने मन को सही बनाओ, सही आदतें डालो, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो,
1: तभी जाकर के आपको शक्ति मिलेगी और समझ भी मिलेगी कि आप बाहर के जो प्रदूषण है उससे कैसे
0: मुक्त हो
1: सकते हैं। और क्योंकि मन में अगर खुद के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरों के प्रति भी रिस्पेक्ट नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो प्रकृति के प्रति भी
0: नहीं होगा।
1: तो इसलिए पहले अपने
0: जो व्यक्ति दूसरों को ही रिस्पेक्ट नहीं देता, जो जीते जाते हैं ह्यूमन बीइंग, वो नेचर को क्या रिस्पेक्ट देगा?
1: जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस की बात करें हम, आप जब जाते हैं बाहर तो आपको सबसे पहले क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है लोगों को समझाने में?
0: हम लोगों को समझाते हैं तो लोगों के मन में, लोग बहुत प्यार से हमें बुलाते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, सुनते हैं, लेकिन कई बार उनका एक डाउट होता है कि अकेले हमारे से क्या होगा। जब गवर्नमेंट लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई जाती हैं और वो इंडस्ट्रीज वाले भी अपनी सेल्फिश ग्रीड के कारण इकोलॉजी का ध्यान नहीं रखते, ना अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं, तो हम अकेले क्या कर लेंगे? ये ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं
1: जी।
0: कि हमारे अकेले अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? तो हम उनको एक ही बात समझाते हैं कि अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप में हिम्मत है, कुछ करने की तमन्ना है, इरादे मजबूत हैं, तो दुनिया में बड़े बड़े काम भी अकेले लोगों ने ही किए हैं। अकेला सूरज सारे जग के अंधकार को दूर कर देता है, अकेला शेर पूरे जंगल को हिला के रख देता है, अकेली अगरबत्ती सारे कमरे में खुशबू फैला देती है, अकेली एक छोटी सी गोली, मेडिसिन, टेबलेट, कैप्सूल शरीर की भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक कर देती है। तो कभी अपने को अकेला ना समझो। अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे देख के दूसरे होंगे, दूसरे तीसरे होंगे, मान लो वो ना भी खड़े हुए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सही काम कर रहा हूँ
1: जी,
0: मैं वो काम नहीं कर रहा जो गलत है। दुनिया सही सही ही होता है चाहे उसे कोई भी नहीं कर रहा हो, और गलत गलत ही होता है चाहे सारी दुनिया उसे कर रही हो। तो मैं अगर पर्यावरण का ध्यान रख रहा हूँ तो ये मेरा अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए मेरा बहुत बड़ा एक योगदान है, कर्तव्य है, सेवा है। दूसरा करे या ना करे, ये हम उनको समझाते हैं तो वो बहुत एग्री करते हैं कि आज से हम भी आपकी तरह ही हर चीज का यूज बड़ी सोच समझ से करेंगे
1: जी। बिल्कुल।
0: एक और कहानी अगर मैं आप कहें तो मैं सुना दूं।
1: बिल्कुल।
0: वो भी इस बात को जस्टिफाई करती है। तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, अगर ना भी कर सकें तो भी आपके होने से बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनको बताया कि एक बार जंगल में आग लगी, और आग लगी तो सारे जानवर भाग गए जंगल छोड़ के
1: जी।
0: एक चिड़िया थी जो अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर के एक तालाब से ला रही थी और आग वाली जगह पे डाल रही थी
1: जी।
0: तो जब वो तालाब में पानी भर रही थी तो वहाँ हाथियों के झुंड नहा रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए चिड़िया को कहा कि चिड़िया बहन, क्या हमारे तुम्हारे इस चोंच से, चोंच के अंदर जितना भी पानी है उससे क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, बेशक आग बुझे या ना बुझे मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जिन्होंने जंगल में आग लगाई, मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जिन्होंने जंगल में आग लगी और भाग गए, मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जो जंगल में आग लगी तो वो दूर बैठ के टॉन्ट कर रहे थे, मेरा नाम उन लोगों में होगा कि जब जंगल में आग लगी तो इन्होंने जंगल की आग बुझाने के लिए काम किया।
1: राइट। तो आपको छोटा नहीं समझो।
0: हाँ, तो हम दूसरे कुछ भी करें, दूसरों को भी समझाएं, पर वो समझे या ना समझे, एटलीस्ट मैं अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दूं, मैं तो दे सकता हूँ।
1: बिल्कुल। तो हम सब जो इस वक्त सुन रहे हैं, सब एक एक स्टेप लेंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हम इस विषय को हरा भरा और फिर से रहने लायक
0: बना सकते हैं।
1: फिर भी प्रकृति का धन्यवाद कि अब भी प्रकृति हमारे
0: कितनी रक्षा कर रही है, कितना हमें देती है,
1: खाद्य भी मिलता है हमें,
0: जितनी चीजें हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो अनाज, जो फल, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, सब धरती से, सब इस प्रकृति से ही तो आ रहा है।
1: इसलिए प्रकृति माता को धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन है,
0: बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है धरती को, तभी तो धरती माता कहा गया। भारत को माता, भारत मतलब भारत की जो धरती है वो हमारी माँ है, माँ की तरह हमारी केयर करती है, तो हमें भी उसकी केयर करनी है, हमें भी उसके एक रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन की तरह बिहेव करना है।
1: जी बिल्कुल। क्या सर आप प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव?
0: हम करते भी हैं, दूसरों को करने के लिए भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि केवल प्लांटेशन नहीं करनी है, प्रोटेक्शन भी करनी है।
1: राइट।
0: प्लांट तो बहुत लोग कर देते हैं, लगाना आसान है, लेकिन उन पेड़ों को, नन्हे पौधों को छोटे बच्चों की तरह संभालना है। जैसे हम हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन पैदा करना बड़ी बात नहीं है, पैदा करने के बाद
1: नर्चर करना,
0: उनको नर्चर करना, उनको प्रिजर्व करना, वो भी बहुत जरूरी है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मेरे घर यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ मैंने 8 पेड़ अपने घर की बाउंड्री के बाहर लगाए, तो वो 8 पेड़ पिछले 5-6 साल में धीरे धीरे करके काफी बड़े हो गए हैं। तो जब हर रोज तो नहीं, या तीसरे चौथे दिन में उनको पानी देता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं देखता हूँ आज ये कितने बड़े हो गए, अब ये कितने बड़े हो गए, अब इनमें कितनी टहनियाँ आ गई, जो एक दिल को सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हमारी जो अंदर की प्रकृति है, हमारी अंदर की जो नेचर है, वो अच्छी बनती है।
1: राइट।
0: आज हमारी नेचर खराब हो रखी है, क्योंकि हमने बाहर की नेचर खराब कर दी, तो अंदर की भी खराब है।
1: राइट।
0: तो अब हम उससे जुड़े, उगते हुए सूरज को देखो, पेड़ों से दिल लगाओ, पौधों से दिल लगाओ, फूलों को देखो, पत्तियों को देखो, हरे भरे खेतों को देखो, कितना दिल को सुकून मिलता है
1: जी। हीलिंग
0: होती है और खुशी मिलती है, क्योंकि हम आजकल का जो जीवन है थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया है। पुराने टाइम में लोग गांव में रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, और सब कुछ धरती से लेते थे, इसलिए वो हमेशा तंदुरुस्त रहते थे, खुश रहते थे, हेल्दी रहते थे। आज हमने एक गैप बना दिया, शहरों में रह रहे हैं, एक कंक्रीट के जंगल बना दिए, कहाँ नेचर वाले जंगल थे, और आज हम कंक्रीट के जंगलों में बैठे हैं। लोगों ने ना कभी तारे देखे होंगे आजकल की पीढ़ी ने, ना चांद देखा होगा रात को, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं।
1: जी बिल्कुल। तो इसीलिए अपने धरती से जुड़ी है, हमें अपने रूट्स भूलना नहीं चाहिए।
0: अगर फिजिकल लेवल पे भी देखें इस प्रॉब्लम को, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाएं, कुछ हम प्लेजेस लोगों को दिलाते हैं, उनको वचन दिलाते हैं कि हम वही प्लास्टिक यूज करेंगे जिसको रिसाइकल किया जा सके, जिसको जो रीयूजिंग हो, दोबारा से जिसको यूज किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना है, चाहे वो प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल के रूप में हो, पॉलीथीन के रूप में हो, बैग्स के रूप में हो, बॉटल्स के रूप में हो, हमें कम से कम उसका इस्तेमाल करना है। हमें उसकी जगह कपड़े के थैले यूज करने हैं, जूट के थैले यूज करने हैं, वो ज़्यादा देर सस्टेन

0: करेंगे और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे। एक तो हम लोगों को इसकी शपथ दिलाते हैं, दूसरा हम लोगों को कहते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ज्यादा नहीं लगा सकते, कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो अपनी माँ के नाम लगा दो
1: जी,
0: अपने पिता के नाम लगा दो, अपने नाम पे लगा दो, कम से कम एक पेड़ एक साल में लगाओ। ज्यादा लगा सकते हैं तो और वेल एंड गुड, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। और तीसरी चीज करनी है पानी की बचत
1: जी,
0: पानी को वेस्ट नहीं जाने देना है। अब आपने देखा नेपाल में पानी ने कितनी बड़ी प्रलय ले आया, आज हम प्रकृति को हम इंसान ने तंग किया तो प्रकृति इंसान को तंग कर रही है। तीसरा बिजली की बचत, एनर्जी की बचत
1: जी,
0: और चौथा फ्यूल की भी बचत करनी है। अगर हम अपने आप को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम अपनी अपनी गाड़ी में अलग अलग पेट्रोल डीजल जला के चलने के बजाय कार पूलिंग करें, इकट्ठे चलें, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कितना प्रदूषण होने से बच जाएगा। और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, उस एनर्जी को हम प्रेफरेंस दें, उस चीज़ को प्रमोट करें जो रिसाइकल होती है, रिन्यूएबल है, इसको फिर से पैदा किया जा सकता है, वो एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ऐसे कई तरीकों से हम लोगों को समझाते हैं, प्रतिज्ञाएं भी कराते हैं और उन्हें ये भी समझाते हैं कि जब हमारी नेचर और बाहर की नेचर हारमनी में थी, दोनों के बीच में सामंजस्य था तो धरती पे सतयुग था, प्रदूषण नाम की चीज नहीं। आज हमारी नेचर, ह्यूमन नेचर और ये जो एक्सटर्नल नेचर है, दोनों के बीच में डिसहार्मनी जो क्रिएट हुई है, इम्बैलेंस पैदा हुआ है, इसके कारण आज सारी समस्याएं हैं। तो अब हम अपनी इनर नेचर, इनर हैबिट्स, इनर वे ऑफ थिंकिंग, उसे चेंज करें, उसे अच्छा बनाएं, सारी चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी।
1: राइट,
0: मेन घूम फिर के बात वही आती है
1: कि अपनी नेचर,
0: हम कितने भी पेड़ लगा लें, हम लगाएंगे चार काटते भी रहेंगे, लेकिन मेन है कि हम वे ऑफ लाइफ सारा ये बना दें, अपनी कॉन्शियसनेस में चेंज लाएं। तो ये जो एनवायरमेंटल हीलिंग होगी ये ऐसे नहीं होगी, ये एनवायरमेंट का क्राइसिस, ये कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है, साइंटिफिक क्राइसिस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, कि आज व्यक्ति ही खराब हो रखा है।
1: राइट,
0: उसकी सोच को ही कीड़ा लग गया है। तो जब तक उसकी सोच सही नहीं होगी, हैबिट्स में चेंज नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज ना केवल बाहर बाहर से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए मोटिवेट कर रही है, बल्कि उसके रूट में भी जाके, ताकि लोगों के मन अच्छे हो जाएं, लोगों की हैबिट्स अच्छी हो जाएं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो उस तरह के लेक्चर्स भी हम देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, जो स्पिरिचुअल होता है, तो वो नेचर फ्रेंडली तो होगा ही होगा
1: जी,
0: वो इको फ्रेंडली होगा ही होगा, क्योंकि नेचर हमारी वाइब्रेशन कैच करती है। अगर हमारे वाइब्रेशन नेगेटिव है, पोल्यूटेड है, जो हमारे थॉट्स से जनरेट होते हैं, तो नेचर उसको अडॉप्ट करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी और उसी तरह से हमसे बिहेव करेगी। इसलिए बीच बीच में हम देखते हैं कि नेचर भी हमसे बदला लेती है, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कितनी नेचर हमें
1: हमारे अंदर ले रही के संस्कार का,
0: क्योंकि हमारी वाइब्रेशन को वो कैच कर रही है। हम नेगेटिव हो गए हैं तो नेचर भी उसी तरह से फिर बिहेव कर रही है। अगर हम पॉजिटिव रहें, नेचर का रिस्पेक्ट करें, क्यों नेचर को देवी देवता मानकर, माँ मानकर उसकी पूजा की गई, ताकि हमारा रिस्पेक्ट, हमारा जो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड नेचर के प्रति है वो बना रहे
1: जी।
0: हमें लगे कि हम, वो हमारी माँ है, तो हमें उसका दोहन नहीं करना, उसका शोषण नहीं करना, माँ से उतना ही लेना है जितना हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, अंधाधुंध उसका मिसयूज नहीं करना है। तो पहले ऐसी सोच थी, पर आजकल ग्लोबल वे ऑफ लाइफ बदल गया है, आजकल लोगों को इन चीज़ों की परवाह नहीं रही। डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन है और जिसकी सजा सबको भोगनी पड़ रही है, लेकिन अब सबको इसके ऊपर अवेयर होना पड़ेगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा और ब्रह्मा कुमारीज समाज के कंधे से कंधा मिला के, देश की सरकार के साथ भी कंधे से कंधा मिला के इस दिशा में काम कर रही है। हम पूरे भारत में हर जगह जा रहे हैं। पिछले महीने हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश थे
1: जी।
0: जून और मई में हम गुजरात और महाराष्ट्र में थे
1: जी।
0: अप्रैल में हम हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और J&K में थे। तो जगह जगह हमारी टीम जाती है और इस दिशा में अवेयरनेस और लोगों को अलर्ट करने का काम कर रही है
1: जी। तो आगे आपके क्या लक्ष्य, भारत के पूरे जितने भी जिले हैं सभी जिले में जाने का? सभी
0: हम चाहते तो हम हैं कि सब जगह तक हम पहुंचे। लगभग 650 जिले शायद हैं, या मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा हूं भारत में। तो हम जगह जगह जाएं और लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक करें, क्योंकि जब हम दूसरों को समझाते हैं तो हमें भी याद रहता है कि भाई मुझे पॉलीथीन कम से कम यूज करना है, मुझे अब कपड़े वाला थैला ज्यादा से ज्यादा यूज करना है।
1: तो उनको फिर से याद दिलाना,
0: हमें भी, हम भी अपने को भी रिमाइंड कराते हैं, दूसरों को भी रिमाइंड कराते हैं। तो जल जन अभियान भी ब्रह्मा कुमारी जी ने छेड़ रखा है कि जल को भी बचाना है और साथ में प्रदूषण को भी बचाना है। ये धरती रहेगी तभी तो हम रहेंगे, नहीं तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो जंगल हमारी हवा को शुद्ध करते हैं, जो नदियां हमें पीने के लिए पानी देती है, जो मिट्टी हमें खाने के लिए कितनी चीजें दे रही है, अगर वो धरती ही नहीं रही, वही पॉल्यूटेड हो गई, तो फिर कहाँ हम जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी, उसके ऊपर जरूर सोच विचार करना चाहिए
1: जी। बिल्कुल। तो आपके आगे के जो जर्नी है आपके विंग के माध्यम से, साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग के माध्यम से, तो हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अगर आप कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप मतलब उनके गांव में हो, उनके डिस्ट्रिक्ट में हो, उनके स्कूल कॉलेजेस में करना चाहते हैं ये प्रोग्राम, तो किससे संपर्क कर सकते हैं?
0: हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं और वो तो एक फिक्स्ड प्रोग्राम होता है कि इस महीने वहाँ जाना है। अब नेक्स्ट इस सितंबर में हमने उड़ीसा को चुना है, सितंबर और अक्टूबर में। बाकी हमारी ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेज हर गांव में हैं, हर शहर में हैं, वहाँ संपर्क किया जा सकता है और उनके माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम वो लोकल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं
1: जी।
0: और हमें यहाँ हेडक्वार्टर से भी इनवाइट करके हम भी वहाँ ये प्रोग्राम देने के लिए जा सकते हैं।
1: ओके। तो आप रेडियो मधुबन अगर सुन रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं 94-14-15-14-15 यानी कि 9414151415 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें इको केयर के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट इस मुहिम के बारे में आपने बताया। उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ जुड़ करके कार्य करेंगे, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, शुक्रिया,
1: नमस्ते,
0: शांति, नमस्ते।
1: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये था कार्यक्रम नई दुनिया नया समाना। ऐसे ही हम पर्यावरण से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एनवायरमेंट एंथुजियास्टिक हैं, उन लोगों से आपको मिलवाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

और भगवान परम शिक्षक है। परम शिक्षक, जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है? पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में, सातवीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में, लेकिन जब आठवीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, सातवीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में आठवीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं, तो टीचर देखता रहा, ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं? पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा, ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा, बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा, अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे, और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए, जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा, आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी, और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा, कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा, सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूं, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, फिर घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा, कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा, मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना, उनके कारण हूं, मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था, आज मैं जो कुछ बना बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते, इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहनें सुनाती है, जो बहनों को सुनो ऐसा लगे सुनते ही रहे सुनते ही रहे, लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया उसने,
दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया, तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है, ठीक है।

0: काका बारिश बहुत जोर से हो रही है, कोई आने वाला नहीं है। मैं आपके लिए पकोड़े ले आता हूँ और आप मुझे कुछ अच्छा सा सुना दो।
1: हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताऊंगा।
0: अच्छा काका।
1: हाँ, जानते हो इनका जन्म कहाँ हुआ था?
0: आप बताओ काका।
1: तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, सर्वपल्ली वीरा स्वामी और उनकी पत्नी सीताम्मा का। उन्हीं की 6 संतानों में से एक संतान थे।
0: ऐसा काका?
1: हाँ, इसीलिए बेटा तिरुतानी गांव बहुत खास गांव है।
0: काका, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो राधा कृष्णन की याद में कुछ मनाया जाता था, शायद
1: शिक्षक दिवस। बेटा, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझे बेटा?
0: हाँ काका, इतना तो मुझे याद है काका, आगे बताओ।
1: आंध्र प्रदेश के सर्वपल्ली गांव से तमिलनाडु के इस छोटे से गांव में एक छोटे से जमींदार के यहाँ मुलाजिम हो गए थे।
0: तब तो राधा कृष्णन की पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आई होंगी।
1: हाँ बेटा, दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन बहुत होशियार थे इसलिए छात्रवृत्ति हमेशा पाते रहे। राधा कृष्णन के पिता की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी।
2: हे प्रभु, पाठशाला छूटने का समय हो गया है, काम करने में समय का पता ही नहीं चला।
3: सुनो, मेरे लिए कॉफी बना दो बढ़िया सी।
2: हाँ हाँ, कॉफी मिलेगी, पर बच्चे भोजन कर लें उसके बाद।
3: ठीक है ठीक है, अब तो बाप का नंबर बच्चों के बाद ही आएगा।
2: अरे बाबा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर पहले पहले इस झूले से उतरो और जो सामान मैंने बताया था ना, वो बाजार से ले आओ।
3: पता नहीं ये ग्रह स्वामी नाम किसने दे दिया, जबकि हालत आदमी की सेवक सी होती है, असली स्वामिनी तो औरतें ही होती है।
2: अच्छा अच्छा, अब समय गवाए बिना उतरो झूले से।
3: अरे उठता हूँ भगवान, उठता हूँ। लाओ झूला दो, बाजार जाता हूँ।
2: अरे सुनो तो।
3: अब क्या हुआ भाग्यवान?
2: राधा कृष्णन की गांव की पाठशाला की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी, आगे क्या करना है?
3: मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है।
2: अच्छा, क्या सोचा है?
3: इसके बाद उसे हम तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में भेजेंगे।
2: छी छी छी छी, मैं ना पढ़ाऊंगी उसको वहाँ।
3: क्यों, क्या मिशन स्कूल में इंसान नहीं रहते?
2: रहते होंगे इंसान, पर मिशन स्कूल, अरे धर्म भी कोई चीज होता है कि नहीं?
3: अरे भगवान, कहाँ धर्म वर्म में लगी हो तुम, सभी धर्म अच्छे ही होते हैं और सभी धर्म बराबर होते हैं।
2: लेकिन
3: लेकिन वैकिन कुछ नहीं, विद्यार्थी का पहला धर्म होता है अच्छे से विद्या अध्ययन करना, और मुझे विश्वास है लूथरन मिशन स्कूल इस धर्म के पालन के लिए श्रेष्ठ जगह है।
2: और हमारे बड़े बुजुर्गों को क्या कहोगे?
3: अरे मैं सबको मना लूंगा, राधा कृष्णन हमारा मेधावी बेटा है, इसकी पढ़ाई में बाधा ना पड़ने दूंगा मैं।
2: अच्छा, लेकिन खर्चे का भी तो सवाल है।
3: अरे उसके लिए क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, वो स्वयं छात्रवृत्ति जुटा ही लेता है, और तुम फिक्र मत करो। अच्छा, अब मैं बाजार से आता हूँ।
2: अरे हाँ, मैं भी बच्चों के खाने का इंतजाम करती हूँ।
1: तो बेटा, गांव से पढ़ाई पूरी कर राधा कृष्णन पहुँच गए तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में।
0: पढ़ाई तब कितनी मुश्किल थी ना काका, छोटी सी उम्र में घर से दूर जाना पड़ता था।
1: जाना तो पड़ता था बेटा, लेकिन वहाँ घर से दूर मिशन स्कूल में पढ़ने से वो बाइबिल के जानकार बन गए और ईसाई धर्म के भी जानकार बन गए।
0: अच्छा काका।
1: हाँ
4: चलो, आज लूथरन की पढ़ाई पूरी हुई,
5: आगे क्या विचार है?
6: अरे इसका क्या है, इसके जैसे होशियार और प्रथम आने वाले छात्र को तो कोई भी कॉलेज खुशी खुशी एडमिशन दे देगा।
5: तो राधा कृष्ण कहाँ लोगे एडमिशन?
4: वेल्लोर के वुरही कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था हो गई है। और तुम लोग क्या करोगे?
6: खोज रहे हैं यार, खर्च का भी तो देखना पड़ता है, पिताजी आखिर मेरी पढ़ाई पर कितना खर्च कर पाएंगे।
5: राधा कृष्णन, तुम तो जहाँ जाओगे वहाँ छात्रवृत्ति मिल ही जाएगी।
4: ठीक कहा तुमने, छात्रवृत्ति के भरोसे ही तो कर पा रहा हूँ पढ़ाई, वरना परिवार की माली हालत कहाँ है ऐसी, उसके भरोसे तो पढ़ाई कब की छूट गई होती।
6: भगवान हूँ मित्र, जो ईश्वर ने ऐसी प्रखर बुद्धि दी है,
4: और इसके लिए मैं उस ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ।
5: कहते होगे हे सर्वशक्तिमान, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।
6: मुझे तो दुख हो रहा है कि हमारा साथ छूट जाएगा।
4: अरे अरे, बस इतना ही तो होगा कि आगे अब हम लोग रोज ना मिल पाएंगे।
6: साथ क्यों छूटेगा भाई?
5: अरे ये साथ छूटना ही तो हुआ।
4: अरे हम भगवान से कभी नहीं मिलते, फिर भी कहते हैं वो हमारे साथ है।
6: हम इंसान हैं, भगवान नहीं।
4: अरे लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि हर इंसान में भगवान बसता है।
5: देखो भाई, ये फिर चालू हो गया अपना दर्शन शास्त्र लेकर।
6: तेरी ये दर्शन शास्त्र की गहरी बातें हमारी समझ में नहीं आती।
5: और तर्क में तुमसे कौन जीत सकता है भला?
4: अच्छा मित्रों, अब मैं चलता हूँ, वेल्लोर से पहले त्रुतानी जाना है, घर परिवार की आस।
2: चल एक रोटी और ले लो।
7: अरे बस बस बस भगवान, बहुत पेट भर गया आज मेरा। और हाँ, हमारे राधे के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अच्छा? अब वो कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेगा।
2: रहने दो, अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, बस मेरी आंखों के सामने रहेगा हरदम।
7: तो क्या पुत्र प्रेम के चक्कर में उसकी पढ़ाई छुड़वा दोगे तुम?
2: बहुत होशियार है मेरा बेटा, देखना कोई अच्छी सी नौकरी झट से लग जाएगी उसे।
7: अरे उसे आने तो दो पहले, उसकी मर्जी भी तो जान ले आखिर वो खुद चाहता क्या है।
2: कौन है? आती हूँ। अरे अरे राधे, तू आ गया बेटा।
4: हाँ अम्मा, प्रणाम।
2: आयुष्मान बाबा, खूब बड़ा हो।
7: अरे बेटा, ना कोई चिट्ठी हो ना कोई खबर, यूँ अचानक?
4: अरे सोचा सीधे पहुँच कर चौंका दूँ आप सबको, पहले खबर हो जाए तो ऐसी खुशी कहाँ देखने को मिलती।
2: हाँ, तेरे इंतजार का एक एक दिन कैसे काटती हूँ ना मैं, तू क्या जाने इसे।
4: अरे अम्मा, तू भी जरा जरा सी बात पर रोने लगती है।
2: हाँ, खुशी के आंसू है ये।
4: अब तो चुप हो जा, अब तो मैं आ गया ना।
2: अच्छा चल, अब बातें बहुत हो गई, खाना खा ले, सब तेरी पसंद का बनाया है।
4: अरे वाह, मेरी पसंद का?
7: तेरे घर आने के दिन से एक सप्ताह पहले से ही तेरी और केवल तेरी पसंद का खाना ही खाना पड़ता है हम सबको। क्यों भगवान, ठीक कहा ना मैंने?
2: खाना अच्छा तो बना है ना बेटा?
4: हाँ अम्मा। अप्पा, मद्रास के पास वेल्लोर के वुरही कॉलेज में पढ़ने का मन है।
7: बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा।
2: क्या खाक विचार है, पता है 16 साल का हो गया है मेरा राधे, मुझे इसका विवाह करना है, लड़की भी देख रखी है मैंने।
4: अम्मा
2: अम्मा अम्मा कुछ नहीं, अम्मा अब तुम्हारी एक न सुनेगी, शिव का वो अम्मा भी अब 10 वर्ष की है और तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी एक अच्छी लड़की है।
4: देखो अम्मा, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, बोलो हाँ या ना, तुम बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो, मैं वेल्लोर में 1 साल की पढ़ाई कर लूँ, अब फिर कर देना मेरी शादी।
7: हाँ भगवान, ठीक तो कह रहा है हमारा राधे, सिर्फ 1 साल की तो बात है, उसके बाद में शादी कर लेंगे इसके हम।
2: हाँ हाँ ठीक है, पर केवल 1 साल, उसके आगे एक न चलेगी तुम दोनों की।
0: काका, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आप भजिए खाओ और आगे बताओ।
1: अरे क्या बात है बेटा, मजा आ गया। राधा कृष्णन 17 वर्ष की उम्र में ही मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज चले गए, इसी बीच उनकी शादी शिवकमु अम्मा से हो गई।
0: 17 साल की उम्र में ही?
1: हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज में बीए एवं एमए की पढ़ाई उन्होंने दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र लेकर पूरी की। जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेते थे। एमए की पढ़ाई करते हुए प्रबंध लेखन के लिए उन्होंने दी एथिक्स ऑफ वेदांत विषय पर प्रबंध लिखा। उनका कोई भी काम साधारण तो होता ही नहीं था बेटा, इस प्रबंध के लिए उन्हें विशेष प्रशंसा पत्र दिया गया था।
0: क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में प्रशंसा पत्र।

0: राधा कृष्णन, प्रशंसा पत्र मिलने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: हाँ मित्र, भाषा वो अंग्रेजों की है, पर क्या अद्भुत अधिकार है तुम्हारा उनकी भाषा पर।
0: दार्शनिक समस्याओं में तुम्हारी समझ और जटिल से जटिल बातों को आसान तर्कों में समझाने की तुम्हारी प्रतिभा से मैं अभिभूत हूँ।
1: अरे भैया अभिभूत, ये अपने तर्कों से अच्छे अच्छे भूतों को कायल कर लेता है।
0: सच कहा, मैं तो डर रहा था वो स्कॉटिश भूत हमारा दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक डॉक्टर हॉग इस प्रबंध पर बिगड़ जाएगा।
2: थोड़ा डरा हुआ तो मैं भी था, पर उन्होंने तो प्रशंसा पत्र दिलवा ही दिया।
0: पर तुमने प्रबंध लेखन के लिए ऐसा विषय ही क्यों चुना?
2: मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म या इसके विचारों का कोई उपहास करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा विषय चुना ताकि दुनिया जान सके कि वेदांत में आचार नीति का महत्वपूर्ण स्थान है।
0: राधा कृष्णन, तुमने तो बड़े साहस का काम किया है।
2: मुझे विवेकानंद के भारतीय युवाओं में आत्मसम्मान का भाव जगाने वाले विचार बहुत अच्छे लगते हैं। सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मैंने पढ़ी और मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है इसका।
1: ये बात तो तुम्हारा प्रबंध पढ़कर कोई भी आसानी से जान सकता है।
2: हम में से हर युवा के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, हर एक को गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है।
0: सुना है कि तुम्हारा प्रबंध पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है।
1: केवल 20 साल की उम्र और एक पुस्तक भी प्रकाशित।
2: सच कहूं

0: क्या हुआ? आज कुछ परेशान नजर आते हो?
1: हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छिपाना। नौकरी में मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा।
0: अन्याय? कैसा अन्याय?
1: अरे, इतना शिक्षित होने के बावजूद सबसे निचले पद पर सहायक शिक्षक रखा है और वेतन भी मात्र 100 रुपया महीना देते हैं। अन्याय नहीं तो और क्या है?
0: बात तो ठीक है तुम्हारी।
1: अरे, हमें भी राज्य और अखिल भारतीय सेवा के उच्च वर्गीय कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि काम हम भी वही करते हैं। बाकी लोगों ने इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मेरा कहना है, समान योग्यता, समान कार्य, तो समान वेतन और सम्मान क्यों नहीं?
0: तो तुम आप क्या करोगे?
1: करना क्या है, सोतों को उठाना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। सबको साथ लेकर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेंगे न्याय पाने के लिए।
0: अपने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करोगे? अगर वे नाराज हो गए तो?
1: आंदोलन किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं, वरन अन्याय के खिलाफ होगा।
0: जो भी करना है सोच समझ कर करना।
1: भरोसा रखो मुझ पर, शिवकमू। अन्याय को सहना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा अन्याय करना।

0: तो काका उन्होंने आंदोलन शुरू किया?
1: हाँ बेटा, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। राधा कृष्णन इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़े। ये अलग बात है कि परतंत्र भारत के अंग्रेजी राज में जब हर संघर्ष का अंत असफलता में होता था, उनके आंदोलन का भी यही हश्र हुआ।
0: तो क्या सबने साथ छोड़ दिया था?
1: नहीं नहीं बेटा, किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, सब उनके साथ थे। उपनिषद, भगवत गीता, जैन बौद्ध धर्मों के ग्रंथ, शंकर भाष्य, रामानुज, माधव टीका के अलावा ब्रह्म सूत्र आदि का गहरा अध्ययन किया था उन्होंने।
2: अरे बाप रे, इतनी सारी बातें तो समझ में ही नहीं आएंगी।
1: इन सब के बावजूद भी उन्हें अंग्रेजी साहित्य से बहुत लगाव था। पाश्चात्य चिंतकों में प्लेटो, प्लाटिनस, कांट, ब्रेडली और बर्गसन का बहुत असर था उनकी सोच पर।
2: अरे बाप रे काका, ऐसे कठिन कठिन नाम मुझे तो याद भी नहीं और आपको सब याद है।
1: अरे बेटा, पढ़ने के साथ साथ वो खूब लिखते भी थे, खूब गंभीर लेखन करते थे। दांते, गोएट, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, ब्राउनडिंग।
2: अरे बस बस काका बस, आप इतना बता रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप तो आगे बताओ।
1: इतने पठन पाठन के बावजूद भी उनका अध्यापन का तरीका एकदम सुगम रहता था, हरेक को आसानी से समझ में आ जाए ऐसा। पर बेटा, गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा।

0: आज बहुत देर हो गई।
1: हाँ, एक और ट्यूशन पकड़ ली है आज से।
0: अब बस करो, खुद पर कितना काम का बोझ डालोगे।
1: अरे भाई, बहनों का ख्याल भी तो हमें ही रखना है। पिताजी तो रिटायर हो गए, कुनबा अपना बड़ा हो तो काम तो अधिक करना ही पड़ेगा ना।
0: मुझे बस एक ही चिंता सताती है कि इतने अधिक काम से तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ।
1: अधिक काम से अधिक ऊर्जा खर्च होती है और उससे अधिक प्राप्त होती है।
0: ओह, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती।
1: सो तो कई बार मुझे भी नहीं आती है। पता नहीं मेरे शिष्य और साथी किस बात पर इतनी तारीफ करते हैं।
0: मुझे कहाँ इतना ज्ञान, पर फिर भी एक बात खूब जानती हूँ कि शिष्य और साथी किसी को यूं ही इतना प्यार नहीं करते।
1: बस बस बस, तारीफ से ही पेट भर दोगी क्या? अब खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है।
0: जी, लगाती हूँ खाना। हाँ, एक बात और पूछनी थी। आज अलमारी में मैंने देखा, तुम्हारे वो सारे सोने के मेडल नहीं दिख रहे थे जो तुम्हें विद्यार्थी के रूप में मिले थे।

0: छोड़ो ना इन बातों को।
1: छोड़ कैसे दूं? तुम्हारे कीमती मेडल है वो।
0: अब है नहीं, थे।
1: क्या मतलब?
0: मैंने उन्हें बेच दिया।
1: हे प्रभु, ये क्या कर डाला?
0: अरे पूरा परिवार आर्थिक परेशानियां झेले और मैं मेडल सीने से लगाए घूमूं। उससे ज्यादा अच्छा तो यही है कि उन्हें बेचकर आर्थिक परेशानी कम ही की जाए।
1: ये ठीक नहीं किया आपने।
0: अब बात निकली है तो एक बात और बता ही दूं तुम्हें। एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की तुम्हें याद है?
1: हाँ, तुमने बताया था उसके बारे में कि उसमें मनोविज्ञान पर तुम्हारे दिए आख्यान संकलित हैं। उसे क्या हुआ?
0: मनोविज्ञान पर लिखे लेख मन का बोझ कम करने के लिए काम आ गए। कर्ज का भार काफी हल्का हो गया। मैंने उसका कॉपीराइट बेच दिया। 500 रुपए मिले हैं उसके बदले में।
1: ये तो और भी बुरा हुआ।

0: बेटा सल्लू, उनके लेखन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया।
1: हमारे देश के बाहर भी?
0: हाँ बेटा सल्लू, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुज उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने से पहले उनका आशीर्वाद ले गए थे। फिर आई उनकी पहली पुस्तक द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने खुद रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उनकी प्रतिभा का कायल बना दिया।
2: अरे सुनती हो, सामान समेटना शुरू करो, शीघ्र ही हमें ये शहर छोड़ना है।
3: शहर छोड़ना है? कहीं तुम्हारी नौकरी तो?
2: हाँ।
3: हे राम, तुम्हारे जैसे विद्वान और गुणी आदमी की नौकरी छूट गई?
2: छूटी नहीं, छोड़ दी।
3: ये क्या किया?
2: बस मन किया कि छोड़ दो तो छोड़ दी। हम मैसूर जाएंगे। अब
3: वहाँ क्या करने जाएंगे?
2: मैसूर विश्वविद्यालय में फिलोसफी के प्राध्यापक के रूप में चयन हो गया है मेरा।
3: क्या, पहले क्यों नहीं बताया? तुम भी ना।
4: बधाई हो भाई, बधाई हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
5: आखिर ये बधाई किस बात के लिए दी जा रही है, जरा मैं भी तो सुन लूं।
4: क्या बात कह रही है, क्या सच में आपको नहीं पता?
5: ये कुछ बताते कहाँ है, बस अपनी पुस्तकों और विचारों में खोए रहते हैं।
2: अरे मेरे घर में घुसने के साथ ही ये दोनों भी घर में आए, मुझे तुम्हें बताने का अवसर ही कहाँ मिला है। ये बधाई बधाई करना बंद करें तब तो बताऊं।
4: लो भाई, अब हम हो गए बिल्कुल चुप। जल्दी बताओ भाभी जी को, खुशखबरी कौन सी है?
2: अरे भाई, पंडित नेहरू ने सोवियत संघ में प्रथम राजदूत बनने के लिए मुझे चुना है।
3: क्या, सच में?
2: हाँ भाई सच में। तुम्हारे ही समान मुझे भी हैरानी है इस चयन पर। बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और राजनयिक के बीच पंडित जी ने इस पद के लिए मुझे चुना है और सभी हैरान है।
4: राधा कृष्णन, मित्र के नाते नहीं पर सच में दिल से कह रहा हूँ कि ये एकदम सटीक चयन है।
6: जिनको होना है उन्हें हैरान होने दो, पर मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा मित्र वहाँ भी सफलता के झंडे गाड़ देगा।

0: संघ में 3 साल का कार्यकाल राजदूत के रूप में पूरा करके वो जब देश लौटे तो 1952 में उन्हें देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का सम्मान मिला।
1: उपराष्ट्रपति?
0: हाँ बेटा।
2: मुझे तो अब तक की मेरी तुम्हारे साथ की जीवन यात्रा स्वप्न जैसी लगती है। कहाँ कॉलेज के एक सहायक शिक्षक की पत्नी और कहाँ देश के उपराष्ट्रपति की पत्नी।
3: ये सब कुछ तुम्हारे भाग्य का प्रताप है।
2: नहीं, इसमें मेरा क्या है, सब तुम्हारी योग्यता का सम्मान है।
3: वो कहावत भी है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है।
2: रहने दो।
3: तुमने कभी माना है क्या इस बात को? फिर भी सच तो यही है कि सफर के हर पड़ाव पर तुम मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही, मेरी हिम्मत बढ़ाई।
0: उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटा, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। सन 1956 में 50 साल से अनवरत उनका साथ निभाती आई उनकी पत्नी 5 पुत्रियों और 1 पुत्र को बिलखता छोड़ इस संसार से विदा हो गई।
4: ये तो बहुत बुरा हुआ काका।
0: हाँ बेटा।

0: भाई हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई।
1: पता नहीं चीन ने इस अमंगलकारी युद्ध की क्यों सोची।
2: हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जिसके लिए हम लगाते रहे, उसी चीन का ये कैसा रूप हमारे सामने आ गया। पंडित नेहरू बहुत व्यथित हैं इस घटनाक्रम से। मैंने उन्हें शांत रहने की सलाह दी है, यही मेरा कर्तव्य भी है राष्ट्रपति के रूप में।
3: यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस कठिन समय में तुम्हारे जैसे योग व्यक्ति का नेतृत्व मिला हुआ है।
1: हमें एकजुट रहकर देश के सम्मान की रक्षा करनी है।

0: 79 वर्ष की उम्र, 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस असार संसार का त्याग कर दिया। पर एक बात है बेटा सल्लू, अनेकों रूपों के बीच उन्हें उनका सबसे प्रिय रूप लगता था शिक्षक का रूप। आज भी उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ,
1: ये बात तो है काका, ये तो मैं भी नहीं भूला हूँ। स्कूल छोड़े टाइम हुआ तो क्या हुआ, शिक्षक दिवस तो मैं भी

जब बाहर कदम रखा था एक नई दुनिया में, तब सरल मुस्कान से सब आसान बनाया आपने। जब बाहर कूल दिखने की होड़ लगी थी, तब अंदर कूल रहना सिखलाया आपने। निस्वार्थ किसी को आगे बढ़ाना देखा हमने, स्नेह से सबको अपना बनाना सीखा हमने। हर बात में इतनी आत्मीयता समाई थी कि डांट को भी प्यारा बनते देखा हमने। समाज हित की ऐसी विचारधारा हो या सादगी और उच्च विचार का नारा हो, शब्दों को जीवंत आप में देखा है, हमें बेहतर इंसान बनाया आपने। किताबों से आगे जीवन होता है क्या, हर बोल का मूल सिखलाया आपने। सभी शिक्षक जनों को रेडियो मधुबन की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हम बहुत खुशी और हर्ष का साथ आज आपका पास रखने जा रहे हैं, क्योंकि आज है शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे। हम भली भांति जानते हैं, हर साल मनाते हैं और खासकर आज का शुभ दिन पर जो संबंध है टीचर्स का और स्टूडेंट का, विद्यार्थी और शिक्षकगण का जो संबंध में जो कोऑपरेशन देखने को मिलता है और सम्मान का जो दिन होता है आज, इतने मेहनत जो सार लोग करते हैं, टीचर्स लोग करते हैं, उनको देने के लिए आज का दिन को देश भर मनाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को और सुंदर रूप में सजाने के लिए आध्यात्मिकता का साथ जोड़ने में हमारे साथ त्रिवेणी सिस्टर है, तो उनको भी स्वागत करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे दीदी, आपका स्वागत है। आप टीचर्स डे के बारे में थोड़ा सा रूपरेखा बताएंगे।
1: जी, थैंक यू। आज विशेष मेरा सौभाग्य है कि टीचर्स डे के निमित्त सभी आदरणीय टीचर्स को तथा सभी स्टूडेंट स्टाफ को और सबसे प्रथम परम शिक्षक, परम शक्ति के स्रोत परमात्मा को प्रथम वंदन करती हूँ और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हर साल की तरह 5 सितंबर को पूरे भारत देश में ये टीचर्स डे शिक्षक दिन के तौर पर मनाते हैं। तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। बताया जाता है इतिहास की श्रृंखलाओं में कि एक बार कुछ छात्रों ने एक समूह के साथ भारत के हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी थी। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय क्यों ना हम 5 सितंबर को इसी उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाए। तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा, डॉक्टर कृष्णन ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा। उसके बाद से 1962 से पूरे भारत देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है यह भी हमें समझना होगा, क्योंकि जैसे कहा जाता है माता पिता हमें जन्म देते हैं, जन्म देने के पश्चात जब हम बड़े होते हैं तो हमें स्कूल में डाला जाता है, स्कूल में जब दाखिला होता है तो शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करते हुए शिक्षा के रूप में एक अच्छे नागरिक, आदर्श व्यक्तित्व बनाने की भूमिका निभाते हैं।
0: जी,
1: जब हम टीचर शब्द को सुनते हैं तो टीचर्स शब्द में ही बहुत अमूल्य गुण छिपे हुए हैं। अगर हम एक एक शब्द की वैल्यूज करें तो उस वैल्यू के आधार पर हम समझ सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षा इसमें कितनी समानता है। तो सबसे पहले टीचर शब्द में टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। टी अर्थात ट्रुथ, सत्य। जिसके पास सत्य ज्ञान है वही सच्चा शिक्षक है। इस शब्द का प्रयोग किया है अर्थात एनलाइटेन, जो सत्य ज्ञान समझकर विद्यार्थी के जीवन को प्रकाशित करता है। ए अर्थात अटेंशन, शिक्षक की बातों को समझने के लिए ध्यान देने का गुण सर्वप्रथम उतना ही आवश्यक है। अटेंशन होगा तो कंसंट्रेशन को हम बना सकते हैं और कंसंट्रेशन है तो हम इस मूल्यों के साथ साथ अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ए के बाद आता है जैसे सी, सी अर्थात क्लीन और क्लियर। शिक्षक की बातें उसी की बुद्धि में बैठेगी जिसकी बुद्धि स्पष्ट साफ होगी, उस पर कोई मैल न हो। इसलिए पढ़ाई जो है हमेशा ब्रह्मचार्य में पढ़ी जाती है। उस अवस्था में हम पढ़ते हैं जिसमें हमारी बुद्धि बिल्कुल एक क्लीन कागज की तरह होता है, प्लेन पेपर, जिसमें हम अपनी अच्छी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। एच अर्थात हाइट, ऊंचाई, यानी शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जीवन का स्तर अथवा कहे चरित्र ऊंचा बन जाता है। ई इजी अर्थात सहज, ज्ञानवान मनुष्य जो होता है वे बड़ी सहजता के साथ अपने कार्य को करता है, उसके जीवन में सच्चाई होने के कारण वे सहज रीति से हर बात को स्वीकार करने के काबिल बन जाता है। इजी नेचर, मोल्डेबल नेचर, ये हमें नम्रता भी सिखाती है। तो शिक्षक नम्रता के साथ हमें इस विद्या को देता है, और जब हम उसी नम्रता के गुण को समाते हुए जब अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छी बातों को धारण करते हैं तो हम अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए बहुत ही सहजता के साथ अपने मन को तैयार करते हैं। आर राइट अर्थात सही और योग्य। एक महान संत से जब पूछा गया कि सही अथवा योग्य क्या है, तो उसने कहा इजी इज राइट अर्थात जो सहज है वे सही है। इस प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति के जीवन में सत्य होने के कारण सहज हो जाता है, और जीवन सहज होने के कारण उसका हर कार्य सही, उचित और राइट हो जाता है। ये हमें प्रेरणा मिलती है टीचर शब्द के भावार्थ में छिपा हुआ रहस्य के अर्थ से। जब हमने इसके अर्थ को समझा ही है तो प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमने बचपन से लेकर के हमारी युवा अवस्था तक हम उस टीचर के सानिध्य में रहे हैं, स्कूल लाइफ जी है, तो इस स्कूल लाइफ के जीवन में हमने बहुत सुंदर अनुभव भी किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारी शिक्षक के साथ। तो उस शिक्षक का क्या महत्व है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में शिक्षक की इतना ही महत्व है जितना कि हमारे श्वासों का महत्व हमारे जीवन में है। टीचर्स का गहरा प्रभाव हमारे बुद्धि के और राष्ट्र के विकास के लिए होता है। लोग, समाज और देश का विकास एवं वृद्धि शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो केवल एक अच्छा शिक्षक ही हमें प्रदान कर सकता है। जो स्वयं आदर्श होता है, उसका व्यक्तित्व आदर्श होता है, तो वह आदर्श व्यक्तित्व को ही तैयार करता है। ऐसा एक सैंपल है हमारे भारत देश में शिक्षक वर्ग। छात्रों के व्यक्तित्व को एक आकार देने के लिए, या कहो उसके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स निभाते हैं। देश के लिए आदर्श नागरिक बनाने का एक बड़ा महान कार्य शिक्षक के द्वारा होता है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि जो बनाए हमें इंसान, और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम।
0: सही में
1: इस आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कोरोना काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद भी शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बदलते हुए समय में भी सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से सिर्फ 12 या 6 घंटे की ड्यूटी नहीं, लेकिन 24 घंटा ऑनलाइन अवेलेबल होते हुए आज भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक हमारे समाज की नींव ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगी हर एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हम चल नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से मूल्यवान शिक्षण के बिना हम चल नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों को चरित्रवान तथा भारत के आदर्श नागरिक में रूप देने के लिए या उस रूप में ढालने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, ऐसे शिक्षक हमारे देश में कई उदाहरण हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना तथा सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणाएं देना, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। ज्ञान के आधार से हमारे जीवन का पोषण करना, ये देहधारी शिक्षक के साथ साथ परम श्रद्धेय, परम शक्ति के स्रोत परमात्मा कार्य करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी हमें समझना उतना ही आवश्यक है। ऐसे शिक्षक का स्थान हमारे लिए बहुमूल्य है, इसी प्रकार से शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों हमें शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, तो जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है वो चाहे मूल्य के रूप में हो या किताबों के माध्यम से हो या आदर्श शिक्षक की अनुभव की गाथाओं से हो, वे हमें पारदर्शिता, स्थायित्व और सुशासन में लाती है। सुशासन हमें अपने जीवन को ढालती है। शिक्षा वास्तव में बहुत अद्भुत एक उपकरण है, या कहो एक ऐसा एक यंत्र है जिस यंत्र के द्वारा हम अपना व्यक्तिगत विकास कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी बुद्धि की वृद्धि करते हैं। बुद्धि का विकास, बुद्धि की स्वतंत्रता में शिक्षा ये बहुत बड़ा प्रधानता का कार्य करती है। शिक्षा हमें नैतिकता, नियम, सामुदायिक जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाना है, इसकी प्रेरणाएं प्राप्त करती है। अच्छी शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए एक ताकत बन जाता है। हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में भी ज्ञान के आधार से शिक्षक किताबों के आधार पर या जो लेख किताबों में होते हैं, इतिहास की हिस्ट्रियां, इनके आधार से हमें प्रेरित करते हैं। निरंतर मैं कहूंगी कठिन परिश्रम करते हैं विद्यार्थियों को दिशा निर्देशन करने में और उन्हें अच्छे करियर के लिए भी रास्ता बताते हैं। अलग अलग विद्यार्थियों में कैसे क्रिएटिविटी आए वो हमें हमेशा प्रेरणाएं देते रहते हैं। हमें अपने कौशल्य को किस प्रकार से विकसित करना है, इसका भी मार्गदर्शन हमें शिक्षक के उस रूप में प्राप्त होता है। मैं समझती हूँ कि भारत में ऐसे कई महान अध्यापक हैं जिन्होंने अपने आप को आने वाले शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया है। उसमें से सर्वप्रथम आज जिसकी हम जयंती मनाते हैं तो उनका प्रथम स्थान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। 40 वर्ष की शिक्षा के इस क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को हर टीचर्स के आगे एक एग्जाम्पल बनाया है, एक ऐसा रोल मॉडल बनाया है कि शिक्षक क्या होता है उनके जीवन कहानी से हर कोई प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं बात करती हूँ कि हमें स्कूलों में जो किताबों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा जो प्रेरणाएं प्राप्त होती है, उतनी ही आवश्यक प्रेरणाएं आंतरिक शक्ति की भी है। हमने किताबी ज्ञान तो पढ़ लिया, समझ लिया, उसे स्वीकार भी कर लिया, इसके आधार पर आज साइंस खड़ा है, कई इन्वेंशन हमने की है, लेकिन क्या हम आंतरिक रीति से उतने ही सक्षम हो गए हैं? हम अपने आप में पूछे, अपने मन को पूछे कि हम शिक्षा के रूप में जितना शिक्षकाओं ने बलिदान दिया है उतने हम सक्षम हैं? उस शक्ति को, उस क्षमता को अगर हमें अपने जीवन में लाना है तो हमें जुड़ना पड़ेगा उस मास्टर टीचर के साथ। उस मास्टर टीचर को हम सुप्रीम टीचर कहते हैं, सर्वोच्च टीचर, जो किताबों के आधार पर नहीं लेकिन एक परम शक्ति का स्रोत है। वे अपनी शक्ति के आधार से इन वैल्यूज को अपने जीवन में आंतरिक शक्ति को विकसित करते हुए किस प्रकार से जीवन में ला सकते हैं, इसकी प्रेरणाएं देते हैं, या कहो प्रेरणा ही नहीं लेकिन उस प्रेरणा के साथ साथ वो बल व शक्ति देते हैं जिसमें हम इन गुणों को अपने जीवन में लाते हुए एक आदर्श और पॉजिटिव व्यक्तित्व को हम ला सकते हैं। इसलिए उस परम शक्ति के स्रोत को सुप्रीम टीचर कहा गया है, वे दिव्य बुद्धि की दाता भी है। इसलिए हम जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो परमात्मा के सामने खड़े होकर कहते हैं, हे परमात्मा मुझे बुद्धि देना, मुझे शक्ति देना। तो हमने अपने कर्म से ये स्वीकार किया है कि दिव्य बुद्धि का दाता, या कहो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, आंतरिक बल देने वाला वो सुप्रीम टीचर परम पिता शिव परमात्मा है। तो हमें ऐसे दिव्य संस्कारों की वो प्रेरणाएं देते हैं, प्रेरणाओं के साथ साथ दिव्य संस्कारों को अपने आचरण में लाने का बल भी प्रदान करते हैं। ऐसे परम शिक्षक को मैं प्रथम वंदन करती हूँ और अंत में इस समाज में हमारे देश के लिए जो भी शिक्षक निमित्त बने हैं, जो हमें मूल्य शिक्षा के साथ साथ जोड़ देते हैं, उन शिक्षकों को भी मैं वंदन और आभार प्रदान करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी, आपने खासकर शिक्षक, शिक्षा और परम शिक्षक इतना सुंदर रूप में तीनों को जोड़े हैं, क्योंकि ये तीनों का बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को, खासकर टीचर्स डे स्पेशल के तहत।
2: टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, बट एवरी डे इज ए टीचर्स डे। इन दिस यूनिवर्स ऑफ ओम शांति वी नो दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सिंह बाबा, आवर स्पिरिचुअल टीचर्स एज देयर नेसेसिटी of teaching from the childhood. Your mother is the best teacher, then comes the father who shows you the path to go in the right way, to do right thing and to be always do your work and get the effort and the result. And your mom guides you to be a great human being, then comes your technical life where you learn engineering or doctors or anything. The teachers will teach you this subject, but the real teaching of life comes from the spiritual life. Here after coming to Om Shanti, I have known what is life, what purpose we are born, what is Atma and what is Paratma, and how to praise the blessing of Sri Baba. In Om Shanti, in this institution, not only teaches us how to be great human beings and to helping each other but also it is giving us the immense power of control ourselves. Control our anger, control our anxiety, control our ego, control our lust. So let us come together, join hand, recognize our supreme teacher, and always we have to do Guru Vandana, because Ajnana Tibirandascha Jnananjana Salakaya Chakramilitam Jena Tasme Sri Gurave Namo. From the darkness of ignorance, our

0: शिक्षक बनते हैं। माता पिता के बाद हमारा शिक्षक ही शिक्षा का शिल्पकार है। उनके पास कोमल कलियां पहुंचती है। उनको शिक्षा देकर अपने स्नेह प्यार सद्भावना की जल सींच कर उन पुष्पों को पल्लवित करते हैं, समाज को सुगंधित करने के लिए लायक बनाते हैं। शिक्षक ही सारा जीवन की नींव है। शिक्षा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट, श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए, एक महान व्यक्ति निर्माण करने के लिए शिक्षक का योगदान महान है। शिक्षक दिवस मनाना हम सबके लिए गौरव की बात है। वैसे शिक्षक का गुरु की उपस्थिति में हमारे जीवन को सही दिशा मिलती है। कोई भी व्यक्ति संपूर्णता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसको सच्चे आदर्श शिक्षक मिल जाता है। शिक्षा ही हमारी चेतना का विकास करता है, संपूर्ण दुख से मुक्त कराता है। शिक्षा ही हमें जीवन की कला सिखाती है। ईश्वर को हम प्रार्थनाओं में ज्ञान की रोशनी प्रदान करने की कामना करते हैं। ईश्वर ही ज्ञान का प्रकाश द्वारा अंधकार से उजाला की ओर ले जाते हैं। महान चरित्रवान अच्छे दिव्य गुणवान बनाते हैं। अगर शिक्षक अपने शिक्षा देने के साथ साथ परम शिक्षक परमात्मा शिक्षा को स्वयं के साथ साथ अगर बच्चों को प्रदान करे तो वास्तविक रूप में उनका भविष्य उज्जवल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज शिक्षक दिवस का शुभ अवसर पर आपने खासकर शिक्षक शिक्षा को लेकर इतना विस्तृत जानकारियां दी हैं। सम्मान देना चाहिए क्योंकि जिसका बदलत हम आज यहाँ तक पहुँचे, बुद्धिमान बने हैं। शिक्षक तो है ही है, शिक्षक के साथ साथ जब परम शिक्षक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मदद करता है और जिसका बदलत हम आज यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए तो हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासी इससे जरूर प्रेरणा लिए होंगे। समाज का प्रति हो चाहे हमारा बच्चों का प्रति शिक्षक का अवदान उसको स्मरण करते हैं आज का दिन में। आज का शुभ दिन पर सभी शिक्षकगण को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और शुभ भावना रखते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और किसी बात को लेकर, खासकर शिक्षक दिवस स्पेशल चल रहा है।

0: आ रही हूँ रुको तो जरा। अरे आप लोग कौन हो?
1: मैम मैं सोमाराम हूँ।
0: कौन हो?
2: मैम मैं बबली हूँ।
3: मैम मैं किशन हूँ। 10 साल पहले आपने मुझे पढ़ाई करने के लिए समझाया था, मुझे लगा आप मेरी शिकायत करेंगे मारेंगे, पर आपने जो शब्द प्यार से बोले उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी।
2: मैम हम सब आज आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, उन सभी शिक्षाएं और उन सभी बातों के लिए जिनके वजह से आज हम जिंदगी को जीना सीख पाए हैं। थैंक यू।
0: बच्चों इतने सालों के बाद भी तुम लोग यहाँ आए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। खुश रहो बच्चों, खुश रहो।
4: जीवन को संवारने वाले, हमें सही दिशा देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमारे हुनर को निखारने वाले, ये हैं हमारे टीचर। हमारे शिक्षकों को हम शत शत नमन करते हैं। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे पर रेडियो मधुबन सभी शिक्षकों को कहता है अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
5: ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं, खासकर शिक्षक दिवस पर शिक्षक और सर्वोच्च शिक्षक यानी टीचर्स एंड सुप्रीम टीचर्स का बारे में यथार्थ ज्ञान सुनते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को।
6: हम जानते हैं बाहर का दुनिया कैसा है। पेरेंट्स जब बच्चा को स्कूल भेज देते हैं तो उनके मन में शंका ही होता है कि बच्चा ठीक से स्कूल से आ जाए, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आजकल के स्कूल में इतना सभ्यता भरना, इतना मोरालिटी देना, इतना आदर्श को समझाने के लिए समय तो नहीं है, भले बहुत डीप पढ़ते हैं जो जनरल एजुकेशन में कह रही हूँ, लेकिन एक पेरेंट्स ही ऐसे रह जाते हैं जो सिखाने वाले गुरु कहे जाते हैं। लेकिन सिलेबस इतना टाइट है, बच्चे स्कूल भी जाएंगे ट्यूशन भी करेंगे तो समय ही कहाँ है, सारा स्ट्रेन तो स्टूडेंट पर है। तो भी मैं कहती हूँ आग्रह है तो, उत्सुकता है तो रास्ता मिल जाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई बहनों स्कूल भी जाते हैं, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जितना डिसिप्लिन है सब ऑब्जर्व करते हैं। अमृत वेले का योग 4 से 4:45 से शुरू करके मुरली क्लास और जो भी धारणा जैसे सात्विक भोजन, जैसे दिव्य गुणों की धारणा, और जैसे जैसे सेवा अर्थात अन्य को सहयोग देना, ज्ञान धन का डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सेवा भी करते हैं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माला दीदी। आपने वर्तमान परिस्थिति में बच्चों का विद्यार्थी जीवन में जो बोझ है शिक्षा पद्धति को लेकर आपने स्पष्ट रूप में बताए, हमारा सभी अभिभावक और माता पिताओं को जरूर इससे फायदा मिलेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी है जो कि सब जोन इंचार्ज बरमपुर के, तो उनसे सुनेंगे आज का टीचर्स दिवस संदर्भ में शिक्षक और परम शिक्षक का बारे में। सुनते हैं दीदी जी से।
7: शिक्षा द्वारा चारित्रिक विकास होता है, शिक्षा द्वारा जीवन जीने की एक राह मिलती है, शिक्षा द्वारा अपना भविष्य उज्जवल होता हुआ दिखाई देता है कि हाँ मैं इस जीवन में कुछ कर सकता हूँ। जब तक नैतिकता जीवन के नहीं है तब तक उदासीनता विद्यार्थी के जीवन में रह जाती है। तो शिक्षा हमें एक ऐसी नैतिकता को जन्म देती है जिस नैतिकता के आधार पर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास अगर बच्चों के अंदर नहीं है तो फिर वो जितनी भी पढ़ाई पढ़ने जो भी कुछ कर ले, लेकिन वो अपने जीवन में सदा ही सदा अपने आप को समझते हैं मैं कुछ नहीं कर पाता, माना आत्मविश्वास में तो निराशा ही है, आत्मविश्वास का उल्टा पक्ष तो निराशा है ना, तो इसलिए शिक्षा हमें आत्मविश्वास पैदा करती है। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो शिक्षा का पद दिया वो विश्व के अंदर भारत की शिक्षा को एक ऊंचा स्थान दिया, और सचमुच मानना चाहिए हाँ सारे विश्व के अंदर सब प्रकार की डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन सारे विश्व के अंदर मानसिक उत्थान, नैतिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान, इसके लिए कोई शिक्षा की डिग्रियां मिल जाती हैं, कारोबार धन अथवा उपार्जन कर लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ शिक्षा से नहीं मिलती। तो मुझे याद आता है भारत का वह समय जब बच्चों के जीवन को निर्णय करने के लिए माता पिता सोचते थे कि इन्हें कौन सी शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा इस भौतिक जगत की तो चाहिए, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये शिक्षा तो चाहिए, इसके शिक्षा के बिना तो हम चल नहीं सकते। लेकिन ये जीवन हमारा दो चीज़ों से मिल करके बना है, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो जब आत्मा शरीर में है तब हम इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं भौतिक जगत को, जिससे हमारी जीविका चलती है। लेकिन आत्मा जब शरीर में है तो जीवन भी तो है ना, तो जीविका के लिए हम इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लेकिन चरित्रवान बच्चे ही उन्नत होकर के आने वाले विद्यार्थियों को दे सकते हैं, देश के लिए अच्छे नागरिकों को तैयार कर पाते हैं, देश के लिए एक ऐसे श्रेष्ठ वक्ता दे पाते हैं, देश के लिए ऐसे श्रेष्ठ कर्मठ दे पाते हैं, जिससे कि वो जिस दिशा में भी काम करें वो सच्चे होकर के करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, ऐसे नहीं कि समय को बर्बाद करें, ऐसे नहीं। वो सब जो नैतिक भावनाएं हैं, चारित्रिक भावनाएं हैं, सामाजिक भावनाएं हैं, वह ये शिक्षा इसका हमारे में वृद्धि करती है। लेकिन उससे पहले, इस शिक्षा के महत्व से पहले, भारत का एक समय था जब भारत में शिक्षा के लिए तीन स्थान माने जाते थे और उसका विश्व में भी स्थान था, विश्व भी उसको नतमस्तक होता था, मानता था। पहला स्थान था गुरुकुल, गुरुकुल भी भाइयों का अलग, बहनों का अलग, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, तो वो देहरादून में था और भाइयों का रुड़की अर्थात कांगड़ी में था। वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी भौतिक शिक्षा के साथ साथ ये आध्यात्मिक, नहीं आध्यात्मिक शब्द तो यूज़ नहीं करते, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे में हमारे वेद पढ़ाए जाते थे, जिसके अंदर हमारे को परमात्मा के बारे में, समय के बारे में, जीवन के बारे में, मनुष्य आता कहाँ से जाता कहाँ से, मुक्ति और मोक्ष के बारे में, जीवन मुक्ति शब्द बोलते थे लेकिन जीवन मुक्ति की परिभाषा वो नहीं थी, शब्द बोलते थे, वो पढ़ाया जाता है। दूसरा एक स्थान जो सिर्फ राजस्थान लेवल पर ही था, जयपुर में वनस्थली, उसको सिर्फ राजस्थान लेवल पर माना जाता था, लेकिन पूरे भारत के लेवल पर गुरुकुल जरूर माना जाता था, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जो देहरादून में था। अभी क्या है मैं नहीं जानती, मैंने भी वहाँ से ही 4 साल की उम्र से जाकर वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, अपनी शिक्षा का प्रारंभ वहाँ से किया और 7वीं 8वीं क्लास तक वहाँ शिक्षा ली। लेकिन एक स्थान और है, आज भी नालंदा में उसके खंडहर हैं, राजगिरी के पास में नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है, वहाँ से कौमार्य वंश के तो युवक पढ़ते ही थे, विद्यार्थी पढ़ते ही थे, लेकिन विश्व के कोने कोने से भी वहाँ पर उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते थे। और तीसरा स्थान हमारे भारत के अंदर एक शिक्षा का था, जिसको नैतिक शिक्षा कहा जाता है या धार्मिक शिक्षा कहा जाता है, वह स्थान था हमारा तक्षशिला, जो कि आज भारत के, जो अविभाजित भारत था तब वो भारत में, जब विभाजित भारत हो गया तो वो भारत से बाहर चला गया, लेकिन वह स्थान है। लेकिन उसकी क्या रूपरेखा है वो तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अभी गुरुकुल चल रहे हैं, किस लेवल पर चल रहे हैं वो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन हमारा जो ये है नालंदा विश्वविद्यालय, वो तो खंडर हो गया, वहाँ कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा की यादगारें हैं, एक म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पर में, और उस म्यूजियम में उनके वो चित्र दिए हुए हैं शिष्यों के भी वो शिष्य नहीं, विद्यार्थियों के भी वो चित्र दिए हुए। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में भौतिकता की वृद्धि होती चली गई, हमारा भारत पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ने लगा, तो पाश्चात्य संस्कृति में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता तो शब्द तब नहीं था, धर्म की कमी होने लगी। इस बाह्य जगत का विकास होने लगा, मनुष्य इस जगत की चीज़ों को जानने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए बढ़ने लगा। उस समय जब ऐसा समय हो गया तो भारत का ओरिजिनल रूप क्या था? जब हमारे भारत के अंदर धर्म अर्थात वह धारणाएं जिसका नाम कहा जाता है आध्यात्मिकता, उस आध्यात्मिकता को देने के लिए आज हम भारत के गौरव को अगर याद करते हैं तो याद करो सत्काल को, सतयुग के काल को, जहाँ भौतिकता अपनी चरम सीमा पर थी, सुंदरता अपनी चरम सीमा पर थी, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, धन धान्य से वो संपन्न था, धन धान्य से वो संपन्न था, लेकिन साथ साथ चरित्र से भी वो श्रेष्ठ था। तो वो जगत दिव्य गुणों से संपन्न जगत कहा जाता था, जहाँ धर्म का नाम नहीं था, धर्म शब्द नहीं था, जहाँ धारणा शब्द थी, दिव्य गुणधारी मनुष्य जिनको देवी और देवता कहा जाता था। ये किसी धर्म के सूचक नहीं है, प्रतीक नहीं है, ये चित्र जो हमको मिलते हैं वो किसी धर्म के चित्र नहीं होते हैं, लेकिन ये उन धारणाओं के मनुष्य हैं जिन मनुष्यों के अंदर उन धारणाओं का आदर्श था, जिनको हम देवी देवता कहा जाते हैं। वहाँ भी शिक्षा थी, लेकिन वो शिक्षा हर कलावान शिक्षा थी, जो हमारी कलाएं थी। जैसे पहली हमारी कला है ये जो है नृत्य कला, नृत्य कला की वहाँ शिक्षा मिलती थी, संगीत कला शिक्षा मिलती थी, चित्रकला, ये सब कलाओं के रूप में उस समय शिक्षा मिलती थी, भाषा का ज्ञान होता था, राज विद्या थी, लेकिन राज विद्या ऐसी विद्या नहीं कि हम अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश को जीतने के लिए क्या पढ़ाई पढ़ाते, वो नहीं थी। राज विद्या मतलब राज कारोबार को कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ नेचुरल चलती थी, अननेचुरल कुछ नहीं था कि ऊपर से कोई आया और करके चला गया, नहीं। जो मनुष्य इस धरा पर, जो देवी देवता इस धरा पर जन्म लेते थे, उनके द्वारा ही ये विश्व संचालित था। धरा पर कोई और हो, संचालन कोई और करे, ऐसा कुछ नहीं था। वह चीज हमें कैसे प्राप्त हुई, तो हम सब जानते हैं आज की जो शिक्षा में कुछ सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या सुधार होना चाहिए, कौन सुधार करे, कैसे सुधार करे, और उसका सुधार का सही रूप क्या है, और बच्चे सारे उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी है, ये सब महसूस करते हैं, लेकिन संपूर्ण सुधार क्या है उसका भी नक्शा किसी के पास नहीं है, लेकिन किसी को साहस भी नहीं है कि आज के बच्चों को वो चीज़ समझा सके और बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, वो भी नहीं है। जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अन्नामलई और ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से वैल्यू एजुकेशन क्लासेस शुरू हुई, तो उन्होंने भी अपनी अपनी अन्नामलई यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एक एक क्लास चला, जिसके अंदर एक क्लासेस चलती थी। तो यह शिक्षा और एक आध्यात्मिक जगत की शिक्षा, मैं धार्मिक शब्द यूज़ नहीं करे, धर्म में विवाद हो जाता है, भेद हो जाता है, ऊंच नीच का भाव हो जाता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन आध्यात्मिकता जीवन से जुड़ी हुई वह चीज़ है जो हमें हमारे सांसों को, जो आज हमारी कोई भी नेगेटिव बात होती है, कोई भी उत्तेजना वाली बात होती है, सांस कितनी ज़ोर से चलता है, संकल्प कितनी ज़ोर से चलते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेन और हार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और जब वो ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो आयु कम होने लगती है, कंट्रोलिंग पावर कम हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज इस शिक्षा को देखते जाओ तो आज ज़रूर किसी एक और शिक्षा की ज़रूरत है। तो इस शिक्षा के यहाँ गुरु शब्द बोलते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु शब्द उसको कहा जाता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु उसको कहा जाता है जब मनुष्य का जीवन अंधकारमय बन जाता है, तो उसे जीवन में एक प्रकाश चाहिए, जीवन के बाद प्रकाश नहीं चाहिए, जीवन रहते हुए, जीवन जीते हुए, भौतिक जगत की शिक्षा लेते हुए, भौतिक जगत के परिवार को चलाते हुए, व्यवहार में आते हुए, समाज और संबंधों में रहते हुए, अपनी नौकरी वगैरह सब करते हुए, लेकिन उसको एक ऐसी रोशनी चाहिए, एक ऐसा प्रकाश चाहिए जिसको गुरु अर्थात अज्ञान अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो ये शरीर है, इसमें आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन सब कुछ है। कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं है? रेटिना भी कोई आत्मा के अंदर नहीं, रेटिना भी आँख के अंदर ही है। लेकिन अगर रेटिना ठीक होता भी है और अगर आत्मा नहीं है शरीर के अंदर, चेतना नहीं है शरीर के अंदर, लाइट नहीं है, तो वो रेटिना भी तो काम नहीं करता ना। पल्पिटेशन हार्ट का होता नहीं, नाड़ी हमारी चलती नहीं, किडनी हमारा वर्क नहीं करती है, ब्रेन हमारा वर्क नहीं करता है, जबकि ब्रेन सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो गुरु उसके लिए चाहिए जो इस अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश की ओर ले जाए। तो शरीर एक अंधेरी कोठरी, एक अंधेरा रूम। रूम के फर्नीचर फेंक देने से हमारी समस्या समाप्त नहीं होगी, अर्थात हम एक एक चीज़ को त्यागते जाएं, फिर आखिर में घर को त्याग के जंगल में चले जाएं, तो भी हमारी शांति की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। हमारी समस्या का समाधान क्या है? हम इस समाज में रहें, परिवार में रहें, व्यवहार में आए, शिक्षा लेवें, नौकरियां करें, सब कुछ करें हम, लेकिन इसके अंदर रहते हुए मैं कौन हूँ उसको हम जाने। उसके लिए गुरु चाहिए हमारे को, और गुरु भी वह जो गुरुओं का गुरु अर्थात सद्गुरु हो। तो वो तो एक आज अलग विषय है, लेकिन आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो परमात्मा पिता है, जिसको भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह जो कुछ भी बोलो, उसको कहा ही जाता है परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु। वही गुरु है, लेकिन शिक्षक पहले है, गुरु बाद में। आप कहेंगे कैसे? हाँ, पिता पहले है, शिक्षक बाद में है, गुरु उसके बाद में। पिता अर्थात वो अपना घर परम धाम छोड़ के पार ब्रह्म परमेश्वर, वह निराकार है, हम साकार हैं, हमसे कैसे मिले हम तो जानते नहीं, और हम जा भी नहीं सकते उसके घर, लेकिन वो अपने परम धाम से इस धरा पर आता है। उसको मालूम है मुझे किस मनुष्य तन द्वारा ये कार्य करना है, ये उस मनुष्य तन का आधार लेता है, और उस मनुष्य तन का आधार तब लिया जब सृष्टि धीरे धीरे धीरे धीरे अंदर अंदर अंदर अंदर विकारों की अग्नि में तप रही थी, बदला लेने की भावना में तप रही थी, अपने आप को भौतिक संपदा

0: वो मिसाइल्स बोलो एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अंदर अंदर विद्रोह की भावना से भरपूर करती जा रही थी। उस समय 1936 में निराकार परमपिता परमात्मा ने एक ऐसे व्यक्ति के तन में प्रवेश किया जो वृद्ध था, समाज का राजा और रंक दोनों का अनुभवी था, जो परिवार में रहते हुए एक जैसे परिवार से न्यारा था। आज एक प्रैक्टिकल मिसाल देती हूँ। वह व्यक्ति अपने जीवन काल में जब से व्यापार का अपना शुरू करा, 11 महीने व्यापार करके 1 महीने व्यापार बंद करके साधुओं के गुरुओं की मंडली में जाके बनारस हरिद्वार जाकर के बैठते थे, उनके साथ में सत्संग करते थे। आज का एक बिजनेसमैन तो मुझे दिखा दो जो 1 घंटा भी पहले दुकान बंद कर ले, 1 घंटा बाद में खोले, नहीं। तो वह परम शिक्षक जब इस सृष्टि पर आया तो वह पिता बनकर के हमें शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी? अब वह शिक्षा है अंधकार से प्रकाश की ओर। जो कार्य व्यक्ति कर रहे हैं उस कार्य को परमात्मा को करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नहीं कर सकता, जो इस कार्य को मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, उस कार्य को परमात्मा करता है। परमात्मा वह करता है जो हमें शरीर के अंदर विराजमान चैतन्य आत्मा है उसकी पहचान देता है। पिता बनकर हमारे को अपनी संतान बनाता है और अपनी संतान बना करके वह कहता है, बच्चे तुम अज्ञान के अंधेरे से उठो, मैं तुम्हें ज्ञान का प्रकाश देता हूँ। और वह ज्ञान का प्रकाश के रूप में संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को मना नहीं है, विश्व में जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं सारे महाद्वीपों में सब जाति सब धर्म सब भाषा सब आयु सब वर्ग के लिए खुले हुए हैं, किसी के लिए मना नहीं है, कोई फीस नहीं है। यह वह शिक्षा देता है जिसमें हम अपने आप को जानते हैं। यह वह शिक्षा देता है रियल हमारा कौन है। यह वह शिक्षा देता है ये सृष्टि रंगमंच पर हम क्यों आए। यह वह शिक्षा देता है कि हम यहाँ से पहले हमारा रियल घर कहाँ पर है। यह हमारे गुणों की शिक्षा देता है, हमारी शक्तियों की शिक्षा देता है, हमारे जीवन के आदि मध्य अंत काल की शिक्षा देता है। ये सृष्टि नाटक का ज्ञान बताता है। परंतु परम सदगुरु बन करके गुरु का कार्य क्या है? ये शिक्षा का कार्य है, हमें रोशनी दे दिया। लेकिन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अर्थात इस संसार से, इस जीवन से, हमारे मन बुद्धि को, शरीर को त्याग करके नहीं, अगला जन्म के लिए कहते हैं अगले जन्म में जाएंगे कि मरने के बाद, नहीं, जीते जी इस शरीर में बैठे हुए अपने को, जो मैं हूँ रियल, मैं शरीर होती थी तो उसको जलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ जो थी है और रहेगी, सदा रहेगी, जो आती है और चली जाती है, जिसका कहीं अलग निवास स्थान है लेकिन इसका कर्तव्य यहाँ पर है। कोई कितना भी अच्छा डॉक्टर हो लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, नहीं तो वो कितना होशियार डॉक्टर है बिना इंस्ट्रूमेंट के कैसे पता चले। तो उसको तो वो चीज़ चाहिए ना, मशीनें चाहिए ना जिसके द्वारा ऑपरेशन, ऐसे आत्मा को भी वह शरीर रूपी मशीन चाहिए जिसमें आँख हो, हाथ हो, नाक हो, पैर हो। वह पहचान हमारे परम शिक्षक ने दी है। तो आज इस संसार के भौतिक जगत के अंदर राधा कृष्ण की तो थैंक्स है जो बच्चों की इच्छा शिक्षा की ओर बढ़ी और शिक्षा को ऐसा सरल करके समाज में दिया और विश्व में जाकर के भी उन्होंने भारतीय शिक्षा का सम्मान बढ़ाया और सभी भारतीय शिक्षा को बाहर से भी गुरुकुल में पढ़ने वाले आते थे। अभी तो गुरुकुल में वो शिक्षा नहीं रही, विदेश से पढ़ने के लिए भारत में भी आते थे। तो आज इस शिक्षक दिवस पर मेरा विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, चाहे इस ईश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं या चाहे विश्व के जहाँ भी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आज के दिनों पर यही है। जैसे ये जीवन हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना है, चेतना और जड़, ठीक इसी प्रकार से जड़ की जो शिक्षा ले रहे हो, जहाँ भी हमारे सारे विश्व में सेवा केंद्र है आप जाकर के शिक्षा लेवें, तो ये परम, ये हमारे राधा कृष्णन जी के लिए एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। हमारा चित्र तैयार हो गया और चरित्र नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देती हूँ। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर सिगरेट पीता हुआ आता है, बच्चों को जो भी उसने पाठ देना होता है लिखने के लिए दे देगा, बच्चे डिक्टेशन लिखते रहेंगे, अपना काम करते, वो बैठ के सिगरेट पीता रहेगा तो कैसा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो चित्र है टीचर का, लेकिन चरित्र भी एक टीचर का ही होना चाहिए। हम वह काम करें जो बच्चे कर सकें, हम वह काम ना करें जो बच्चों के करने के लिए नहीं। मेमोरी को बढ़ाने के लिए, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए, हमारे व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सम्मान देने के लिए, या जो कुछ भी कहो, उन सब के लिए हमें इस शिक्षा की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी शिक्षा उस शिक्षा की जीविका के लिए ज़रूरत है, इस शिक्षा की जीवन के लिए ज़रूरत है। अगर जीवन नहीं तो जीविका कैसी, जीवन नहीं तो जीविका कैसी। इसलिए आज मुझे इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना है। आप बहुत अच्छे हो विद्यार्थी, जो बैठ करके आप अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हो, अभी तो ऑनलाइन पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे, उसके साथ पढ़ते पढ़ते इस ईश्वर विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ेंगे। जो पाठ आप 4 घंटे में याद कर सकते हो, वो मैं गारंटी से कहती हूँ आप 1 घंटे में याद कर लें। तो मैं आज परमपिता परमात्मा परम शिक्षक परम सद्गुरु को इस मंच से उनको यही कहती हूँ कि आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप आए, हमारे जीवन को प्रकाशित किया। आज हमारा भारत क्या विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही ये विश्व ऐसा गौरवपूर्ण बन जाए और विश्व में एक ऐसा प्रकाश आ जाए जहाँ से अज्ञानता का प्रकाश खत्म हो के चारित्र और ज्ञान का प्रकाश आ जाए, यही शुभकामना मेरे शिक्षक दिवस पर है। सब प्राप्तियों से संपन्न है, सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी संपन्नता पूर्ण जीवन जीने के लिए आप बच्चों को, आप विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं दुलार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम को सभी ने सुंदर रूप में सजाए, जरूर हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी इससे कुछ फायदा लेंगे और शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी का जो समन्वय कितना आवश्यक है, हम आज का कार्यक्रम से बहुत कुछ लाभ लिए हैं। इन शुभ भावना का साथ हमें और सभी दीदियों को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन FM पर।
2: और भगवान परम शिक्षक है। परम शिक्षक, जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है, पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में, 7वीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में, लेकिन जब 8वीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, 7वीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में 8वीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं, तो टीचर देखता रहा, ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं, पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा। तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनहार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा, ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा, बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा, अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे। और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था, तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए। जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा, आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी। और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा, कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा, सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूं, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, फिर घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा, कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा, मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना, उनके कारण हूं। मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था, आज मैं जो कुछ बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते हैं, इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहनें सुनाती है, जो बहनों को सुनो ऐसा लगे सुनते ही रहे। लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया, उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया, उसने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया। तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि ये टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है। ठीक है, ओम शांति।
3: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: मेहमान,
1: जिनसे मिला ज्ञान का खजाना, रत्नों का खान,
2: जिससे मिली दुनिया की पहचान,
3: वो है हमारे आदर्श गुरु।
4: रेडियो मधुबन विश करता है उन सभी शिक्षक गणों को अ हैप्पी टीचर्स डे।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है, आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ने कल सुना था कि सफलता की चाहत क्यों है, तो इस विषय पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आशा करूंगा आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद हम लोग आज जो विषय है हमारा वो है कि मैं ही सफलता हूँ। ये एक थोड़ा सा यूनिक विषय है जो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आशा करूंगा आपको कल और उसके पहले वाले एपिसोड्स भी अच्छे लग रहे हैं। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषय को लेकर बातें कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिर से राजेश जी उपस्थित हैं और वो मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने और आप अगर चिंतन करते हैं, मनन करना चाहते हैं, आप अगर टेंशन फ्री होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप शांति प्रेम के साथ जीना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। राजेश जी हैं, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, मजे में। जी,
0: और मैं चाहूंगा कि आज जो आपने विषय चुना है मैं ही सफलता हूँ, ये विषय क्यों चुना और इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए।
1: मैं ही सफलता हूँ
0: जी,
1: लोग तो सफल होना चाहते हैं लेकिन ये विषय मैं ही सफलता हूँ, इसको थोड़ा स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी,
1: मैं ही सफलता हूँ मतलब कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो सफल है।
0: हाँ।
1: और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मैं ही सफलता हूँ माना बिना किसी शर्त के, बिना किसी आधार के मैं जीवन में सफल हूँ। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सफलता जो है मेरा वो बर्थ राइट है। लेकिन इसको हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की,
0: बिल्कुल,
1: कि एक व्यक्ति जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता तो उदास हो जाता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया है उसी प्रोफेशन में अगर वो नहीं जाता तो सारी उम्र उसके मन में हमेशा ये रहता था, मैं तो ये बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो ये कर नहीं पाया, और बहुत सालों तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार कहते हैं कि टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, लेकिन जब तक वो टाइम उनको हील करता है वो उनके जीवन के वो क्षण, वो महत्वपूर्ण क्षण वो अपने खो देते हैं, क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अपने प्रोफेशन में आनंद नहीं आता, क्योंकि अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर जो उनका ड्रीम था दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं। तो हमने जाना पिछले प्रोफेशंस में कि एक्चुअली अगर वो इंजीनियर या अपने प्रोफेशन में चला जाता तो उसको क्या मिलता, अल्टीमेट उसको चाहिए खुशी, आनंद, प्यार, शांति, लेकिन ये दूसरे प्रोफेशंस में जाकर भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें ये था कि ये प्रोफेशन मिलेगा तो ही हमें ये गुण मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये ऐसा क्यों नहीं है इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मुझे याद है जब मैं विदेश में यूएस में पढ़ा रहा था, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहती हो, तो उसका एक बहुत अच्छा उत्तर था कि मैं जिंदगी में जो भी बनूँ, वॉट एवर आई बिकम इन माई लाइफ, चाहे मैं फोटोग्राफर बनूं, चाहे मैं मॉल में मैनेजर बनूं, या मैं मॉल में काम करूं, या मैं कारपेंटर बनूं, जो भी मैं जिंदगी में बनूं, लेकिन मैं हमेशा जीवन में खुश रहना चाहती हूं। तो अल्टीमेट एम हमारा ये है, हम प्रोफेशन के पीछे ना दौड़ें, उसके कारण अपने जीवन को खराब ना करें, दुखी ना हो जाएं, सुसाइड की तरफ ना जाएं, दूसरों को देखकर उदास ना हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि आपने जो एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट का बताया आपने कि मैं अपने जीवन में कुछ भी बनूं लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि स्वाभिमान है, एक आस्था है जहां पर हमें इस लक्ष्य को लेकर चलना है। क्योंकि हम लोग अगर किसी स्टेटस को लेकर चलते हैं तो वो तो टेम्प्रेरी रहता है और उसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा है कि कुछ भी बनूं मैं लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसको कह सकते हैं, स्वाभिमान की बात कह सकते हैं, ये आपके लिए स्वभाव कह सकते हैं, इस तरह का स्वभाव जो है आपको खुश रखेगा हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज हम लोग मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, राजेश जी भी हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके बताया। और इंडिया में फिलोसॉफिकली ये सारी बातें जो है बच्चों को, माता पिता हो या अपने दोस्त हो, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें करे, तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बन जाती है हमारे साथ में। माता पिता सोचते हैं कि हाँ मेरा लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए, है ना, और दोस्त भी कहते हैं अरे तू स्पेशलाइजेशन कर लेना डॉक्टर के साथ साथ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जिसके वजह से, और फिर वो अचानक अगर वो कहीं सेट नहीं हो पाए तो उसको लगता है कि मैं अब मेरा जी के जीवन जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जो गलत धारणाओं के वजह से भी, गलत बिलीफ सिस्टम के वजह से भी चीज़ें जो है हमसे मुश्किल कर देती हैं हमारा जीना। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इंडियन फिलॉसफी में और जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं तो उनको कैसे आप बताएंगे कि जीवन में सफलता मैं ही हूँ।
1: इसका अपोजिट देखें कि हमें खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, शांति ही चाहिए। हम जब कॉलेजेस में गए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट्स को गेम खिलाई एक, उनको बोला कि आप ये पेन पास करो अपने दोस्त को, पहले बोला खुशी से पास करो, फिर बोला गुस्से से पास करो। ऐसे चार स्टूडेंट्स को एक एक करके बोला पास करो
0: जी, जी,
1: फिर
0: जी।
1: बोला अभी शांति से पास करो, फिर बोला ईर्ष्या से पास करो। फिर उनसे सवाल पूछा कि आपको वैल्यूज अच्छी लगती हैं या एंटी वैल्यूज अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला हमें वैल्यूज अच्छी लगती हैं। तो उनको पूछा गया आपको ईर्ष्या, दुख, अशांति, क्रोध अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपको खुशी, शांति, आनंद, प्रेम ही क्यों अच्छा लगता है, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, अशांति, उदासी क्यों नहीं अच्छी लगती। तो उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। तो इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर ये है क्योंकि ये हमारे मानवीय मूल्य हैं और हम इन मानवीय मूल्यों के साथ ही पैदा हुए हैं। मानव मानव कहलाता है क्योंकि मानवीय मूल्यों के साथ उसका जन्म हुआ है, ये हमारा बर्थ राइट है। हमें कोई प्यार करना सिखाता नहीं, एक माँ नेचुरली अपने बच्चे को प्यार करती है। हमें ये चीजें नेचुरली अच्छी लगती हैं बिकॉज वी आर बॉर्न विद दीज वैल्यूज, हम इन मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सेल से बना होता है जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो पता लगता है कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं, लेकिन इन सेल्स को भी कौन बनाता है? इन सेल्स को कहते हैं एक विशेष तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे मिलकर के हमारे शरीर के सेलों को बनाते हैं। और हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन भोजन में भी हम क्या खाते हैं? आप गेहूँ लेते हो, आप फल लेते हो ना, आप सब्जियां खाते हो, उनमें भी क्या होता? उनमें भी वही कंपोनेंट्स हैं जो आपके शरीर में हैं। और हर एक सेल में जितना प्रोटीन है उतना ही आपके भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, हर एक सेल में जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना ही आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो सारे दिन में जो हम भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं तो 70% जो है वो वाटर होना चाहिए। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसी का हमारा शरीर बना हुआ होता है, बचपन से ही हमारा शरीर उसी का बना है, इसीलिए बाहर से हमें वो चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, हम बाहर से मांगते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोफेशन के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों के व्यवहार से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम इन्हीं गुणों के साथ ही पैदा हुए हैं, ये मेरे निज गुण हैं, इनको हम कहते हैं हमारे अनादि अविनाशी गुण। दीज आर द इनेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन वैल्यूज के बिना हम मानव नहीं कहला सकते और मानव जिंदा नहीं रह सकता। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, माँ अपने बच्चे को रोज भोजन कराती है और बड़े प्यार से खिलाती। मान लीजिए किस दिन बच्चा स्कूल में लेट हो गया और लड़की लेट हो गई और माँ को शक हो गया इसने कुछ गलत काम किया होगा, तो बेटी तो रुक गई थी स्कूल में टीचर से बात करने, क्योंकि कल उसका एग्जाम था और टीचर से वो डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनसे समझना है, लेकिन वो लेट होगी। लेकिन माँ ने जाते ही गुस्सा कर दिया, खाना तो खिलाया, भोजन तो वही खिलाया, लेकिन आज गुस्से में खिलाया तो पेट तो आपका भर गया लेकिन मन नहीं भरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त भले हमें कुछ ना दें लेकिन प्यार तो दें, कम से कम प्यार से बात तो करें। जैसे कई बार हम अपने किसी दोस्त से धन मांगने जाते हैं तो कहते हैं भले वो धन नहीं देता लेकिन मेरी रिस्पेक्ट तो करता, इज्जत तो करता, मेरे से प्यार से बात तो करता। इसीलिए जब कोई गलती करता है तो कहते भले मेरे को समझाते लेकिन मेरे को प्यार से बताते ताकि मैं उसको परिवर्तन कर पाता। तो इन मानवीय मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उसको समझें कैसे, उसको अनुभव कैसे करें, रियलाइज कैसे करें, क्योंकि सफलता मेरा आधार है, क्योंकि सफलता माना ही प्यार, शांति, आनंद, प्रेम। लेकिन वो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, हमें वो रियलाइज क्यों नहीं होता? उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता, विधि नहीं पता, तरीका नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में हम अगले सेशन में, एपिसोड में आपसे जरूर बात करेंगे।
0: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या तरीका है, कैसे हम उस चीज को समझ पाएंगे। आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। आपके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर होगा कि कैसे ये संभव है। बिल्कुल संभव है, बस उसके लिए जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया, सफलता मैं ही हूं, इस पर थोड़ा सा आप चिंतन करके देखिए। जो एग्जांपल राजेश जी ने दिया है उस पर बात करके देखिए, अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो टॉक शो हमारा चलता है, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा, जिस प्रोग्राम का नाम ही हमने ऐसा रखा है, ताकि आप जो है सेल्फ एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचें, और जो हमारा मेन मकसद है हमारी जीवन में, खुशी, शांति, प्रेम, वो पाए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मंथन करके आपको बताया जा रहा है, और आपका भी चिंतन मंथन चले, यही हमारी शुभकामना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे राजेश जी?
1: मैसेज हमारा ये रहेगा कि दुनिया में बहुत तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, एक वो होती हैं जिनको बोलते हैं मोनोटोनस पर्सनैलिटीज। मोनो माना उनको एक ही चीज पसंद होती है, एक ही तरह का भोजन रोज खाएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या उनकी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, वो टेबल पे रोज उसी सीट पे जा करके बैठेंगे और इधर से उधर कोई भी चीज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त परिवर्तन होते रहते हैं, उनको हर दिन कोई ना कोई वैरायटी चाहिए, अलग अलग जगह पे बैठेंगे, वैरायटी काम करेंगे। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं जो बाय बर्थ होती हैं। लेकिन ये जो हमने कहा अनुभव
0: जी,
1: कि मैं ही खुशी हूँ, शांति हूँ, प्यार हूँ, कल हमने कहा था कि मैं खुशी का सितारा हूँ, अपने को देखें। लेकिन कई हमारे जो दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, या हमारे जो चाहने वाले श्रोतागण हैं, शायद उनको कई बार मोनोटोनस लगे कि हर बार हमने क्या यही विचार रखना है। तो उनको हम और भी तीन चार विचार दे देते हैं आज कि जो आपको लगे रोज परिवर्तन कर लीजिए। जैसे रोज आप सब्जी नहीं खाते हैं, फल रोज अलग तरह से खाते हैं, रोज वही नहीं खाते, तो कईयों को तो पसंद होता है, कईयों को नहीं होता। तो उनको हम तीन विचार और देंगे, उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं खुशी का सितारा हूँ, पहले दिन ये ले लीजिए। या एक ही दिन में आप चारों टाइम, सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। मैं शांति का सितारा हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, मैं एक शक्तिशाली सितारा हूँ। ये आप लगातार चार दिन कर सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगे सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो जब आप ये लगातार इस पर विचार करेंगे, ये संकल्प अपने आप को देंगे, ये थॉट्स अपने मन में जनरेट करेंगे स्वयं के स्वयं ही, तो आपको अपने अंदर ही इन गुणों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और सफलता मेरा अधिकार है, शायद ये भी आपको समझना धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आज का जो हमारा विषय था, खास मैं ही सफलता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी मित्रों के जहन में ये बात ज़रूर आ गई होंगी कि हमें कुछ भी करें लेकिन मेरे जीवन में खुशी हो, शांति हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। आप भले पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा करें पढ़ाई और अच्छा मार्क्स भी आप ले आए और अच्छे स्टेटस पे भी बने रहें, लेकिन साथ में अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, उस पर ज़रूर आप चिंतन करें कि मुझे जो है अपने जीवन में क्या चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, ये मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

ओम शांति। आज है 6 सितंबर 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 19 अक्टूबर 2011 को सुनाए थे। सीजन की पहली मुरली थी और यज्ञ को 75 साल हुए, प्लैटिनम जुबली मना रहे थे। सीजन की प्रथम मुरली और प्रथम मुरली में विशेष डबल विदेशी भाई बहने पहुंचे थे, तो बाबा उन सब को देखते हुए कहते हैं कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं, बाबा के प्यार को अनुभव करते हुए सबके दिल में भी यही गीत बज रहा है, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। बाबा कहते हैं, ये आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है। फिर बाप दादा ने हरेक के मस्तक में 3 भाग्य को देखा। कौन सा 3 भाग्य? तो पहला है एक बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य और तीसरा सदगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। तो 3 भाग्य, वर्षे का भाग्य, शिक्षा का भाग्य और वरदानों का भाग्य। बाबा कहते हरेक के मस्तक इन 3 भाग्य से चमक रहा है। फिर बाबा स्मृति दिलाते इस प्लैटिनम जुबली का चारों ओर प्रभाव है और बच्चों ने भी दिल से सेवा की है और आगे भी प्लान बनाया है। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था प्लैटिनम जुबली के निमित्त, तो जिसमें विदेशी भाई बहने भी पहुंचे थे, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्लैटिनम जुबली का चारों ओर प्रभाव है और बच्चों ने भी दिल से सेवा की और आगे भी प्लान बनाया है। ये 75 वर्ष अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पार करते निर्विघ्न बना के पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा रहती है। कौन सी आशा है बाबा की? कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा भी सदा विजयी बने, ये बाबा की आशा है। ब्रह्मा बाप ने हर आत्मा के प्रति, चाहे कमजोर भी थे तो कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही, ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते हैं कि अपने परिवार के हरेक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। बाबा ने देखा प्यार की सब्जेक्ट में हर बच्चा यथाशक्ति पास है, तो बाबा कहते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं, प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। तो बाप दादा के साथ प्यार है तो प्यार में बाबा कुछ कुर्बानी चाहते हैं। पूछते हैं बाबा हिम्मत है? तो हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। क्या कुर्बानी चाहते हैं बाबा बच्चों से? कि अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाबा क्या कुर्बानी चाहते? एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय। ये मेजॉरिटी बच्चों में अभी भी दिखाई देता है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता है। जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए, तो बाबा कहे फॉलो फादर, मन तो आपकी रचना है, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो, लेकिन फिर भी मन कहां न कहां धोखा दे देता है।
मन को घोड़ा कहते हैं। बाबा कहते, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है उस मन रूपी घोड़े को चलाने के लिए। अगर मन कभी भी वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता है तो लगाम को टाइट करने से व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। युक्ति बाबा बता रहे हैं कि मन अगर वेस्ट संकल्प की ओर थोड़ा भी चला जाए तो लगाम को टाइट करने से क्या होगा, व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, दरबार लगाया और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, मन के मालिक बन मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीली नहीं करे। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं कि समय और संकल्प दोनों को बचाना है, मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा मन जीत बन विश्व का मालिक बन गया, आपका संपूर्ण बनना, मन जीत हो गए तो आपका संपूर्ण बनना अर्थात मुक्ति का गेट खुलना। तो बाबा कहते इसकी डेट फिक्स करो, इस कार्य की डेट कब तक है। दीदी हमेशा कहती थी, बाबा हम लोगों की लगन थी अब घर चलना है, अब घर चलना है। दादी कहती थी हमको लगन थी कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। तो बाप दादा डबल फॉरेनर्स को पूछते हैं इसकी डेट बताना, आपस में चर्चा करके इसकी डेट बताना। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बच्चों के पहुंचते हैं लेकिन बाबा ने देखा उसमें दृढ़ता कम होती है और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जो कार्य आरंभ करते हो उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल तो निकलना ही है। ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने यह दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। अभी यह संकल्प करो कि आज व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। फिर दूसरा संकल्प बाबा देते हैं, पहला संकल्प व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है। दूसरा इशारा बाबा दे रहे हैं आपस में संस्कार मिलन की रास करो, व्यर्थ को समाप्त कर संस्कार मिलन की रास करो। जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है, प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। तो बाबा कहते दिवाली पर हर एक अपने में संकल्प करो कि अभी संस्कार मिलन की रास करनी ही है। एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं, सब एक हो। मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो, सब हल्के हो। इस संकल्प से ही मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो चेक करना है कोई भी हमारे से नाराज तो नहीं है, इतना ही नहीं लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए। और मुख्य बात अपने को हर एक, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो, जल्दी जल्दी ऐसे संपन्न बनाओ जो आप सबकी संपन्नता मुक्ति का गेट खोल दे। तो ये दो संकल्प आज बाबा ने बच्चों से कुर्बानी के रूप में मांगी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन, आपस में संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो।
आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़े प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं सब बच्चे, इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है। हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है, परमात्मा प्यार में लवलीन है। बाप भी हर बच्चे को प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं? वाह बच्चे वाह। चाहे सन्मुख है चाहे दूर है, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है। चाहे सन्मुख है चाहे दूर, टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन बाबा कहे, बाबा का हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में ये गीत बज रहा है। कौन सा गीत? इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। ये बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है। बाबा कहते हैं, आत्मिक प्यार इतना न्यारा और प्यारा है जो हर एक बच्चे को देह से न्यारा कर परमात्मा के प्यारे बनाने वाला है। और ये प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है। यह प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है? क्या बना देता है? यह प्यार सिर्फ इस एक जन्म में प्राप्त होता है। बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाते हैं। बाबा भी बच्चों का स्नेह देखकर बच्चों के स्नेह में समा जाते हैं। आज बाप दादा हर एक के मस्तक में तीन भाग्य देख रहे हैं। कितने बच्चे लकी है जो बाबा कहे संगम युग पर तीन भाग्य प्राप्त देख रहे हैं। कौन सा कौन सा? एक बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। तो वर्षे का, शिक्षा का और वरदानों का भाग्य बाबा बच्चों में देख रहा है। हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, बाबा को आज दोनों बच्चे जैसे बहुत स्पष्ट, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल में नजदीक है। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। ये प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हैं। बाबा कहते ये प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हो। अभी कोई कोई लोग समझते हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। कैसे करा रहे हैं दूसरों को भी इस प्यार का अनुभव? कि वो सोचने लगे हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। क्या मिला है उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। बाप ने देखा अब इस प्लैटिनम जुबिली का चारों ओर प्रभाव है, और बच्चों ने भी दिल से सेवा की है और आगे भी प्लान बनाया है। 2011 प्लैटिनम जुबली वर्ष था, और इसीलिए 75 साल जब पूरे हुए यज्ञ को, तो बाबा ने देखा कि बच्चों का चारों ओर प्रभाव भी है और बच्चों ने दिल से सेवा की है और आगे भी सेवा का प्लान अच्छा बनाया है। तो बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह।
ये 75 वर्ष अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पार करते निर्विघ्न बनके बनाके पहुंच गए हो। 75 वर्ष हरेक ने अपना अपना पुरुषार्थ अनुसार पार किया, निर्विघ्न बनके बनाके यहां तक पहुंचे हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, अभी बाबा की क्या चाहना है बच्चों से? बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक बच्चा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। कितनी श्रेष्ठ भावना बाबा की कि जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर एक बच्चा सदा विजयी बने। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फॉलो फादर, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति, चाहे जानते थे कि यह बच्चा कमजोर है पुरुषार्थ में भी सेवा में भी, लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही ब्रह्मा बाबा की, और ही कमजोर के ऊपर रहम और कल्याण की भावना रही। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो, उनके भी सहयोगी बनो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि प्यार के सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है, प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देख खुश है, प्यार की सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबरवार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। कितना प्यार से बाबा कहते कि अभी प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। बाप से प्यार है इसलिए कौन सी कुर्बानी करनी है? जो बाप दादा चाहता है वह समझ तो गए हो, समझते हो ना बाप क्या चाहता है? समझते हो? कांध हिलाओ, समझते हो? तो करना है, इसकी भी हिम्मत है ना? हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है। अच्छा, तो हिम्मत है बच्चे, मदद बाप है ही है। अभी बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से कौन सी अपवित्रता रह गई है? बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजॉरिटी बच्चों में अभी भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मना भव होने नहीं देता है। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प का आधार मन, जो मन मना भव होने नहीं देता। तो ये दो बातों की बाबा को कुर्बानी चाहिए, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वह अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया कि मेजॉरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है।
तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए तो फॉलो फादर। बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, मन है तो आपकी रचना। आप मन के रचता हो तो मन को चलाने वाला कौन? मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो, लेकिन फिर भी मन कहां धोखा दे देता है। है आपकी रचना, मन है हमारी रचना, मेरा है ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। मन बार बार धोखा दे देता है। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है ना लगाम। अगर मन कभी भी वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता तो लगाम को टाइट करने से व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। मन के मालिक बन, जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। ये कुर्बानी बाबा हम बच्चों से चाहता है। बुरे संकल्प कम है, व्यर्थ ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। व्यर्थ संकल्प चलने लगे एक बार तो बहुत टाइम चला जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीला नहीं करे। और तरफ आकर्षित होकर बाबा कहे आपकी लगाम, श्रीमत की लगाम को ढीला नहीं करे। हो सकता है ये आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं कि ये कुर्बानी बाबा को चाहिए। हो सकता है, हाथ उठाओ जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प भी समाप्त सेरेमनी मनाएंगे, समाप्ति सेरेमनी मनाएंगे। व्यर्थ समय भी बचाना है, समय और संकल्प दोनों को बचाना है, क्योंकि दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में यह कमी मेजॉरिटी में देखने में आई। मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। जो मन के मालिक है वही विश्व के मालिक बनने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप मन जीत बन विश्व का मालिक बन गया, अभी तो आपके लिए बच्चों के लिए आवाहन कर रहे हैं। अभी तो बाबा बच्चों को वतन में आवाहन कर रहे हैं, आपकी एडवांस पार्टी भी आवाहन कर रही है। सुनाया था 4 बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में

तो बाप आपसे पूछते हैं कि कब तक, तो क्या जवाब देंगे? पहली लाइन वाले बोलो कब तक। हर कार्य के लिए डेट फिक्स करते हो ना, तो इस कार्य की डेट कब तक? ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आवाहन कर रहे हैं, बता सकते हो डेट? बाबा तो आवाहन कर रहे हैं, बोलो डेट फिक्स कर सकते हो? अभी डेट फिक्स है? पांडव हाथ उठाओ, डेट फिक्स है? नहीं है। क्यों? बाबा कहते, दीदी कहती है, बाबा हम लोगों को लगन थी घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दादी कहती हमको लगन थी कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना? है तो सभी से, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उन सभी से आपका प्यार तो है। अभी उनके प्रश्न का उत्तर दो, तो आपस में रूरुहान कर अब कुछ जवाब तैयार करना। करेंगे? पूछते बाबा। फिर बाबा ने देखा, सीजन का पहला टर्न था, तो पहला टर्न हमेशा डबल विदेशी भाई बहनों का होता है, तो इसीलिए बाबा कहे आज तो डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है ना, तो डबल फॉरेनर्स भी आपस में राय करके डेट बताना, और भारत वाले भी इस पर चर्चा करके बताना। है जवाब? हाँ बोलो, बोलो, जो बोले वह हाथ उठाओ। फिर मोइनी बेन न्यूयॉर्क ने कहा, बाबा डेट आप फिक्स करिए, हम लोग एवर रेडी है। मोइनी दीदी ने कहा, बाबा डेट आप फिक्स करिए, हम लोग एवर रेडी है। तो बाबा क्या कहते, नहीं आप फिक्स करो ना, तैयार आपको होना है ना। बाप तो कहेंगे कि इस दिवाली पर दिवाली करो, एवर रेडी, एवर रेडी है, या कहेंगे जल्दी है। अक्टूबर में बाबा दिवाली माने एक महीने के अंदर अंदर, तो बाबा कहे कहेंगे जल्दी है, इसलिए कहते हैं कि आप बताओ। तो डॉक्टर निर्मला दीदी ने कहा, बाबा एक साल दो। अच्छा, इसमें शामिल हो, ये कह रही एक साल, जो समझते एक साल वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, एक साल वालों का नाम नोट करो। अच्छा है, दूसरे सब मुस्कुराते हैं, बोलो। तो निर्वैर भाई ने कहा, नाउ और नेवर, आज अभी होना है। तो बाबा कहे तो ताली बजाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, बाप दादा की बच्चों से रूरिहान चल रही है, तो बाबा कहे बहुत अच्छा, ताली बजाओ। तो अभी अभी सभी अपने मन में ये प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे। ये हो सकता है? अभी से कहते हैं नाउ और नेवर, तो कम से कम ये सब प्रॉमिस करते हैं कि अभी से न व्यर्थ संकल्प न व्यर्थ समय गंवाएंगे। इसमें जो तैयार है वह हाथ उठाओ, मेजॉरिटी ने उठाया है। जो समझते हैं कि टाइम लगेगा वह हाथ उठाओ, तो कोई नहीं, थोड़े थोड़े हैं जो हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, तो इस दिवाली पर यह एक दृढ़ संकल्प करना, जिन्होंने मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है वह स्वाहा करना। इसीलिए बाबा कहे जिन्होंने भी हाथ उठाया वह स्वाहा करना, इसलिए आप सबकी तरफ से दृढ़ संकल्प के लिए आज केक काटेंगे। पसंद है ना? आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है, क्योंकि सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं